0: होती है
1: जी।
0: लेकिन आपके जो अंगों को नुकसान हो जाता है उससे बचना काफी मुश्किल होता है, तो ये बेटर यह है कि आप इसको पहले से ही ध्यान दे दें जिससे आप उस कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं।
1: यानी आप 2-3 दिन तक वेट ना करें, अगर पहले दिन ही ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है।
0: क्योंकि आपने देखा कि जैसे आप रेडियो मानव रचना या ऐसे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया उनको वो कई बार टेम्परेचर को भी नहीं देखते हैं सोशल मीडिया या फोन पे कि आज बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो उनकी उनको ये अवेयरनेस मिलेगी तो वो शायद समझ पाएंगे कि टेम्परेचर का और अपनी बॉडी का पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, यानी पानी जो है वो वैसे ही अमृत नहीं कहलाया जाता, वो वाकई अमृत होता है, और इस गर्मी में अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी अच्छे तरीके से पीजिए, 3 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर ज़रूरी है पीना, अगर इससे ज़्यादा भी आपको प्यास लग रही है तो ज़रूर पीजिए। अल्कोहल का सेवन कम करिए, चाय कॉफ़ी थोड़ी सी कम करिए, और उसकी जगह जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल नींबू पानी बना के पी लीजिए, बॉडी को बहुत राहत मिलेगी। और ठंडी चीज़ें जो आप खा रहे हैं इतना ठंडा भी मत खाइएगा कि आपका गला बैठ जाए, कोशिश करिए कि अच्छे टेम्परेचर की चीज़ें खाइए, और बहुत ज़्यादा बाहर की तली हुई चीज़ें अवॉइड करिए क्योंकि फूड पॉइजनिंग का खतरा भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। सो डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जो मैं आपके लिए संडे की शाम को लेकर आती हूँ। और अच्छी बात यह है कि हर संडे की शाम को और भी सुहानी बनाते हैं मानवता की बात करते हुए। हम सबको पता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस मानवता को भूलते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाती हूं जो इस तरीके के काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी

0: के काम करते हैं, मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और अगर पूरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में नहीं पता है, तो इनका भवन कहाँ पर है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के काम ये करते हैं, आज हम बहुत सारी बातें इनसे जानने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के, राकेश सोनी जी हैं जो कि ट्रेजरर हैं, और महेश गटानी जी हैं जो कि सेक्रेटरी तो हैं ही इस साल के, लेकिन वैसे हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर मेंबर है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के। आप सभी का स्वागत है रेडियो वनवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल राम कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, अगर मैं पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट तो इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
2: माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की शुरुआत सन 1985 में समाज सेवा और जन सेवाओं के कार्य करने हेतु शुरू किया गया था। इस ट्रस्ट के तहत हम समाज सेवा के कार्यक्रमों में माहेश्वरी समाज के सभी जरूरतमंद परिवारों को मेडिकल सहायता, शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन और शादी में सहयोग करते हैं। जन सेवा के कार्यक्रमों में नेत्र चिकित्सा शिविर, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप, दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आयुर्वेदिक चेकअप कैंप, निःशुल्क एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी माहेश्वरी भवन में संचालन, समय समय पर हार्ट चेकअप, कैंसर, डायबिटिक एवं अन्य बीमारियों के संबंधित अवेयरनेस कैंपों का भी आयोजन हम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन का सहयोग, कोरोना के समय प्रशासन को फुल सपोर्ट, साथ ही साथ रेडक्रॉस के सहयोग से फूड पैकेट्स, सूखा राशन तथा जरूरतमंद परिवारों को वितरण किया गया।
0: सो भाई बड़े सारे काम है जो माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का जब गठन हुआ तो इसका गठन इसलिए नहीं हुआ कि चलिए अपने समुदाय के लोगों की मदद की जाए, इसलिए हुआ कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खास तौर पर अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं वो लोग जिनके पास पर्याप्त नहीं है, जिनके जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है। अब क्या पर्याप्त नहीं है? कई बार उनके पास सेवाएं पर्याप्त नहीं है, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। सो ये जो सलाह है ये उन्हें कहाँ से मिलेगी? और ऐसे नेकी के काम माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट एक लंबे समय से करती आ रही है। अब ये किस प्रकार के काम कर रहे हैं, कैसे कैसी चीजें होती हैं, किस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, समय समय पर किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, टीम कैसी है, बहुत सारी बातें हैं जो इनसे पूछनी है, लेकिन उतने ही गाने भी तो हैं जो आपको सुनाने हैं। सो फिलहाल कहीं मचाइए, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो वनवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो वनवरचना 107.8 एफएम पर हर चल रहे हैं मानवता की राह पर, और हम मानवता की राह पर चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सदन जो है या भवन जो है वो आपको मिलेगा 7 सेक्टर में। कहां पूछूंगी, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले राकेश जी, हम बात कर रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में, सो मुझे बताइए कि किस प्रकार के अलग अलग काम हैं जो किए जाते हैं।
1: जय महेश, ये माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो विभिन्न समय पे अंतराल में अपना कैंप लगाता है फरीदाबाद में, और इसका जो लाभार्थी है वो आसपास के 150 से 200 गांव इसके लाभार्थी होते हैं। जैसे हम पोलियो कैंप लगाते हैं या नेत्र चिकित्सा कैंप लगाते हैं। नेत्र चिकित्सा कैंप तो अब क्या है कि गवर्नमेंट की उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया जी। बाकी वो लगाते हैं, तो हम एक महीने पहले से हम इन गांवों में, जो मेवात के गांव हो गए, नूह हो गए, उसके आसपास हमारी टीम जाती है और वहाँ पे प्रचार करती है। वहाँ के सरपंच हो गया या प्रधान हो गया, उनसे वो बात करती है, उनको पेम्पलेट देती है, फिर ये बताती है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो कि सेक्टर 7A में स्थित है, वहाँ पे पोलियो कैंप चलता है, उसमें आप आए। और जो भी लोग वहाँ आते हैं, अपने आते तो वैसे वो लेके आते हैं डंडा जैसा की, लेकिन जाते अपने पैरों से हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे समाज के जो व्यक्ति है, जो हमारे समाज के जो भी सदस्य है, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं और ये सेवा कार्य हम करते रहे हैं।
0: राकेश जी, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वो ये है कि जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दिव्यांग के लिए कैंप, उसमें बहुत सारे दिव्यांग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कि दूर दूर से कहीं से आते हैं, जिनके पास शायद कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधा और किसके एसोसिएशन के साथ मिलकर किस तरीके से आप ये दिव्यांग कैंप लगाते हैं?
1: मैं आपको यही बता रहा था कि इसके लिए हम एक महीने पहले से गांव-गांव जाके भ्रमण करके उनको अपने जैसे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उनके सरपंच हो, प्रधान हो, उनको हम अपने पेम्पलेट देते हैं। अगर उनको बोलते हैं कि आपके पास अगर आने की सुविधा नहीं हो तो हमारे को इन्फॉर्म कर दो, हम वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं, उनको बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारी पूरी टीम है समाज की, वो निस्वार्थ 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहती है, और उनके जो भी डॉक्टर्स, जो महावीर, भगवान महावीर कैंप है जयपुर का, उसके साथ में मिलके हम उनका ये इलाज करवाते हैं और उनको पैरों से वापस भेजते हैं। उसके बाद उनको ट्राई साइकिल जो भी उनको देनी होती है वो भी हम समय समय पर देते हैं।
0: दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं जो शायद कम पैसे होने के कारण या फिर कोई और परेशानी के कारण विकलांग तो हो गए, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो अपने अंग लगवा सकें। आजकल तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट होता है, कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये लगाना भी तो अपने आप में एक कॉस्ट है। मिनिमम 5 से लेकर 15-20-25 हजार तक का एक खर्चा आता है, और कई बार परिवारों में इतना पैसा ही नहीं होता है कि उस विकलांग इंसान के लिए वो एक कृत्रिम कोई भी अंग है वो लगाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट निशुल्क आपके लिए ये काम करती है, और खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी गांव के हो सकते हैं, आप इस शहर में कहीं भी रह सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और आपको आना है और आपको चाहिए कि आपका अंग लग जाए और उसके बाद आप अपना जीवन आसानी से बिता सकें, सो ये सब काम करती है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं जो इनसे जानना चाहती हूँ। आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश जी मेरे साथ बैठे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं जो ट्रेजरर हैं, और महेश जी हैं जो कि मुझे कहना चाहिए सर्वे सर्वा एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। और इतने लंबे समय से मैं इन्हें काम करते हुए देख रही हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई इनका जो नेकी का काम है ना वो जन जन तक पहुंचे। महेश जी, अब अगला सवाल आपके साथ। किसी भी काम को करने के लिए अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो एक टीम की जरूरत होती है। मुझे बताइए आपकी टीम किस प्रकार काम करती है।
1: महेश कट्टानी, महामंत्री माहेश्वरी मंडल, अध्यक्ष हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी ट्रस्ट। माहेश्वरी समाज बिजनेस और सेवा कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। जहाँ तक सेवा कार्यों को संपन्न करने का सवाल है, हम साल में कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। हमेशा सेवा के कार्य चलते रहते हैं। सेवा के कार्य में जब भी हमारा कोई प्रकल्प सामने आता है, सबसे पहले हम कार्यकारिणी से अप्रूव करते हैं। उसके बाद में उस कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए हम अलग अलग टीमें बनाते हैं। अपने प्रचार प्रसार की टीम बनती है, प्रिंटिंग का काम देखने की होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का काम होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 4-5 दिनों का अगर प्रोजेक्ट होता है तो शाम को उसका रिव्यू भी होता है। तो सब मिला के समाज में हमारे युवा साथियों की, सीनियर लोगों की फंड रेजिंग, तो सब मिलके उस काम को सफल बनाने के लिए हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं जब तक पूरा, और उसी की बदौलत हमारे हर कैंप सफल होते हैं।
0: वाओ, तो आपने खुद ही देखा भाई माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के कितने सारे काम हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है। अब आइडियली अगर आप किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तो आपने सुना ही है और वो फोरफ्रंट पर हमेशा होते हैं, लेकिन उनके पीछे होती है वॉलंटियर्स की और मेंबर्स की एक बहुत बड़ी टीम। और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को मैं सलाम करना चाहूंगी। जिस ढंग से वो लोग हर काम को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने सेवा भाव से लगे रहते हैं, मुझे कहना चाहिए एक बहुत ही नेक संस्था है जो ढेर सारे काम कर रही है। भाई आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके आसपास कहीं कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी भी प्रकार की जरूरत है और उसकी जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, सो एक ऐसी जगह है जहां आप दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। अब आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप इनके कामों में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं, राकेश सोनी जी हैं और महेश जी हैं। राम कुमार जी, आपके पास वापस आऊंगी। जब कभी भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, फाउंडेशंस की बात करते हैं या एनजीओस की बात करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सारे काम करना ना बड़ा आसान होता है। आप अपनी नौकरी पर जाइए, आप अपने बिजनेस में जाइए, फिर थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके आप एक टीम बना लीजिए और इन सारे कामों को कर दीजिए। लेकिन इन कामों को एग्जीक्यूट करने में ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: इन चुनौतियां तो इसमें काफी आती है
0: जी,
1: लेकिन फिर भी हमारी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रस्टी हैं
0: जी,
1: उनके अंदर काफी सेवा भाव है।
0: वाओ।
1: और हम लगभग आपस में मिल करके इन चुनौतियों को पूरा कर लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है
0: जी,
1: लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही सेवा भावी है।
0: वाओ।
1: उसके लिए मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि 1985 से ये संस्था आज लगभग 42-43 साल हो रहे हैं।
0: वाओ।
1: 42-43 साल से चल रही है, जुड़े।
0: और अगर मैं मेंबर्स की या वॉलंटियर्स की या इसके लोगों की बात करूँ तो कितने लोग होंगे जो इस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं?
1: ये मेंबर हमारा लगभग मेंबर्स है 1100 मेंबर के आसपास हमारे इस ट्रस्ट के हैं लोग।
0: इतना बड़ा वॉलंटियर ग्रुप, सोच सकते हैं आप, 1100 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सो क्या नहीं किया जा सकता है। और सोचिए, हर इंसान अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हुआ, यानी ये सब एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं जो अपने अपने काम तो करते ही हैं, लेकिन सेवा भाव इतना है कि कोई भी इनके पास आए तो वो खाली हाथ ना जाए, उसकी झोली भर कर जाए। अब परेशानी कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई आए और कहे जी मेरे घर में खाने के लिए राशन ही नहीं है, तो ये इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि आपको वो भी मुहैया कराया जाए। और कई बार जैसे मैंने कहा, कुछ बड़े बड़े काम है जो करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स अक्सर ये लगाते हैं। गर्मी के समय में आपने देखा होगा एक सबसे बड़ा चैलेंज है थैलेसेमिक बच्चे हो या नॉर्मल लोग हो, हॉस्पिटल्स में इसकी काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है। सो किस प्रकार से होने वाला है ये सब करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में आपने जाना 1985, कैन यू बिलीव आई वॉज जस्ट बॉर्न एट दैट टाइम। तब से आज तक ये पूरा का पूरा ट्रस्ट चलता आ रहा है, इतने सारे लोग इसके मेंबर्स हैं और उस टाइम से लेकर आज तक इतना सारा काम किया जा रहा है, मतलब हैट्स ऑफ। लेकिन ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो निरंतर आने वाली पीढ़ी को भी सेवा सिखाती आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन काम करती है, जनरेशन से जनरेशन ये काम सीखते जाते हैं, टीम बनती जाती है और ये सारे के सारे काम आप तक पहुंचते हैं। बेनिफिशियरीज की हमने बात की कि भाई किस तरीके के लोग हैं, गांव से लेकर शहर तक जिसकी भी जरूरत है ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ी जरूरी चीज है जो अक्सर मुझे लगता है कि हर फाउंडेशन हर ट्रस्ट अपनी तरफ से कोशिश तो करता है, लेकिन उन सभी के लिए बड़ा चैलेंज भी होता है ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और वो है ब्लड डोनेशन कैंप। भाई मैं खुद जब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस रहता है, क्या पता लोग डोनेट करने आएंगे या नहीं। एक बड़ा ही खास डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महेश जी, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर बताएं।
1: जैसे कि आपने बताया है कि गर्मियों के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं। और अभी आने वाले रविवार 24 मई 2026 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो रोटरी ब्लड सेंटर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। और हमारा टारगेट मिनिमम से मिनिमम 101 यूनिट का है और हमारी कोशिश रहेगी 150 क्रॉस करें। और इसके लिए, इसको सफल बनाने के लिए हमने पिछले संडे मीटिंग करी थी। मीटिंग करके हमने अपने कार्यकर्ता की टीम बना के पूरे समाज में जो रेगुलर ब्लड डोनर्स है उनको 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके फाइनली कि कौन लोग कंसेंट दे रहे हैं जो ठीक है उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे। और ब्लड डोनेशन कैंप से 2 दिन पहले फिर रिमाइंड करके और फिर फाइनली जो ब्लड डोनर डे के दिन उनकी एक एक लिस्ट को हम लोग टिक करके रहेंगे भी कौन बंदा नहीं है कौन नहीं है। तो ये ऐसा कैंप है जिसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो ब्लड डोनेट कर सके और हमारे कैंप के साथ जुड़े। धन्यवाद।
0: ब्लड डोनेशन के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत जरूरी है ब्लड को डोनेट करना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, एक एक यूनिट ब्लड का इंतजार कर रहे होते हैं। और आपने व्हाट्सएप्स पर तो देखा ही होगा, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, हाथ जोड़े हुए इमोजी होती है, मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे भाई या फिर मेरे ससुर बीमार हैं हॉस्पिटल में हैं, आप लोग प्लीज आकर ब्लड डोनेट करिए। बट हम सब हमेशा यही सोचते हैं ना कि ये कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं और उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो उनके लिए वाकई एंजल का काम करते हैं। सो हम और आप ही वो लोग हैं जो किसी के एंजल बन सकते हैं। अगर आप ये बनना चाहते हैं सो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका है। इस बार 24 मई 2026 को रोटरी ब्लड सेंटर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है। अगर इनकी ये मानना है कि 150 यूनिट होना चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे 200 यूनिट बनाएं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद पिछले 3 महीनों में ब्लड डोनेट ही नहीं किया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो चलिए भाई इस बार का टारगेट बना लीजिए, आज ही से अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए, 24 मई को पहुंचिए माहेश्वरी सेवा सदन 7A सेक्टर 7A फरीदाबाद और मेरे साथ मिलकर चलिए भाई इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो आप सभी से यही अपील है कि आप सभी इस कैंप में आइए और किसी के लिए एंजल बन जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और ये सारी बातें सुनकर आई एम श्योर आपके अंदर की मानवता जाग उठी है। अब आपको लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चलिए भाई, आप मेंबर नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, कौन आपसे एसोसिएट हो सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से आप एसोसिएट करते हैं, जानूंगी अब हमारे ट्रेजरर राकेश सोनी जी से।
1: हमारे यहाँ माहेश्वरी जैसे माहेश्वरी मंडल का गठन हुआ था

0: 1982 में
1: जी,
0: उसके 3 साल बाद हमने ये सोचा कि समाज की सेवा कैसे हो सकती है, इसलिए इसका गठन किया गया माईश्री सेवा ट्रस्ट का 1985 में
1: जी।
0: उसके नीचे भी हमारे माईश्री मंडल में 2 संस्था और काम करती है, एक युवा संगठन और एक महिला संगठन। तो हम सब मिलके ये समाज सेवार्थ कार्य जैसे समय समय पर अंतराल में हम करते रहते हैं। हर 3 महीने में हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हमारे को समाज की सेवा का काम करना चाहिए। कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी पोलियो कैंप लगाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगवाते हैं, कभी ब्लड हार्ट चेकअप कैंप लगवाते हैं। ऐसे हम अंतराल में कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसमें सभी हमारे माईश्वरी समाज के वॉलंटियर है जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं और अपना जैसे समय का जो भी है जो देते हैं। और हमारे समाज में भामा साहब की कोई कमी नहीं है, उसका हमारे पास कोई भी कभी कमी का महसूस नहीं होता है और इसीलिए हम अपना समाज की सेवा के काम करते रहते हैं।
1: मैं देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ 3 तरीके के दान होते हैं। आप श्रमदान दीजिए अगर आपके पास श्रम है तो, भाई आपकी क्षमता है और आप जाकर श्रम कर सकते हैं, यानी आप जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान हैं जो अक्सर अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। सो आपके पास एक चीज़ है धन, सो आप धन का दान दे सकते हैं, उस धन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि श्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके पास श्रम से होने वाला जो दान है उसके लिए धन चाहिए होता है, वो नहीं होता है। और तीसरा सबसे जरूरी दान, समय का दान। आज के जमाने में मोबाइल फोन में हम घंटों खत्म कर देते हैं, अगर आप अपने 2 घंटे भी निकालते हैं और अपना समय आप जाकर किसी को मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए देते हैं ना, तो इससे अच्छा और इससे बड़ा दान हो नहीं सकता है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट न सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से अपने जितने भी कहना चाहिए माहेश्वरी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं और जितना भी इनका समाज है वो तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन क्या हम इसमें अपना हाथ नहीं निभा सकते हैं या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, दिव्यांग कैंप्स हैं या फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। बेनिफिशरीज लाने के तरीके से, कॉन्ट्रीब्यूशन के तरीके से, वॉलंटियर के तरीके से आप जरूर ये कर सकते हैं। और चलिए मिलकर इस दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बनाते हैं। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। हमारे साथ माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से राम कुमार राठी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं, जो ट्रेजरर हैं, और महेश घटानी जी हैं, जिनको मैं एक लंबे समय से जानती हूँ, और मैंने इनके ढेर सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे कामों को खुद विटनेस भी किया है। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप तीनों आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप लेकर जाना चाहेंगे? राम कुमार राठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
1: सभी के लिए संदेश, मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हमारे समाज का मोटो भी सेवा ही संकल्प है।
2: मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना समय जरूर देना चाहिए। समय दोगे, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आप काम हाथ में लेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, सेवार्थ भाव होना चाहिए, तो समाज की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा समाज का सेवा ही संकल्प, यही हमारा समाज का ध्येय है।
3: माहेश्वरी समाज का मेन मोटो ही सेवा ही संकल्प है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे कहीं से पूरे भारतवर्ष में देखें, संख्या में बहुत कम है, लेकिन समाज बिजनेस में सबसे अग्रणी है और सेवा में भी अग्रणी है। राजस्थान में आप एक एक गाँव में देखेंगे तो धर्मशाला से लेके हॉस्पिटल से लेके पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है। उसका मेन मोटो हम लोगों का यही है, सेवा ही संकल्प। जब भगवान ने अगर हमारे को जीवन दिया है तो उस जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम मानव मात्र की कुछ सेवा कर सकें। जय महेश।
0: न सिर्फ समाज का जो संकल्प या कहना चाहिए मोटो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि सेवा ही संकल्प है, लेकिन साथ के साथ आप खुद ही देखिए कि अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, हमेशा हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, सो जब आप समर्थ हैं सो कोशिश करिए कि आप समाज को और भी समर्थ बनाएं। ना कि हम खुद तो खूब अमीर हो जाएं, लेकिन आसपास का हमारा समाज जो है ना वो हमेशा आपको लगे कि उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज का ही एक हिस्सा हैं। सो आज हम चले माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, जहाँ पर हमारे साथ राम कुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश घटानी जी थे, और आज की इस मानवता की राह पर हमने माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए बस एक ही वादा, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आप ही के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छम छम। एक गढ़ हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की आज इस कड़ी में मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो उतनी ही खूबसूरत है, दिल से ही नहीं चेहरे से भी। और इनका नाम है शशिकला कनकानी। शशिकला कनकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स की, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन लेडीज विंग। और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एनजीओ है जिसके साथ एक लंबे टाइम से एसोसिएटेड है, और वो है मदर टेरेसा क्लब। सो बहुत सारे सोशल वर्क के काम ये करती हैं और मैं इन्हें सही मायने में दिल से सोशल एक्टिविस्ट कह सकती हूँ। लेकिन आज हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम इनके विचार, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। शशिकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी और धन्यवाद आपका, मुझे भी उतनी ही खुशी है आपसे मिलके।
0: शशिकला जी पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम का स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैंने ये सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण दरअसल एक बहुत ही पर्सनल चीज है। सशक्तिकरण के मायने हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए मात्र पैसा कमाना सशक्तिकरण हो सकता है, सो किसी के लिए एक डिसीजन लेना सशक्तिकरण हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम सशक्तिकरण हो सकता है, तो किसी के लिए एक डेजिग्नेशन सशक्तिकरण हो सकता है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है?
1: मेरे नजरिए में भावना जी महिला सशक्तिकरण होगा महिला को ना केवल उसका अधिकार देना बट उसके प्रति उसको जागरूक करना, और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटी घर का काम हो या बड़े से बड़ा एमएनसी में कोई पोस्ट संभालना हो, और समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बना सके, मेरे हिसाब से वो महिला सशक्तिकरण है।
0: वाकई देखिए भाई, मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक ही बात कहती हूँ कि महिला जब तक खुश है और वो अपने डिसीजंस खुद ले पा रही है तब तक वो सशक्त है। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत हो या किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठे होने की जरूरत है। सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप अपना जीवन अपने तरीके से बहुत कम पैसों में जी रहे हैं, और सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा रही हैं लेकिन अपने जीवन में जो आप चाहती हैं वो आप कर पाती हैं, क्योंकि सशक्तिकरण आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक वक्त है प्यारे से खूबसूरत से गाने का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। इस गाने के बाद वापस लौट कर आएंगे। शशि कनकानी जी से बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, सो आप कहीं नहीं जाएंगे। फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। अब जब मैं वी कहती हूँ ना, तो मेरा मतलब दरअसल होता है महिलाएं एक साथ आ जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। पर परेशानी सदियों से यही आती है कि पुरुष महिलाओं को ना कहीं अलग रखने की कोशिश करते हैं, और कुछ महिलाओं के अंदर इनबिल्ट एक चिप होती है जिसमें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा हैं और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। सो ये जो एक व्यवहार है महिलाओं का, इसके कारण भी सशक्तिकरण इतना डिलेड हम महसूस कर रहे हैं। शशि कंकानी जी हमारे साथ हैं, और शशि कंकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ की, एक खास एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है खासतौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग की और मदर टेरेसा क्लब के साथ तो ये लंबे समय से एसोसिएटेड भी हैं। अब अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो वर्तमान समय की महिलाओं के बारे में है। शशि जी, हम ना एक लंबा सफर तय करके आ गए हैं। एक जमाना था बच्चियों को पैदा होने का मौका नहीं मिलता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, कन्या भ्रूण हत्या बंद हुई, फिर बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब बच्चियां पढ़ पा रही हैं, यहाँ तक कि फ्री एजुकेशन भी उन्हें मिल पा रही है। फिर बच्चियों को एक और परेशानी आती थी कि वो थोड़ी सी जवान होती थी तो उनकी शादियां हो जाती थी, चाइल्डहुड मैरिज जिसकी मैं बात करती हूँ, बाल विवाह। सो वो भी खत्म हुआ, अब वो एक ऐसी पड़ाव पर हैं जहाँ वो अपनी शादी को शायद 18 साल की उम्र के बाद देख पाती हैं। और फिर एक पड़ाव आया जहाँ वो शादी के लिए कंपेल्ड नहीं होती हैं, वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाती हैं, अपने लिए वो रोजगार ढूंढ सकती हैं। हम इस यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की कमी है। सो अगर मैं आज के चैलेंज की बात करूँ, सो क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज है आजकल की महिलाओं के साथ?
1: महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से ना, उन्हें आज भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है, और कई बार उन्हें ना परिवार, समाज और अपने आसपास के लोगों के हिसाब के साथ में समान अवसर नहीं मिलते।
0: वाकई
1: काम करने का समान अवसर नहीं दिया जाता है। एंड इसके साथ भी ना एक और है कि लोग क्या कहेंगे, वो आज भी एक कहीं ना औरतों के मन में, लेडीज के मन में, खासकर उनके मन में ये जरूर आता है। जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके आइडियाज हैं, बट क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो उन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है। और फिर हम ना वो उस ढर्रे पे चलने लग जाते हैं कि ठीक है, पीछे से जो चीज होते आ रही है वो आगे भी हम करते जा रहे हैं।
0: वाकई
1: वो है एक चीज।
0: देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसके शिकार महिलाएं तो बहुत ज्यादा हुई हैं। अरे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात की जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अक्सर महिलाओं को बहुत सारी चीजों पर रोक टोक लगाई जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन वो घर पर बैठकर सिर्फ होममेकर के टैग के साथ जीती हैं, अपनी आकांक्षाओं का गला घोटकर जीती हैं। सो ये आज भी हमारी महिलाओं के लिए वर्तमान समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं का रोल डिफाइन किया गया है ना घर की चार दीवारी, तब तक शायद बहुत सारी परेशानियां महिलाओं के साथ रहेंगी। क्या किया जा सकता है? अगर आपके पास है सजेशन तो भेज दीजिए मेरे पास 8010781078 पर। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, सुना रही हूँ आपको प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइव।
2: हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम और उतना ही बेहतरीन सा एपिसोड। शशिकला जी एक ऐसी महिला है जो बहुत सशक्त है, बचपन से ही बहुत सारी कुरीतियों को देखने के बाद भी ये हमेशा से एम्पावर्ड रही, और शायद इन्होंने एम्पावरमेंट आने वाले समय में अपनी जनरेशन्स के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स को भी दी, और इसीलिए इनके न सिर्फ स्वभाव में लेकिन आप देखेंगे कि इनके हाव भाव में भी सशक्तिकरण नजर आता है। जिस तरीके से इन्होंने सोशल वर्क को अपनाया है और जिस तरीके से अपने समय का और अपनी कला का सदुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं, ये एक सबसे बड़ी कला है शशिकला जी में। शशिकला जी, अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सशक्तिकरण की आपकी यात्रा, सो अगर देखा जाए तो आपकी एक लंबी जर्नी रही है इन खूबसूरत 55 सालों की।
1: हाँ।
0: इसमें कहीं ना कहीं जिंदगी में आपने कोई एक ऐसा निर्णय लिया होगा जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ होगा कि मैंने बड़ा एम्पावरिंग डिसीजन लिया है, ये बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन है, और उसके बाद ये मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई रिग्रेट नहीं था या आपको लगा कि यस ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है।
1: भावना, मैं राजस्थान से हूँ
0: जी,
1: और मैं राजस्थान में क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक पढ़ी हूँ
0: जी,
1: जहाँ मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, और मैं बात कर रही हूँ वे बैक 1984
0: जी।
1: सो उस टाइम में राजस्थान में 9th स्टैंडर्ड में हम कोर्स ले लिया करते थे अपना, जो अभी 11th में लेते हैं हम 9th में ले लिया करते थे
0: जी।
1: और मैं क्योंकि ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, गर्ल्स स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स अलाउड था
0: जी।
1: सो मैंने अपने दादी जी से कहा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी आर्ट्स, मैं कॉमर्स करूंगी
0: जी,
1: मुझे कॉमर्स करना है और मुझे सीए कंप्लीट करनी है।
0: वाओ।
1: सो वो आप समझ सकते हो कि वो कितना अपोजिंग डिसीजन रहा है मेरा।
0: वाकई।
1: और मैंने फिर अपने प्रिंसिपल सर से बात करी, जो बॉय स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि शशि अगर तुमको करना है तो तुम 5 फ्रेंड्स को ले आओ
0: जी।
1: मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी 5 फ्रेंड से बात करी, उसमें एक मेरे प्रिंसिपल सर की बेटी भी थी
0: जी।
1: तो मैंने उससे कहा, कृष्णा से, कि कृष्णा हम कॉमर्स करते हैं, एंड वी वेंट 5 लड़कियां, हम मैंने बनाया ग्रुप और मैं गई और हमने लिया
0: जी।
1: और बिलीव मी मैंने स्कूल टॉप किया।
0: वाओ।
1: क्लास 9th में, एंड वी वर हम सिर्फ 5 लड़कियां थी पूरे बॉय स्कूल में, 6th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक का क्लास था
0: जी,
1: उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 5 लड़कियां थी। डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला लोगों से, मेरे दादी जी ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मुझे कहा तुम जो ले रही हो आई एम विथ यू,
0: वेरी नाइस,
1: सी टू इट कि भाई कोई इस तरह का कोई भी चीज नहीं हो, बस और कोई बात नहीं है, आई एम विथ यू। एंड आई वेंट ऑन, आई डिड माई 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम देयर, देन आई शिफ्टेड टू कोयम्बटूर। सो आई थिंक वो हमारे मेरा पहला सशक्तिकरण आप बोल सकते हो,
0: मतलब इमेजिन एट द एज ऑफ 13 आप इतना एम्पावरिंग डिसीजन लें कि भाई मुझे कॉमर्स करनी है, ऑल बॉय स्कूल में जाकर मात्र 5 लड़कियां वर्सेस प्रोबेबली 250 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन यही हम कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी क्या आप अपनी चॉइसेस को रख पा रही हैं। आज भी आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशंस में हैं, क्यों, क्योंकि टीचिंग लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए सेफ होता है, आप सुबह सुबह जाएंगी दोपहर तक घर आ जाएंगी, बच्चों का भी ख्याल रहेगा और आप भी नॉर्मल काम कर सकती हैं, ये कहकर बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में पुश किया जाता है, चाहे फिर वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहती हों, कहीं और कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहती हों, लेकिन कंपेल किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए सेफ है। और यही कुछ ऐसे प्रलोभन है या कहना चाहिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पुश कर करके महिलाओं को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या आप उन महिलाओं में से हैं जो सशक्त है, जो अपने लिए डिसीजंस ले सकती हैं और अपने डिसीजंस लेने के बाद विदाउट अ रिग्रेट उन पर आप अडिग रह सकती हैं, तो आप एक सशक्त महिला हैं। एक बार अंदर झांक कर देखिए अपने दिल से, और अगर आपने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है तो इट इज टाइम कि आप एक डिसीजन जरूर लें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज मैं बैठी हूँ शशिकला कंकानी जी के साथ। शशिकला जी वैसे तो दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ के साथ, प्रेसिडेंट हैं राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग, और उसी के साथ साथ मदर टेरेसा क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। लेकिन इन सब सोशल वर्क के कामों में ये महिलाओं को सशक्तिकरण देने का भी एक बहुत खूबसूरत सा काम कर रही हैं। सो कहीं जीवन दान देने की कोशिश करती हैं, कहीं अपनी केयर देने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ के साथ महिलाओं को एक नई सोच भी देने की कोशिश कर रही हैं। शशि जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने बड़ी प्रगति की है, सो हमने बहुत सारा अगर देखें तो हमने जहाँ तक अपनी डेवलपमेंट हो सकती है महिलाओं ने की है। कुछ महिलाओं ने रिबेल करके, कुछ महिलाओं ने परिवार को मना के, जैसे कि अगर हम आपके केस में देखें सो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शायद पेरेंट्स नहीं माने तो भी उन्होंने रिबेल किया, लेकिन वो आगे बढ़ी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मतलब बहुत सारी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमारे समाज में वो इक्वालिटी नहीं है। आज भी शायद एक महिला अगर काम करके घर वापस आती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए, और कि अगर वो उसका पति ही है तो वो उसको ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रोल्स को डिफाइन कर दिया है, महिलाओं पर कुछ जिम्मेदारी ऐसी डाल दी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप इन जिम्मेदारियों के लिए ही बने हैं। और बहुत सारी चीज़ों की इक्वालिटी, एक घर में एक पुरुष है जो उतने पैसे नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है या उतना पोटेंशियल या प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसी घर में एक महिला है जो उतना प्रतिभा भी रखती है लेकिन उसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि समाज क्या कहेगा कि पुरुष घर पर बैठा और महिला कमाने के लिए जा रही है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी हम देखते हैं समानता नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है इस समानता को लाने के लिए?
2: इस समानता को लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा हमें
1: जी,
2: हमारा जो थॉट प्रोसेस है, एंड आई थिंक लेडीज का एक बहुत अहम रोल रहेगा इस थॉट प्रोसेस को बदलने में
1: जी।
2: अगर घर की लेडी, सपोज मैं घर की लेडी हूँ और अगर मैं ये चीज कह दूँ या इस चीज पे अपने बच्चों को ये दूँ, मेरा बेटा है बेटी है दोनों को इक्वल राइट्स है और कोई हार्म नहीं है, और अगर मेरी बहू भी आती है घर में तो मुझे ये, मतलब जो आपने बोला कि एक कप चाय नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, मेरे हिसाब से मुझे ये चीज फॉरवर्ड आके करना चाहिए। सो मुझे अगर घर की लेडी की सोच बदली हुई है तो आई थिंक वी कैन, हम वो चीज बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
1: देखिए शशि जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इसमें भी महिलाओं का हाथ है, और मैं तो ये कहती हूँ परवरिश में हाथ है।
2: यस,
1: क्योंकि परवरिश महिला का
2: रोल है, महिला का।
1: अगर हम जब एक लड़के की परवरिश कर रहे हैं और उसे उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ उसे कहें कि वो उसका बचपन,
2: छोटा सा वाक्य याद आ रहा है अपनी लाइफ का
1: जी।
2: तो मैं अपने दादाजी दादी जी के पास पढ़ी थी फ्रॉम क्लास 4 to 9
1: जी।
2: तो जब मैं क्लास 8 में थी, 13-14 ईयर्स की रही हूँ, तो उन दिनों में मेरे जैसे जितने भी राजस्थान में मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी उनकी बाई 87, 86, 87, 88 शादी हो गई
1: जी।
2: तो मेरे लिए भी किसी ने प्रपोजल भेज दिया
1: जी।
2: तो मेरे दादाजी बोले अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं, और इमीडिएटली मेरी दादी जी बोली अभी ये पढ़ रही है और ये पढ़ेगी आगे। सो मेरा दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज कि ये चीज ना घर लेडीज के हाथ में ही है एंड
1: yes.
2: और हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ना गॉड ऑलमाइटी का भी एक पावर दिया हुआ है जिसे हमें रियलाइज करना है और उसे अप्लाई करना है। सृजन हमारे हाथ में है। मदर्स डे पे मैंने एक कोट पढ़ा कि 50% ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन, द अदर 50% आर हर चिल्ड्रन।
1: यस,
2: सो बेसिकली हमें ही वो चीज करना है, और जैसे आप कहते हो वी, तो वी का मतलब है हम।
1: यस,
2: तो वुमेन एम्पावरमेंट हम अगर करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप ही आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का ना कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू अर्न, मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं एम्पावर्ड हूँ। नो, अगर मैं घर भी अच्छे से संभाल रही हूँ, मेरी मर्जी से बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, जहाँ मैं ये नहीं फील करती हूँ कि मेरे पे ये थोपा गया है, तो इफ आई चूज लाइक आई हैव चोजन,
1: यस
2: आई एम इक्वली, मैं अपने हस्बैंड के साथ में 92 से बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, प्रॉपरली टेक केयर करती हूँ
1: जी.
2: व्हेन ही इज एब्सेंट फॉर सपोज से वन मंथ, वन एंड अ हाफ मंथ, आई हैंडल द बिजनेस ऑल बाय माई सेल्फ
1: जी,
2: टेकिंग ऑल द डिसीजंस.
1: यस,
2: सो आई थिंक दैट इज एम्पावरमेंट
1: एक्चुअली.
2: And at the same time, I'm happy handling my house.
1: Yes. देखो यही सही सशक्तिकरण है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सशक्तिकरण का जो डेफिनेशन है ना, वो हर महिला के लिए जुदा हो सकती है. सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे हिसाब से सशक्तिकरण नहीं है, ये उसका एक स्टेप हो सकता है. लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुशी से अपने लिए ले सकते हैं, विदाउट अ प्रेशर आप जी सकते हैं. भाई मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपको एक सबैटिकल लेना है, आपको लगता है जी बहुत काम कर लिया, मुझे 10 साल का ब्रेक लेना है, मुझे आराम करना है, तो आप अपने डिसीजन ले रहे हैं. अब ऐसे में कोई आकर कहे ये तो तुम्हारे करियर का पीक है, तुम कैसे इस डिसीजन को ले सकते हो, अभी तो तुम्हें कमाना चाहिए. सो यहाँ पर आपका सशक्तिकरण खत्म होता है, जहाँ आप किसी और के डिसीजन से जिंदगी जी रहे हैं. लेकिन वहीं पर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप काम करना चाहती हैं, और आपको ये कहकर घर पर रख दिया जाए कि आप इस घर की बहू हैं, इस घर में बहुत पैसा है, हमें तुम्हारे पैसे की या तुम्हारी सैलरी की जरूरत नहीं है इस घर को चलाने के लिए, सो वी डोंट वॉन्ट यू टू गो आउट एंड अर्न, ये कहते हैं सशक्तिकरण ना होना, यह आप पर थोपा जा रहा है. लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी मर्जी से, चाहे आप होम मेकर बनना चाहती हैं, आप एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहती हैं, घर बैठकर काम करना चाहती हैं, ये इसमें कोई अर्ज नहीं है, आप उतनी सशक्त महिला हैं. बट परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण की सही डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं, और क्या समाज हमें ये सही डेफिनेशन दे पा रहा है, यानी क्या हमें वो ये अधिकार दे पा रहा है. सो कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम है. जुड़े रहिएगा.

बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। देखिए शशि कला जी की बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो आपने सुनी है, आई एम श्योर हम बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे। मैं तो इस बात से इंस्पायर्ड हूँ कि अगर आप एक ऐसी महिला है जिनके पास पूरे घर की अथॉरिटी है, सो प्लीज अपनी डाउन दी जनरेशंस को वो लिबरेशन दे दीजिए, वो एम्पावरमेंट दे दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है, और फिर धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी। डाउन द लाइन हर सास, हर माँ, हर बड़ी बहन, हर भाभी, हर जेठानी शायद लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लिबरेशन देगी, सपोर्ट देगी, सपोर्ट देगी

0: देन कि हम ये सोचें कि वो उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। शशि जी, आप ना बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है सोशल सर्विस में, ढेर सारे काम, मतलब मैं अगर देखूं तो आप फ्रेंड्स ऑफ मैक से तो करीबन 2000 से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा क्लब की, मैं राजस्थान एसोसिएशन की, माहेश्वरी मंडल की बात करूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक लंबे समय से और बहुत ही समय से आप सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। सो इस सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये आपके अंदर कैसे आया?
1: इसके लिए मैं श्रेय दूंगी मेरे फादर को
0: जी,
1: बिकॉज मैंने ना उनको बचपन से देखा है एज अ गिवर
0: जी,
1: तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज इनहेरिट हो गई। और मेरी दादी जी, मेरी मदर, एंड देन इट वाज सपोर्टेड, मतलब वो चीज मेरे हस्बैंड में भी है, सो इट जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट। और मेरा जो मैंने किया गिविंग, जैसे छोटी छोटी चीजें तो हम करते ही थे
0: जी,
1: कुछ भी, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग,
0: यस।
1: तो मैंने ना शुरू से ही क्लासरूम में भी, तो आई हैड सो मेनी, जिसको भी कोई जरूरत होती कभी भी, वो पूरे क्लास में सबसे पहले मेरे पास आता,
0: वेरी गुड
1: शशि, डू यू हैव दिस,
0: यस
1: आई नीड दिस। सो और आज भी वही होता है
0: जी,
1: जैसे हमारा मदर टेरेसा ग्रुप है, 50 लेडीज का ग्रुप है
0: जी,
1: बट अगर उसमें, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसमें अगर किसी को भी कोई तरह की हेल्प चाहिए, उनके दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो शशि कंकानी का होता है,
0: यस।
1: सो दैट इज द थिंग। और जैसे मैं क्लास 11th में थी
0: जी,
1: तो मेरी एक क्लासमेट थी, शी वाज फाइनेंशियली वीक,
0: यस।
1: तो हम एक्सकर्शन ट्रिप पे जा रहे थे एंड शी कुडंट गो
0: जी,
1: तो मैं जब मुझे, आई ओवरहर्ड, शी वाज जस्ट माय क्लासमेट, मुझे मतलब मैं उससे, उसके बाद में कभी मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, जैसे मैं बाकियों से कनेक्टेड हो गई, बट उससे मैं अभी भी नहीं कनेक्टेड हूँ। तो उस, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रही थी कि यार तुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आना चाहती हूँ बट मैं नहीं आ पाऊंगी
0: जी।
1: तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट एंड देन आई वेंट टू माई क्लास टीचर
0: जी,
1: आई सेड मैम मैं ना इसका पैसा मैं भर देती हूँ, दिस इज वे बैक इन 84,
0: जस्ट इमेजिन
1: 500 रुपीज वाज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम,
0: हां या एक्चुअली।
1: तो मैंने वो दिया अपने पॉकेट मनी से निकाल के, एंड आई डिडंट टेल माई पेरेंट्स ऑल्सो, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस,
0: वाओ,
1: नोबडी नोज अबाउट इट। सो एंड द हैप्पीनेस ऑन हर फेस, she was so happy and she kept asking my class teacher
0: ki kisne diya,
1: ki ma'am kisne diya mera paisa, please aap mujhe bata do, so I want to thank her,
0: yes,
1: and I said nahi aap batana mat ma'am, so till date she also doesn't know, you are the first person to,
0: wow,
1: do it,
0: wow। to bhai dekhiye agar wo radio manavrishta 107.8 fm sun rahi hai to ab aapko pata hai ki aapki class mein shashi gankani ji ne wo 500 rupaye diye the aapko excursion par le jane ke liye, but yes यहीं से शायद बीज शुरू होता है। सो क्या आपने डाउन योर जनरेशन अपने बच्चों में भी इसे डाला है?
1: यस, माय चिल्ड्रन आल्सो हैव, जैसे मेरा बेटा है, उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पूरी की पूरी बॉम्बे में था, एक्सेंचर में, सो ही यूज्ड टू गो नियर बाय, देयर वाज एन एनजीओ फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन
0: जी,
1: सो ही वुड गो देयर, वहां जाके उनको बुक्स देना, फूड देना और किताब, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो yes. मेरे दोनों बच्चे करते हैं, इवन व्हेन दे वर हियर स्कूल में थे तब भी वो जैसे झुग्गियों पे जाके और कुछ कुछ बांट के आना करते थे।
0: तो देखिए भाई, ये ना कुछ चीजें हैं जो आप सिखा सकते हो। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, एक जीवन मिलता है, मान लीजिए कि आपका जीवन 80 साल का है, सो आप इस 80 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेंगे, किसी से प्यार लेंगे, किसी से रिश्ता लेंगे, कहीं से आप पैसा लेंगे, और उसी के साथ साथ इस समाज से आप बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिकग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपको जानेंगे, लेकिन इन सबको वापस देने का भी तो समय होता है, और वो समय होता है उन लोगों को रिकग्नाइज करने का, उन लोगों को भी रियलाइज करवाने का जिनके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और शायद इस डगर पर शशिकला कंकानी जी बहुत ही खूबसूरती से चल रही हैं, और इसीलिए सही मायने में मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, ना सिर्फ आपने अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटे, कुछ कहानी हमें सुनाई, बहुत सारी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया, लेकिन जाने से पहले क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी उन सभी को?
1: मैं कहना चाहूंगी, एक महिला को सशक्तिकरण के लिए किसी भी स्टैंप की जरूरत नहीं
0: yes.
1: है, वो गॉड गिफ्टेड ऑलमाइटी ने उसे ऑलरेडी सशक्त करके भेजा है
0: जी,
1: क्योंकि सृजन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ लेडीज में है
0: exactly.
1: तो हमें, हम दुनिया रचा सकते हैं, बना सकते हैं, तो हमें उसे बनाए रखने के लिए भी हमें किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे हमें पहचानना है और उसी को ग्रो करना है। आप भी ग्रो करिए, आने जैसे मदर्स हैं तो अपनी बेटियों को अपने बेटों को बराबर वो समझाइए कि ये दोनों काम बराबर सब काम सब कर सकते हैं
0: जी।
1: और बहू है तो उसे भी अपनी स्पेस दीजिए, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो चाहे बेटा हो चाहे सिस्टर हो चाहे देरानी जिठानी हो, सबको अपनी अपनी स्पेस दीजिए। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, नॉट वो हमेशा ना बाई मॉनिटरी टर्म्स में आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
0: yes.
1: अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया, आप उसे ये याद रखिए और उसे भी वापस लौटाइए
0: जी।
1: और जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेते हो उस पे खुश होके लीजिए और उस पे खुशी खुशी स्टैंड करिए। आई थिंक दैट इज वॉट इज एम्पावरमेंट अबाउट
0: एक्चुअली। सो भाई मैं तो यही कहूंगी कि इस सशक्तिकरण की राह पर ना हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें जीवन की सीख दे जाते हैं, कुछ लोग नसीहत दे जाते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। बट सशक्तिकरण तब तक ही बहुत खूबसूरती से बनी रह सकती है जब तक आप हर इंसान को उसका फ्रीडम जरूर देते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते में हो, फिर चाहे वो आपके आसपास के लोगों में हो, उन्हें उनका फ्रीडम भी दीजिए, उन्हें उनका स्पेस दीजिए। और ध्यान रखिए कि भाई हर इंसान वैल्यूएबल है और हर इंसान बिल्कुल अलग है। सो कभी भी कंपेयर मत करिए किसी को भी, ना इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, ना इन टर्म्स ऑफ आपकी अपनी नॉलेज या किसी भी तरीके से। सो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे ना, ये लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरह। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: धन्यवाद भावना।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगले हफ्ते मेरी आपसे होगी मुलाकात। टिल देन फील गुड फील लाइफ।

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर आता है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारी आपकी हम सबकी जिंदगी से, और विशेष तौर पर हमारा प्रयास रहता है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें इस प्रकार से कि वो एक नई सोच के साथ हमें दिखा सके नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाती हैं एक बेहतर भविष्य की ओर। और विशेष तौर पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मुद्दे हम इस प्रोग्राम के जरिए आपके सामने लाते हैं, जिन पर हम चर्चा करते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं हमारे आसपास हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी अनदेखी कर जाते हैं, यानी जानबूझकर भी हम अनजान बने रहते हैं उन मुद्दों पर। और वो मुद्दे हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानबूझकर अनजान बन जाते हैं उन मुद्दों से, जबकि वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा ही एक विषय, ऐसा ही एक मुद्दा लेकर के हम आ जाए आपके साथ। और वो मुद्दा अगर हम बात करें कि एक आपदा में जैसे अवसर कोई एक प्रक्रिया होती है आमतौर पर हम कहते हुए सुनते हैं, तो ऐसी ही एक आपदा हमारे ऊपर सभी के ऊपर पूरे विश्व स्तर पर आई थी, वो थी कोरोना की महामारी। लेकिन उसी महामारी के दौरान एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और वो परिवर्तन आया था हमारे ऑफिस की जिंदगी को लेकर के, जहां पर आमतौर पर एक परिभाषा रहती है कि जब कभी हम बात करते हैं किसी भी वर्क की, तो हमें हमेशा दिखाई देता है ऑफिस एक कार्यालय और जिसमें सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना ने हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां दे दी थी कि हमने उस ऑफिस के पूरे सेटअप को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया अपने घर पर ही, और वो कल्चर डेवलप हुआ जिसे हम सब ने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। तो आज हम बात करेंगे उसी वर्क कल्चर की जिसने ऑफिस की परिभाषा ही बदल दी, यानी वर्क फ्रॉम होम, जिसने वर्क में होम को ऐड कर दिया। अदरवाइज जब कभी भी हम काम की बात करते थे तो केवल और केवल ऑफिस की बात होती थी। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये सच में बेहतर है, या ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में नई नई समस्याएं ला रहा है। आइए अब कुछ डेटा और अनुभव दोनों के साथ समझते हैं आखिर वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की जो एक प्रक्रिया है वो वास्तव में कितनी सुविधा है, क्या इसके पीछे का सच है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन सभी को जानने की एक कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे तलाशने की एक नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमारे जीवन में आए हुए इस परिवर्तन को एक अच्छे प्रकार से हमें एक अच्छा प्रभाव देकर के हमारे साथ जाए। दोस्तों अगर हम डेटा की बात करें तो आज के समय में हमारे देश में पर्टिकुलरली हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 12.7 यानी 12.7 जो परसेंट लोग हैं वो पूरी तरह घर से काम करते हैं, यानी वो करते हैं वर्क फ्रॉम होम। लेकिन साथ ही साथ 28.2% लोग हैं जो हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं, यानी घर भी और ऑफिस भी, कभी कभी घर कभी कभी ऑफिस, जो एक प्रक्रिया है कि वर्क फ्रॉम होम भी है लेकिन कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है। और एक जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है आज के हालात को देख करके, तो आने वाले समय में तकरीबन 9 से 10 करोड़ भारतीय यानी इंडियंस जो हैं पब्लिक है वो रिमोटली काम करेगी, यानी टोटल जो संख्या कामगारों की है जो वर्क करने वाले लोगों की है उसमें से तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोग रिमोट काम करेंगे यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और यदि वर्ल्ड लेवल पे हम ग्लोबली बात करें तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, ये वैश्विक स्तर पर सभी ने इसको अपनाया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेट कंपनीज ने अपनाया। और उसमें एक इजाफा जो था कि यदि कोरोना में 2020 में वो संख्या 20% थी, तो आने वाले वर्षों में आते आते वो 28-30-35% तक पहुंच गई। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में पूरे विश्व स्तर पर, यानी कोई एक नया जो एक अनुभव था उसको एक तरह से एक्सेप्ट किया गया काम करने वाले लोगों द्वारा और साथ ही साथ कंपनियों के द्वारा भी। तो आमतौर पर हम जब चर्चा करते हैं वर्क फ्रॉम होम की, तो अगर किसी से पूछा जाता है कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो एक सीधा सा जवाब अक्सर होता है कि जहाँ भी वाईफाई है वहीं पर ऑफिस है, यानी केवल और केवल इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए और आप अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए। तो दोस्तों इसी चर्चा को और डिटेल में आपके साथ करेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट जो कोरोना के बाद हमारे वर्क कल्चर में आया, जिसे हमने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। दोस्तों, जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि ये कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली थी क्योंकि कोरोना का कहर एक तरह से पूरे विश्व में फैला हुआ था। तो उससे बचकर के या उसको उसके पैरेलली चलते हुए हमें, क्योंकि अपनी सारी व्यवस्थाएं बनाकर रखनी थी, तो एक ऑप्शन के रूप में इसको तलाशा गया, और वो ऑप्शन निकल गया ही वर्क फ्रॉम होम के तरीके से, कि जिसमें कोई भी व्यक्ति केवल एक इंटरनेट की सुविधा के जरिए अपने जो ऑफिस के सर्वर हैं, ऑफिस के जो काम है, जो ऑफिस की जो एप्लीकेशन है, उनका यूज़ करके अपनी पूरी वर्किंग कर सकता था। क्योंकि हम जानते हैं जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है या एक आधुनिक जो युग आरंभ हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं तकनीक को लेकर के, और इंटरनेट के माध्यम से अक्सर हमारे सारे काम होते हैं। यानी कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो बहुत आसानी से हो जाती है वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के जरिए। तो उसी के द्वारा किया जाने लगा वर्क फ्रॉम होम, और धीरे धीरे जिस प्रकार से एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया इस सुविधा ने कि आपको काम भी करना है और साथ ही साथ आपको घर पर भी रहना है, तो वो एक तरह का बोनस या एक तरह की एडवांटेज उनको दिखती थी। और दूसरी तरफ यदि हम कंपनियों की बात करें, तो कंपनियों को ये लगता था कि क्योंकि यदि कर्मचारी उनके जो ऑफिस के लोग हैं यदि आते हैं, तो उनके लिए एक ऑफिशियल स्पेस भी अरेंज करना पड़ता है, ऑफिस की जो सुविधाएं होती हैं, चाहे वो एयर कंडीशनिंग की है या उनको किसी तरह की जो फैसिलिटी है स्नैकिंग की एंड ऑल, जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, प्रॉपर बैठने का स्पेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो हर प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट थी या जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, उसमें भी कंपनीज को किसी तरह का एक बेनिफिट नजर आने लगा। तो उन्होंने भी खुले दिल से इसका स्वागत किया और इस वर्क कल्चर को, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपनाया। लेकिन अब इसमें बदलाव वाली क्या बात है कि जो हम बात करते हैं, 77% जो लोग हैं वो मानते हैं कि वो घर से बेहतर काम करते हैं। यानी उनको लगता है कि ऑफिस में काम करने की अपेक्षा यदि वो घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने मुख्य काम पर जो ध्यान देते हैं, वो 9% ज़्यादा समय देते हैं। यानी अगर हम बात करें जो वर्क फ्रॉम होम में आप अपने काम को जो समय देते हैं, वो आपके ऑफिशियल आवर्स के मुकाबले 9-10% एक्स्ट्रा होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है, जो इसकी एक सुविधा है, वो कंपनीज को इनडायरेक्टली मिलती है। तो वो अगर हम कंपनीज के पार्ट पे देखें, तो एक बड़ी विन विन सिचुएशन होती है कि आपको खर्चा भी कम करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए, और साथ ही साथ आपको उनसे प्रोडक्टिविटी भी बेहतर मिल रही है। लेकिन यदि हम एम्प्लॉयज़ की बात करें कि उनके पीछे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के पीछे का जो एक कारण था, एक मानसिकता ये थी कि आपको काम करते समय भी आप घर पर हैं तो एक फील रहती है कि यू आर एट होम, तो आपके ऊपर जो एक मानसिक दबाव रहता है ऑफिस के माहौल का, वो नहीं रहता है। और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा आराम है, अक्सर हमने देखा है कि जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, तकरीबन ज़्यादातर लोगों का जो घर है वो उनके ऑफिस स्पेस से लगभग 1-2 घंटे की दूरी पर होता है। तो डेली के 2-3 घंटे उनके जो कम्यूटिंग का जो टाइम है वो बचता है। और साथ ही साथ यदि हम इसको कैलकुलेट करें, तो अगर हम एक एवरेज 200 से 250 दिन की भी बात करें, और डेली आपने 2 घंटे बचाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि पूरे साल में आप 500 घंटे का एक एक्स्ट्रा लाइफ आपकी हो जाती है, जो आप केवल व्यर्थ कर देते हैं ऑफिस आने और जाने में। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक का इशू नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, और अगर जो एक आम धारणा रहती है ऑफिस में कि बॉस का प्रेशर रहेगा, तो उससे भी बहुत हद तक जो मानसिक दबाव है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी हंसी वाली बात है कि आपका पहनावा भी मैटर नहीं करता। बहुत रेयर ऑफ द रेयरस्ट केसेस में वीडियो कॉल पे बात होती है, तब भी आप केवल और केवल आसानी से शर्ट और लोअर में भी बैठ सकते हैं। तो एक अलग तरह का माहौल, एक तरह का रिलैक्सिंग वाला जो फील है वो आ जाता है। और कहीं ना कहीं यही कारण बनता है जो हमने भी आपसे बात की, कि अपना जो मुख्य काम का जो समय रहता है ऑफिस का, उसके मुकाबले तकरीबन 10% एक्स्ट्रा समय हमारे जो लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, वो दे पाते हैं जब वो वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन में होते हैं। साथ ही साथ एक ये डेटा है कि तकरीबन जो रिमोट वर्कर्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी का रेशियो है, वो तकरीबन ऑफिस में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा तकरीबन 13-15% एक्स्ट्रा होता है। तो बहुत सारी एक पॉजिटिव साइड भी इस बात की है कि यदि इस तरह की कोई परिस्थिति आती है कि वर्क फ्रॉम होम कराना पड़ रहा है किसी कंपनी को, तो वो दोनों ही पार्ट पे एक बड़ी सुविधाजनक सी स्थिति दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर पर, कि ये सुविधा में सच कितना है और इसकी सीमाएं कितनी हैं। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल, और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
1: क्या कहा?

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुविधा में आखिर सच कितना है और इसकी सीमाएं कितनी हैं, यानी ये हमारे लिए कितना सुविधाजनक है और साथ ही साथ इसके नुकसान भी हमें क्या हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि प्रोडक्टिविटी 13-15% एक्स्ट्रा होती है, और साथ ही साथ जब वर्क फ्रॉम होम वाला एनवायरनमेंट होता है तो आमतौर पर ऐसा माना गया कि तकरीबन 10% समय ज़्यादा दिया जाता है जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। लेकिन दूसरे पार्ट पर अगर हमने एम्प्लॉयज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो उनका जो डेली के 2 घंटे आने जाने के बचते हैं, तो अगर हम वर्ष भर की बात करें तो लगभग 500 घंटे अतिरिक्त उनको मिलते हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वर्क फ्रॉम होम की अगर हम बात करते हैं तो केवल ये काम ही नहीं बदलता, आपकी लाइफ को भी बदल देता है। जितनी बातें हमने आपको बताई वो हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और जिन पर हम ध्यान देते हैं, और हमें समझ आता है कि वास्तव में वर्क फ्रॉम होम से किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आते हैं। साथ ही साथ जब हम रिमोट काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की खुशी भी देता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया अभी कि जब आप घर में बैठ करके काम करते हैं तो एक मानसिक तौर पर आप जो आपकी प्रेजेंस है वो घर में होने के कारण एक तरह का रिलैक्स वाला फील आपके मन में आता है। कार्यालय में जिस प्रकार का जो काम का दबाव होता है, चाहे आपके सीनियर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, वो सब आप किसी तरह से नहीं महसूस करते हैं जब आप घर में काम होते हैं, घर से काम कर रहे होते हैं तो वो आपको खुशी और संतुष्टि भी ज़्यादा देता है। साथ ही साथ जब फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर होता है तो वो शिफ्ट के हिसाब से भी कंपनी उसको एडजस्ट कर देती है, तो एक तरह से जो आपकी वर्क लाइफ है वो बड़ी बैलेंस हो जाती है। जब आपका एक वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है उसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से शेड्यूल ऑप्ट कर लेते हैं, तो यदि आपको घर पे या आपके जीवन में और भी जो विभिन्न कार्य रहते हैं यदि उनके लिए आपको शेड्यूलिंग करनी होती है तो वर्क फ्रॉम होम में ये सुविधा कंपैरेटिवली बेहतर होती है। क्योंकि जब कभी भी यदि हम ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल फिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नीति नियम जो बनेंगे वो सभी पर अप्लाई होंगे। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम की बात आती है तो इंडिविजुअली आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस कल्चर ने, जो वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, हमने सुविधाएं देखी हैं, पर सबसे बड़ी जो कमी है, एक सर्वे के अनुसार यदि हम उसका रिजल्ट आपसे शेयर करें तो करीबन 25% लोगों ने अपनी एक समस्या जाहिर की है कि उनके अंदर सोशल स्किल्स, जो एक समाज के साथ जुड़ करके रहना या उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं लोगों से मिलने जुलने में, उसकी उन्होंने कमी महसूस की है। और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने आइसोलेशन और अकेलेपन का भी एक जो बदलाव है वो अपने जीवन में महसूस किया है, तो वो कहीं ना कहीं अकेलेपन के शिकार भी हो जाते हैं। तो यानी एक तरह से यदि हम बात करें तो कि जो हम पीस की बात करते हैं, जो एक मेंटल पीस, एक रिलैक्स वाला जो माहौल मिलता है घर में, लेकिन वही शांति कभी कभी एक तरह के सन्नाटे का रूप ले लेती है। तो आप अंतर समझ के देखिए कि जब हम शांति की बात करते हैं तो एक पीसफुल फील आती है, शांति वाली, रिलैक्स वाली, लेकिन साथ ही साथ जब वो शब्द सन्नाटे में बदल जाता है तो एक सूनापन और एक खामोशी आपके जीवन में आ जाती है, जो किसी भी रूप से आपकी मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं होती है, ना ही आपका पारिवारिक माहौल उससे बेहतर होता है। और साथ ही साथ जब कभी हम कुलीग्स की बात करते हैं, जब आप किसी भी कार्यालय में काम करते हैं तो आमतौर पर हमने देखा है कि जिस प्रकार से कॉलेजेज में, स्कूल्स में आप अपने सहपाठियों के साथ हंसी मजाक करते हैं, ऐसा ही एक वातावरण आपके ऑफिस में भी होता है जो आपके कोलीग्स के साथ होता है। लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में चले जाते हैं तो वहाँ उन्हीं की कमी भी आपको सताती है, एक तरह का जो ये जीवन का बदलाव है वो आपको परेशान भी करता है। और साथ ही साथ पूरा पूरा दिन कई बार ऐसा होता है कि जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू आसपास कोई है नहीं, तो आप बिना किसी से बात किए हुए केवल और केवल एक मशीन की भांति केवल अपने काम पर लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार का एक वातावरण मिलता है कार्यालय में आपके आसपास के लोगों का, काम करने का ढंग देख करके भी हम कई बार मोटिवेशन फील करते हैं अपने अंदर, तो उन सब जो गुणों का जो विकास होना होता है हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो एवरी टाइम खाली हम इस बात को देखें कि हमने साल में 500 घंटे बचा लिए, पॉल्यूशन से बच गए, लेकिन उसकी कीमत कहीं ना कहीं हम चुकाते हैं, जैसे हमने कहा कि सोशल स्किल्स की कमी हो जाती है या लोगों से जो मिलना जुलना, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो सब पाने से आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं।
तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवन के एक ऐसे बदलाव की जो वो हमारे जीवन में आया कोरोना की महामारी के बाद से, यानी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारी ऑफिशियल वर्किंग पे, और जिसे हमने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। जैसा कि हमने अभी कार्यक्रम के पिछले भाग में आपसे चर्चा की कि इसमें किसी तरह की जो बेनिफिट्स है, अगर हम एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम्यूटिंग जो आवर्स हैं वो बच जाते हैं, आपको एक वातावरण अच्छा मिल जाता है, ऑफिस का कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ उसकी कहीं ना कहीं हम एक कीमत चुकाते हैं, जो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, एक अकेलापन आपको महसूस होने लगता है, और दूसरी तरफ जो एक तरह का मोटिवेशन आपको अपने कुलीग के साथ बैठ करके काम करने का जो वातावरण है वो मिलता है, या कई बार आप अपने मन के दुख सुख आप शेयर कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हट जाते हैं और एक मशीन के रूप में काम करने लगते हैं। साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में डेवलप हुई वो ये कि काम और जिंदगी के बीच की एक तरह की रेखा जो बाउंड्रीज है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप घर में रह रहे हैं और घर में रहकर भी काम कर रहे हैं तो वो ना आप घर में रह पाते हैं ना आप ऑफिस वाला वातावरण महसूस कर पाते हैं, तो एक तरह की सारी चीजों की ना मर्जिंग हो जाती है, तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि काम और जिंदगी के बीच की जो रेखा मिट जाती है, जो बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करने लगती है एक समय के बाद। शुरू में बहुत निश्चित रूप से सभी को बहुत प्रसन्नता हुई थी, बड़े खुशी का वातावरण हो गया था, पेरेंट्स को और बच्चों को लगता था कि चलो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही हैं, और लेकिन वो साथ रहकर भी साथ नहीं थे क्योंकि उनको अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी होती थी, तो वो ना ये महसूस कर पाते थे कि हम घर पर हैं और ना ही पूरी तरह से ध्यान दे पाते थे कि हम ऑफिस में हैं। साथ ही साथ जब हम वर्क वाले माहौल में होते हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा कि यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ एक निश्चित आवर्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि इतने बजे छुट्टी हो जाती है, इतने बजे ऑफिस का काम बंद हो जाता है, तो आप अपना सब कुछ वाइंड अप करके घर के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो वो इस प्रकार का जो एक थॉट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमें कितने आवर्स के लिए काम करना है, और वो जो एक्स्ट्रा आवर्स वाला हमने एक अनुपात आपके सामने बताया कि 10% एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से निकल जाता है। और साथ ही जब आप ऑफिस में होते हैं तो केवल एक ऑफिस के समय तक आपकी एक जिम्मेदारी रहती है, लेकिन यदि आप घर पर हैं तो ऑफिस आवर्स या वर्किंग आवर्स के बाद भी आपके पास हमेशा उपलब्ध रहने का या ऑलवेज अवेलेबिलिटी का जो एक प्रेशर है वो बढ़ता है। और एक जो रिसर्च है एक इन चीज़ों पर, जब क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव था तो उसमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन कम्युनिकेशन और टीम बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, क्योंकि आप मिलते नहीं हैं, आप एक दूसरे से अपने थॉट्स नहीं एक्सचेंज करते, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारे लोगों के जीवन में कि जिसमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, आपके वर्किंग आवर्स बढ़ गए, आपने टाइम ज़्यादा दे दिया, आप काम भी ज़्यादा करते हो, जैसा हमने बताया कि 15% एक्स्ट्रा जो प्रोडक्टिविटी है वो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और टीम बॉन्डिंग है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी टीम के ग्रोथ में, उसके मोटिवेशन में, या किसी कंपनी की ग्रोथ में जो टीम बॉन्डिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। साथ ही साथ एक तरह का जो एक माहौल डेवलप हो गया कि पहले यदि हम ऑफिस में होता था कि ऑफिस में दिखना जरूरी हो जाता, लेकिन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और सब कुछ ऑनलाइन है तो आपका ऑनलाइन दिखना जरूरी है, तो एक अलग तरह का जो वातावरण है वो तैयार हो गया जिसकी आदत हमें नहीं थी और उसमें ढलने में भी हमें समय लगा। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज इस चीज में आया कि आपका घर और आपका ऑफिस, उसमें जो अंतर कर पाना था वो बिल्कुल असंभव सा हो गया, क्योंकि दोनों चीजें मिक्सअप इतनी ज्यादा हो गई कि आप दोनों को सेपरेट कर ही नहीं पाते हैं। तो एक तरह का बहुत बड़ा आपके पारिवारिक जीवन में भी बदलाव आता है। आमतौर पर यदि हम ऑफिस के माहौल की बात करें, वातावरण की बात करें, तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालता था आपके पारिवारिक जीवन पे, लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ है शुरू, उसके बाद से आपके पारिवारिक जीवन पर भी इसका पूरा असर दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। ये प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं आपके लिए हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को लेकर के, जो हमारे जीवन में अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना चुका है कोरोना की महामारी के बाद से। तो हमने आपसे चर्चा की कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, यदि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो भी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी। लेकिन आखिर यदि हम दोनों में किसी तरह की सीमाएं, जो कि हमारे कार्यक्रम का आज एक टॉपिक भी है कि जो वर्क फ्रॉम होम है, जो सुविधा है, इसकी सच्चाई और इसकी बाउंड्रीज क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या है। लेकिन लिमिटेशंस की यदि बात करते हैं तो बाउंड्रीज आखिर हम तय करें कैसे, जो इसकी एक हमारे लिए किस तरह से हम जीवन में इसको यूजफुल बनाएं, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों सबसे पहला ज़रूरी बात है कि यदि आपको वर्क फ्रॉम होम को सर्वाइव करना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो वर्किंग के आवर्स हैं, टाइमिंग्स हैं, चाहे आपको ऑफिस जाना है या नहीं है, लेकिन टाइमिंग्स को आपको लिमिटाइज करना जरूरी है। उसको एक सीमित समय के लिए करें, यानी 9 से 6 का यदि आपने कोई समय निश्चित कर लिया है तो सुबह 9 बजे आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए बैठना है और शाम को 6 बजे हर सूरत में वो काम आपको ख़त्म कर लेना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है कि यदि आप अपने आप को फिक्स रखेंगे तो एक्चुअली आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने वर्क को और अपनी फैमिली लाइफ को। साथ ही साथ जितना हो सके यदि आपके पास स्पेस है तो आप अपना एक जगह, एक अपना स्थान निश्चित करें घर में, जहां पर आप केवल अपना वर्क फ्रॉम होम वाला समय बिताएंगे, ना कि ड्राइंग रूम में आप कभी लैपटॉप लेकर के बैठ गए या बेडरूम में बैठ गए या किसी भी स्थान पर। तो वो एक तरह का जो डिस्टर्बेंस है, जो आपको हमने भी बात की कि घर में रह करके भी आप एक ऑफिशियल जो वातावरण है उसको कहीं ना कहीं आप पूरे घर में फैला देते हैं, तो एक प्रकार का जो माहौल है घर का वो बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि यदि आप कहीं भी बैठे हैं तो आपके घर के किसी भी और सदस्य का बात करना या आपको डिस्टर्ब करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर तरीका है कि आप अपने घर में जो वर्क फ्रॉम होम का स्पेस है उसको सेपरेट बनाएं। साथ ही साथ आपको एक तय करनी पड़ेगी सीमा कि आपका नो वर्क जोन का एक टाइम होना चाहिए, कि यदि आपने कोई टाइम निश्चित कर दिया कि 8 बजे के बाद मैंने रात को कोई ईमेल नहीं करनी, कोई कॉल ना करनी है ना लेनी है, जब तक कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो। क्योंकि कई बार किसी किसी मल्टीनेशनल कंपनीज का जो अदर कंट्रीज के साथ वर्किंग रहती है तो उसमें टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से ये असुविधा हो सकती है। लेकिन जहां तक संभव हो सके आपको कहीं ना कहीं नो वर्क जोन भी आपको रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब कभी भी आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कई बार हम इस कल्चर में भी बिल्कुल जेलअप हो जाते हैं कि आप एक जगह अगर बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उठते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं वहाँ से, वो भी आपको त्यागना पड़ेगा।

बिता लें, जिसको आप डिजिटल डिटॉक्स का नाम भी दे सकते हैं। यानी हम एक रिसर्च की भी अगर हम बात करें कि यदि आपने अपने वर्किंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर रखा, तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एक टाइम के बाद हम कहते हैं कि डिक्लाइन शुरू हो जाता है, वो नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी स्टेबल रहेगी। तो ये बहुत समझने वाली बात है। और दोस्तों, जिस प्रकार से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, उसके बारे में आपको एक बहुत ज़रूरी बात जो याद रखनी चाहिए, यदि आपने वर्क फ्रॉम होम के सिस्टम में अपनी लिमिटेशंस नहीं बनाई, सीमाएं नहीं बनाई, तो ये काम आपकी पूरी जिंदगी को घेर लेगा। यानी हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि हमने अभी से बाउंड्री सेट नहीं की वर्क फ्रॉम होम में, तो कहीं ना कहीं आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, ये वर्क फ्रॉम होम पूरी लाइफ को आपकी कैप्चर कर लेगा और आप एक ऐसी असुविधाजनक स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहां आप अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की महामारी के बाद हमारे जीवन में आए हुए एक बहुत बड़े बदलाव यानी वर्क फ्रॉम होम को लेकर के। हम चर्चा कर रहे हैं कि सुविधा में कितनी सच्चाई और इसकी आखिर बाउंड्रीज हैं क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और कैसे हम इसको अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी जो पारिवारिक जिंदगी है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, वो और वर्क लाइफ को बैलेंस किया जा सके। उसमें हमने बताया कि आपको वर्किंग आवर्स आप लिमिट करने पड़ेंगे, आपको स्पेस सेपरेट रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिटॉक्स भी आपको अपनाना चाहिए, और साथ ही एक डू नॉट डिस्टर्ब का एक टाइम जोन, नो वर्क जोन जो है उसका एक टाइम डिसाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकती हैं। साथ ही साथ हम जो अब आज की बात करें कि आखिर आने वाला भविष्य है क्या, अब कंपनियां पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस नहीं बल्कि हाइब्रिड मॉडल पे चली गई हैं, यानी जिसमें 91% कर्मचारी जो हैं वो या तो रिमोट को पसंद करते हैं या हाइब्रिड को पसंद करते हैं। लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर इनकी परफॉर्मेंस का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। तो एक समझने वाली बात है कि जब आप किसी भी चीज की सुविधा, जो भी आपने मॉडल अपनाया, यदि उसका इम्पैक्ट बेहतर आ रहा है तो निश्चित रूप से कंपनियां उसको अडॉप्ट करती हैं। तो हमने ये पिछले जो कुछ समय में देखा कि जब ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ तो उस समय हाइब्रिड पे जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोरोना का एक आपातकाल परेशानी चल रही थी कि उसमें उस एमरजेंसी में हम इस प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां बेहतर हुई तब कंपनीज ने इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनाया कि हाइब्रिड मॉडल। लेकिन अब उसमें निकल के आती है ये बात कि जब कभी भी हमने बदलावों को चुना या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लिया या हाइब्रिड मॉडल को हमने अपनाया, तो उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया था कि जो एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी थी, जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कंपनीज में, वो तकरीबन जो कंपनियां छोड़कर अक्सर लोग चले जाते हैं, स्विच कर लेते हैं, तो उसमें 33% की गिरावट भी आई थी इस वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वाले कल्चर के बाद से। तो यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आने वाला समय है, जो भविष्य का जो ऑफिस है, वो एक तरह से कभी घर और कभी बाहर, लेकिन बड़े बैलेंस के साथ होगा। दोस्तों, हमें बड़े गहराई से इस बात को समझना पड़ेगा कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो एक सुविधा तो है लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये आपको आजादी तो देता है लेकिन उसी आजादी में आपसे उम्मीद करता है डिसिप्लिन की, यानी अनुशासित रहने की। यदि आप सही संतुलन बना लेते हैं तो ये काम नहीं बल्कि आपके लिए एक बेहतरीन लाइफस्टाइल बन सकता है, एक अच्छी जीवन शैली बन सकता है। याद रखने की जरूरत है कि काम आपके लिए है, आप काम के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर होता है इन दोनों बातों में और उसको हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए, इस परिस्थिति को और बेहतर बनाइए और इसकी सुविधा पूरी तरह से लाभपूर्ण रखिए। वो कर सकते हैं केवल और केवल जब आप इसकी बाउंड्री सेट करें। जो टिप्स हमने आपको दी उनको यदि आप अपनाएं तो आपको एक जीवन में एक बेहतर पारिवारिक और जो हमने ऑफिशियल एनवायरनमेंट की बात की वो मिलेगा, और आप एक बेहतर तरीके से जीवन को जी सकेंगे। तो दोस्तों, इस बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और मिलकर तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें। और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा। ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको, इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाते हैं, और वो गाना होता है मेरी पसंद का। तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना। मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं, साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल

0: इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो सिर्फ चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है। इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो यू नो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जी बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया। उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी, यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ
0: जी। समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा, या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है, या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे। ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है, लेकिन ये चीज शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं। शेफाली जी, अब तक का सफर आपका कैसा रहा यह तो मैं जरूर जानूंगी, लेकिन यहां तक आप पहुंची इसके लिए एक सोच जरूरी होती है, वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है, आई गेस आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया, आप बताइए इसके बारे में।
1: सो मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने की जरूरत है।
0: करेक्ट,
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर एनजीओ जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, जो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, और मैं ब्यूटी पेजेंट ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है उसमें मैं जुड़ी रही हूँ फॉर लास्ट 7 ईयर्स
0: जी,
1: एंड आर एन टॉक्स के जुड़ी रही हूँ। ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, एवीएम में टीचर्स ट्रेनर क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले, टीआरएम में कंटेंट राइटर हूँ, मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। यूएलबी में स्टूडेंट काउंसलर हूँ जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ, मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कनाडा और बहुत सारी अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़े मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है उनसे बात करके, नई चीजें सीखने मिलती हैं और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने पीएचडी किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है। सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, न्यूज एक्स में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वाज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल। सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी, हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं। आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में है, जगह जगह पोस्टिंग रही हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहां हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं। सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है।
0: Correct.
1: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं, हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है आपका, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूँ आज मैं वो उनकी वजह से, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स, हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी।
0: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन। ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट। सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी एंड मेनी मोर थिंग्स टू माई आर्मी फ्रेटर्निटी, माई थैंक्स टू माई जूनियर्स एंड सीनियर्स, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, आई हैव ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट मोर देन 2000 स्टेज शोज, आई हैव कंपेयर्ड अ लॉट मोर देन 4000-5000 शोज देयर। सो एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ, माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो, जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ।
0: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ, और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सुननी चाहिए, मैम से जरूर बात करेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांगाम के साथ।

نفع.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानवर्ष नाउ 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां सुबह की. ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, आप 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माय डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. That is, you put your right hand on your left shoulder, put your left hand on your right shoulder and say, this is me, I love you, I love myself. So, ये जो butterfly hug है, ये एक magical hug होता है. आप शीशे में उस इंसान को, जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकेंड शुरू हो जाता है, बिकॉज ये अफर्मेशन है. इनको
0: अफर्मेशन बोलते हैं,
1: सच्चे दिल से कर रहे हैं. अफर्मेशन होते हैं ना, दिस इज मी, आई इट द डे इज बाउंड टू बी माई डे टूडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज यू नो ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारी है उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है, तो आपका आधा काम तो हो गया. उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को, जिसको आप शीशे में देखते हैं, उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे.
0: जी, तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो. आप आपके जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं. अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं. तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए. आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है. अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है. फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा, और ये खुद मैम कह रही हैं, और इतना एक्सपीरियंस. अभी हम और बहुत सारी बातें हम मैम से जानेंगे, साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना. तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ.

0: गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078, रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही के रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीजें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली विच वी कैरी विद अस। सो डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा, डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वही एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं, मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का। लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे
1: कि बिल्कुल सही कहा प्रियंका
0: जी,
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम हैं, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं। अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ही इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनको, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। और दो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हटके।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान जो है ऑर्गन डोनेशन, देह दान यानी बॉडी डोनेशन और उतक दान टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना तथा समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए ये सब बताएंगे। आज हमारे साथ हैं सुनैना सिंह, सीईओ ऑफ ऑर्गन इंडिया, और उनके साथ हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया के, जो आज हमारे प्यारे सुनने वालों के सवालों का जवाब देंगे। यदि आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@organindia.org पर। हम आपके प्रश्नों का जवाब अगले एपिसोड में जरूर देंगे। आपका आज के इस शो में फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का शो जीवन एक अनमोल उपहार। आज के कार्यक्रम में आप ही के पूछे हुए सवालों का जवाब हम देंगे। हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं जो भारत में जगह जगह रहते हैं। उन लोगों ने हमें बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल करे हैं, उतक दान के बारे में, अंग दान के बारे में, देह दान के बारे में काफी सवाल पूछे हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारी ऑर्गन इंडिया की टीम की तरफ से सुनैना सिंह है जो सीईओ है ऑर्गन इंडिया की, और उनके साथ है डॉक्टर सौरभ शर्मा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया के, और ये दोनों आज आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। सो ओवर टू यू टीम ऑर्गन इंडिया।
2: धन्यवाद पायल। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा।
3: मैं सुनैना सिंह।
2: आप लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आप सबने इतने दिनों में इतने सारे प्रश्न पूछे हैं और हमें भेजे हैं, तो हम एक एक करके उनके जवाब दे देंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल सतीश नौटियाल जी की तरफ से है जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, और इन्होंने हमसे पूछा है कि अंग दान से हम बहुत सी जिंदगियां कैसे बचा सकते हैं। सतीश जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने इतना जरूरी सवाल हमसे किया। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अंग दान के दो तरह से होता है। एक, जब हम अपने जिंदा रहते हुए अपने अंगों का दान करते हैं, और एक, जब हम अपने जाने के बाद अपने अंगों का दान करते हैं। जब हम जिंदा रहते हुए अपने अंगों का दान करते हैं तो सिर्फ एक किडनी या लिवर का कुछ भाग ही हम दान कर सकते हैं, पर जब मरने के बाद हम अपने अंग दान करते हैं तो हम अपने सभी अंगों का और ऊतकों का दान कर सकते हैं और बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकते हैं।
3: यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो ऑर्गन डोनेशन, अंगदान और ट्रांसप्लांट का कानून है, जो उसकी सारी प्रक्रिया का नियंत्रण करता है, वो

0: वो ये कहता है कि जब हम अपने जिंदा रहते हुए किसी को अंग दान करते हैं, इसका मतलब या तो एक किडनी किसी को देते हैं या लिवर का कुछ भाग किसी को देते हैं, तो वो हम सिर्फ अपने नियर रिलेटिव को दे सकते हैं, उनको ही दान कर सकते हैं। और कानून के मुताबिक नियर रिलेटिव है आपका स्पाउस, यानी कि आपकी हस्बैंड और वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर आपको अंग दान करना है या अंग किसी से चाहिए जो आपका अदर देन नियर रिलेटिव हो, यानी कि कजन या कोई दोस्त या कोई जान पहचान वाला, तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी एक कमेटी से, और वो कमेटी बैठ के देखेगी कि ये आपका सचमुच में दोस्त है और इसमें कुछ पैसों का मामला तो नहीं है। और अगर वो कमेटी ने हाँ कर दी तब ऑर्गन ले सकते हैं, अंग ले सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ नियर रिलेटिव से अंग लेना पड़ेगा। और जबकि हम मरने के बाद अंगों का दान करते हैं तो हम अपने सारे अंग दान कर सकते हैं और 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। वो अंग उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनका नाम सरकार की वेटिंग लिस्ट पे होता है, और ये भी सरकार ही तय करती है कि कौन सा अंग किसको जाएगा। और जो अंग दाता है उसकी फैमिली को पता नहीं चलता कि ये अंग किसको दिया गया है, बस वो सिर्फ अंगों को दान कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। और हमारा अगला सवाल है रंजना पवार की तरफ से, और ये पूछती है कि हम अपने मरने के बाद कौन कौन से अंग दान कर सकते हैं। रंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम अपने जाने के बाद हम अपने सारे अंग और उतक दान कर सकते हैं। अगर हम अंगों की बात करें तो 8 से ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे अंग हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो दान कर सकते हैं और 8 जिंदगियां बचा सकते हैं। तो ये अंग हैं 2 किडनी, 1 लिवर, 1 हार्ट, 2 लंग्स, 1 पैनक्रियस और 1 इंटेस्टाइन। और अगर हम उतक दान या टिश्यू डोनेशन की बात करें तो 45 से ज़्यादा तरह के उतक दान कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा दान नेत्रदान यानी कॉर्निया डोनेशन होता है। आई एम श्योर आपको ये मालूम है कि कॉर्निया डोनेशन यानी कि आई डोनेशन क्या होता है। उसके अलावा स्किन या चमड़ी का डोनेशन हो सकता है, हड्डियाँ डोनेट हो सकती है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मांसपेशियाँ वगैरह, आप लोग ये सब डोनेट कर सकते हैं अपने जाने के बाद, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हो जाएंगी इस टिश्यू डोनेशन के बाद।
1: जैसे कि सोनाना जी ने चमड़ी दान करने की बात की, तो चमड़ी ये उन लोगों के काम में आती है जो लोग आग से जल जाते हैं या तेजाब से जल जाते हैं, उन लोगों को चमड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उन ये स्किन डोनेशन उन लोगों के काम में आता है। और जैसे कि कॉर्निया डोनेशन है, तो जिन लोगों की कॉर्निया ख़राब है या किसी वजह से ख़राब हो गई है, उन लोगों को कॉर्निया डोनेशन से बहुत फ़ायदा होता है और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर तरह का अंधापन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से ठीक नहीं होता, सिर्फ कॉर्निया में हुई खराबी का ही इलाज कॉर्निया ट्रांसप्लांट से किया जा सकता है। बाकी अंधेपन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपकी ऑप्टिक नर्व खराब हो सकती है, आपके लेंस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर कॉर्निया में खराबी है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट से वो ठीक हो सकती है।
0: बिल्कुल ठीक
1: है। अगला सवाल हम लेने जा रहे हैं जो कि पूछा है प्रताप गस्याल जी ने, जो कि कुमायूं के रहने वाले हैं, और ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने सुन रखा है कि सामान्य मृत्यु के बाद अपने सारे अंगों को दान नहीं किया जा सकता, सिर्फ ब्रेन डेथ या मस्तिष्क मृत्यु के बाद ही अपने सारे अंगों को दान किया जा सकता है, तो इस पर ये थोड़ी जानकारी चाहते हैं। प्रताप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारी डेथ होती है तो या सामान्य मृत्यु के बाद हम अपने कुछ ही ऊतक दान कर सकते हैं, सारे अंगों को दान नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि जब कभी हमारी डेथ होती है तो हमारे हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से हमारे अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और कुछ ही पल में सभी अंग मर जाते हैं। इसलिए हार्ट के रुकने के बाद यानी कार्डियक डेथ के बाद हम अंगदान नहीं कर सकते या अंगदान नहीं हो सकता, सिर्फ नेत्रदान या अन्य ऊतकों का दान ही हो सकता है। सभी अंग यानी वाइटल ऑर्गन्स, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि लीवर, किडनीज, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज, ये सब अंगों का दान हम सिर्फ ब्रेन डेथ के बाद ही या मस्तिष्क मृत्यु के बाद ही कर सकते हैं। ब्रेन डेथ में क्या होता है, जब किसी दुर्घटना में हमारे सर पर गंभीर चोट लगने के कारण हमारा मस्तिष्क या ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर्स उस मरीज की जान बचाने के लिए या उसे वेंटिलेटर से या कृत्रिम रूप से सांस देने की या धड़कन चालू रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं होता और चार तरह के डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करके उस मरीज को ब्रेन डेथ यानी कि मृत घोषित कर देते हैं, तब उस व्यक्ति के मस्तिष्क का काम करना बंद कर चुका होता है और उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में हम अपने बाकी के अंगों का दान कर सकते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पे कनेक्ट होने के कारण, वेंटिलेटर से जुड़े होने के कारण उस मरीज के बाकी के अंग काम कर रहे होते हैं और सारे अंगों को ऑक्सीजन पहुंच रही होती है। तो ऐसे मृत व्यक्ति के परिवार के पास विकल्प रहता है कि वो उस मरीज के वाइटल अंगों का दान, वाइटल ऑर्गन्स को भी डोनेट कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल जो कि सुनैना जी लेने जा रही हैं,
0: अगला सवाल है, पूछ रहे हैं मिस्टर अजय रनौत जो मंडी से हैं, और ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने मरने के बाद अपने अंगों का दान करना चाहता हूं, पर मेरे परिवार इसमें सहमत नहीं है। क्या मैं अपनी वसीयत में ये लिखवा सकता हूं कि मुझे अपने अंग दान करने हैं, क्या ये पॉसिबल है? अजय जी, पहले तो हम आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इस गंभीर विषय को समझते हैं आप और इसके लिए आप आगे आना चाहते हैं। सौरभ बताएंगे वसीयत के बारे में।
1: अजय जी, वसीयत में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका परिवार इसे सहमति नहीं देता है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपका परिवार ही ये फैसला करेगा कि आपके अंगदान किए जाएं या नहीं, और अगर वो इसे सहमति नहीं देते हैं तो अंगदान नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप प्लेच फॉर्म भरें और अपने परिवार से खुल के इस विषय पर बात करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि इस एक छोटे से हाथ से कितने लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत आपके परिवार के लोगों की सहमति बहुत जरूरी है।
0: तो अगर आपको प्लेज करना है, और वो बहुत बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने परिवार से बात जरूर करें, और प्लेज फॉर्म भरने के लिए आप हमारी वेबसाइट organindia.org पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका डोनर कार्ड कुरियर कर देंगे, उसके पास उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, और ये कार्ड आप प्लीज अपने पास हमेशा रखिए और अपने परिवार को और अपने दूसरे दोस्तों को, उनको सब दिखाई, सबको दिखाइए कि आप अंगदाता हैं और आपको अंगदान करना है और आप इसमें विश्वास रखते हैं। तो अगर आगे जाके कभी भी कुछ हो गया या कोई दुर्घटना हो गई और आपके परिवार वालों से अस्पताल में पूछा जाए कि इनकी ब्रेन डेथ हो गई है और आपको आपको अंगदान कर सकते हो, लोगों की जानें बचा सकते हो और आपको करना है कि नहीं, तो आपके परिवार वाले ज़रूर आपकी इच्छा को याद करेंगे और वो ज़रूर आगे आके अंगदान करेंगे। और डोनर कार्ड के ऊपर कुछ नंबर्स भी हैं, नेशनल हेल्पलाइन भी है, हमारा हेल्पलाइन भी है, तो अगर कुछ हो गया तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इस पूरी प्रक्रिया को आगे आपके साथ ले जा सकते हैं। अगला सवाल है शालिनी रनौत जी की तरफ से, जो कि हमीरपुर से हैं, और ये बता रही हैं कि इनके पिताजी को किडनी की जरूरत है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट करने को कहा है, और ये एक बहुत ही छोटे शहर से हैं, तो इन्हें कहीं जानकारी नहीं मिल रही है कि उनके आसपास कौन से अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, तो हम उनकी इसमें मदद कर सकते हैं कि नहीं? जी शालिनी जी, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपके पिताजी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको कोई अस्पताल ढूंढना पड़ेगा जहां ट्रांसप्लांट हो रहा है। भारत में ऐसे 350 लगभग अस्पताल हैं, उसे ज्यादा ही हैं, जहां पे ट्रांसप्लांट हो सकता है। इनको ट्रांसप्लांट सेंटर कहते हैं, और एक हॉस्पिटल को सरकार से ट्रांसप्लांट सेंटर बनने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और तभी वो ट्रांसप्लांट कर सकता है। तो आपके सबसे नज़दीकी अस्पताल चंडीगढ़ में है, वहाँ पर 5 ट्रांसप्लांट सेंटर है जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये है PGI चंडीगढ़, फोर्टिस मोहाली, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली, IV हॉस्पिटल और कमांड हॉस्पिटल जो कि आर्मी का अस्पताल है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे www.organindia.org पर एक ऑनलाइन ट्रांसप्लांट गाइड बनाई हुई है, उसको हम ट्रांसप्लांट गाइड बोलते हैं, और आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन एक्सेस कर सकती हैं इस गाइड को और पता कर सकती हैं कि पूरे भारत में किन किन शहरों में कौन कौन से अस्पताल हैं जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये सुविधा हमने खास करके मरीजों के लिए ही बनाई है और इस पर आपको हर अस्पताल की ट्रांसप्लांट टीम की सारी जानकारी मिल जाएगी, डॉक्टर कौन है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर कौन है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, और आप उनको कॉल करके बात भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है उस अस्पताल में आने के लिए। करीब 350 से ऊपर अस्पताल है हमारी ट्रांसप्लांट गाइड पे, और इसके साथ भी ट्रांसप्लांट गाइड में बहुत सी और जानकारी दी गई है, जैसे कि अगर आपको कहीं दूसरे शहर में जाना पड़े ट्रांसप्लांट के लिए तो आप कहाँ रह सकते हैं, अकोमोडेशन का डिटेल्स दिया हुआ है, आप टैक्सी कहाँ से ले सकते हैं, आप टिफिन सर्विसेज कहाँ से ले सकते हैं, ब्लड बैंक्स उस अस्पताल के आसपास कहाँ हैं, लैब्स कहाँ हैं, और ये सब पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप प्लीज़ उस गाइड पे जाके चेक करें, आपको सारी ट्रांसप्लांट गाइड पे जानकारी मिल जाएगी www.organindia.org। तो दूसरे सवाल पे चलते हैं।
1: जी, हमारा अगला सवाल है जो कि पूछा है राकेश नड्डा जी ने। ये मैक्लोडगंज के रहने वाले हैं और ये कहते हैं कि हमारे घर में कुछ महीनों पहले हमारी माता जी का देहांत हो गया था, तब हमने उनकी आंखों को दान करना चाहा था लेकिन कर नहीं पाए। डॉक्टर ने बोला कि बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ दान नहीं हो पाएगा। तो इनका सवाल है कि डेथ के कितने समय के अंदर हम अपनी आंखें दान कर सकते हैं या कुछ और चीजें दान कर सकते हैं। राकेश जी, हम आपको दिल से सलाम करते हैं कि आपने इतने मुश्किल समय में भी अपने माताजी की आंखों को दान करने की इच्छा जताई, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि डेथ के कितने समय के बाद भी आप अपने अंगदान या ऊतक दान कर सकते हैं। तो डेथ के 6 घंटों के भीतर आप अपने ऊतकों का दान कर सकते हैं। अगर हम कॉर्निया डोनेशन या आंखों के दान की बात करें या स्किन के दान की बात करें तो 6 घंटों के भीतर आप ये कर सकते हैं, और इसको करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर से ही पॉसिबल है। आपको बस क्या करना है कि आपको अपने नियरेस्ट NGO, नज़दीकी NGO, नज़दीकी अस्पताल या नज़दीकी किसी ऐसी संस्था से संपर्क करना होगा, एक फ़ोन कॉल करना होगा, या नज़दीकी iBank से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ से एक 2 लोगों की टीम आएगी और 10 मिनट की प्रोसीजर परफॉर्म करेगी और वो कॉर्निया ले लेंगे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आपको कहीं बॉडी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये घर से ही पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बाकी के ऊतक दान करना चाहते हैं तो आपको बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड वहाँ से फिर आप अपने हार्ट वॉल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन इत्यादि दान कर सकते हैं।
0: हमारा अगला और आखिरी सवाल है मंजू जी की तरफ से, जो कुल्लू से हैं, और ये पूछ रही हैं कि अंग दान करने के बाद क्या हमारे शरीर में कुछ विकृतियां आ सकती हैं, क्या इसे जगह जगह से काट दिया जाएगा। तो मंजू जी, ये बिल्कुल नहीं होता है। आपको बताना चाहेंगे कि एक बार अगर किसी के परिवार ने अंगदान की सहमति दे दी तो प्रक्रिया में 8 से 10 घंटों का समय लगता है, और अंग निकालने की प्रक्रिया में शरीर को जगह जगह से बिल्कुल नहीं काटा जाता, इसे ट्रेंड और क्वालिफाइड सर्जन करते हैं, और अंग लेने के लिए ये एक चीरा लगाया जाता है और वहीं से सारे अंगों को लिया जा सकता है। शरीर को कोई विकृति नहीं पहुंचती। अंग लेने के बाद उसे अच्छी तरह से सूचर किया जाता है और पूरे सामान के साथ परिवार को सौंप दिया जाता है, तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे और सवाल हैं लोगों से, लेकिन वो अब हम अगले कार्यक्रम में लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इतने सारे सवाल पूछने के लिए। बैक टू यू पायल।
2: थैंक यू ऑर्गन इंडिया टीम।
0: हमारे सभी श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंग दान एक बेहद खूबसूरत विरासत है, जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। इस खूबसूरत गाने के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
2: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।
1: Hi, this is Benny Deol. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.

0: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आते हैं उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों की मेहनत और हिम्मत, जिन लोगों ने सफलता को बड़े ही लगन से हासिल किया है और एक मिसाल कायम करती है। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, जिनकी आवाज ने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ के लोक कला से रूबरू कराया है। जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है पंडवानी की महान कलाकार तेजन बाई। जी हाँ, तेजन बाई जी की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी की शुरुआत किसी बड़े शहर या फिर बड़े मंच से नहीं होती है, बल्कि कई बार ना एक छोटे से गांव से निकली हुई आवाज ही दुनिया भर में गूंज जाती है। तेजन बाई जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के एक साधारण से परिवार में जन्मी तेजन बाई बचपन से ही कहानियों और लोकगीतों के बीच पली बड़ी। उनके घर में धन दौलत भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब तेजन बाई महाभारत की कहानियों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। जी हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत के प्रसंग अपने नाना से सुने और वहीं से उनके अंदर पंडवानी के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ। पंडवानी यानी महाभारत की कहानियों को गीत, संगीत और अभिनय के माध्यम से सुनाने की एक अनोखी लोक कला। छोटी सी उम्र में ही तेजन बाई को एहसास हो गया था कि उनका रिश्ता इस कला से सिर्फ शौक के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी भर के सफर के लिए है। लेकिन दोस्तों, सपने देखना एक बात है और उन्हें पूरा करना दूसरी। उस दौर में पंडवानी की दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, समाज की सोच भी कुछ अलग थी, लेकिन तेजन बाई के अंदर एक अलग ही जज्बा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी आवाज, अपनी कला के दम पर एक नई पहचान बनाएंगी। यही था उनकी जिंदगी का पहला कदम, एक सपना, एक जुनून और कुछ कर दिखाने का हौसला। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से सपने ने संघर्षों के बीच अपनी राह बनानी शुरू की और कैसे तेजन बाई ने समाज की बंदिशों को चुनौती दी। बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये अस्त्र छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगी?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। चाहिए

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ ऐसे लोगों की कहानी, उनकी जर्नी जो आपको मोटिवेट करती है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तेजन बाई की। जी हाँ, तेजन बाई जो की अपनी कला से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई के बचपन में पंडवानी और महाभारत के प्रति एक गहरा लगाव पैदा हो गया था। लेकिन किसी भी सफलता की कहानी में सिर्फ सपने नहीं होते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। जी हाँ, और तेजन बाई जी का सफर भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों आज से कई साल पहले समाज की सोच अलग थी। कुछ कलाएं और कुछ मंच ऐसे माने जाते थे जहां पर महिलाओं की जगह नहीं थी। पंडवानी भी उनमें से एक थी। इस लोक कला में अधिकतर पुरुष ही प्रस्तुति देते थे, लेकिन तेजन बाई जी ने इस परंपरा को चुनौती देने का साहस दिखाया। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने गांव और आसपास के क्षेत्रों में पंडवानी गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में दम था, उनके अंदाज में अलग ही जादू था और सबसे खास बात थी उनका अटूट आत्मविश्वास। लेकिन हर कोई उनके इस फैसले से खुश नहीं था। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। समाज के कुछ लोगों को लगता था कि एक महिला को इस तरह मंच पर आकर महाभारत की कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन तेजन बाई जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। जितनी रुकावटें आई उतना ही उनका हौसला मजबूत होता गया। वो लगातार अपनी कला को निखारती रही, सिखाती रही और प्रस्तुतियां देती रही। धीरे धीरे लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया। जब वो मंच पर आती थी तो दर्शक सिर्फ गाना नहीं सुनते थे बल्कि महाभारत के प्रांतों को उनके अभिनय के माध्यम से जीते जागते हुए महसूस करते थे। उनकी आवाज और उनकी कहानी सुनाने की कला लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी थी। और बस यहीं से शुरू हुआ तेजन बाई जी के सफर का वो मोड़ जहां पर संघर्ष धीरे धीरे पहचान में बदलने लगा। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे सेगमेंट में हम जानने वाले हैं इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें, उनकी अनोखी प्रस्तुतियां, उनके बड़े कला जगत के ऊपर भी हम ध्यान देने वाले हैं, उस पर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। सुने बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे स्नेहा। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई जी ने सामाजिक बंदिशों और आलोचनाओं का सामना करते हुए अपनी कला को जिंदा रखा, लेकिन जब लगन सच्ची हो और प्रतिभा असाधारण हो तो एक ना एक दिन दुनिया उसे जरूर पहचानती है। तेजन बाई जी के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जी हाँ, लगातार प्रस्तुतियों और अपनी अलग पहचान

0: राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगी। जी हाँ, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास। वो मंच पर किसी भी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर निर्भर नहीं रहती थी। महाभारत की कहानियाँ उनके मन और यादों में बसती थी। इसी वजह से उनकी प्रस्तुति में एक प्राकृतिक प्रभाव और जज्बा नजर आता था जो लोगों को बहुत पसंद आता था। दोस्तों, सफलता अक्सर तब मिलती है जब तैयारी और अवसर एक साथ मिलते हैं। तेजनबाई जी ने सालों तक अपनी कला को निखारा था और जब बड़ा मौका मिला तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अब लोग उन्हें सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की प्रतिनिधि के रूप में देखने लगे। उनकी पहचान बढ़ रही थी और उनके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी और पंडवानी को एक नई ऊर्जा भी मिल रही थी इसी के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: चिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों, अब तक हमने तेजन बाई जी के बचपन, उनके संघर्ष और उनके हुनर को मिले बड़े मंच के बारे में जाना, लेकिन हर महान कलाकार की एक ऐसी खास पहचान होती है जो उसे भीड़ से अलग बनाती है। जी हाँ, तेजन बाई जी के लिए भी ये पहचान बनी उनकी अनोखी कपालिक शैली। जी हाँ दोस्तों, पंडवानी की परंपरागत प्रस्तुति में अलग अलग शैलियाँ होती हैं। इनमें से एक है कपालिक शैली, जो अपने नाटक के अंदाज, ऊर्जा और अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। तेजन बाई जी ने इसी शैली को अपनाया और उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उस समय अधिकतर महिला कलाकार वेदामती शैली में प्रस्तुति देती थी, जहां पर गायक बैठकर कहानी सुनाता था, लेकिन तेजन बाई जी ने परंपरा से हटकर कपालिक शैली को अपनाया, जहां पर कलाकार खड़े होकर पूरी ऊर्जा के साथ कहानी को जीवंत करता है। जब तेजन बाई जी मंच पर आती थी तो उनके हाथ में एक साधारण सा तंबूरा होता था, लेकिन उनकी कल्पना और अभिनय की ताकत उस तंबूरे को कभी अर्जुन का धनुष बना देती, तो कभी भीम की गधा और कभी किसी योद्धा की तलवार। और बस यही देखकर जो दर्शक थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आवाज में इतनी गहराई और इतनी ताकत थी कि महाभारत के युद्ध वीरता, दुख और भावनाएं जैसे आंखों में सामने जीवित हो उठती थी। वो सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाती थी, बल्कि हर किरदार को अपने अंदर उतार कर उसे जीती थी। यही वजह थी कि उनकी हर प्रस्तुति एक यादगार अनुभव बन जाती थी। सबसे खास बात तो ये थी कि तेजन बाई जी ने कभी अपनी लोक कला की असली रूह को नहीं बदला। उन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए उनमें अपनी रचनात्मक और अपना अंदाज जोड़ा। इसी ने उन्हें एक कलाकार से बढ़कर एक प्रेरणा बना दिया। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने से भी मिलती है। तेजन बाई जी ने दुनिया को दिखाया, अगर आप अपनी कला में विश्वास रखते हैं तो आप अपनी एक नई पहचान खुद बना सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई जी ने अपनी अनोखी कपालिक शैली के जरिए पंडवानी को एक नई पहचान दी, लेकिन उनका सफर यहीं तक सीमित नहीं था। अब समय था छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को दुनिया के मंच तक पहुंचाने का। दोस्तों, जब किसी कलाकार की कला दिल से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। तेजन बाई जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के अलग अलग राज्यों में उनकी प्रस्तुतियां बेहद सराही जाने लगी। हर जगह लोग उनकी आवाज, उनके अभिनय और उनकी कहानी सुनने के अंदाज से प्रभावित होते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याती देश के सीमाओं से बाहर तक पहुंचने लगी। जी हाँ, उन्होंने विदेशों में भी भारत की लोक संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों में उन्होंने पंडवानी की प्रस्तुतियां दी है। जो लोग छत्तीसगढ़ या फिर पंडवानी के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, वो लोग भी तेजन बाई जी की कला के दीवाने हो गए। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी लोक कला जो कभी गांव में चौपालों और स्थानीय मंचों तक सीमित थी, वही कला अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक तालियां बटोर रही थी। ये सिर्फ तेजन बाई जी की व्यक्तिगत सफलता ही नहीं थी, बल्कि भारत की लोक परंपराओं की भी जीत थी। उन्होंने दुनिया को ये भी दिखाया कि हमारी लोक कलाओं में कितनी गहराई, कितनी समृद्धि और कितनी कहानियां छुपी हुई है। भाषा अलग हो सकती थी, लेकिन उनकी प्रस्तुति की भावनाएं हर दिल तक पहुंच जाती थी। इसीलिए विदेशी दर्शक भी उनकी कला से उतने ही प्रभावित होते थे जितने भारत के लोग। तेजन बाई जी का सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपने हुनर पर भरोसा रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी मंच आपसे दूर नहीं रहता। उन्होंने कभी अपनी पहचान बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी असली पहचान को ही दुनिया तक पहुंचाया। और यही वजह है कि आज तेजन बाई जी को सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि भारत सांस्कृतिक दूत के रूप में भी देखा जाता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूस्ती हूँ आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं तेजन बाई जी की। जी हाँ दोस्तों, अब तक के सफर में हमने देखा कि कैसे तेजन बाई जी ने संघर्षों का सामना किया, अपनी अलग पहचान बनाई और पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहुँचाया। और जब किसी व्यक्ति का योगदान इतना विशेष हो तो उसकी मेहनत को सम्मान भी मिलता है। तेजन बाई जी का जीवन इस बात का जीता जागता हुआ उदाहरण है। दोस्तों, तेजन बाई जी ने अपनी कला के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को जीवित रखा बल्कि उसे नई पीढ़ी तक भी पहुंचाया। उनके इस अमूल्य योगदान को देश ने समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। जी हाँ, साल 1988 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये उनके लिए ही नहीं बल्कि पंडवानी और छत्तीसगढ़ की लोक कला के लिए भी गर्व का पल था। और इसके बाद भी उनकी उपलब्धियों का सफर अभी और भी तेजी से आगे बढ़ा। फिर आया साल 1985 जिसमें उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, जो भारत में परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार उनकी कला की गहराई और उनके योगदान की राष्ट्रीय पहचान का प्रमाण था। लेकिन सफर यही नहीं रुका। फिर आया साल 2003 जिसमें तेजन बाई जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान ने साफ कर दिया कि तेजन बाई जी की कला अब सिर्फ एक लोक कला ही नहीं रही थी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। और फिर आया साल 2019 जब उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। एक गांव की लड़की जिसे कभी समाज की बंदिशों का सामना करना पड़ा था, आज देश के सर्वोत्तम सम्मानों में से एक की अधिकारी बन चुकी थी। दोस्तों, इन पुरस्कारों की सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि ये सिर्फ मेडल या फिर सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, ये उन सालों की तपस्या, संघर्ष और लगन और समर्पण का सम्मान होता है जो किसी व्यक्ति ने अपने सपने को सच करने के लिए दिए होते हैं। तेजन बाई जी की उपलब्धियां हमें ये सिखाती है कि जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और जुनून के साथ करते हैं तो सफलता और सम्मान दोनों आपके कदम चूमती है। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ पर लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज के इस खास सफर में हमने तेजन बाई जी के जीवन के कई रंग देखे। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, बचपन से कला के प्रति लगाव था उनका, सामाजिक बंदिशों का सामना भी करा, अपनी एक अलग पहचान भी बनाई, देश और दुनिया के मंचों पर भारत लोक कला की प्रस्तुति भी की और फिर देश के सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया उन्हें। लेकिन दोस्तों किसी भी सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे मिलने वाली सीखें। अब बात करते हैं तेजन बाई जी की लाइफ से हमें क्या सक्सेस मंत्र मिलता है। तो सबसे पहला जो सक्सेस मंत्र है वो है अपने हुनर पर भरोसा रखिए। कई बार लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने टैलेंट पर विश्वास है तो कोई भी आपकी राह को रोक नहीं सकता। तेजन बाई जी ने भी यही किया। दूसरा सक्सेस मंत्र है संघर्ष से कभी मत घबराइए। हर बड़े सपने के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। उन्होंने विरोध देखा, कठिन परिस्थितियां भी देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी और इसी लगन ने उन्हें सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तीसरी सीख है अपनी आदतों को कभी मत भूलिए। आज जब दुनिया ग्लोबल होने की बात करती है, तेजन बाई जी हमें ये याद दिलाती है कि असली पहचान अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से जुड़ी होती है। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं बल्कि उसे ही अपनी ताकत बना लिया। चौथा सक्सेस मंत्र है कि सीखना कभी बंद मत कीजिए। जी हाँ, सफलता पाने के बाद भी तेजन बाई जी ने अपनी कला को लगातार निखारा। ये हमें बताता है कि ग्रोथ का सफर कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों तेजन बाई जी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है बल्कि ये हौसले, आत्मविश्वास और समर्पण की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजे स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और ऐसी ही व्यक्ति की कहानी के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी से दुनिया को एक नया सक्सेस मंत्र दिया है और एक मोटिवेशनल जर्नी दी है। तब तक के लिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बाय।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज अधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें हर शनिवार ना। आपको बड़ी खूबसूरत जगह लेकर के जाती हूँ घुमाने के लिए। कभी जाते हैं हम कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी, कभी जाते हैं वेस्ट बंगाल तो कभी जाते हैं हम गुजरात। अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग कोनों में, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हम भारत से बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए। और आज जिस जगह आपको घूमने के लेकर के आई हूँ भाई, वो तो इंडिया की ही बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज आपको सदियों पुरानी मिट्टी जहाँ इतिहास का आईना बन जाए और हर गली से जास्मीन की खुशबू आए, एक ऐसी जगह आपको लेकर के जाने वाली हूँ। तो जरा सोचिए, जास्मीन की बात हो रही है, किस जगह की मैं बात कर रही हूँ? तो चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगी कि किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई संदेश है, कोई गाना है सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव। ना

लो हाथ नमनते

चिमटा जूट सन है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हो हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना आपको बहुत

0: खूबसूरत सी जगह लेकर के मैं आ गई हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में ना हम जा रहे हैं साउथ इंडिया के एक ऐसे शहर में जिसे द एथेंस ऑफ द ईस्ट और या फिर थुंगा नागरम जो है यानी कि द सिटी ऑफ दैट नेवर स्लीप जिसे कहा जाता है। और यानी कि देखिए ये जो जगह है ना ये कभी सोती नहीं है। आज हमारा रास्ता ना मुड़ रहा है मदुरई की तरफ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जिसका डिज़ाइन बिल्कुल एक खिलते हुए लोटस यानी कि कमल के फूल जैसा है जिसके सेंटर में माता मीनाक्षी का एक विशाल एक बड़ा भव्य मंदिर है और चारों तरफ से शहर बसे हुआ है और पूरा शहर बड़ा खूबसूरत है। जब हम पहली बार वहाँ जाएंगे तो मदुरई की मिट्टी पर जब आप कदम रखेंगे तो हवाओं में गर्म फिल्टर की कॉफ़ी जो है फिल्टर कॉफ़ी वही उसकी ताज़ा खुशबू और मदुरई के जो मल्ली यानी कि जो जास्मीन है इस फूलों की यहाँ पर आपको खुशबू भाई इतनी अच्छी आपको महका देगी बिल्कुल। आज के इस प्रोग्राम में हम मदुरई जाने वाले हैं और यहाँ की जो पुरानी जिंदा गलियों से हम भाई का जो एहसास है हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ के ग्रैंड पैलेस आपको मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, अनोखे किस्से आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं मदुरई और यहाँ की बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आई हूँ। तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: ये हुई ना बात।

मंदिर के ऊंचे गोपुरम जब आकाश को छूते हैं तो लगता है आस्थाने खुद को पत्थर पर उकेर दिया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। मदुरई की पहचान, इसकी धड़कन और इसका दिल, सब कुछ एक ही जगह बसा हुआ है और वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ये मंदिर जो आर्किटेक्चर है ना, उसका एक ऐसा अजूबा है जिसे देख कर ना सांसें रुक जाती हैं। इस मंदिर में 14 विशाल गोपुरम यानी कि टावर हैं और सबसे बड़े टावर पर हजारों देवी देवताओं की, जानवरों की कलरफुल मूर्तियां इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि आप दंग रह जाएंगे। ये मंदिर माता पार्वती यानी कि मीनाक्षी और भगवान शिव यानी कि सुंदरेश्वर को डेडिकेट ये मंदिर किया गया है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे सुबह सुबह, इस मंदिर के अंदर एंटर जब आप करते हैं तो वहाँ की गोल्डन लोटस पॉन्ड जो है उसका पानी चमक रहा होगा। कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ जो पोएट होते थे अपनी किताबें पानी में डालते थे और जो किताब सच्ची होती थी वो पानी पर तैरते लगती थी। मंदिर के अंदर की हवा भी चंदन और जो कपूर है उसकी खुशबू वहाँ पर आती है, पवित्र खुशबू वहाँ पर आती है, आपके मन को एक अलग लेवल की यहाँ पर शांति मिलेगी जब आपको इस मतलब उस भव्य मंदिर के जो अंदर एहसास है ना, उसमें रम जाएंगे आप खो जाएंगे उस टाइम पर ना, मतलब उस जगह में, उस एटमॉस्फेयर में, उस हॉरा में आप एकदम गायब हो जाएंगे, सुकून से मैं आप बस कहीं बस खो जाएंगे, बस सुकून में ही खो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का, क्योंकि मदुरई की बातें हो रही हैं, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं, एंजॉय कीजिए आप भी मूल्य ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर के अंदर की मैं अब बात कर रही हूँ। पहले हम मदुरई आ जाए हैं तो वहाँ का जो सेंटर पॉइंट है वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर के अंदर एक ऐसी देखिए जगह है, एक ऐसा हॉल है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अय्यरम काल मंडपम यानी द हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। असल में यहाँ 985 पिलर्स हैं और एक पिलर पर इतनी बारीक जो देखिए नक्काशी जो है वो की गई है जिसे देखकर लगता है जैसे पत्थर को जो देखिए मक्खन की तरह जो है काटा गया हो और इतनी खूबसूरत जो नक्काशी है वो की गई है कि क्या कहने। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, बड़ी जादुई बात है ये, बल्कि कई लोग हैरान होंगे ये जानकर जिनको अभी नहीं पता है। देखिए इसके बाहर खड़े होकर जब आप इन पत्थरों पर धीरे धीरे थपथपाते हैं तो उनमें से संगीत के 7 अलग अलग सुर निकलते हैं, यानी कि सारे गामा पा धानी सा माफ कीजिएगा मेरी आवाज लेकिन जब आप खुद एक पिलर को हल्के से छूकर और आप छुएंगे और उसमें से मेटल जैसी आवाज जो है वो आएगी तो मतलब आप दंग रह जाएंगे। और ये आवाज जो है बिल्कुल एक सुर की तरह जो है वो निकलती है, इसलिए इसे म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। ये हमारे पुरखों के ज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो बताता है कि पुराने जमाने में साइंस और आर्ट कितना गहरा जो है वो कितनी अच्छी तरह से जो है वो जुड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। चलिए अब मंदिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं मदुरई के रॉयल इतिहास की तरफ, थिरुमलाई नायक्कर महल। इसे जो राजा है थिरुमलाई नायक ने 1636 में बनवाया था। जब आप इस महल के देखिए जाएंगे, आंगन में जाएंगे, वहाँ खड़े जब होंगे तो आपको सबसे पहले दिखेंगे इसके विशाल सफ़ेद खम्भे यानी कि पिलर्स। और ये खम्भे इतने बड़े और इतने ज़्यादा बड़े मतलब मोटे हैं कि 4 लोग मिलकर भी एक खम्भे को नहीं पकड़ सकते हैं। इस महल का आर्किटेक्चर इटालियन और इस्लामिक स्टाइल का इससे बना हुआ है और एक परफेक्ट मिक्स है। जब आप यहाँ शाम को जाएंगे तो देखिए यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ लाइट्स की रोशनी में महल की दीवारें जो हैं वो बोल उठती हैं और राजा थिरुमलाई की बहादुरी और उनके ख्वाब की दास्तां सुनाई जाती है। ये महल आपको एहसास करवाता है कि मदुरई सिर्फ एक स्पिरिचुअल शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रॉयल किंगडम भी है। चलिए देखिए, एक बहुत रॉयल किंगडम की हम बात कर रहे हैं और ये रहा था मतलब बहुत ही खूबसूरत एक टाइम पर जो था वो एक किंगडम रहा था और उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चलिए अब मदुरई की बात करें, और भी बहुत सारी जगहें यहाँ घूमने के लिए, खाने पीने की भी बहुत सारी जगहें हैं। अब खाना तो खाएंगे, अब आए हैं मदुरई तो, लेकिन उससे पहले अभी लेते हुए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको बड़े खूबसूरत सी एक जगह लेकर के आई हूँ और ये जगह है मदुरई। जी हाँ, मदुरई की हम बात कर रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर में हर रात एक बहुत ही यूनिक और इमोशनल रिचुअल होता है, जिसे जो है वो पालियाराई सेरेमनी, द नाइट सेरेमनी जिसे कहते हैं। हर रोज रात को लगभग 9 बजे भगवान सुंदरेश्वर यानी कि शिवा की, यानी कि भगवान शिव की, भगवान देखिए यहाँ पर जो हमारे महाकाल हैं, उनकी मूर्ति को एक रंगीन पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों और आरती के साथ माता मीनाक्षी के दरबार में, यानी कि माता पार्वती के दरबार में ले जाया जाता है ताकि वो दोनों एक साथ आराम कर सकें। जब आप सामने से ये देखेंगे ना, ये दृश्य देखेंगे, तो पूरा मंदिर जो है बादाम और चंदन के जो धुआंधार रोशनी से जो है वो भरा हुआ होता है और लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होकर जो भजन कीर्तन है वो करते हैं। और ये जो रिचुअल है, ये जो देखिए वहाँ पर होता है, जब मदुरई के लोग जब देखते हैं तो आप मतलब जब आप वहाँ जाएंगे ना, जब आप उन लोगों से बात करेंगे, ईश्वर को सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा लोग मानते हैं वहाँ, जिन्हें हर रात प्यार से सुलाया जाता है। ये 20 मिनट आपके दिल को एक ऐसा देखिए एहसास देंगे, जो गर्माहट है, जो भक्ति है, जो शक्ति है वो दिखाएंगे और आप कभी वो भूल नहीं पाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा वो आपको। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। जायका वहाँ का बेहतरीन होता है जहाँ खाने के हर एक बाइट में शहर का जश्न खुला हो। अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो देखिए, मदुरई को फूड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यहाँ का खाना एकदम लाजवाब है। अगर आप यहाँ हैं तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए यहाँ का आइकॉनिक ड्रिंक जिगर ठंडा। इसका नाम सुनकर ही मतलब ऐसा लगता है जैसे जिगर को ठंडक ये पहुँचा दे। ये जो दूध आलमंड यानी कि बादाम और गोंद यानी कि बादाम गोंद से जो है वो तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है सरसा पारिल्ला जो सिरप है वो डाला जाता है, और एकदम रिच आइसक्रीम से ये बनती है। एक सप में आपको जन्नत का एहसास हो जाएगा। और अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो मदुरई का जो करी डोसा है, करी डोसा ही है, यहाँ पर ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये एक मोटा डोसा होता है जिसके ऊपर मसालेदार चॉप किया हुआ मटन जो है और अंडा एग जो है इसकी लेयरिंग होती है। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ लगेगा, और क्रंची और तीखा स्वाद जुबान पर आपको रह जाएगा। और यहाँ हर स्वाद में ना मज़ा है। यहाँ का खाना थोड़ा मसालेदार ज़रूर है लेकिन आपको काफ़ी कमाल लगेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा और विशाल टेम्पल टैंक यानी कि तालाब है जिसे कहते हैं वांदियोर मारियम्मन तेप्पाकुलम, और ये पूरे तमिलनाडु का सबसे बड़ा टेंपल टैंक यानी कि जो पॉन्ड है इसे माना जाता है। और ये इतना बड़ा है कि इसके बीच में एक छोटा जो है छोटे से हरा भरा जो आइसलैंड है जहाँ एक छोटा सा मंदिर स्थित है। कहते हैं कि जब थिरुमलाई जो राजा हैं यहाँ के, जब जो महल है जिसने बनाने के लिए यहाँ की मिट्टी जो है वो खोदी जा रही थी, तो ज़मीन के नीचे से भगवान गणेश की बहुत बड़ी मूर्ति निकली थी और बाद में उस खाली जगह को इस विशाल तालाब में बदल दिया गया। और जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ जो फ्लोट फेस्टिवल है ये होता है जहाँ उस जगह पर उस जो आइलैंड एक बना हुआ है तो इस पे मंदिर को लाखों दियों से सजाया जाता है और माता मीनाक्षी यानी कि माता पार्वती की जो एक बोट निकाली जाती है शाम को इस तालाब के किनारे, जो अगर आप बैठते हैं तो ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं और सुकून आपको यहाँ मिल जाएगा। मदुरई एक ऐसी जगह स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको हर जगह मंदिर जो है वो आपको मिल जाएंगे और साथ ही आपको जो नेचर से आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उसे महसूस कर पाएंगे, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है वो भी आप महसूस कर पाएंगे। अच्छा एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, जो मदुरई है ना इसको जैस्मिन कैपिटल भी जो है वो कहा जाता है। फूलों की महक जब शहर की हवाओं में और घुल जाए ना तो हर रास्ता एक नया ख्वाब लगने लगता है और हर रास्ता आपको ख्वाब ही लगने लगेगा जब आप मदुरई आएंगे। चलिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज लेकर के आई हूँ आपको मदुरई। मदुरई की एक और बहुत बड़ी पहचान है वहाँ के जास्मीन यानी कि मोंगरे के फूल, जिसे लोकल लैंग्वेज में मदुरई मल्ली कहते हैं। और यहाँ के जास्मीन के फूल यानी कि जो मोंगरे के जो फूलों की खुशबू है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी यूनिक है कि इसे GI टैग यानी कि ग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो मिला हुआ है। जब आप मदुरई के फ्लावर मार्केट में जाएंगे तो आपको हर तरफ सफ़ेद फूलों के ढेर दिखाई देंगे और हवाओं में एकदम महक जो है ये रहती है वहाँ के फूलों की, यानी कि जो फूल हैं वहाँ पर मोंगरे के उसकी आपको खुशबू जो है ये आपको उसका महसूस आपको हो जाएगी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने बालों में ये गजरा बहुत ही प्यार से लगाती हैं और जब आप यहाँ जाएंगे, और मैंने सुना है कि मदुरई मल्ली की खुशबू इतनी फेमस है कि ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े परफ्यूम ब्रांड्स यहाँ से फूल एक्सपोर्ट कराते हैं और इस मार्केट से गुजरने पर आपको समझ आ जाएगा कि मदुरई सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि खुशबू का भी शहर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत से प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। मदुरई आज हम घूमने के लिए आए हैं। मदुरई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक साइट जो है यहाँ पर है, जो हमारे देश के इतिहास में भी है, द गांधी मेमोरियल म्यूजियम। पूरी इंडिया में ऐसे सिर्फ 5 गांधी म्यूजियम है और मदुरई का ये एक जो म्यूजियम है उनमें से ये एक है। पता देखिए, मैं आपको इसलिए बता दूं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1921 में मदुरई में ही महात्मा गांधी ने पहली बार देखा कि हमारे देश के गरीब जो है किसान कपड़ों के बिना रह रहे हैं, और उन्होंने वहीं फैसला किया कि वो पूरी अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक छोटे की देखिए जो खादी धोती है, छोटी सी खादी धोती जो है वो पहनकर गुजारेंगे। और इस म्यूज़ियम के अंदर वो ऐतिहासिक कपड़ा यानी कि ब्लड स्टेन क्लॉथ रखा हुआ है जो बापू ने अपनी आखिरी वक्त में पहना हुआ था। जब आप इस म्यूज़ियम के हॉल में घूमते हैं और आज़ादी के उन पुरानी फ़ोटोज़ और लेटर्स को आप जब देखते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में देशभक्ति जो है वो भाई आ जाएगी, और गुरूर होगा आपको उस देशभक्ति पर। आपको एहसास होगा कि हमारे देश ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। यहाँ पर गांधी जी की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत कुछ है, और साथ ही यहाँ पर आपको मदुरई की मैं बात आपसे कर रही हूँ। मदुरई की बात करें तो मदुरई को लोकल बड़े प्यार से कहते हैं ठुंगा नागरम, और इसका मतलब होता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। पूरे तमिलनाडु में ये एकमात्र शहर है जहाँ रात के 2 बजे भी आपको मार्केट्स खुले मिलेंगे, सड़कों पर चहल पहल होगी और गर्म इडली या फिल्टर कॉफ़ी आपको मिल रही होगी। जब आप यहाँ रात को जाएंगे तो 1 बजे के करीब भी आपको यहाँ पर लोग आसपास खूब चलते हुए मिल जाएंगे, आसपास बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे, लोग दुकानों पर खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, ऑटो चल रहे होंगे, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो है वो चल रहे होंगे और वहाँ पर बन रहा होगा परौठा। मदुरई के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और उनकी लाइफ में एक अलग ही जोश होता है, और ये शहर आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में भी थकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए जैसे ये शहर चलता रहता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारी बातें लेकर के आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। इसी के साथ वक्त जो है ये आपको बताने का है कि देखिए इतनी खूबसूरत ये जगह है, तो आप इस जगह पर ना सिर्फ घूमने मत आइए, यहाँ से आप जो है कुछ ना कुछ लेके जरूर जाइएगा, शॉपिंग जरूर कीजिएगा। शॉपिंग तो बनती है। मीनाक्षी मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है पुट्ठू मंडपम। ये एक सदियों पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे राजा तिरुमलई नायक ने बनवाया था। इस मार्केट के अंदर जब आप घूमेंगे तो आपको दोनों तरफ लाइन से टेलर्स बैठे दिखाई देंगे जो कपड़े सिलते हैं। और यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है मदुरई संगुड़ी साड़ी, और ये एक खास तरह की टाई और टाई एंड डाई जो कॉटन की साड़ी होती है जो बहुत ही लाइट वेट और कलरफुल होती है। और साथ ही यहाँ बेहतरीन क्वालिटी के आपको जो ब्रास हैं यानी कि जो पीतल का काम जो है उसके दिए मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। जब आप यहाँ जाएंगे तो एक कोई भी चीज़ आप ज़रूर लेकर के आएगा तो एक यादगार चीज़ जो है वो रह जाती है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लूँगी जिसके बाद होंगी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और इस सफरनामा में आज हमने करी बहुत सारी बातें। आज हम आए मदुरई और मदुरई के बहुत सारी जगहों में हमने घूमा है और एक बहुत ही सुखमय शांति बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है, मतलब शब्द कम पड़ जाए इतनी अच्छी जगह है ये, सुकून आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप भी मदुरई जरूर जाएगा। चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात आपसे होती रहेंगी, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रांका आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक जी हां और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊँगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूं कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर, और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा। आप च्युइंगम अपने पास में रखिए और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए. उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें, यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ये समझ लीजिए आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मज़बूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है, तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइव और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूं बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूं. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूं ना ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी की लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना तो उसका चेहरा ही बता देता है कि अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज भी करते हैं और उसको हम मानते हैं, तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए और हाँ मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ. और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा. जी हां, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फ़ायदा होगा. क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है. देखो हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है. जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है. बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी. और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है. तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे. इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे. अब आप जाइए किचन में और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी. जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं. पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी. जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ. आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको. आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे. पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है. इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं. बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना, तो उसकी नीड जब उसे जो होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं. तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना. और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब. तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है. बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है. ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं. आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है. तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें. लेकिन हाँ, ये एक सच बात है कि इसका फ़ायदा हर एक एक को मिलेगा. तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो,
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं. तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है. अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना. अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए. बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट. तो अब मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक वो इसी से ही जुड़ा है.

क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं। हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना, लेकिन आप इस तरह से करके देखिए और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा। तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगाइए। नंबर हमारा है 8010781078। मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव रेशना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइव।

सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूँ आज के प्रोग्राम में. अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है. कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना. देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं. पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो ख़िलाफ़ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हो बट हमें याद आता रहता है. और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए. एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है. इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का. इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो. लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं. ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं. हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना. तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे. तो चलिए अब इंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना. रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चैनल का वक्त हो गया है तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
0: प्यार हो गया क्या करें,
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही हूँ। पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

0: भी किया थिएटर में, मास्टर्स किया है, तो वहाँ पे हमने वर्ल्ड थिएटर के बारे में पढ़ा, हमने आर्ट्स के आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ा और पेंटिंग के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें टाइम लगी है। आज से 100 साल पहले जो पेंटिंग बनती थी या वैन गॉग ने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसमें उन्होंने काफ़ी टाइम लिया था, और अभी का जो ज़माना हो गया वो उसमें कट आ गए हैं, मतलब बहुत स्पीड हो गया है। ऐसे ऐसे बोलते भी हैं कि कंटेंट में अगर तू डायलॉग के बीच में पॉज ले रहा है भाई तो उसको कट कर दे तो ये बस ऐसा बोला जाता है। तो ये एक मेजर फर्क है, टाइम का मेजर फर्क है, क्योंकि अगर लोगों की उंगली पे है आपका कंटेंट, तो अगर आपने थोड़ा सा पॉज लिया और आपकी कुछ भी कह लो आपका उस फ्रेम में जो मिसॉन से उनका उनको पसंद नहीं आया किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आपको हटा देंगे, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और थिएटर में एक सेटअप होता है, एटमोसफियर होता है, लोग अपने घर से निकल के जाते हैं नाटक देखने के लिए, और उस नाटक को बनाने में, उस नाटक की आइडियोलॉजी को बनाने में टाइम लगा होता है। जैसे गिरीश कानार साहब के नाटक 10-10 साल लग के, 10-10 साल लेकर वो लिखते थे नाटकों को, उसके बाद भी लगता था कि इसमें भी थोड़ी आइडियोलॉजी की कमी है। तो वो एक टाइम का मुझे मेजर कमी लगती है। और क्या है, कंसिस्टेंसी एक गेम बन गया है कॉन्टेंट क्रिएशन में, तो इस वजह से कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि रोज एक वीडियो आ जाए या 2 दिन में एक वीडियो आ जाए, रेदर देन क्वालिटी पे। ये एक मेजर फर्क है जो कि समय का नीड भी है, तो कुछ गलत नहीं कह सकते इसमें, बस ये समय का कॉल है बस।
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करना चाहूँ तो एक और प्रश्न है, बहुत सारे लोग क्योंकि कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है?
0: जी
1: आप कैसे ढूंढते हो कहानियां, कैसे आप वो ढूंढते हो, फिगर आउट करते हो कि ये मुझे बनाना है, इस टॉपिक पे बनाना है, कैसे होता है वो पूरी इकोनॉमी काम कैसे करती है, थोड़ा बताइए।
0: ओके, तो मैं भी खुद ही शुरू कर रहा हूँ तो मेरे खुद ही अभी कम फॉलोअर्स हैं काफी, पर जैसे बहुत सारे हर फील्ड में पायनियर्स होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं आपको, जिन्हें टॉर्च बेयरर्स कहते हैं। तो जिन्होंने जैसे अगर हिचकॉक ने जो टेक्निक बनाई उसके बाद ही आगे के फिल्म मेकर नॉयर फिल्म में, नॉयर जॉनर में कुछ ना कुछ कर पाए। जैसे अगर मिर्च का टिकम नाटक कालिदास ने लिखा, तो उसके बाद जो मिडिल मिडिल मिडिवल एरा में जो लोग नाटक लिख पाए उन्होंने वैसा नाटक लिखा, शेक्सपियर ने जैसे। तो उस सेंस, उसी सेंस में जिन लोगों ने इंस्टाग्राम के शुरुआती दिनों में अच्छा किया, तो उन्हीं को मैं देखता हूँ, उन्हीं को देखने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है। और तन्मय भट्ट का एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप सबसे पहले आप अपना नीश ढूंढें, आपको क्या करना अच्छा लगता है जिसमें आपको समय का पता नहीं चलता, और उसके बाद जो उस नीश में जो सबसे टॉप क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है। तो जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को देखता हूँ, बस उनको देखता रहता हूँ, और उनके मतलब वो कैप्शन क्या लिख रहे हैं, वो फ्रेम कैसे बना रहे हैं, वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी कैसी है। और लकीली मेरे भाई भी उनमें से एक, तो उनको फॉलो करता रहता हूँ, उनका काम मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ। आपको मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी देखता रहता हूँ मैं काफी टाइम से, सागर भाई का काम भी मैं देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो यही है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ बस।
1: बिल्कुल, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस भाई का यहाँ पर जिक्र हो रहा है उनका नाम है ऋषभ शुक्ला, जिनका हम इंटरव्यू यहाँ पर कर चुके हैं 2 बार, और बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छे इंसान हैं, बहुत सुंदर कंटेंट वो बनाते हैं, और डेफिनेटली मतलब अर्ली इन्वेस्टर्स में आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद शहर से सबसे पहले किसी इंसान ने अगर कंटेंट बनाने का काम शुरू किया था, जिसने हम सबको भी आग दी और केवल आग नहीं मतलब सपोर्ट भी दिया, वो ऋषभ शुक्ला एक नाम मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा। तो सत्यम के भाई हैं ऋषभ शुक्ला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सत्यम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सत्यम, मतलब मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
0: अभी भी फिलहाल ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सत्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट।
0: थैंक यू सो मच भैया आपका, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू, एंड आई जेन्युइनली विश कि आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है ये बहुत स्मूथ रहे और बहुत अच्छा रहे। तो जैसे आपने बाकी जगहों पर एक्सेल किया है, थिएटर में और मास्टर्स किया है, पढ़ाई किया है, स्टेज प्लेस किए हैं, ठीक वैसे ही आप कंटेंट को भी अपने आगे लेकर के जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
0: थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
1: ऑलराइट दोस्तों, अब वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। सत्यम से आज हमने बात करी, उन्होंने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें हमें बताई। हर एक अभिनेता का, हर एक इंसान का अपना एक अनुभव होता है, जो उनका अपना एक एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस के बाद उन्हें टेक्निकलिटी समझ में आती है, तब जाकर के अपना एक रास्ता बनता है। सत्यम भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकी लोगों ने बताने की कोशिश करी, कि आपको अपना खुद का रास्ता एक ढूंढना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, देयर इज नो एसओपी फॉर दैट पार्ट कि ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस आर्ट इज ऑल अबाउट फ्री फ्लोइंग, जितना आप फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, जैसे आप तरीके ढूंढ सकते हैं वो आप जरूर ढूंढेंगे। फिलहाल अपने शो को यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा। फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: ये हुई ना बात।

शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920

के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी किया और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है, टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी की है, तो बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी। तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने। तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं अभी छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारे देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील Live.

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। शो हमारा बहुत स्पेशल होता है, हर बार एक एपिसोड हम लेकर के आते हैं और हर बार एक नए टॉपिक को यहां पर टच करते हैं। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि आपको लीगल फ्रेमवर्क से थोड़ा फेमिलियर हम लोग कर दें, आपको बता दें एग्जैक्टली कैसे लीगली चीजें काम करती हैं। आज हम एक और टॉपिक लेकर के आए हैं, बात करेंगे आज के टॉपिक की। सो वी गोना टॉक अबाउट समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कुछ कानून है जो लागू होते हैं, बट क्या बॉस, आइए करेंगे डिस्कस। आज का शो आपको ये बताएगा कि वर्क प्लेस पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई को फायर कर सकता है क्या बिना नोटिस के, क्या अनपेड इंटर्नशिप लीगल है, क्या सैलरीज को डिले करना लीगल है, और अगर है तो कैसे नेविगेट करना है, और अगर नहीं तो फिर क्या सॉल्यूशन है। ये तमाम चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, आज का शो बहुत खास होने वाला है। लेट मी गिव यू दिस थिंग एज अ लाइन, तो करेंगे डिस्कस, लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, देन विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। पहला टॉपिक, क्या कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को फायर कर सकता है विदाउट नोटिस? देखिए, इसका कोई एक एग्जैक्ट जवाब नहीं हो सकता है। क्या आपका बॉस आपको ओवरनाइट हटा सकता है? वेल, इट डिपेंड करता है टोटली कि अपॉइंटमेंट लेटर पे आपके क्या लिखा हुआ है, कंपनी की पॉलिसी क्या है और टर्मिनेशन का रीजन क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं, तो कोई एक स्पष्ट जवाब इसका नहीं हो सकता है और ये होना भी नहीं चाहिए। आई मीन, थिंग्स आर रियली सब्जेक्टिव, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। हमेशा इसलिए आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर चेक करना चाहिए। यहाँ पर नोटिस पीरियड भी लिखा होता है, टर्मिनेशन रूल्स भी लिखे होते हैं, सब कुछ वहां पर मेंशन होता है। इमीडिएट टर्मिनेशन अलाउड होता है कुछ केसेस में, जैसे कोई सीरियस मिसकंडक्ट हुआ है, किसी कंपनी के साथ किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, कोई वायलेंस वहां पर देखा गया है, या कोई मेजर पॉलिसी वायलेशन किया गया है, या उसके अगेंस्ट कोई ऐसे सीरियस कंप्लेंट आई है। इन सच केसेस यू कैन से यस, क्योंकि कंपनी का अपना कंप्लायंस होता है, कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं, द वे हाउ इट ऑपरेट्स। अगर कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है तब आपके पास एक राइट होता है। तो फॉर एग्जांपल, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से आपको फायर किया जा सकता है, और वो चीज नहीं हुई, कोई और चीज हुई या कोई बहाना ढूंढा गया, आपको लग रहा है इट्स अ फेयर पॉइंट क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, तो यहां पर आपके पास वो राइट बनता है कि आप कोर्ट में जा सके। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने साइन किया हुआ है, तो वहां पर आप नहीं जा सकते हैं अगर वैलिड पॉइंट से उन्होंने उस एम्प्लॉय को जो है टर्मिनेट किया है। सो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको इंस्टेंटली साइन नहीं करना होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड एवरीथिंग क्लियरली। जरूरी है बहुत कि आप वो कॉपी अपने पास भी रखें, अपनी सैलरी स्लिप्स अपने पास रखें, अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखें, और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं हर एक चीज आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने तक रजिस्टर करनी चाहिए कि ये आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं, ताकि जब आप खुद को सिचुएशन में पाएं तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन हो कि आपको क्या करना है, कैसे इसको नेविगेट करना है। सो ये आपके पहले सवाल का जवाब है, ऐसी चीजें काम करती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपके पास कोई फीडबैक है इसको लेकर, तो 8010781078 पर आप बता सकते हैं, या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, सो डू मेक श्योर कि आप इस नंबर पे हमें बताएं। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील।

हाँ जी वेलकम बैक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है इन गानों के साथ। फिलहाल शो को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न, क्या अनपेड इंटर्नशिप लीगल है इंडिया में? वेल टू बी ऑनेस्ट, हर अनपेड इंटर्नशिप लीगल या इलीगल की कैटेगरी में नहीं आ सकती है। टोटली डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, मे बी यू आर गोइंग फॉर लर्निंग या फिर आप एक रेगुलर एम्प्लॉय का काम कर रहे हो, इसमें चीज़ें डिफर करती हैं। अगर आप एक फुल टाइम ऑफिस वर्क कर रहे हो तो आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। अगर आप सेम ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता है तो सिचुएशन आपके लिए शायद फेयर ना हो। बट अगर आप खुद से जा रहे हो कि मुझे सीखना है जी, मुझे एम्प्लॉय की तरह वहाँ पर काम नहीं करना है, मुझे बस वहाँ पर सीखना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। एक अच्छी इंटर्नशिप आपको स्किल्स सिखाती है, ठीक है, आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको लर्निंग का ऑप्शन मिलता है, तो दैट शुड बी द मेन पर्पज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। बट हाँ, इट्स अ फेयर पॉइंट, इट्स अ फेयर क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन ऑनेस्टली कंपनीज मैंशन करती हैं वेदर इट्स अ पेड इंटर्नशिप और एन अनपेड इंटर्नशिप, ये सब कुछ आपका मैंशन होता है जब भी कोई कंपनी अपनी इंटर्नशिप यहाँ पर ओपन करती है अपनी कंपनी में, या आप जब अप्लाई करते हो वहाँ पर सब कुछ मैंशन होता है। और मेंशन नहीं है तो आप एचआर से पहले ही कंफर्म कर सकते हैं। एंड ऑलवेज आस्क अबाउट पेमेंट बिफोर ज्वाइनिंग। स्टाइपेंड अपना क्लैरिफाई करिए, वर्किंग आवर्स अपने क्लैरिफाई करिए, लीव पॉलिसी क्लैरिफाई करिए, सर्टिफिकेट आपको क्या मिलेंगे वो राइटिंग में लीजिए, और वो कंप्लीशन के बाद आपको

मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऑन पेपर सब कुछ है, ऑन डॉक्यूमेंट आपके पास सारी चीजें हैं, तब कोई कंपनी अगर मुकरती है तो वहां पर आप कोर्ट जा सकते हैं। डेफिनेटली लेबर लॉस हमारी कंट्री में है जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और काम करते हैं। आपको महीनों तक काम नहीं करना है इस डिलेमा में कि हो सकता है हो जाए, हो सकता ना हो। आपके पास ऑन पेपर सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है, बट आपका टाइम, आपके एफर्ट्स जो है उनकी भी एक वैल्यू होती है। इधर यू हैव दिस क्लैरिटी कि आई एम डूइंग इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी मनी आउट ऑफ इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। उस स्टोरी में ये वाला क्वेश्चन लागू नहीं होता, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप लर्निंग के लिए जा रहे हो और आपको पैसा कंपनी नहीं देगी, अगर कंपनी ने पहले क्लैरिफाई किया है तो, और अगर नहीं किया है तो यू शुड आस्क। बट आई होप द मैसेज इज क्लियर। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं आरजे सागर यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा ये शो सत्यमेव जयते आपको पसंद आ रहा है। अब इसी के साथ अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी डिले हुई कई महीनों तक आपको सैलरी नहीं मिली, आप क्या कर सकते हैं? पहला प्रश्न कि क्या कोई फेयर पॉइंट है? अगर है कुछ ऐसा तो भी आपको पहले ही इंटीमेट किया जाएगा, आपको धोखे में नहीं रखा जाएगा, ये फॉर श्योर है। तो पहले अपने एचआर से बात करिए, अपने मैनेजर से बात करिए, क्योंकि कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से भी डिले होती हैं चीज़ें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, हर चीज़ का प्रूफ रखिए अपने पास, सैलरी स्लिप्स को सेव रखिए, बैंक स्टेटमेंट्स को सेव रखिए, ऑफर लेटर, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सारी चीज़ें आपस में मैच होनी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। आपके अटेंडेंस कितनी है, ऑफर लेटर पर क्या लिखा हो, सब कुछ वहां पर लिखा जाता है प्रॉपर। एक रिटर्न रिमाइंडर लिखिए, अगर नौबत आए कि कई महीनों से आपकी सैलरी नहीं आई है और आपको कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है, आपको एक तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है, जस्ट सेंड अ फॉर्मल ईमेल। यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप क्रिएट करके वहां पर अटैच करके जो है भेजिए, उनको रिक्वेस्ट करिए, सिंपल। फिर आपको ये तमाम ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद भी अगर सैलरी नहीं मिलती है तो फिर आपके पास लीगल ऑप्शंस बचते हैं। अगर कंपनी आपकी सैलरी डिले करे जा रही है, आपको कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रही है, आपने अप्रोच किया लेकिन फिर भी आपको कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जा सकते हैं अप्रोप्रिएट लेबर अथॉरिटीज के पास या फिर लीगल फोरम्स में। रिपीटेड डिलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कई महीनों तक अगर सैलरी नहीं मिली है, इट्स अ बिग इशू। स्टार्ट प्लानिंग बैकअप, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लेबर कोर्ट आप जा सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला है या आपको नहीं बताया गया है। तो ये चीज ऐसे काम करती है, लीगल कोर्ट डेफिनेटली आपकी सुनवाई करेगा। अब यहीं पर हमारा शो जो है हमें खत्म करना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा चुका हूँ। अपना फीडबैक मुझे बताइए 8010781078 पर। फिलहाल चलता हूँ, दिस इज आरजे सागर साइन।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और बहुत सारी होती है बातें हफ्ते के 7 दिन, क्योंकि अब आपके साथ रहती हूँ। तो अब एक खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। जी हाँ, कौन बनेगा सेहतमंद में हम बात करते हैं, एक पहेली आपसे पूछती हूँ, और पहेली जो कि बड़ी आसान सी होती है, बस आपको ध्यान से सुननी है और उसका जवाब जो है वो देना है। पहेली तो बहुत ही आसान सी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। तो इसका हिंट जो है वो है कि दादा नानी का ये नुस्खा काफी ज्यादा पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो आपको बताना है क्या है इसका जवाब। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

0: ये फाउंडर विजन मेट्रॉनिक्स हैं और साथ के साथ अगर देखा जाए तो ये एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर कहलाती हैं। अगर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो एक लंबे समय के एक्सपीरियंस के साथ साथ ये हमारे देश में बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ खास नया लेकर आई हैं। सो आज हम करने वाले हैं डॉक्टर राशि गुप्ता का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। डॉक्टर राशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच, आप मुझे इस शो पे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: डॉक्टर राशि, बैटरी वाली की कहानी तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का पहला एक सवाल स्टैंडर्ड सवाल होता है जो मैं बहुत सारी महिलाओं से पूछ चुकी हूँ और आपसे भी पूछना चाहूंगी। आप एक महिला हैं और आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है? हाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट?
1: अच्छा सवाल है। महिला सशक्तिकरण को हम अक्सर बहुत सीमित तरीके से देखते हैं, जैसे कि नौकरी मिल गई, कमाने लगी तो हो गई सशक्त। लेकिन मेरे अनुभव में सशक्तिकरण इससे कहीं बड़ा है। सशक्तिकरण का मतलब है सोच की आजादी। क्या एक महिला बिना डरे अपने फैसले ले सकती है? क्या वह लोगों क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठकर अपने सपनों को उड़ान दे सकती है? तो सशक्तिकरण मेरे लिए तीन स्तर पर होता है। पहला, आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा। जब आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती ना, उस समय आपको आप पर भरोसा है तो आप सशक्त हैं। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, ताकि आप अपने फैसले खुद ले सको, उस पर खड़े रह सको और उसको आगे लेके चल सको। और तीसरा है निर्णय लेने की शक्ति। ये निर्णय लेने की शक्ति ना सबसे कठिन वाली है, और ये दो जगह सबसे ज्यादा महत्व रखती है। एक है पहले घर में भी और समाज में भी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये तीन जो कड़ियां हैं ये बड़ी जरूरी हैं सशक्तिकरण को। और सशक्तिकरण के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि वो दिया हुआ या नहीं हो सकता, या लिया हुआ नहीं हो सकता। जब महिलाएं खुद आगे बढ़ेंगी, अपनी जगह बनाती हैं, तभी असली बदलाव आता है और तब सशक्तिकरण होता है।
0: सो ट्रू। वाकई दो ऐसी कंडीशन आती हैं, एक आपका घर और एक आपका समाज। सो इन दोनों जगह पर अगर आप सही डिसीशंस ले पाती हैं, एंड फॉर दैट मैटर ये डिसीशन दूसरों के लिए नहीं अपने जीवन के होते हैं, अगर आप ये ले पा रही हैं तो आप एक सशक्त महिला हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप कितना पैसा कमाती हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राशि, वाकई ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को अंदर से एक बार ये सोचने पर मजबूर करेगा कि वो सशक्त हैं भी या नहीं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: जलाए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राशि गुप्ता से। डॉक्टर राशि गुप्ता जो पूरे भारत में फेमस है बैटरी वाली ऑफ इंडिया के नाम से, शी इज दी फाउंडर ऑफ विजन मेट्रोनिक्स और एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर ये कहलाती है। डॉक्टर राशि, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ये बैटरी वाली ऑफ इंडिया की कहानी, ये कहां से शुरू हुई, किस प्रकार के सशक्तिकरण भरे डिसीजंस आपने बैटरी वाली ऑफ इंडिया बनने तक के आपने लिए, और आज यहाँ भारत की एक पहचान बनकर कैसा लग रहा है आपको?
1: ये सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं वही कहूंगी कि 2015 में जब मैं पहली बार वर्ल्ड स्मार्टेस्ट लिथियम बैटरी इंडिया में बनाई, और उसके बाद जैसे ये नई तकनीक थी तो लोगों को ना मार्केट तैयार था, ना लोगों को जानकारी थी, और ना ही ये बहुत इसका कोई सपोर्ट सिस्टम था। 2015 की जब हम बात करें, आज आप देखें तो लिथियम बैटरी की बहुत चर्चे हैं, पूरे में चर्चे हैं, देश में भी विदेश में भी, लेकिन उस समय कोई नहीं था। और एक अकेली लेडी जब जा रही है, एक स्त्री जा रही है, और उस सेगमेंट में जब कोई दूसरा और नहीं है, तो लोगों को आदत हो जाती है कि उसके काम से उसके नाम की पहचान बनती है। तो अक्सर मुझे लोग कहते थे, अरे वो बैटरी वाली को बुला लो, वो बता देगी क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, वो बता देगी। तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे वो उस नाम से ही बोलना शुरू कर दिया। मेरा अपना नाम लोगों को याद नहीं रहता था, क्योंकि मैं अकेली लिथियम बैटरी बनाने वाली थी, बताने वाली थी, जानकारी देने वाली थी, कोई नहीं था। तो उस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर पता चला कि लोगों ने मेरा नाम ही उस तरह से सेव करना शुरू कर दिया मोबाइल में, तो मैंने कहा अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। जब लोग खुश होके मुझे उस मेरी पहचान ही मेरे काम से है, तो मैं ये नाम स्वीकार करती हूँ। बड़े रेस्पेक्ट से, आदर सत्कार से मैंने इस नाम को स्वीकार किया, और तब से मैं बैटरी वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। आज जैसे मैं काउंसिल मेंबर हूँ यूनाइटेड नेशंस में, तो वहां पे भी लोग मुझे बैटरी वैली के नाम से या बैटरी क्वीन के नाम से जानते हैं। तो ये उस तरह से शुरुआत हुई। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा, क्या सशक्तिकरण का निर्णय लिया, तो एक ऐसा हुआ था कि हम जर्मनी गए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वहाँ गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे। तो वहाँ पे मेरी एक मीटिंग हुई थी एक कंपनी से, जिन्होंने कहा कि हम कोलैबोरेट करना चाहेंगे। लेकिन उस मीटिंग के पहले जो था वो सशक्तिकरण का टाइम था, क्योंकि उसमें मेरे जितने लोग साथ में गए थे, उन लोगों ने कहा कि आप क्या करेंगी इस कंपनी में जाके, क्यों अपना समय नष्ट कर रही हैं, मत जाइए, यहाँ जाके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, हम आपको इंडिया में सबसे बड़ी बैटरी कंपनी से मिलवा देते हैं, आपकी जेवी करवा देते हैं, आप वहां शुरू कीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो तकनीक इंडिया में आज चल रही है मैं देखूंगी जरूर कि भाई ये क्या कर रहे हैं, और मैं जाऊंगी जरूर। और भाई वो बोलते हैं आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप कहाँ लगा रही हैं, ये तकनीक इंडिया में कोई काम की नहीं है, ये तो फेल हो जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पैसे हैं ना, मैं फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका तो नहीं है। और अगर एक बार मैंने कमाए और गवाए तो मैं दूसरी बार भी कमा लूंगी, उसमें इतनी कौन सी बड़ी दिक्कत है। तो ये जो फैसला था कि जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, तब मैंने ये फैसला लिया कि हाँ मुझे ये करना है। और आज उस चीज के लिए मुझे बहुत गर्व और खुशी होती है कि मैंने वो फैसला उस दिन लिया और वो काम आगे किया, और आज इसी वजह से लोग मुझे बैटरी वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद तो रुकना का सवाल ही नहीं उठता था, मैं चलती गई और बहुत सारे नए इनोवेशंस इंडिया में करती गई। और सौर ऊर्जा और सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल ऊर्जा, इस फील्ड में मैंने बहुत सारा काम पिछले 16-17 सालों में किया है, और आज अब मैं क्लीन हाइड्रोजन बेस्ड क्लीन कुकिंग में भी काम कर रही हूँ।
0: वाकई, और आपका जो बहुत ही स्मार्ट कुकर है वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, उसके बारे में भी पूछने वाले हैं, बस उससे पहले लेने वाले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट में। विमेन एम्पावरमेंट की खूबसूरत सी कड़ी और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं डॉक्टर राशि गुप्ता से। डॉक्टर राशि गुप्ता जो फाउंडर हैं विजन मेट्रॉनिक्स की, साथ के साथ एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर कहलाती हैं, लेकिन इन्हें प्यार से हम बुलाते हैं बैटरी वाली ऑफ इंडिया। भाई ये वो पहली महिला हैं जिन्होंने वाकई इस तरफ एक ऐसा सशक्तिकरण भरा कदम रखा। अब डॉक्टर राशि, आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। ये एक आदमियों की दुनिया है और हम सब जानते हैं हाउ मेनी वेमेन, हार्डली फ्यू वेमेन आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस फील्ड। मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने पहले तो अपने लिए जगह बनाई, बट क्या आपने बहुत सारी और महिलाओं को भी सशक्त करने की कोशिश की और क्या वो आज मोटिवेट होकर आपके ही यू नो एक्सटेंडेड हैंड्स बन पा रही हैं?
1: बिल्कुल, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत ही लंबे समय तक महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है, ना के बराबर है। तो जब मैंने ये शुरुआत की तो कई बार अपने आप को साबित करना पड़ा, कई बार मतलब हर बार साबित करना पड़ा। लोग पहले आपके जेंडर को देखते हैं कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और फिर आपकी सक्षमता को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चेंज क्या लाया, जो मैंने अपने अंदर लाया कि मैंने अपने आप को एज अ प्रोफेशनल देखा। मैंने ये नहीं देखा कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ या सामने जो मेरे बैठा है या जो मुझसे बात कर रहा है वो स्त्री है या पुरुष है। मैंने ये देखा कि वो एक प्रोफेशनल है, वो एक सोल है और मैं उसी हिसाब से उनसे बात करती थी। तो मैंने दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंटली इसमें की। पहला जो था कि अपने आप को प्रोफेशनल देखना, दूसरा अपना होमवर्क पूरा करके जाना। मैं जिस भी मीटिंग के लिए जाती हूँ या मैं जिस भी काम के लिए जाती हूँ, मैं अपना होमवर्क उसका पूरा करके जाती हूँ। ये बीच में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं अब इसका क्या जवाब दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप अपने आप को तैयार करके जाएंगे तो आपको अपने आप को बार बार प्रूव नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा काम में आई पूरी इस जर्नी में कि मैंने अपनी तैयारी पूरी रखी। इस तैयारी से लोगों का मुझ पे भरोसा होने लगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है और मैं सही कह रही थी। मैं किसी को धोखा देने के लिए गलत सलत बातें ऐसे कभी नहीं किया, मैंने सही बात बताई, ये आपके काम की ये आपके काम की नहीं है। और जब मैंने ये सही सच बोला और मैंने जब उन लोगों को दिखाया कि ये टेक्नोलॉजी आपके काम की है, आपको इतने फायदे होंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने एक्सेप्ट किया और मुझे मेरे काम में प्रगति मिलती गई। और उसके साथ साथ जो सशक्तिकरण महिलाओं का होता है उसके लिए मैंने एक और काम किया कि अपनी कंपनी विजन मेकाट्रॉनिक्स में एक चीज का बहुत खास ध्यान रखा कि मेरे यहाँ 50% महिला होंगी और 50% पुरुष होंगे। ये एक चीज हमने थ्रू आउट पूरी जर्नी में हमने ये बैलेंस रखा है कि किसी भी तरह ये रेशियो न बिगड़े। और हर वो महिला जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आती है, हम उसको तीन चीजों की अपॉर्चुनिटी हमेशा, तीन चीजें हम उसके लिए हमेशा, ये तरीका मैंने जो अपनाया है वो पहला है विजिबिलिटी। मैंने अपनी कहानी कभी छुपाई नहीं, शेयर की। जो मेरे पास आते हैं मैं उनकी कहानी भी सुनती हूँ, उनके साथ शेयर करती हूँ ताकि उनको विजिबिलिटी मिले, वो समझ सके। दूसरा, अपनी टीम में महिलाओं को टेक्निकल और लीडरशिप के रोल दिए, अपॉर्चुनिटी दी। कभी मुझे मिली इसलिए मैंने भी आगे दी, और नहीं भी मिलती तो भी मैं देती आगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हम नहीं देंगे तो और कौन देगा। महिलाओं को महिलाओं ने पहले अपॉर्चुनिटी दे दी। और तीसरा है मेंटरशिप। जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं गाइड करती हूँ, खास करके उन महिलाओं को जो इस सेक्टर में आना चाहती हैं, जो जैसे ITI है, डिप्लोमा वाली जो बच्चियां हैं, जो अभी अभी स्कूल कॉलेज से निकली हैं, उन सारी बच्चियों को मैं उतनी मेंटरशिप करने की कोशिश करती हूँ ताकि कहीं ना कहीं वो अपने दम पे खड़ी हो सके। और ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि दो शब्द कह दिए और काम हो गया, नहीं, करके दिखाना होता है। प्रैक्टिकली जब तक आप करके नहीं दिखाओगे तब तक ये होता नहीं है। तो यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सिर्फ प्रवचन नहीं देना है, काम करके दिखाना है। और मैंने यही पूरे 17 सालों में किया ताकि आज वो लोग खड़े हैं। और आपको अजीब सा लगेगा बट इस कंपनी में सारी जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो सारी महिलाएं संभालती हैं।
0: आई हैड एक्चुअली थॉट दैट, और आज आपने अपने मुंह से ये बात कही है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या कहने। सो महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी में ना, जब तक महिला ये ना कहे ना कि मैं खुद तो सशक्त हुई लेकिन मैंने साथ में और महिलाओं को मौका दिया, तब तक ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस कार्यक्रम का नाम भी वी है। महिलाएं जब एक दूसरे के साथ आ जाएंगी तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। जरूरत यह है कि महिला एक दूसरी महिला को बहुत अच्छे से समझ पाती है, और जब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। और जो बात आपने कही, मुझे लगता है डॉक्टर राशि, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो किसी भी कैपेसिटी में हैं, अगर ये तीन चीजें हर महिला को मिलती है तो हर महिला शायद अपने आप में चमक सकती है। सबसे पहले विजिबिलिटी, दूसरा उसे लीडरशिप का मौका मिलना, और तीसरा कि उसे सहयोग मिले, कोई एक ऐसा मेंटर मिले जो ये कहे कि हाँ आप आगे बढ़ो एंड आई एम देयर बिहाइंड यू। सो मुझे लगता है कि विजन मेकाट्रॉनिक्स में तो ये हो ही रहा है, लेकिन बाकी सब जगह भी हो, ये मेरी गुजारिश है। बहुत प्यारा सा गाना सुनाने वाली हूँ, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे डॉक्टर राशि गुप्ता से। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट की इस कड़ी में आज हम बात करें डॉक्टर राशि गुप्ता से, जो कि फाउंडर है विजन मेकाट्रॉनिक्स की, एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर है और साथ ही साथ बैटरी वाली ऑफ इंडिया कहलाती हैं। भाई, ये बैटरी वाली ऑफ इंडिया के लिए एक्चुअली मुझे मशक्कत करनी पड़ी और आज फाइनली मैं उनके साथ बात कर पा रही हूँ। डॉक्टर राशि, अगर मैं बात करूँ तो ये पुरुषों का वर्ल्ड है और हम हमेशा कहते हैं हर जगह हर चीज की वैलिडिटी एक पुरुष ही देता है। इस दुनिया में आपने एनर्जी स्टोरेज में अपना एक अलग ही नाम कमाया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के समय में एनर्जी स्टोरेज की किस तरीके से इम्पोर्टेंस है।
1: भावना जी, अगर हम आज की एनर्जी स्टोरेज को समझें तो एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडिया एक एनर्जी स्टोरेज कंट्री है। अब एनर्जी यानी ऊर्जा का मतलब सिर्फ बिजली नहीं होती है।
0: एग्जैक्टली,
1: बहुत सारे तरह से आप एनर्जी देखते हो। अब जैसे आप देखते हो पानी, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है, फूड वो भी, खाना जो है वो भी एनर्जी है, पैसे वो भी एनर्जी है, ठीक है। हमारी कंट्री में हमेशा सब कुछ स्टोर करके रखना चाहते हैं, हर चीज हम बचा के रखते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि बिजली कितनी महत्वपूर्ण है और उसको बचा के रखना और सही समय पे दोबारा इस्तेमाल में लाना, ये सही भूमिका है एनर्जी स्टोरेज की। तो एक बहुत बड़ा सवाल सौर्य ऊर्जा के साथ ये उठता है कि जब सूरज सुबह उगता है और शाम को नहीं होता है तब, और जब हवा नहीं चल रही है विंड एनर्जी के लिए, तब क्या होगा। तब ये एनर्जी स्टोरेज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये तो बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा जैसे पीक लोड डिमांड है, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन है, लोड शिफ्टिंग है, ये बहुत सारे तरह के काम एनर्जी स्टोरेज करते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज हमें सिर्फ एक सुविधा नहीं देता कि हम ऊर्जा को जब बने तब स्टोर कर ले और जब जरूरत हो तो इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए। बिकॉज अभी अगर आप ध्यान से समझें तो क्या बात है, जैसे हर विलेज में हमने बिजली पहुंचा तो दी, लेकिन क्या वो 24/7 एकदम परफेक्ट हमें बिजली मिलती है। कई जगहों पे आज भी पावर कट्स हैं, नहीं मिल पाती है। तो वो सब चीजों को स्टेबलाइज करना, स्थिर बनाना, पावर कट्स कम करना और एनर्जी को स्केलेबल बनाना, मतलब जैसे आज मुझे कहीं और मेरी ऊर्जा बन रही है किसी और जगह पे, जैसे सपोज एग्जांपल देते महाराष्ट्र में बन रही है लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश में चाहिए, तो ओपन एक्सेस और एनर्जी स्टोरेज के थ्रू हम ये एक जगह से दूसरी जगह इतनी ऊर्जा हम पहुंचा सकते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एनर्जी स्टोरेज के बिना आप क्लीन एनर्जी का सपना जो है हमारे देश का, वो अधूरा है।
0: देखिए भाई, अगर हम एक्चुअली एक अच्छे और डेवलप्ड नेशन का सपना देख रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर अगर आपने सुना भी होगा मुझे, मैं रेडियो पे हमेशा एक बात कहती हूँ, हम ना एक बड़ी ब्लेस्ड कंट्री है, हमारे पास सौर ऊर्जा है, हमारे पास अलग अलग मौसम है और हर मौसम का एक बहुत खूबसूरत सा फायदा है जो हम उठा सकते हैं। हमारे पास पानी मिलता है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्हें इतने समय तक इतना सूर्य का जो ऊर्जा है वो नहीं मिलती है, सो वो उनके लिए सोलर एनर्जी बनाना मुश्किल है। बट हम क्योंकि एक ब्लेस्ड कंट्री, हम एक ऐसी जगह पर स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं जहां हम अलग अलग मौसमों को बहुत खूबसूरती से एंजॉय कर पाते हैं और बड़े बैलेंस्ड तरीके से हम उसे एंजॉय कर पा रहे हैं। सो जरूरत यह है कि हम समय रहते इसका मैक्सिमम यूज भी करें और सिर्फ ये ना सोचें कि अरे प्रभु की दी हुई चीजें हैं, ये तो हमें अबंडेंस में मिली है और अबंडेंस में आगे मिलती रहेंगी, ये गारंटी हम नहीं ले सकते। इसीलिए जरूरी है कि इस नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सस्टेनेबिलिटी पर भी बात करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे और बैटरी वाली ऑफ इंडिया से बहुत सारी बातें करेंगे। फील गुड, फील नाइस।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राशि गुप्ता से, जो फाउंडर है विजन मेकाट्रॉनिक्स की और कहलाती है बैटरी वाली ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज की बात करें या कहना चाहिए एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर, डॉक्टर राशि ने हर फील्ड को कॉन्कर कर लिया है। डॉक्टर राशि, अब एक अहम सवाल, हम ना जब भी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, सो एक परेशानी आती है और वो परेशानी ये है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें वापस उसी इनइक्वालिटी पर ले आती हैं और ये इक्वालिटी अचीव ही नहीं हो पाती है। मुझे बताइए ना कि आप तो यू नो एक्सटेंसिवली ट्रैवल्ड और साथ के साथ मतलब अगर कहना चाहिए तो आपने अलग अलग देशों के साथ साथ और साथ के साथ अपने देश में भी अलग अलग लोगों के साथ आप इतना मिली हैं, हम किस तरीके से और कहाँ लैक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आगे तो हम आ गए हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी है। सो कैसे इसे पूरा किया जा सकता है, इस इक्वालिटी को कैसे लाया जा सकता है?
1: हमने कागजों पर तो बहुत प्रगति की, नीतियां भी बना ली, अवसर भी बढ़ा लिए, अवसर भी बढ़ गए हैं, लेकिन असली चुनौती आज भी कहाँ है पता है? सोच में। आज भी कई घर की बेटियों को अलग तरीके से पाला जाता है, आज भी करियर के कुछ विकल्प लड़कियों के लिए नहीं माने जाते हैं। अब जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा कि लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं एडमिशन लेती, मैं पूरे कॉलेज में इकलौती लड़की थी उस इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इस तरह की जो हमारी सोच है, और अब तो डिजिटाइजेशन हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब तो महिलाएं इसमें नंबर वन कदम पे आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात है महिलाओं को अक्सर प्रूव करना पड़ता है, जबकि पुरुषों के लिए अज्यूम किया जाता है। महिलाओं को कहेंगे प्रूव करके दिखाओ कि आप ये काम कर सकते हैं, जबकि पुरुषों के लिए अरे हाँ ये तो कर ही लेगा। तो जब तक ये माइंडसेट हमारा नहीं बदलेगा तब तक बराबरी सिर्फ शब्दों में रहेगी, असलियत में नहीं आएगी, ऑन ग्राउंड नहीं आएगी। तो हमें बदलाव तीन जगहों पर लाना होगा। पहली बात घर में, सबसे पहले घर में, दूसरा शिक्षा में और तीसरा कार्यस्थल पे। तो और ये काम सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी इस बदलाव में उतना ही हिस्सेदार बनना होगा। घर में जैसे आप एक अभी एक एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली मैं किसी से लड़की से बात कर रही थी, इंटर्न है, वो बहुत टेक्निकली करेक्ट बातें बताती है, मतलब परफेक्ट है, वो अपने काम में बहुत अच्छी है, लेकिन बोलने में इतना घबराती है कि उसके आप बगल में बैठोगे ना तो भी उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो मैंने उसको अलग से बुला के पूछा, बच्चे बात क्या है, आप बोलते क्यों नहीं हो? तो उसके मन में क्या था कि महिलाओं को, लड़कियों ने, महिलाओं ने बहुत धीरे बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में या क्लियर बात करना ये मतलब क्या कहते हैं मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैंने कहा कौन सी मर्यादा यहाँ आपको रोक रही थी? तो कहती है नहीं नहीं मम्मी ने बताया है कि जब ससुराल जाएंगे तो बहुत धीरे बोलें। मैंने कहा ये आपका ससुराल नहीं है, ये तो आपका वर्क प्लेस है, तो आप यहाँ क्यों इतने धीरे धीरे बोल रही है कि बगल में बैठे हुए बंदे को नहीं सुनाई दे कि आप क्या कह रही हैं, और आप इतनी डरती क्यों हैं? बोलते नहीं ऊंची आवाज में बात करने को मना किया है घर में, हम तो घर में बात ही नहीं करते। अब वो लड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकली हुई है, वर्क प्लेस में जब आ रही है, कार्यस्थल पे आ रही है और उसका ये हाल है, तो आप सोचिए कि हमने कहाँ प्रगति की है। और जब वो बिल्कुल करेक्ट आंसर देती है, तो ये जो हमारे यहाँ का जो डर है कि घर में बाद में जाके हम जो लड़कियों की अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग करते हैं कि नहीं आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल चुप रहना है, तो ये हमें चेंज करना है, ये माताओं ने चेंज करना है, और ये सिर्फ माँ ही चेंज कर सकती है। माँ और बाप मिलके घर में ये चेंज कर सकते हैं, माताजी पिताजी जब इसको चेंज करेंगे तभी ये बदलाव आएगा। और दूसरा शिक्षा के स्थल पे, सारे अब सब जगह तो लड़कियां काम करती हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लड़कियां आजकल काम नहीं कर रही हैं? इतने सारे टीवी पे हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जहाँ पे वो टायर बदल रही हैं, इलेक्ट्रिशियन है, बिजली वाली दीदी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है वो कर रही हैं, फिर आप देखिए एस्ट्रोनॉट हैं, अब डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। तो ये जो प्रोफेशनल लेबलिंग है, अगेन मैं उसी बात पे जाऊंगी कि पहले अपने आप को प्रोफेशनल देखिए। शिक्षा देखिए एक बात है, अब जैसे कोई टीचर आपको कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहा है, प्रोफेसर कॉलेज में, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, तो क्लासरूम में तो वो सेम शिक्षा दे रहा है ना कि लड़की है तो इसको अलग शिक्षा या लड़का है तो उसको अलग शिक्षा दी, नहीं। तो फिर आप जब कार्यस्थल में आते हैं तो तब अपने आप को लड़की और लड़का अलग क्यों समझते हैं? तो जेंडर की लेबल हम क्यों देते हैं? उसे एक प्रोफेशनल समझिए। तो जब हम ये तीनों क्षेत्र में इस पे बराबरी का काम करेंगे और सबसे ज्यादा घर से शुरुआत होगी पहले, तब ये काम पूरा होगा, तब आप समानता की ओर पूरी तरह से पहुंचेंगे।
0: वाकई सो ट्रू। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमारी सोशल कंडीशनिंग जो है ना वो खराब है। सो लड़की को हमेशा लड़की की नजर से देखा जाता है और उसके पैरामीटर जो है ना वो उसी तरीके से सेट किए जाते हैं। इनफैक्ट बचपन से ये कहा जाता है, तुम्हारी शादी होगी तो तुम ये करोगी, तुम्हारी शादी होगी तो ये करोगी। सो हम एक्चुअली अपने आप को ना कभी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट या प्रोफेशनल नहीं देखते हैं। हम हमेशा अपने आप को ये देखते हैं कि हम एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो हम किसी और के घर जाकर हमें वहाँ एडजस्ट होना है। और यही
1: एक
0: कारण
1: चीज मैं इसमें और भावना जी ऐड करना चाहूंगी, हम हमेशा एक बेटी का रोल, बहन का रोल, माँ का रोल, ठीक है, देवरानी, जेठानी, जो भी आप कहो, भाभी, इन सब का रोल हम निभाते हैं। हम कभी अपने आप के लिए अपना रोल कब निभाते हैं?
0: एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर ये सवाल हर महिला को अपने आप से पूछना चाहिए, When did we last live our life as a human being? बहुत खूबसूरत सी बात कही है डॉक्टर राशि ने और मुझे लगता है कि बस इस बात को एक बार सोचिए जरूर। सुना रही हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं उतनी ही प्यारी और उतनी ही लिबरेटेड बैटरी वाली ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर राशि गुप्ता से। डॉक्टर राशि गुप्ता जो कि फाउंडर है विजन मेकाट्रॉनिक्स की। डॉक्टर राशि, अब एक बड़ा अहम सवाल और ये हर महिला की जिंदगी में आता है, जब कभी भी आप अपने करियर को चूज करती हैं तो आपका एक दूसरा हैंड भी होता है और वो हैंड है आपकी फैमिली। और जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है हर महिला के साथ जहां पर उसे ये कहा जाता है कि भाई आपको परिवार का ज्यादा ख्याल रखना है, अपने करियर का नहीं। सो ये बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? आपके पास तो बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोग मिलते होंगे, अक्सर इस चैलेंज को आप फेस भी करती होंगी। सो कैसे डील करती हैं आप इसके साथ?
1: ये एक बहुत वास्तविक सवाल है और इसका कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं। दोबारा मैं उसी बात पे जाऊंगी कि आप अपने आप को कैसे देखते हो उस पे सब निर्भर करता है कि आपका परिवार आपके साथ कैसे खड़ा है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि बैलेंस का मतलब 50-50 नहीं होता। बैलेंस का मतलब होता है कि हर समय जो जरूरी है उसको प्राथमिकता दी जाए। कुछ समय करियर ज्यादा मांग करेगा, कुछ समय परिवार आपको आपकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी।

0: तो इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना है, ये कहना है कि ठीक है जहां मेरी ज्यादा जरूरत है मैं उस समय वहां हूँ, लेकिन मैंने दूसरे पहलू को भी छोड़ा नहीं। और दूसरी चीज इसमें जो बहुत मायने रखती है वो है सपोर्ट सिस्टम। अगर आपका परिवार, आपका पार्टनर, आपका कार्यस्थल सहयोगी है तो ये संतुलन बनाना बहुत आसान है। बट ये सहयोगी होंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ये सहयोग में आएंगे कैसे। पहली बात तो हमें परफेक्शनिस्ट होना बंद करना है। महिलाओं को ना हर चीज एकदम टिप टॉप परफेक्ट चाहिए, ठीक है, सही बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन जब नहीं हो पाती है तो उसके लिए गिल्टी फील करना, अपने आप को कोसना या चिड़चिड़ाना ये नहीं करना है। और आपको दूसरी चीजें अधिकार देना है, कार्यभार देना है, डेलीगेट करना है, जो हम नहीं करते हैं। हम सब चीजें खुद करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसे परफेक्ट करते हैं। अरे भाई, दूसरों को डेलीगेट करो, उनको परफेक्ट बनाइए, तब वो आपको सहयोग देंगे। हम सहयोग की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हमने उन्हें वो कार्यभार दिया? क्या हमने उन्हें उतनी आजादी दी कि आप वो अपने हिसाब से काम कर लो? एक मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते भी तो हो सकते हैं, एक ही जरूरी नहीं है कि मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ वही सही है। तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम पहले बनाना है, तब आप बैलेंस ला सकेंगे। और उसमें तो मैं कहती हूँ बच्चों को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। घर में आपके बच्चे हैं ना, आप उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, छोटे छोटे छोटे छोटे कार्यों में उनको इन्वॉल्व कीजिए। एक तो क्या है, वो एंगेज्ड रहते हैं तो तंग नहीं करेंगे, दूसरी चीज वो स्किल सीख लेंगे, उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनका विकास है, वो बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज है, जिन ऑफिस में, जिन कार्यस्थलों में बच्चों को लाने की फैसिलिटी है तो उन्हें लाइए अपने साथ। जैसे हमारे यहाँ हम सारे मम्मी पापा को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ला सकते हैं ऑफिस में। मैं तो चाहती हूँ कि वो बच्चे आए, क्योंकि जब वो बच्चे आएंगे तो वो देखेंगे कि मेरे मम्मी मेरे पापा क्या करते हैं, कितना काम करते हैं दिन में, और क्यों वो शाम को घर आके थक जाते हैं कि मेरे साथ नहीं खेल पाते। तो जब आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। और तीसरी चीज है कि हमें ये गिल्ट छोड़ देना है। महिलाओं को अक्सर इस चीज में होता है कि परफेक्ट होने का दबाव महसूस करती हैं और वो स्वीकार नहीं करना चाहती कि हम भी इंसान हैं, हम कोई सुपर वुमन नहीं है। तो हर दिन अलग होगा, कोई दिन बहुत आप पावरफुल महसूस करेंगे, कोई दिन आप बहुत हताश महसूस करेंगे, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से हमें गिल्ट नहीं आए। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं, और मैं हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बन रही हूँ। जब हम ये चीज याद रखेंगे तब हमें ये बैलेंस क्रिएट करने में बहुत आसानी होगी। और सबसे मुख्य जरूरी बात यह है कि सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम सच में बराबरी चाहते हैं तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और ये परिवार सिर्फ आपका घर परिवार नहीं है, ये आपका ऑफिस में जो परिवार है उसकी भी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन सही तरीके से दे। और लोग अक्सर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं कहूंगी एक सक्सेसफुल महिला के पीछे पूरे परिवार का हाथ होता है।
1: What a beautiful message. लेकिन डॉक्टर राशि यूं ही नहीं जाने दूंगी, बहुत सारी बातें आपसे की है, बहुत सारा समय आपका लिया है। जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, भविष्य इंतजार करने वालों का नहीं होता है, उसे बनाने वालों का होता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दो चीजें तय होंगी, हमारा एनर्जी फ्यूचर कैसा होगा और हमारी सोसाइटी में कितनी समानता होगी। अगर हम आज सिर्फ ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो हम अपने आने वाली साफ ऊर्जा की तरफ, अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और अगर हम महिलाओं को बराबरी नहीं देते हैं तो हम अपनी आधी क्षमता को खुद ही रोक रहे हैं। इसीलिए बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, सोच में, फैसलों में और अपने आसपास के सिस्टम में। महिलाओं से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इंतजार मत कीजिए, अपनी जगह खुद बनाइए और इतनी मजबूती से बनाइए कि कोई उसे हिला न सके। और पुरुषों से कहूंगी कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकेले मत बढ़िए, किसी और को भी साथ में लेके आगे बढ़िए। और महिलाएं आपकी जगह लेने नहीं आई हैं, आपके साथ जगह बनाने आई हैं, क्योंकि असली बदलाव तभी होगा जब हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी तरक्की के बारे में सोचते हैं। भविष्य हमें नहीं मिलेगा, हमें ही उसे बनाना पड़ेगा।
1: What a beautiful message है डॉक्टर राशि, वाकई आपने जो बात कही है वो सीधा दिल से कही है। आज के जमाने में जरूरत यह है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना है, और ये भविष्य तभी इक्वालिटी का हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ चले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट।
0: थैंक यू सो मच भावना जी, मुझे आज ये मौका मिला सब श्रोताओं से बात करने का, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच, और मुझे आपके साथ जुड़ के बहुत मजा आया, थैंक यू।
1: दोस्तों ये है डॉक्टर राशि गुप्ता, बैटरी वाली ऑफ इंडिया, और भाई जिस तरीके से ये खुद हमेशा चार्ज रहती हैं, ये हमारे पूरे जीवन को चार्ज कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राशि वंस अगेन, और अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। एक प्यारे से गाने के बाद ले रही हूँ आपसे इजाजत, कहीं मचाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आपकी और मेरी होगी मुलाकात अगले हफ्ते, टिल देन फील गुड फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM के सभी श्रोताओं को संदीप सिंघल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम प्रयास करते हैं किसी भी एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करके नई सोच के साथ नई दिशाएं तलाश करने की, जो लेकर के जाए हमें बेहतर भविष्य की ओर। और वो मुद्दा होता है हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ, यानी हमारे आसपास ही कोई ऐसा विषय जिस पर हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं जिसको, तो उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कुछ चर्चा करें आपके साथ और एक नई सोच के साथ नई दिशाएं तलाशें उसी मुद्दे पर। तो इसी प्रोग्राम में दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो है, जीवन में आम तौर पर हमने देखा है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो हमारा व्यापार है, चाहे वो हमारी स्टडीज है, या किसी भी प्रकार से हम देखें, तो उसमें एक बड़े कॉमन एक फैक्टर होता है जिसकी तरफ हर किसी का ध्यान होता है, वो होती है सक्सेस यानी सफलता। लेकिन जहाँ कहीं भी सफलता होती है, ये बात हम सभी जानते हैं कि जिस क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं होती हैं, वहीं यदि आपको सफलता नहीं मिलती है और आप असफल हो जाते हैं, तो वही जो मुद्दा है कि उस परिस्थिति में जो असफलता हमें मिलती है, जब हम सफल होने से रह जाते हैं, तो आखिर वो असफलता को हमें, जो फेलियर है उसको लाइफ में किस प्रकार से लेना चाहिए। यानी अगर हम आज के टाइटल की बात करें तो वो है असफलता से सीखने की कला, यानी कि How to learn from your failure। आमतौर पर जब कभी भी बात होती है सक्सेस की तो लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरियाँ सुनाते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उस विषय पर चर्चा करना जो जुड़ा होता है हमारे फेलियर्स से। दोस्तों, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। यानी हम सीधे सीधे अगर हम बात करें तो यदि आपके किसी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं तो वो अपने आप में असफलता की श्रेणी में हम लोग आमतौर पर उसको ले लेते हैं, या किसी का इंटरव्यू ख़राब हो जाता है, जॉब मिलने से रह जाती है, तो उसको लगता है कि वो सक्सेस नहीं हुआ यानी वो फेल हो गया, या किसी का किसी व्यापार में घाटा हो जाता है, कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, या फिर रिलेशनशिप टूट जाना, कहीं रिश्ता टूट जाना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं जो हरेक किसी न व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ये अनुभव किए होंगे। असफलता का जो पेन है ना, वो हर इंसान महसूस करता है, हम आप हर कोई, कहीं ना कहीं वो एक जगह ना चाहते हुए हमारे दिल में बन जाती है उस असफलता को लेकर के, जब तक कि उसी फील्ड में या उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या उसी क्षेत्र में हमें सफलता ना मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या असफल होना अपने आप में अंत है, यानी असफलता जो है क्या वो बिल्कुल एंड है, या वही आने वाली सफलता की पहली सीढ़ी भी बन सकती है। और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, यानी फेलियर होने का जो फियर रहता है, जो असफलता का जो डर होता है, वो आखिर है क्या। दोस्तों, जितनी भी फेलियर्स होती है उसके पीछे का जो कारण है वो होता है उस असफलता से जुड़ा हुआ डर, यानी एक मन में भय रहता है कि यदि हम असफल हो गए तो। अब वो जो तो है, उस तो का जो आंसर है वो है क्या, किस प्रकार का डर, वो होता है एक सोसाइटी का प्रेशर, यानी समाज का एक तरह का दबाव, साथ ही साथ एक मेंटल जो उसका इफेक्ट आएगा आपके ऊपर एक वो। दूसरा, जब सफल लोग हैं, जो जितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जब हम उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको एप्रिसिएशन मिलता है, तो एक फियर इस बात का भी मन में बन जाता है कि यदि हम इनके जैसे नहीं बने तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। आखिर क्या ऐसी बातें हैं जिनका एक भय हमारे मन में बना रहता है, तो आज इन सभी मुद्दों पर हम मिलकर के चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे तलाशें एक नई सोच के साथ नई दिशा। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है एक जो तुलना का गेम, जो अक्सर हम बात करते हैं कंपैरिजन का, कि हमेशा से फर्स्ट आइए, गलती नहीं करनी है, हारना नहीं है। धीरे धीरे हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि जो फेलियर है, असफलता है, वो एक तरह की कमजोरी है, यानी यदि आप फेल हो जाते हैं या आप असफल हो जाते हैं तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आमतौर पर हमने देखा होगा बच्चों के स्कूल में मार्क्स कम आते हैं, या किसी को कोई जॉब नहीं मिलती है, या फिर अन्य तरह की यदि कोई भी असफलता रहती है, फेलियर होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो समाज का दबाव जो होता है, सोसाइटी का, वो एक इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है। और जो ये बातें हैं सारी, ये मुख्य रूप से एक क्रिएट करती हैं भय को, जो एक डर जो होता है वो सारा इन सब कारणों की वजह से ही बनता है। साथ ही साथ अगर हम आसपास की बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ने इस दबाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग अपने सक्सेस की स्टोरीज बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ या बहुत ज़्यादा दिखावे के साथ पेश करते हैं, लेकिन फेलियर्स को कोई शेयर नहीं करता। यानी अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लाइफ किसी ना किसी तरह से दिखाई देती है। कभी कोई अपनी नई जॉब के बारे में बता रहा होता है, या कोई अपने हॉलीडेज इन जो फॉरेन ट्रिप होती है उसके बारे में बता रहा होता है, या किसी ने यदि कोई नई गाड़ी खरीदी है तो वो उसको बहुत शौक के साथ उसके साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करता है सोशल मीडिया अकाउंट पर। लेकिन यहीं पर एक बात जो हमें ध्यान देने वाली है वो होती है कि लोग कभी भी अपनी फेलियर्स को शेयर नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो एक तरह का अनजाना भय हर किसी के मन में बन जाता है कि यदि हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो यही एक वजह है कि जो हमारे जेन जी हैं, जो युवा हैं, वो अपनी छोटी छोटी सी हार को, छोटे छोटे फेलियर्स को जीवन का अंत समझने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरी भीड़ में या पूरे समाज में केवल वही हैं जो हार रहे हैं या जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, बाकी सबकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। यदि हम इसको बड़े लाइटर नोट पे बोलें तो उन व्यक्तियों को, उन जैन जी को या हमारे युवाओं को सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जो जिंदगी है, जो लाइफ है लोगों की, वो एकदम एक फिल्म जैसी लगती है। और उनको एक कंपैरिजन मन में आ जाता है कि जैसे केवल उन्हीं की लाइफ है जो कहीं ना कहीं इंटरवल पे अटक गई है। तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है।

हमारे युवाओं पर आ जाता है और उसकी वजह से एक तरह का भय उनके मन में बन जाता है और वो अपनी असफलता को लेकर के हमेशा से डरे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करता है। तो दोस्तों आज इसी मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप सुनिए ये गाना और उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम बात कर रहे हैं उस बात के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, यानी हमारे फेलियर्स, यानी हमारी असफलताएं। जैसा हमने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, नई गाड़ी खरीदी है, फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, या फिर कोई नई बेहतरीन जॉब मिली है तो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम कहीं फेल हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, तो उसकी स्टोरी हम कभी किसी से शेयर नहीं करते। तो आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ। अभी हमने बात की कि असफलता का जो डर है, भय है, उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं। हमने बताया सामाजिक दबाव, और एक बहुत बड़ा कारण बन गया है सोशल मीडिया का दबाव, जो लोगों की सक्सेस स्टोरीज को देख करके हमारे युवाओं में आता है, और वो कहीं ना कहीं सफलता के सामने अपनी असफलता को अंत समझने लगते हैं कि बस यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी कभी आपकी असफलता ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनती है। आखिर इस फेलियर का मेंटल इफेक्ट क्या आता है, यदि हम साइकोलॉजिकल बात करें कि असफलता का जो मानसिक असर है वो क्या होता है। दोस्तों असफलता, फेलियर जो होती है, वो कभी भी केवल परिणाम नहीं बदलती, बल्कि हमें समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास जो होता है, वो भी हिल जाता है जब वो असफल होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, या उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो खुद को औरों से कम समझने लगते हैं। उनके मन में एक भाव आ जाता है कि आई एम द इन्फीरियर इन कंपेरिजन टू द अदर पर्सन, लाइक उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है या उसको वो कॉम्पिटेंट ज़्यादा है, मैं नहीं हूँ। साथ ही साथ वो अपने आप को एक इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने आप को उनसे दूर समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं एक सैडनेस वाली स्थिति, निराशा वाली स्थिति बन जाती है, जो लेटर ऑन एक तरह का डिप्रेशन का रूप भी ले लेती है। तो एक बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है कि इसका जो फेलियर है उसका एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इस तरह से आता है। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बताते हैं कि यदि आपको रेगुलर फेलियर्स मिलते हैं, या आप लगातार सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं बार बार, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी चिंता और आपका जो तनाव है, जो आपका स्ट्रेस है, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ख़ासकर यदि हम आजकल के युवाओं की बात करें, जेन जी की बात करें, तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो अभी हाल ही में हुआ नीट का एग्ज़ाम हो गया, या किसी आप सिविल सर्विसेज की बात करें, या किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो उनमें भी असफल होने का जो दबाव है वो हमारे आज के युवाओं पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हर साल लाखों छात्र, आपको आप सब जानते हैं, UPSC, JEE, नीट, बैंकिंग और बहुत तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां करते हैं, लेकिन क्योंकि हर जगह हर इस कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात हो या जॉब की बात हो, वहाँ पर जो सीटें हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। और ऐसी दशा में आप समझ सकते हैं कि यदि कहीं पर किसी पर्टिकुलर सीट की अवेलेबिलिटी थाउजेंड्स में है और आप लाखों लोग अगर अपीयर हो रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि मोस्ट ऑफ देम विल बी फेल, या वो सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वर लिमिटेड। तो ये बात हमें समझनी होती है कि जब बहुत सारे छात्र सफल नहीं हो पाते हैं तो उनको लगने लगता है कि बस यहाँ पर स्टोरी ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको एक होप अपने अंदर हमेशा से रखनी चाहिए, और यकीन मानिए कि जिन लोगों के मन में ये होप जिंदा रहती है वो अपने अगले प्रयास में सफल भी होते हैं। यानी समस्या असफलता नहीं है, बल्कि ये सोच है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी कोई कीमत नहीं है। यानी जब एक इन्फीरियरिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, आप ऐसा सोचने लगते हैं, तो दरअसल में ये जो समस्या है ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। अदरवाइज असफल होना कोई, इट्स ए काइंड ऑफ कि आपने केवल एक प्रयास किया जो नहीं हुआ सफल, हो सकता है आपका अगला प्रयास सफल हो जाए। तो यहीं से मानसिक दबाव शुरू होता है। और दोस्तों हमें ये समझना होगा कि जो परीक्षा है, जो कोई एग्ज़ाम है या एक इंटरव्यू है, ये एक हार आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करती है। ये बात हमारे युवाओं को और हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो इस प्रकार की असफलताओं को अपने दिल पर लगा लेते हैं या बहुत ज़्यादा इसकी वजह से दबाव महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं आज फेलियर की, यानी जैसा मैंने भी पहले भी कहा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं ऐसे टॉपिक पर जिस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बताता, वो होता है उसका फेलियर। तो हमने बात की कि असफलता का जो भय है उसके पीछे के फैक्टर क्या हैं, और दूसरी हमने बात की कि असफलता को कभी भी अपने दिल पर लगाना नहीं होता, बल्कि और बेटर प्रयास करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये जो असफलताएं हैं, जो आपके फेलियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं आपके मेंटल स्ट्रेस का यानी डिप्रेशन का।

की जो स्टोरी थी उनको भी समझना चाहिए, वो एक तरह का मोटिवेशन देती हैं। उसी में आपने आमतौर पर बात सुनी होगी कि जब हम बल्ब का जिसने आविष्कार किया था द फेमस थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली का बल्ब सबसे पहली बार बनाया था, उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए और वो सफल हो गए। तो जब किसी ने उनसे पूछा कि आखिर हम आमतौर पर बात करते हैं कि हमारी असफलता भी हमें कुछ सिखाती है, तो थॉमस एडिसन ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मुझे इस प्रकार के जो असफल प्रयोग थे उनसे एक बात सीखने को मिली है कि मुझे तकरीबन 1000 उन्होंने प्रयोग किए थे बल्ब बनाने के जो उनके असफल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 1000 वो तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में एक पॉजिटिविटी जो छिपी हुई है वो ये कि थॉमस एडिसन ने इतना समझा कि असफल होना भी अपने आप में आपको एक लर्निंग दे करके जाता है, सीख दे करके जाता है, और उसके बाद जब वो सफल हुए, उन्होंने बल्ब बनाया, तो दुनिया उनको जानती है आज बिजली के बल्ब के आविष्कारक के रूप में। साथ ही साथ हम बात करते हैं US प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की। उन्होंने बहुत सारे चुनाव हारे लेकिन फाइनली वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो उनका जो प्रयास थे, यदि वो उसको दिल पे लगा लेते असफलता को, तो वो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट नहीं बन पाते इतने बड़े राष्ट्र के। साथ ही साथ हम बात करें एक स्टार ऑफ द मिलेनियम, हम बॉलीवुड की अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, तो शायद हमारे श्रोताओं को नहीं पता हो इस बात का, या कुछ लोग जानते भी हो कि जब अमिताभ जी ने सबसे पहली बार अपनी आवाज़ का ऑडिशन दिया था रेडियो में, तो रेडियो ने उनको रिजेक्ट कर दिया था केवल उनकी आवाज़ की वजह से। और यकीन मानिए, आज वही बच्चन साहब की आवाज़ है जिसको बहुत सारी कंपनियां केवल अपने एडवर्टीजमेंट में या फिल्मों में, भी आपने अक्सर देखा होगा, वॉइस ओवर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो आप समझिए कितना बड़ा अंतर है कि एक आवाज़ को जिसको रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कभी, आज वो घर घर में सुनाई देती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। साथ ही साथ हम बात करते हैं हमारे देश के महान पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कलाम की बहुत इच्छा थी कि वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें, लेकिन वो किसी वजह से उसमें नहीं चयन हो पाया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर कलाम ने कभी भी इस बात को अपने दिल पर नहीं लगाया और आज पूरी दुनिया उनको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में जानती है, देश के, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानती है। तो एक बहुत बड़ी जो कारण उनकी सफलताओं में, जो जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे थॉमस एडिसन का या अब्राहम लिंकन का नाम लिया या बच्चन साहब का नाम लिया या फिर डॉक्टर कलाम का, ऐसी ही अनगिनत कहानियां दोस्तों हमारे जीवन में हमारे सामने होती हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं से हमेशा सीखा, आगे बढ़े और उन्होंने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। बहुत ज़्यादा जो उनका जुझारूपन था, उनका हार ना मानना एक बहुत बड़ा कारण बना उनके जीवन में सफलताओं के आने का। दोस्तों, सफल लोगों में और सामान्य लोगों में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये कि सफल लोग अपनी असफलता को कभी भी अंत नहीं मानते। यानी सक्सेस होने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना और नए जोश के साथ नए शुरुआत करना, फेलियर को भूल करके अपने सफल होने के प्रयासों की तरफ। यानी वो कोशिश करते हैं कि अपने फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखें। तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा सबक है जिसको हमारे युवाओं को, इवन मैं तो कहता हूँ हर किसी इंसान को अपने जीवन में समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि असफलता का कोई भय मन में ना रखें, बल्कि उसको एक रूटीन प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट करें और सफल होने के अपने प्रयास जो हैं, यानी हार ना मानना, अपने आप को हमेशा से सफलता की ओर प्रयासरत रहना चाहिए, अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी बात के बारे में जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, यानी किसी भी इंसान के फेलियर की या अनसक्सेसफुल होने के जो रीजंस हैं, उनका जो भय है, उसका डर, और उससे क्या मोटिवेशन हमें लेना चाहिए, खास करके हमारे युवाओं को। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, अभी हमने बात की, हमने आपको कुछ स्टोरीज बताई, चाहे थॉमस एडिसन की, अब्राहम लिंकन की, या डॉक्टर कलाम की हमने बात की, या बच्चन साहब की बात की। तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमें उनको सुनना और समझना चाहिए। हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे असफलता की जो कहानियां हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रेरणादायक होती हैं, और वो उनकी जो सफलता की जो स्टोरी है, उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, यदि हम उन कहानियों को समझें। आखिर असफलता जो है वो हमें सिखाती क्या है? दोस्तों, कई बार सफलता इंसान को आत्मसंतुष्ट बना देती है, यानी यदि आप सक्सेस हो गए तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट जो असफलता है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, यानी हमें कहीं ना कहीं एक थॉट दिमाग में आता है कि आखिर हम असफल हुए क्यों, क्योंकि यदि आप सफल हो गए तो आप सेटिस्फाई होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप असफल होते हैं तो आप थॉट करते हैं, मंथन करते हैं कि आखिर असफलता के कारण क्या थे। असफलता हमें सिखाती है धैर्य, यानी पेशेंस, एक बहुत बड़ा कहते हैं कि एक बाई प्रोडक्ट है अनसक्सेसफुल होने का या फेलियर का, कि वो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस सिखाती है। साथ ही साथ आप विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेस का फिर भी एक तरह का अहंकार किसी व्यक्ति के मन में पैदा हो जाता है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल होता है, फेलियर होता है, उसके साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर विनम्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो लोग कंपैरेटिवली थोड़े विनम्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सफल व्यक्ति हमेशा अहंकारी होते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखा गया है। साथ ही साथ असफलता जब किसी व्यक्ति के जीवन में होती है या वो फेल हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी आपको असफलता जो है वो और ज़्यादा मेहनत करना, परिश्रम करना भी सिखाती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपका सेल्फ एनालिसिस है, या आत्मविश्लेषण की हम बात करें, तो वो भी केवल असफलता होने पर ही हम कर पाते हैं, अदरवाइज हमें उसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। और एक जो सबसे बड़ी सीख, जो सबसे बड़ी ताकत एक व्यक्ति को अपने असफल होने से मिलती है, वो होती है उसको दोबारा उठ खड़े होने की ताकत। यानी यदि आप अपनी असफलता को दिल पर नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस बात की ताकत और आ जाती है कि आप दोबारा से अपने प्रयासों को जारी रख पाएं। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आपको ताकत मिलती है दोबारा से उठ खड़े होने की। यदि आप प्रयासों में सफल होना चाहते हैं तो आपको वो ताकत लगानी ही पड़ती है। साथ ही साथ हमें चीज़ समझना चाहिए कि जब चीज़ें आसान होती हैं, आसान होना यानी जब हम सफल हो जाते हैं, तो हम अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यदि हम असफल हो जाते हैं, जब हार मिल जाती है, तो इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, यानी हम एक तरह की आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में चले जाते हैं कि गलती कहाँ हुई थी, आखिर हमारी तैयारी में कमी क्या थी, या हमें जो अपना सफलता की ओर जो हमने इस काम को करने के जो प्रयास किए हैं, क्या उसको बदलने की ज़रूरत है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कभी भी स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स कमाते हैं, तो हम ज़्यादा अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई। क्योंकि यदि आपके पास मार्क्स अच्छे आ गए, तब आपको बेशक ये ध्यान ना रहे कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, लेकिन यदि आप कम मार्क्स आते हैं या तरह से आप फेल हो जाते हैं, तब आप ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, यानी आप अपने आप को एनालाइज बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और यहीं से आपकी जो ग्रोथ है उसकी स्टार्टिंग होती है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस भी हैं जो इनिशियली कभी भी फ्लॉप हुए, फेल हुए, लेकिन जब उन्होंने एनालाइज किया और उन तरीकों में सुधार किए, तो उन्होंने बेहतरीन और ऐतिहासिक सफलताएं भी पाई थी। बात साथ ही साथ हमने कई बार देखा होगा, आमतौर पर बॉलीवुड की मूवीज़ की भी बात करते हैं, कभी कभी होता है कि आपने एक पिक्चर देखी, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, लेकिन बाद में वही मूवीज़ बहुत तरह की क्लासिक बन जाती हैं, सुपरहिट हो जाती हैं। वो भी एक कारण होता है कि हम जब नज़रिया बदलते हैं या हम एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को, तो हम बेहतर प्रतिक्रिया दे पाते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यानी सीधी सी बात अगर हम बात करें, तो हर असफल शुरुआत कभी भी अंतिम परिणाम तय नहीं करती, यानी उसमें हमेशा से स्कोप रहता है कुछ बेहतर करने का, यानी नया तरीके से प्रयास जारी रखने का।
तो दोस्तों फिर हाजिर होते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं असफलता को लेकर, जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। हमारे जीवन में जिस प्रकार से सक्सेस महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है फेलियर्स। यानी कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। कभी कभी होता है कि हमारे 100 प्रयास असफल हुए, लेकिन जो 101वां प्रयास है उसी के अंदर छुपी होती है सफलता की चाबी। तो आमतौर पर हम कहते हैं कि यदि हम अपने प्रयासों को जारी रखें तो पता नहीं कौन सा हमारा अगला कदम हमें सफल बना दे। तो जो हार ना मानने वाला जज्बा है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। और हमें समझना चाहिए, खासकर हमारे युवाओं को, जेन जी को, कि जीवन में असफल होना कोई अपने आप में अंत नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आखिर असफलता में हमारी जो सोसाइटी है या हमारी जो फैमिली है उसका क्या रोल होना चाहिए, आज हम अभी हम चर्चा करते हैं इस बात के बारे में। दोस्तों, कई बार असफलता से ज़्यादा लोगों की बातें दर्द देती हैं। यानी हम देखते हैं कि आपको अपने फेलियर से एक बार को सेटिस्फेक्शन शायद मन में हो भी कि हम दोबारा प्रयास कर लेंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे, कुछ सुधार करेंगे, तो वो हम अपने आप को समझा लेते हैं। लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया है, जिस प्रकार से आपने आमतौर पर देखा होगा कि यदि किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो सीधा सीधा सुनने को मिल जाती है कि इतना पढ़कर भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती, या देखो फलां व्यक्ति का बेटा इतना बढ़िया सक्सेस कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं और ऐसी बातें अक्सर इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, अपनी यात्रा होती है, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। तो बहुत लोग जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ देर से, लेकिन हम उन बातों की परवाह किए बिना अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार के शब्दों में भी दे देते हैं। तो हमें परहेज करना चाहिए कि हम इस प्रकार का वातावरण ना बनाएं, ताकि उनको हौसला मिले अपने और प्रयासों को बेहतर करने का। आमतौर पर आपने देखा होगा कुछ लोग नौकरी में सफल होते हैं, बहुत अच्छी जॉब कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बेहतर करते हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में। तो यदि कोई व्यक्ति खेल में सफल है और पढ़ाई में असफल हो पा रहा है तो ये कोई असफलता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हर व्यक्ति की अपनी एक अपना क्षेत्र होता है, उसका विशेषता होती है, वो उसमें सफल होता है। यदि किसी और क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहा है तो उसको हम असफलता की कैटेगरी में नहीं रखें। साथ ही साथ ऐसे समय पे जब कभी भी फेलियर होती है तो उस टाइम पे जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, उनका समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है, या हम किसी बिजनेस की बात करें कि आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, या स्टडी की बात करें कि आपके पढ़ाई में मार्क्स कम आए, या आप कोई कंपटीशन एग्जाम को नहीं निकाल पाए, तो उस समय पे उस व्यक्ति को जिसने वो प्रयास किया और वो असफल हुआ, उसे तानों की नहीं बल्कि आपके बहुत ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि यदि हम ऐसा वातावरण समाज में बनाएंगे, परिवार में बनाएंगे, तो उन लोगों के जीवन में सफल होने के जो कारण है, उसकी जो संभावना है, वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी, ना कि उनको ताने देने से किसी प्रकार का कोई सकारात्मक परिवर्तन आना है। तो आप समझिए दोस्तों कि जब कभी भी आपके आसपास किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, चाहे वो किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं, या कोई बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है, या नौकरी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उस समय पर प्रयास कीजिए कि उसको सहानुभूति दें, उसको जोश दें, उसे समझाएं कि ये वाली असफलता किसी प्रकार का जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। हमें उसको बड़े खुले दिल से, खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए और एनालाइज करें कि आखिर गलती कहां पर हुई, ताकि हम और बेहतर प्रयास कर सकें। दोस्तों, कई बार एक सकारात्मक वाक्य, आपकी कही हुई जो एक पॉजिटिव लाइन है, वो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि बहुत सारे युवा, हमारे जो जेन जी के बच्चे हैं, वो आजकल ये समझ लेते हैं कि यदि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस नहीं मिली तो यहाँ पर आकर के सारी दुनिया ख़त्म या हमारी ज़िंदगी ख़त्म। तो ऐसे में कई बार वो बड़े गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की, पॉजिटिव वातावरण बनाने की, और साथ ही साथ अपने बच्चों को हम आमतौर पर सिखाते हैं कि यदि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपको ये हो जाएगा, यदि आप परीक्षा में ये कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, या आपको ये जॉब मिल जाती है तो इस तरह से बेहतर कुछ हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझाना चाहिए कि इन केस अगर आपको ये सब नहीं मिलता है तो भी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं। हमें विकल्पों पर भी ध्यान उतना ही दे देना चाहिए, ना कि केवल उस
अमुक क्षेत्र में मिली हुई असफलता को हम दिल पर लगा लें। तो इस प्रकार से हम उनको यदि मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, तो उनके जीवन में और क्षेत्रों में या उसी क्षेत्र में पुनः प्रयास करने पर सफल होने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आज हमने बात की असफलता की, यानी फेलियर्स जो सक्सेस की स्टोरीज के पीछे कहीं ना कहीं छिपा होता है, और हम आमतौर पर उसके बारे में कोई बात नहीं करते, जबकि उसके अंदर बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी छिपी हुई होती है। यदि हम उनको सबके सामने बताएं तो लोग और बेहतर तरीके से प्रयास करके नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, अपने आप में हिस्ट्री कायम कर सकते हैं। आज हमने बात की बहुत सारे पहलुओं की असफलता को लेकर के, लेकिन आखिरकार हार से जीत का रास्ता क्या है। जिस प्रकार से हमने बात की कि असफल होने के बाद जो सफलता की सीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक पहला पड़ाव है या पहला कदम है, उसमें असफल हो जाना वो हमें कभी भी दिल पर नहीं लगाना चाहिए असफलता को। दोस्तों, असफलता से सीखने की कला का मतलब है कि सबसे पहले आपको हार को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यदि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ना आप एनालाइज कर पाएंगे और ना ही आप उससे मिलने वाले मानसिक दबाव या मानसिक तनाव से उबर पाएंगे। यानी आपको खुद को हारने नहीं देना है किसी भी सूरत में। अगर असफलता मिले तो आपको करना क्या चाहिए? यदि हम फेलियर की बात करें तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि खुद को थोड़ा समय दें, यानी आप थोड़ा सा पॉज लें। आपको उस समय पर अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। साथ ही आप एनालाइज करें, आत्मविश्लेषण, जैसे हमने अभी आपसे पीछे भी चर्चा की, तो अपनी गलतियों को समझें कि आखिर उसको करने में हमसे कहाँ गलती हुई है, और उसको बड़े खुले दिल से स्वीकार भी करें। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़, दूसरों से तुलना ना करें। यानी आपको लगता है कि एक ही चीज़ पर आपने प्रयास किया, फलां व्यक्ति को जॉब मिल गई, वो सफल हो गया उस कंपटीशन एग्जाम में, मैं नहीं हुआ, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। केवल आपको फोकस करना चाहिए कि आखिर आपसे कहां पर कमी रह गई। साथ ही आपको बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से नई एक प्लानिंग करनी चाहिए, नई योजना बनानी चाहिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुनः प्रयास आरंभ कर देने चाहिए, यानी एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, हर सफल इंसान के पीछे संघर्ष की कहानी होती है, यानी बिना स्ट्रगल के किसी को कोई सफलता नहीं मिलती। यदि कोई ऐसा कहता भी है तो कहीं ना कहीं उसने सफल होने के बाद पीछे मुड़ करके अपने संघर्ष को कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया या देखा नहीं है। लेकिन हर सफल कहानी के पीछे एक संघर्ष जरूर छिपा होता है। कोई भी कभी रातों रात सफल नहीं बनता। और एक बहुत ही सुंदर हमारे जीवन की बात यदि हम देखते हैं कि जो पतंग होती है वो हमेशा हवा के खिलाफ उड़ती है, हवा के साथ नहीं। यानी मुश्किलें ही इंसान को ऊपर उठना सिखाती है। तो एक छोटी जो पतंग हवा में हम धागे से उड़ाते हैं, वो कितना बड़ा जीवन का हमें संदेश देकर के जाती है, ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है। और जीवन का एक सबसे बड़ा सच ही है। और जो एक बड़ी बात हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए फेलियर से, वो दोस्तों वो ये है कि असफलता आपको ख़त्म करने नहीं आती है। यानी वो कोई अंत नहीं है, बल्कि वो आपको मजबूत बनाने आती है। यानी जितना आप अगर असफल होकर के दोबारा से प्रयास करने के लिए उठते हैं आत्मविश्लेषण के साथ, अपनी गलतियों को समझने के साथ, तो आप यकीन मानिए कि आप एक बेहतर मजबूत स्थिति में एक नई शुरुआत करते हैं, तो आपको सफलता मिलनी भी निश्चित हो जाती है। और ये एक जो बात है, इसको यदि हम दूसरे तरीके से समझें कि हमें समझने की आवश्यकता ये भी है कि जो असफलता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का अंत नहीं है। बहुत सारे प्रयास अभी हमारे पास और बाकी होते हैं। यदि हम उन्हें अपनाते हैं तो हम सफल ज़रूर होंगे। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ऐसे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए जो जीवन में असफलता का कभी कभी मुंह देखते हैं या वो फेल हो जाते हैं, तो उनको उस समय पे इन छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है, जो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने समझने की कोशिश की कि आखिर असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। हारना गलत नहीं, पर हार कर रुक जाना गलत है। जीवन में गिरना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही असली ताकत है। दोस्तों, नई शुरुआत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी पावरफुल इंडिकेशन होती है कि आप एक बेहतर तरीके से अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कि जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही असली ताकत है। यानी अपनी असफलता को कभी भी दिल पर ना लगाएं, बल्कि पूरे जोश और जुनून के साथ अपने कदम बढ़ाएं, बेहतर मजबूती के साथ, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और इस सकारात्मक सोच के साथ अपने कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल को दीजिए इजाज़त।
और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे पर आपके साथ फिर तलाशेंगे, नई सोच के साथ नई दिशाएं। नमस्कार दोस्तों।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर लें ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल, जिसमें ना तो टीचर्स रोज आती थी और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था।

0: और उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालू, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है, तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री अकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गाँव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली। और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में। और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थे। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठते कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और ये है आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन जहां होती है बातें आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई, आपके अपने पर्यावरण और आप ही के अपने कम्युनिटी से जुड़ी हुई। आज कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में। जी हाँ, कार्यक्रम ग्रीन ग्रह, जिसको आपके बीच लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड व इको क्लब को। ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां पर हम बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन की, यानी जो कचरा प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, चाहे घर हो या ऑफिस, चाहे मेडिकल वेस्ट हो, किस तरीके से उस कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, इस पर बात करनी बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब ये कचरा सही तरीके से सेग्रीगेट नहीं किया जाता, सही तरीके से अलग अलग करके डिस्पोज नहीं किया जाता, तो ये बनता है प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण। और इसी प्रदूषण को हमने देखा है बढ़ते हुए लैंडफिल्स के रूप में। दिल्ली NCR के एरिया में ऐसी लैंडफिल्स देखना बहुत आम है। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने वाटर

0: सॉल्यूशन, ऑटोमेशन और पावर के क्षेत्र में अपने करियर में 25 सालों का अनुभव रखा है। एसोसिएट डायरेक्टर एमर्सन हैं, व साथ ही इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं, जिनमें से इको क्लब फरीदाबाद सोसाइटी, जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रही है और हमारे नॉलेज पार्टनर भी हैं, उसकी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी सचान, एमर्सन में हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत से कार्य कर रही हैं। डॉक्टर पल्लवी सचान हमारे साथ स्टूडियो में नहीं बल्कि फोन लाइन से जुड़ी हैं। ये दुबई में कार्यरत हैं और दुबई से इन्होंने हमसे फोन पर बात की और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर इन्होंने अपनी टिप्पणियां दी, अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ साझा की। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर पल्लवी सचान से।
1: तो पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
2: जी, थैंक यू सो मच। मैंने एक बार और पहले पार्टिसिपेट किया है, सो लुकिंग फॉरवर्ड कि आज का हमारा इंटरेक्शन कितना बेनिफिशियल होता।
1: जी पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप दुबई में हैं और फिर भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही हैं वाया फोन कॉल। ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज, एनवायरनमेंट की फील्ड में जानकारी देना, आज के समय में जिस तरीके की परेशानियों से हम घिरे हुए हैं, जितना ज्यादा प्रॉब्लम हमें फील हो रही है एनवायरनमेंट को लेकर, उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी हुई है और आप काम कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी दीक्षा जी, मैं एक्चुअली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ बाय हार्ट। मतलब मुझे हर चीज देख के ऐसे लगता है कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, और बचपन से बाय चांस की ऐसी ही अपब्रिंगिंग रही है।
1: जी
2: एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने रिसेंटली अपना PhD भी एनवायरमेंट पे ही कंप्लीट किया है कि ग्लोबली हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं और हम अपने देश में थोड़ा लैकिंग रह जाते हैं, तो उसको कैसे ब्रिजिंग करनी है। तो जी, मुझे जब जितना समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि एनवायरमेंट के लिए जो मैं खुद से कर सकूँ उतना तो मैं करूँ।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप काफी काम कर भी रही हैं। अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च करें और वो एनवायरमेंट की फील्ड है, तो ऑफकोर्स बहुत सा काम किया होगा। तो पल्लवी जी, सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक आम इंसान को जानकारी नहीं है, और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वगैरह सब पता होता है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में आज हम आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली है क्या और एनवायरमेंट कंजर्वेशन में ये कैसे हेल्प कर सकती है?
2: जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो सबको पता होना चाहिए।
1: जी
2: अभी तक हमने और हमारी इंडस्ट्री ने, किसी भी इंडस्ट्री ने ग्लोबली, हमने क्या किया कि टेक, मेक एंड डिस्पोज, ये एक नॉर्मल लीनियर इकोनॉमी बोला जाता है इसको, कि आपने कोई भी सामान लिया, हम इसको वैसे रिलेट कर सकते हैं कि हमने जमीन से कुछ निकाल लिया, ठीक है, वो हमें फ्री में मिल गया, या हमने पानी है, हमने उसको पंप लगा के निकाल लिया।
1: जी,
2: तो हमने टेक तो कर लिया, एनवायरनमेंट से ले लिया, अब हमें उससे क्या बनाना है वो हमने अपना प्रोसेस कर लिया, और उसके बाद जो जितना बचा हमने फिर फेंक दिया। तो वो हमारे दिमाग में, हमें ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट रिसोर्सेस से हम खोदते जाएंगे, जमीन से निकालते जाएंगे और हम यूज करते जाएंगे। बट ये एक कॉन्सेप्ट था जब शायद 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग रहे होंगे, और अभी ऐसी ऐसा टाइम नहीं है। तो सर्कुलर इकोनॉमी फोकस करता है कि आपने सामान लिया, आपने उसे यूज किया, और आपने उसको दूसरी इंडस्ट्री के लिए यूजेबल फॉर्मेट में थ्रो किया। मतलब हमें तो नहीं जरूरत है, लेकिन हम किसी को ऐसा ढूंढें जिसको उस चीज की जरूरत है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा बाय प्रोडक्ट है या हमारे प्रोसेस के लिए जो भी वेस्ट है, हमने उसको लिंकअप किया किसी दूसरे इंडस्ट्री से जो उसको एज ए इनपुट यूज कर सकता है। फिर उसने उसको एज ए इनपुट यूज किया, उसने अपना प्रोसेस चलाया, उसने अपना सामान बनाया जो उसका बाय प्रोडक्ट बचा। तो इसके पीछे थॉट ये है कि हम उस चीज को फेक दें एनवायरमेंट में, उसकी जगह हम उसको रीयूज रीयूज रीयूज, मतलब दूसरे इंडस्ट्री के लिए वो इनपुट है और मेरा वेस्ट है। तो अगर मुझे उसके 10 रुपए भी मिल रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, और दूसरी कंपनी को वो लगभग फ्री में मिल रहा है, या 10 रुपए में ही उसका इनपुट की कॉस्ट पड़ रही है, तो वो भी खुश है। तो कोशिश ये कि जो जितना हम रीयूज कर सकें, मल्टीपल प्रोसेसेस में चीजों को यूज कर सकें, तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती, क्योंकि अगर मेरा इनपुट, मेरी कॉस्ट प्राइस अगर 10 पैसे है तो मेरी सेल प्राइस भी 12-15 पैसे से ऊपर नहीं होगी, तो
1: परचेज
2: करूंगा उसके लिए भी वो सस्ता प्रोडक्ट होगा।
1: बिल्कुल।
2: तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को रेस करने में हमें सर्कुलर चीज की ध्यान रखना है कि मेरा आउटपुट या मेरा वेस्ट इज अ इनपुट दूसरी इंडस्ट्री के लिए, और अगर टुवर्ड द एंड अगर हमें उसे फेंकना ही पड़ रहा है, कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका है, तो उसको हम ऐसे फेंकेंगे कि जब वो वापस नेचर में जाएगा तो वो डिग्रेड होके, डीजेनरेट होके फिर से मिट्टी में मिल जाए।
1: बिल्कुल,
2: हमारे अर्थ को कोई नुकसान ना हो।
1: जी जी, जितना ज्यादा है चीजों को आप रीयूज करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हम नॉर्मली भारत में तो होता ही है, कपड़े अपने यूज किए और उसके बाद घर की कुछ चीजें बना ली या किसी और को दे दिया और किसी और ने उसका इस्तेमाल किया फिर किसी और को दे दिया, ये जनरली चलता रहता है। जी
2: जी,
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं और एनवायरमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन पल्लवी जी एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में एक कल्चर चल गया है यूज एंड थ्रो का। आप कोई भी सामान लेते हैं, यूज करते हैं, चाहे एक प्लास्टिक की पानी की बॉटल ही क्यों ना, और उसको फेंक देते हैं। रिसाइकलिंग के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि इसको भी रिसाइकल कराना चाहिए। सो यूज एंड थ्रो का जो कल्चर है उससे एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है।
2: जी, ये तो ये मतलब हम बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये एक वेस्टर्नाइज कल्चर है
1: जी।
2: कि हम वापस उसकी तरफ देखते ही नहीं है कि हम इसको वापस यूज कैसे कर सकते हैं। तो इससे एनवायरमेंट को बहुत ही नुकसान है, बहुत ज्यादा। अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लीनियर इकोनॉमी, कि हमने कोई चीज ली उसको यूज किया फेंक दी विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे कि हमारा एक ही प्लैनेट है, एक ही अर्थ है, तो उसको कितना नुकसान हो रहा होगा कि कोई सोचता ही नहीं है। तो इसे एनवायरमेंट में अब आजकल जैसे बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि साफ सुथरा हमारा हिमालयन रीजन है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ तक कम लोग जाते हैं, लेकिन जितने लोग जाते हैं वहाँ प्लास्टिक की बॉटल फेंक के आ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और वही हम ये सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कई बार हमारे जैसे कुछ फ्रेंड्स वगैरह घूमने गए तो एक बैरिकेटर के आगे आप अपनी प्लास्टिक की बॉटल भी नहीं लेके जा सकते। वो कहते हैं कि वहाँ पे कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं जी, वहाँ जाके वाटर फाउंटेन से आप पानी पी लीजिए, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल इज नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस। क्यों? क्योंकि वो एक जो ह्यूमन नेचर में बन गया ना कि हमने पानी पी लिया अब क्या करें, बॉटल हम कैरी करें तो हम फेंक दें। इसी जगह अगर हम अपनी स्टील की या कोई वैक्यूमाइज बॉटल लेके जाते हैं जिसपे हम शायद मैंने 1000 रुपीज खर्च किए हैं, तो मैं वो भारी होते हुए भी उसे वापस से बैग में रख लेंगे,
1: उसे फेंकेंगे नहीं क्योंकि वो हमारी है।
2: बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसमें हमारा पैसा लगा है। और अदरवाइज जो हम पेट बॉटल्स की बात करते हैं वो सिर्फ 10 रुपए का पानी मान के हम वो बॉटल की वैल्यू लेते ही नहीं है और हम फेंक देते हैं उसकी जगह। जैसे अभी बहुत जगहों पे हमारे इंडिया में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो गई है कि भाई अगर इसमें किसी कंपनी का नाम है तो भाई उसी की EPR है, दैट इज दी एंड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत जगहों पे लागू हो गए हैं। तो अगर मेरे नाम का, मेरे ब्रांड की कोई भी बॉटल कहीं पे भी कुछ भी वेस्ट पड़ा हुआ मिलेगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर होगी,
1: मैं उसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है या रिसाइकिल कैसे करना है, उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
2: उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो यूज एंड थ्रो का कल्चर होगा ये कुछ कम होगा। अगर हम प्लास्टिक की ही सिंपल बात करें, अगर हम कहीं से पानी लेने जा रहे हैं और वो शॉप वाला बोल दे कि आपके पास पुरानी बॉटल है क्या, तो मैं इसमें 2 रुपीज लेस कर दूंगा, तो हम फिर भी सोचेंगे कि अरे यार 10 की जगह 8 रुपए में मिल जाएगी या 20 की जगह 18 रुपीज में मिल जाएगी पानी का बॉटल, तो शायद मैं वो 2 रुपए के लिए अपनी बॉटल फिर भी कैरी करूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं एनवायरमेंट में फेंक दूँ। तो नुकसान तो बहुत है और ये जब तक माइंडसेट ही इवॉल्व नहीं होगा तब तक इस पे कुछ हो भी नहीं सकता। 4 लोग मिलके उठाते रहेंगे और 4000 लोग मिलके फेंकते रहेंगे
1: तो वो बैलेंस नहीं बन पाएगा चीजों का।
2: बिल्कुल नहीं बन पाएगा
1: जी। अब पल्लवी जी, हम बहुत जगह देखते हैं बच्चों को भी पढ़ाया जाता है दैट यू शुड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, लेकिन ये सारी चीजें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ किताबों में रह जाती है और आम इंसान इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता क्योंकि उसे तरीका ही नहीं पता। अब हम कपड़ों को भले ही एक दूसरे को दे देते हों, बर्तन भी दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी हम चीज़ें ना रिड्यूस कर पाते हैं ना रीयूज कर पाते हैं और रिसाइकल तक तो लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को एक आम इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी में यानी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता है, कैसे ला सकता है?
2: ये एक्चुअली चैलेंजिंग काम है
1: जी।
2: जैसे क्योंकि मैं बहुत अंदर से सोचती हूँ इन चीजों के बारे में, तो मेरी फैमिली भी उस तरीके से सोचने लगी इवेंचुअली। मतलब अगर मैं बताऊं कि पिछले 8 सालों से मैं एक जीरो वेस्ट एमिटर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले वेट एंड ड्राई वेस्ट को सोर्स सेग्रीगेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और मेरा कूड़ा वेट एंड ड्राई में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा?
1: बिल्कुल,
2: अगर
1: बिल्कुल।
2: वो मैं ही नहीं कर सकती, तो वो मेरा थॉट ऐसे होने की वजह से मेरी फैमिली भी बाउंड हो जाती है। फिर बच्चे इनिशियली पूछते थे अब इसको कहाँ फेंकूं, अब इसको क्या करूँ, वो सबको आदत पड़ गई क्योंकि विजिबली मेरे पास घर पे एकदम डिस्टिंग्विश्ड बिन्स रखे हुए हैं कि भाई आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपको मेहनत नहीं करनी, बस आप कुछ अगर कूड़ा फेंकने आए हो तो ये ड्राई वाला बिन है और ये वेट वाले का तो किसी और को काम ही नहीं, किचन वालों को ही काम है। तो वेट का कुछ काम हो रहा है, फील हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इनिशियली थोड़ा सा मैं उनको लीनियंसी दे देती थी कि आप वहीं से प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दो, आई विल मेक श्योर कि उसको कहाँ और क्या करना। तो वो करते करते सबको घर में वो आदत पड़ गई कि मैं वेट वेस्ट कंपोस्टिंग भी करती हूँ। सो हाफ वेस्ट इज ऑलरेडी गॉन, मैं उसका टेक केयर खुद ही कर लेती हूँ। मेरे पास ऑफकोर्स अगेन ये चीजें लिंक होती हैं जगह से, मेरे पास छत है मेरी, मैंने कंपोस्टर रखा हुआ है, वहां मैं कर लेती हूँ। बट आजकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इतना अग्रेसिव होकर ये कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबसे सबको प्रेशर आ रहा है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ये चीजें कर रही है। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है कि हम अपने ही घर में अगर हम वेट और ड्राई को सेपरेट कर सकें। रिडक्शन की बात यह है कि हम जितनी बार मार्केट जाते हैं तो हम हर बार अगर पॉली बैग में ही सिंगल यूज प्लास्टिक कप से बैन इन मार्केट, तो अगर हम मोबाइल और मोबाइल का साथ में हम कई बार पावर बैंक भी देखते हैं लोगों के हाथ में कि दो भारी भारी चीजें 100 ग्राम की कम से कम पकड़ी हुई, तो एक 10 ग्राम का बैग अगर हम अपने पॉकेट में रख लें तो वो जो रीयूज वाली बात है ना, वो अपने आप ही बहुत चीजें बचा देगी फिर। और रिसाइकल तो ऐसे है कि अगेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, आपकी कॉलोनी के बहुत सारे इनिशिएटिव होंगे क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस स्टेप पे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ पॉइंट ये होता है कि आपको थोड़ा सा ड्राई वेस्ट वगैरह होल्ड करना पड़ता है। जैसे आप समर्स के स्टार्ट में या विंटर्स के स्टार्ट में अपना वार्डरोब क्लीन अप करते हैं, आप सामान अपने कपड़े बांध के रख देते हैं कि भाई किसी को दे देंगे,
1: बिल्कुल
2: 15 दिन बाद हमने मंदिर जाना है या किसी आश्रम जाना है, हमारे साफ सुथरे कपड़े वहाँ दे आएंगे। अगर हम यही चीज अपने ड्राई वेस्ट के साथ करें कि भाई अमेजोन का फॉर एग्जाम्पल कि कार्टन आ गया है किसी सामान से, एक कार्टन को डेडिकेट कर दें और हर ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक, रैपर्स, गिफ्ट पैड और बहुत सारी चीजें आप बस उसमें स्टोर करते जाइए एक जगह, एक डेडिकेटेड स्पेस पे, तो वो बुरा भी नहीं दिखेगा और आप ड्राई वेस्ट को अलग अपने आप ही कर रहे हैं अपने सोर्स से। वेट वेस्ट कूड़ा वाला ले जाएगा, शायद कम्युनिटी कंपोस्टिंग हो रही होगी तो वहाँ वेट वेस्ट भी सही जगह लग जाएगा, वो प्योर मैन्योर बन जाएगा और हमारा सोयल विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो जस्ट इतना ही है कि थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी अवेयर करना होगा क्योंकि देयर इज नो प्लैनेट बी, बहुत लोग
1: एब्सोल्युटली हैं
2: और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने कहीं बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि वी डू नॉट इनहेरिट द एनवायरमेंट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स,
1: एब्सोल्युटली
2: सोना चांदी नहीं, वी बोरो इट फ्रॉम आवर नेक्स्ट जनरेशन। हम जितना बर्बाद कर देंगे हम अपने बच्चों के लिए, हम ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे, हम क्या छोड़ रहे हैं? उसमें क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेंगे? नहीं, वी वांट टू गिव देम अ ग्रीन एनवायरनमेंट। तो रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस इज समथिंग इन द माइंड आई थिंक। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली चीजें रिड्यूस हो सकती हैं। रीयूज आप सोचिए तो डेफिनेटली वो रीयूज भी हो सकता है और रिसाइकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. कई बार तो आप सिर्फ इनको रद्दी वालों को भी अगर बुला लो तो जितना सामान वो ले जाए एटलीस्ट
1: उतना तो दे सकते हैं एटलीस्ट. या
2: कि एटलीस्ट उतना तो नहीं जा रहा लैंडफिल में, यू विल मेक श्योर कि उतना लैंडफिल में नहीं जा रहा. सेल्फ अवेयरनेस एंड अ लिटिल डिसिप्लिन बहुत वंडर्स कर सकती है इस एरिया में.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो पल्लवी जी, प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्लास्टिक इतना सस्ता मिलता है आज की तारीख में भी. भारत में स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर किसी को टिफिन खरीदना है तो वो प्लास्टिक ले लेता है. मैं लोअर मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो बॉटल है तो प्लास्टिक ले लेते हैं. अपर मिडिल क्लास में फिर भी अवेयरनेस आई है थोड़ी सी, तो वो ग्लास क्योंकि अफोर्ड कर पाते हैं तो वो थोड़ी क्रॉकरी या ग्लास की बॉटल्स या ग्लास के जार्स और ये सारी चीजें ले लेते हैं. लेकिन अभी भी प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए कोई स्टेप खास नहीं उठाए जा रहे हैं.
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. जैसे पहले मुझे लगता है कि 20-30 साल पहले अगर हम देखें तो इंडिया में स्पेशली सब कुछ स्टील हुआ करता था या मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे. मतलब लोअर अपर में अगर हम डिवाइड करते हैं, या थोड़ा और वेल टू डू होंगे तो उनके पास तांबे पीतल की भी होती होंगी मटीरियल जो यूज करते थे. कि हम बचपन में गाँव जाते थे तो दादी वादी खाना बना के देते थे तो पीतल की बड़ी बड़ी थालियों में देते थे. कैन नॉट बी सीन एनी मोर. और स्टील वगैरह अब लोग यूज करना नहीं चाहते हैं
1: क्योंकि बहुत सुंदर नहीं लगता है.
2: हाँ, बहुत सुंदर भी नहीं लगता. एंड जैसे अगर हम अपने दिल्ली NCR की बात करें तो बेस्ट क्लास स्टील ला के भी आप रख दो तो वो बिकॉज ऑफ एयर वाटर एंड ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन वो चटक जाता है, वो फिर चार पेजेस हो जाती हैं एंड ऑल दैट. वो वेयर एंड टेयर भी बहुत ज्यादा होता है. तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं कम कैसे होगा, अगर हम उसके साथ में इंसेंटिव जोड़ दें. इंसेंटिव से मेरा मतलब है कि अगर प्लास्टिक का डब्बा भी 50 रुपीज का ही मिल रहा है और वहीं से स्टील भी 50 रुपीज का ही मिलेगा तो डेफिनेटली लोग स्टील की तरफ फिर से एक बार रीअट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे. और प्लास्टिक का अगर हम देखें बहुत डेकोरेटेड और ऐसे किट्स विट्स बना के देते हैं तो वो प्लास्टिक होते हुए भी कई बार वो स्टील से महंगा होता है बट लोग जाना चाहते हैं. तो अगेन यही है कि जैसे कुछ अवेयरनेस सेशंस करते हैं, कुछ रेगुलर इंसेंटिव करते हैं. गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे NGO इस पे काम कर रहे हैं और वो इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टील के बर्तन भी गिफ्ट करते हैं.
1: बिल्कुल.
2: अगर कोई ये करना चाहे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, डॉक्टर ओपी भिल्ला फाउंडेशन इको क्लब IT कॉलोनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब वो एकदम एक अप टू द मार्क कॉलोनी बनने ही वाली है. आई एम अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव. अब मैं यहाँ भी हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो जो रेगुलर ड्राई वेस्ट और प्लास्टिक को ला के रिसाइकल को हमारे यहाँ पे ड्राइव होती है तो जब वो ला के देते हैं तो वी हैव मल्टीपल गिफ्ट एंड द वेल्थ ऑफ उस पर बोलेंगे कि स्टील के सेट बन जाए किसी के. तो प्लेट ग्लास कटोरी चम्मच तो एक बार के उसमें अगर आपको वो मिलता है और अगर आप फिर नेक्स्ट टाइम जब रिसाइकलिंग के लिए कॉल आ रही है और आप तब फिर जा रहे हो तो यू गेट टू. और ऐसे करके अगर आपने 6 बार कर लिया कॉन्ट्रीब्यूट तो आपका पूरा एक सेट बन जाता है. एंड ये चीजें रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत मोटिवेटिंग है और ये आप अपनी नीड को एनकरेज कर सकते हो. आप और लोगों को अवेयर कर सकते हो कि भाई एक ही तो काम करना है, ड्राई वेस्ट को इकट्ठा करना. अगर आप रेगुलर दोगे तो यू विल गेट अवॉर्डेड फॉर दिस. जो कोई बहुत रेगुलर दे रहा है उसको और भी बहुत सारे टाइप के मोटिवेशन है, अवार्ड्स हैं. सोसाइटी में आपको एक अवार्ड मिलता है. तो इस तरीके से आप कुछ इंसेंटिव यूज कर सकते हैं और फिर लोगों के बीच में लोगों को जब अवार्ड मिलता है, जब आप उनके बारे में बोलते हो, वाहवाही करते हो तो दे फील गुड अबाउट इट. वो मोटिवेशन फैक्टर है जो हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सोसाइटीज में ताकि लोग खुद ही इसको रिड्यूस करना शुरू करें.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत अच्छे सजेशन है पल्लवी जी, और मुझे लगता है लोगों को फॉलो जरूर करने चाहिए, खासतौर पर से ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कोई मेजर इनिशिएटिव्स ऐसे चल रहे हैं जो हमें नहीं पता है या जिसका हम पार्ट बन सकते हैं?
2: वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीज़ों में बहुत अब टेकअप कर रही है, पिछले 5-7 सालों से तो बहुत बहुत चैनलाइज हैं चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे गवर्नमेंट का जेम पोर्टल हो गया, वहाँ पे आप कोई चीज़ें डायरेक्ट सेल कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट परचेजर आपका परचेज कर सकते हैं। तो बीच का जो भी कॉस्ट होती है या बीच की जो भी पैकेजिंग एंड मल्टीपल पैकेजिंग वो सब बचती हैं। और सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब भी यही है कि सबका बेनिफिट हो उसमें, तभी ही सबको इंटरेस्ट भी आएगा। अब जैसे एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जो आप लोग हम जब जाते हैं और हम पेट्रोल भरवाते हैं आजकल तो E10 E20 वगैरह वगैरह पेट्रोल है, तो वो उसमें कैसे है कि एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि गाँव में जैसे खेती हो गई या बहुत सारी घास है, उसको क्या फेंकना है, कहाँ फेंकना है, उसको क्या कैसे करना है, कितना जानवर खा लेगा, या काउडंग वगैरह है वो कितना और कैसे यूज होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू IOCL BPCL वगैरह इस टाइप के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो आपका ये सब चीजों को इंसेंटिव देके परचेज कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर कभी हमने रेड वेस्ट का कोई प्लांट देखा हो तो सिंपल सा है कि जब भी कोई कूड़ा सड़ता है बायोडिग्रेडेबल चीज है ना, तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है वो उसको स्लर बोलते हैं, वो खुद अपने आप में बहुत एक बायो एंजाइम होता है जिससे अगर सीधे वो सॉइल में पड़ता है तो भी एनहांस होती है सॉइल क्वालिटी, और अगर उसको हम मतलब वो ड्रेन भी हो जाता है तो सॉइल क्वालिटी तो एनहांस ही होगी, तो वो बहुत लोग परचेज भी करते हैं। तो वो एक बाय प्रोडक्ट है, कूड़े का बाय प्रोडक्ट जो परचेज होता है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं। फिर जो उसमें से गैस निकलती है, क्योंकि कोई चीज डिग्रेड होती है तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलेगा, जो पहले कोई भी पील आलू का छिलका वॉट एवर जब वो पपाया का छिलका एंड ऑल जो हम फेंक देते हैं जब वो सूखता है तो पहले उसका स्लर निकलेगा वो बायो एंजाइम है, फिर उसकी गैस निकलेगी वो बहुत सारी गैसेस का GHG है उसमें कॉम्बिनेशन, बट मेजरली मीथेन है जिसको प्रोसेस करके हम कुकिंग गैस में भी यूज करते हैं, और जो उसका थर्ड प्रोडक्ट निकलता है जब वो कूड़ा ड्राई हो जाएगा तो वो गोल्डन सॉइल है, मतलब मैन्योर है हमारा। तो तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन हम सब फेंक देते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये चीजों पे प्लांट लगा रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि आप कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं फेंक के अगर आप सेल कर देते हैं तो एक मोटिवेशन है कि आपने सेल किया आपको पैसे मिल गए, और वो प्लांट जहाँ रनिंग है उसको कंटिन्यूस इनपुट्स मिल रहे हैं तो बायोगैसेस बन रही हैं। अब बायोगैसेस जैसे मीथेन की हम बात करें तो ये सब चीजें कुकिंग गैस में जाती है, क्लियर कुकिंग फ्यूल है ये, और हम बहुत सारे और CBG प्लांट्स होते हैं जिसका जो गैस होती है वो इको बायोफ्यूल का भी काम करती है। तो जो E10 E20 पेट्रोल है उसमें 10% 20% शुगर केन की वेस्ट का बैकवेज वेस्ट का वो ऐड होता है, तो
1: जी जी।
2: हमारी चीजें थोड़ी चीपर हो जाती है, जो वेस्ट है वो परचेज कर रहे थे, तो मैं वेस्ट को जस्ट ऐसे कहीं भी लिटर नहीं करके मैं सेल कर
1: उसको सेल कर
2: रहा हूँ। तो जहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व हो जाता है
1: तो मोटिवेशन फैक्टर अपने आप आ जाता है,
2: मोटिवेशन फैक्टर आ जाता है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है क्या फेंके चलो वहाँ से हमको विल गेट 1000-10000 हमारी जो क्वांटिटी है सब मिलके देंगे तो हम लाखों बना लेंगे। सो वो एक मोनिटाइज हो रही है आपकी, आपका वेस्ट नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं एक मैन पावर की जरूरत नहीं लग रही तो वो पैसे वहां से बच रहे हैं, जो जिसके पास जो आपका ये वेस्ट परचेज कर रहा है वो अपने प्लांट में लगा रहा है उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उससे परचेज कर रहा है, वो जो भी गैस है जो बाय प्रोडक्ट है सब गवर्नमेंट परचेज कर रही है तो उनकी भी सेल हो रही है, तो मनी इज इन्वॉल्व हर जगह, एक वेस्ट दूसरे का इनपुट बन रहा है, इसमें पैसा मिल रहा है तो सब खुश है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जितना ये जितना हम ये शेयर कर पाएंगे जितना मोनेटाइज कर सकते हैं इन चीजों को उतना ही सब खुश रहेंगे और हमारी इकोनॉमी उतनी ही हाई जाएगी। और जो हमें कूड़ा और ये सब सेग्रीगेशन में और इसको क्लीनिंग में जितने कर्मचारी भी लगाते हैं, जितना क्लीनिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं सब जगह, वो सब भी नहीं होंगे। हमें अपने लोग कम डिप्लॉय करने पड़ेंगे सफाई करने के लिए, क्योंकि कूड़ा कोई डाल ही नहीं रहे,
1: दूसरे
2: का कूड़ा घर को सेफ कर लेंगे। तो नथिंग लाइक दैट, एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा एनवायरमेंट, हमारी
1: बिल्कुल बिल्कुल काफी चीजें बदल सकती हैं अगर इस चीज को प्लान के साथ किया जाए। एक और चीज है पल्लवी जी जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ई वेस्ट जो होता है लोगों के घर में काफी होता है, आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ ही हम सब चल रहे हैं, लेकिन डिस्कार्ड करना या फिर उसका रोल सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: ई वेस्ट का भी जो है ना अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन बहुत कम है लोगों में
1: जी।
2: और मुझे लगता है पोस्ट कोविड ऐसा हो गया है कि सबके पास हेडफोन्स हैं, थोड़ा नहीं चल रहा, फेंक दिया, फिर 100 रुपए के, 200 रुपए के, फिर मिल गए, फिर हार्डली भी जा रहा होता है कि अगर हर बार आप 5000 का हेडफोन खरीदोगे तो शायद आप 2-3 साल चला लोगे। तो मेरा टेक अवे फॉर दिस सेशन ऐसा रहेगा कि हम बहुत सारी चीज़ों में सर्कुलर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करके बहुत चीज़ों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, ताकि मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए और लोग सही जगह पे सही चीज़ें छोड़ना शुरू कर दें, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा पेनलाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपने सही जगह नहीं छोड़ी तो इस चीज़ का फाइन है। कहीं मनी इन्वॉल्व हो जाता है तो उससे हमारी इकोनॉमी
1: सीरियसनेस भी आ जाती है,
2: सीरियसनेस आ जाती है। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंट करने में बहुत फायदेमंद होगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बॉडीज बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं, इम्प्लीमेंट हो जाता है बट ऑन पेपर रह जाता है कई बार। तो हमारी भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर मैं खुद के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं तो बहुत सारी चीजें दूसरों की कम हो जाएंगी। तो
1: बिल्कुल
2: थैंक यू अगेन शिक्षा जी कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर सके।
1: जी बिल्कुल,
0: डॉक्टर पल्लवी सचान से बात करने के बाद बहुत सी चीजें हमें पता चली। रीयूज, रीसाइकल, रिड्यूस, ये चीज़ें, ये शब्द, ये बहुत आम है, लेकिन अगर इसका जेन्युइन तरीके से यानी सही रूप से इस्तेमाल किया जाए, इस चीज़ को अपनी जीवन का मूल मंत्र बना लिया जाए, तो ये धरती वापस कुछ सालों बाद थोड़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर ये कोशिश केवल हमारे और आपके करने से नहीं होगी, ये कोशिश सबको करनी होगी। पर हाँ, शुरुआत आप और हम मिलकर कर सकते हैं। कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब व पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड का हमारे नॉलेज पार्टनर के रूप में। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का। इस कार्यक्रम को आप हमारे इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया में कभी भी शेयर कर सकते हैं या सुन सकते हैं। बस आपको हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और ये कार्यक्रम आपको पॉडकास्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के ग्रीन ग्रह एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पर्यावरण का रखिए ख्याल।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन, और मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। और दोस्तों, हर शनिवार हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो जिंदगी के नए मायने सिखाता है, जो आपको हौसला देता है कि आप अगर जिंदगी में एक जंग हारते हैं तो दूसरा रास्ता आपके लिए बनता है, और चाहे ये रास्ता आप खुद बनाएं, चाहे ये रास्ता आपके लिए ऊपर वाला बनाए, पर ये रास्ता आपको आगे बढ़ने का एक हौसला देता है। कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार, जिस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गन इंडिया के साथ, और साथ ही डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन की ओर से भी इसमें कुछ खास जानकारियां सम्मिलित होती हैं। आज के इस एपिसोड में हम जीवन एक अनमोल उपहार में बात करने वाले हैं ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में। अब आप कहेंगे ट्रांसप्लांट गेम्स हैं क्या? तो दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं ऑर्गन इंडिया फाउंडेशन के एक्सपर्ट्स के साथ, और मुलाकात कराते हैं आपकी ऐसे लोगों से जिनके शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में से किसी न किसी ऑर्गन में या तो ट्रांसप्लांट हुआ है या वो एक डोनर की तरह दूसरे की जिंदगी बचाने आए हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम ऐसे उन लोगों से, या फिर कहेंगे ऐसे उन जाबाज लोगों से आपकी बातचीत करवाने वाले हैं जिन्होंने या तो किसी की जिंदगी बचाने में योगदान दिया है एक ऑर्गन डोनर बनके, या फिर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे पर ले गए हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के माध्यम से। और ये सभी प्रतिभागी, जी हाँ प्रतिभागी, जो विश्व ऑर्गन गेम्स में भाग लेने के लिए जाते हैं, ये सारे प्रतिभागी मानव रचना के कैंपस में आए और मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में रहकर इन्होंने विभिन्न शारीरिक, मानसिक, न्यूट्रिशन तौर पर अपनी विभिन्न विभिन्न वर्कशॉप्स में भाग लिया, और मानव रचना ने इनका सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और आगे आने वाले सालों में भी इनका सपोर्ट किया जा रहा है। इन्हें पूरी डाइट प्लान करके बताई जा रही है, इनकी अलग अलग एक्सरसाइज कराई जा रही हैं, इनके अलग अलग एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, यानी कि इनका पूरा चेकअप हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि 2027 अगस्त में बेल्जियम में होने वाले वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन ये प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत सी कोशिश चाहिए होती है, बहुत सी तैयारी चाहिए होती है, और वो ये तैयारी प्रतिभागी कर रहे हैं। इन सभी प्रतिभागियों से बात करने के लिए आरजे फहीम पहुंचे मानव रचना के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में, और इन्होंने विस्तार से बातें करी इन प्रतिभागियों से, इनके इंस्ट्रक्टर से, और जाना कि ऑर्गन इंडिया और मानव रचना किस तरीके से इस कार्य में इनका सपोर्ट कर रहा है। तो आइए सुनते हैं जीवन एक अनमोल उपहार में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जाने वाले इन प्रतिभागियों से इन्हीं के कुछ खास एक्सपीरियंसेस।
1: देखिए दोस्तों, कहते हैं अंग दान अपने आप में महादान है, लेकिन इस दान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उन सारी गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए, और जो आज हमारे साथ हैं इसी बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM में।
2: थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शर्मा है और मैं ऑर्गन इंडिया से यहाँ पर आया हूँ। और दोस्तों, जुलाई मंथ जो है वो पूरा ऑर्गन डोनेशन मंथ को मनाने के लिए, ऑर्गन डोनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा मंथ मनाया जाता है, और 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज हम एक अंगदान के बारे में आपको जागरूक करने आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स, भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में जो कि लोगों को अंगदान करने से रोकती हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि अगर इस जन्म में मैंने अपनी आंखें दान कर दी तो अगले जन्म में मुझे अपनी आंखें नहीं मिलेंगी, मैं बिना आंखों के पैदा हो जाऊंगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मनगढ़ंत है। हमारा तो उल्टा ये बोला जाता है कि जब हम कोई चीज़ दान करते हैं तो वो चीज़ भगवान हमें दुगनी देता है रिटर्न में। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें आंखें नहीं मिलेंगी या बिना आंखों के पैदा हो जाऊंगा? कई लोग बोलते हैं आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो आप किसी भी ऐसी फैमिली से मिलिए, क्योंकि आप लोग नहीं मिले, हम लोग मिले हैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज से जिन्होंने अपने प्रियजनों के अंग को दान किया है उनकी डेथ के बाद, अकस्मात मृत्यु के बाद। तो हमने उनसे ये पूछा कि आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ अधूरा रह गया हो, पूरी बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, या फिर कोई और वजह हो? तो उन सब ने एक ही चीज़ बोली कि डेथ वाली, दुख वाली चीज़ में इकलौती यही चीज़ है जो हमें सुकून देती है कि जाते जाते वो इतने सारे लोगों के अंदर अभी भी ज़िंदा है और इतने लोगों की हेल्प करके गया है। तो ये चीज़ भी गलत हो जाती है कि आत्मा को शांति नहीं मिलती। कई लोग बोलते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि अगर हमने अंगदान के लिए हाँ कह दिया तो मेरे शरीर में काट पीट कर दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। शरीर को काटा पीटा नहीं जाता, एक सिंगल कट लगाया जाता है चेस्ट पर, नेक टू नेवल, और वहीं से सारे अंगों को लिया जाता है। और वो भी कोई रैंडम डॉक्टर इस चीज़ को नहीं करता, बहुत ट्रेंड सर्जन इस चीज़ को करते हैं। तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से उसको सूचर करके और फैमिली को वो शरीर हैंडओवर कर दिया जाता है ताकि वो उसके अंतिम संस्कार कर सकें। तो ये सारे मिथ्स हैं जो जिनके कारण लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आते। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अंगदान के बारे में जानें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, शंका है, तो आपके पास गूगल है, आपके पास ऑर्गन इंडिया का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उसको आप संपर्क कर सकते हैं। आप रेडियो मानव रचना से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार इस चीज़ पर कार्यक्रम करते रहते हैं, तो आपको सही जानकारी मिलेगी और आपकी जो भी भ्रांति आपके मन में चल रही है, सवाल चल रहा है, उसका आपको आंसर मिलेगा। बट अंगदान को बढ़ाना एक बहुत ज़रूरी आज हिस्सा बन गया है, क्योंकि जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं उनसे अंग बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगे हैं, और आज हम भरोसा नहीं कर सकते कि कब किसका अंग ख़राब हो जाए। और कृत्रिम रूप से अभी डॉक्टर्स इन अंगों को नहीं बना पाए, तो इन अंगों को जब खराब हो जाता है तो एक ही इलाज है कि इन अंगों को बदल दिया जाए। और ये अंग बदलने के लिए हमें नया अंग एक दूसरे इंसान से ही मिलना है, वो भी दान के रूप में। आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, किसी से पैसों में नहीं ले सकते, क्योंकि अंगों को बेचना या खरीदना ये कानून के अंदर हमारे देश में जुर्म है।
1: शुक्रिया सौरभ। उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे कि जिन लोगों ने अपने अंगों को दान किया है, अपने फैमिली के ही किसी सदस्य को दिया है, अब अंग दान करने के बाद उनके अंदर क्या परिवर्तन आए, क्या चेंजेस आए, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सौरभ जी, जैसा कि यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं जिन्होंने अपने अंगदान दिए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन आप उनके बारे में बताइए, क्योंकि वो खेल के क्षेत्र में भी गए हैं।
2: बिल्कुल। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं। इनकी ही तरह एक और गेम है जो बहुत अनछुआ है और आप जिसके बारे में नहीं जानते, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, विश्व प्रत्यारोपण खेल। ऐसे ही जैसे स्पेशल पैरा ओलंपिक्स होते हैं, वैसे ही वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स भी उन लोगों के लिए गेम्स होते हैं जिन लोगों का किसी ना किसी अंग का प्रत्यारोपण हुआ है, या फिर किसी ने जिंदा रहते हुए अपने प्रियजन को, अपनी किडनी या लिवर को दान दिया है। ऐसे लोग, जनता में ये धारणा, गलत धारणा है कि जब किसी का ट्रांसप्लांट होता है, कोई अपने जिंदा रहते हुए किडनी या लिवर डोनेट करता है, तो वो खुद एक पेशेंट बन जाता है। तो इन लोगों को जवाब देने के लिए, इन लोगों को सही चीज़ बताने के लिए ही इन गेम्स का को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि दुनिया देख सके कि वो हम सब कुछ कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स पेशेंट्स नहीं है, ट्रांसप्लांट ऑर्गन डोनर्स पेशेंट्स नहीं है, वो हर वो काम कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। तो इसी चीज़ को बताने के लिए इन गेम्स का आयोजन होता है। और इस गेम्स में जब इंडिया से एथलीट्स जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम बहुत सारे मेडल्स भी जीत के लाते हैं। 2023 में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी इंडिया टीम, तो 35 पार्टिसिपेंट्स यहाँ से गए थे और 32 पार्टिसिपेंट्स गए थे और 35 मेडल्स जीत के लाए थे। 2025 में जर्मनी में ये गेम्स का आयोजन हुआ और 57 एथलीट्स इंडिया से गए, जो कि सब कोई ना कोई हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट था, कोई लिवर, कोई किडनी, इन सब ने मिल के 63 मेडल्स जीते इंडिया के लिए। और इस बार हर दो साल में इन गेम्स का आयोजन होता है, तो इस बार ये गेम्स होने वाले हैं बेल्जियम में 2027 में। तो इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इन पार्टिसिपेंट्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती है, इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग हो, चाहे न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग हो, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो, सभी का ट्रेनिंग असेसमेंट और ट्रेनिंग जो होती है वो मानव रचना यूनिवर्सिटी में एडवांस जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है वहाँ पर की जाती है। तो सभी एथलीट्स यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आए हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो आज हम उनसे कई एथलीट्स से बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, अच्छे या बुरे। आप उनकी ही जुबानी उनको सुनना और आप अंदाज़ा लगाना कि वो कितने फिट हैं और किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कितने वो पेशेंट दिखते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलवाना चाहूँगा कुछ रेसिपिएंट्स एंड डोनर्स से। जी,
1: बहुत शुक्रिया सौरभ। नमस्ते मैम।
3: नमस्ते।
1: क्या नाम है आपका?
3: मैं सुनैना सिंह हूँ और मैं ऑर्गन इंडिया की CEO हूँ।
1: ओके।
3: और आज हम यहाँ मानव रचना में हैं क्योंकि हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है ट्रांसप्लांट एथलीट्स के लिए।
1: जी।
3: तो यहाँ पे जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो सब है, और कुछ डोनर्स भी हैं जिन्होंने किसी को डोनेट किया है।
1: डोनर से बात करेंगे हम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि अगर हम अपना अंग दान कर देंगे तो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या जिसको हम डोनेट कर रहे हैं वो फिट नहीं रहेगा, ऐसी कुछ भ्रांतियाँ या गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
3: हाँ, तो इसीलिए ट्रांसप्लांट स्पॉट्स इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भ्रांतियाँ वो दूर कर देता है। तो जब ट्रांसप्लांट कोई भी गेम्स होती है तो आइडिया ये होता है कि लोग आएं, वो अपने आप को नॉर्मल समझे और वो ऐसे समझे कि हम किसी और की तरह, जैसे वो स्पोर्ट्स खेलते हम भी खेल सकते हैं, क्योंकि लोगों में डर होता है कि नो कि ट्रांसप्लांट के बाद घर में बैठ जाओ, बाहर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, यू नो यू आर स्टिल अ पेशेंट, सो दे मेक देम फील लाइक यू आर स्टिल अ पेशेंट, वेयर इज यू आर नॉट, यू आर ओके नाउ, यू हैव गॉट द ट्रांसप्लांट, हो चुका है आपका और आप बिल्कुल फिट हैं, आप बाहर जा सकते हैं। ऑफकोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, थोड़ा सा तो टेक केयर करना पड़ता है, आपको दवाइयाँ टाइम से खानी पड़ती है ये सब, बट आप इनफैक्ट दूसरों से ज़्यादा फिट हो सकते हो क्योंकि आप अपने आप को इतना संभाल के देख रहे हो। एंड सेम डोनर्स का भी होता है जो दूसरे लोगों को डोनेट करते हैं, वो उनका तो वैसे सर्जरी बस डोनेशन की होती है तो उनको दवाइयाँ भी नहीं लेनी होती, वो बिल्कुल फिट होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इतने सारे डोनर हैं जो इतना अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं और वो मैं तो समझती हूँ हम सबसे ज़्यादा फिट हैं क्योंकि दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, राइट, वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, वो टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं कि हाँ हम तो ठीक ही हैं, कुछ नहीं होगा। सो दीज पीपल दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे हैव गॉट द ट्रांसप्लांट, दे हैव डोनेटेड द ऑर्गन एंड दे आर फाइन। एंड द होल पॉइंट की ये गेम्स का पूरा ये रीज़न ही है करने का कि लोगों को समझाने के लिए दैट ट्रांसप्लांट के बाद अच्छी खासी लाइफ होती है, यू आर फिट एज अ ट्रांसप्लांट रिसिपियंट, यू आर फिट एज अ डोनर हु हैज डोनेटेड टू समवन, यू आर एब्सोल्युटली फिट।
1: थैंक यू सो मच मैम।
3: थैंक यू।
1: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम मानव चौधरी है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ।
1: मानव चौधरी?
4: हाँ।
1: राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं?
4: जयपुर में।
1: जयपुर के रहने वाले हैं? हाँ। क्या बात है, पिंक सिटी के रहने वाले हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको किडनी की जरूरत पड़ी थी, आपकी किडनी खराब थी?
4: नहीं, मतलब छोटी हो गई, छोटी रह गई थी बचपन से।
1: छोटी रह गई थी?
4: विकसित नहीं हुई वो।
1: कब से विकसित नहीं हुई थी?
4: डेढ़ साल से ही।
1: डेढ़ साल से विकसित ही नहीं हुई?
4: हाँ,
1: थी
4: मतलब वो अभी डेढ़ साल जितनी है।
1: तो जब वो विकसित नहीं हुई थी, उसके विकसित ना होने पे आपको क्या समस्या आ रही थी?
4: उल्टी होना, मतलब 13 साल की उम्र में समस्या आई मेरे।
1: अच्छा।
4: नौकनी प्रॉब्लम हो गई और उल्टी होना और रोटी अच्छी ना लगना ये सब। फिर धीरे धीरे डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ चली एक दो साल, फिर जाँच करने पर पता चला कि किडनी खराब है, मतलब छोटी है।
1: ठीक है।
4: तो फिर डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करना पड़ेगा। फिर हमारे उधर एक पहले ट्रांसप्लांट हो चुका है 13 साल पुराना, तो उन्होंने बोला अहमदाबाद से ट्रांसप्लांट करवाओ।
1: अच्छा।
4: वहाँ पे नरियाद मूलजी भाई पटेल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे गया मैं, 2-3 महीने वहाँ पे डायलिसिस चली, फिर वो वहाँ पे 8 नवंबर 2024 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ।
1: आपको किडनी किसने दी?
4: मेरी दादी ने किडनी दी, वो 60 साल की है।
1: अभी दादी हैं?
4: दादी है।
1: उनको कोई समस्या तो नहीं होती?
4: बिल्कुल स्वस्थ है वो।
1: आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं?
4: मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
1: अच्छा, गेम के बारे में बताइए थोड़ा सा।
4: मैं अभी पेटांग गेम खेलता हूँ।
1: हाँ।
4: और रनिंग भी करता हूँ।
1: अच्छा।
4: हाँ।
1: कोई प्रॉब्लम होती?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं होती।
1: अरे वाह, पूरी तरह से फिट?
4: पूरी तरह से फिट।
1: गुड जी।
4: और अभी मैं थाईलैंड खेलने गया था, वहाँ से। अच्छा,
1: कैसा खेला वहाँ पर?
4: अच्छा खेला।
1: कौन सा गेम था?
4: पेटांग गेम था।
1: अच्छा अच्छा। क्या नाम है सर आपका?
5: सर मेरा नाम बादराम है और मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का निवासी हूँ।
1: जी
5: जी। और ये जो हम यहाँ आने का जो मेन रीजन है वो सर, हम ये इनके 2020 में जो है किडनी खराब हो गई थी।
1: आपकी कौन है?
5: ये मेरी वाइफ है सर, इनका अच्छा। नाम मनोरी देवी है।
1: ओके।
5: ठीक है। और 2020 में सर डायग्नोज हुआ था कि इनकी किडनी खराब हो गई है।
1: अच्छा।
5: और फिर क्या है कि धीरे इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। और फिर डायलिसिस पे आ गए। 7-8 महीने डायलिसिस हुआ था सर। उसके बाद फिर डॉक्टर से राय वगैरह ली तो उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा। अभी 1-4 बजे ट्रांसप्लांट करवा लो, क्योंकि डायलिसिस में सर काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेशन आने लग गए थे, बीपी लो हो जाना और इस तरीके के कुछ मतलब ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन होने लग गया था। फिर मैंने राय ली तो उन्होंने कहा कि एक डोनर चाहिए किडनी देने के लिए। तो सर मैंने कहा वाइफ मेरी है तो मैं किसके किसकी तरफ उंगली करूं?
1: बिल्कुल सही।
5: तो मैंने कहा मैं देखता हूँ, आप मेरी रिपोर्ट करिए। तो सर ये कुछ नसीब से क्या हुआ कि हमारा दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम था, तो इसलिए वो डॉक्टर ने कहा कि मेन रीजन तो यही होता है, पहले ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। फिर बाकी की रिपोर्ट्स बाद की बात है। रिपोर्ट्स हो गई तो सारा कुछ HLMH वगैरह सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़िया था और ट्रांसप्लांट हो गया 4 अक्टूबर 2024 को और अब जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे थॉट्स होते हैं घर पे रहते हैं तो अब बाहर से आने लगते हैं थॉट्स कि अब ट्रांसप्लांट हुआ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके की बातें। तो जब मैं ड्यूटी से आता तो घर पे वाइफ जो ऐसे निराश मिलती, मैं कहा क्या बात है भाई, निराश क्यों हो, क्या हो गया? तो बाहर से थॉट आते हैं, इधर से उधर से कोई आस पड़ोस वाले कह देते हैं, इसका कोई पता नहीं है ज्यादा,
1: अच्छा
5: कितने की चलेगी कितने की नहीं चलेगी, थॉट्स होते हैं, भरम होते हैं सर ये। तो मैंने फिर एक इधर से उधर से कोई पता लगा कि ट्रांसप्लांट गेम्स भी होते हैं। तो हम जो है भाई फर्स्ट टाइम जो है मुंबई गए थे, नेशनल गेम्स होते हैं मुंबई में, तो इधर हमारे कुछ जो जानकार है पूर्व जो पहले जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वहाँ पे, उनसे पता लगा बानी जी और हर्ष जी से, तो हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, मैडम भी खुश थी और मैडम को भी बहुत अच्छा लगा आके, बिल्कुल हम खेले थे सभी गेम हम खेले थे, हालांकि कोई मेडल तो नहीं जीत पाए लेकिन जो खुशी मिली वो सबसे ज़्यादा थी।
1: ट्रांसप्लांट के बाद कुछ शरीर में बदलाव आपको महसूस हुए?
5: सब थोड़े बहुत तो देखो चलते रहते हैं, वो तो नॉर्मल के भी चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी हम कुछ ना कर पाए,
1: अच्छा
5: कुछ भी ना कर पाए ऐसा हमने मतलब ये मतलब आचरण की भी तैयारी कर रहे हैं मैडम, ठीक है, और अपना घर का सारा काम भी कर रहे हैं, जो भी मतलब हाउस वाइफ करती है वो सभी काम नॉर्मल जो नॉर्मल इंसान कर रहे हैं वो सारा काम मैडम कर रही है।
1: 2 साल हो गए।
5: हाँ जी बिल्कुल जी।
1: लेकिन जब आप खेलते हैं तो खेलते समय कोई प्रॉब्लम?
5: सर खेलते समय थोड़ा सा इंजरी का ध्यान रखना होता है
1: जी,
5: बेबी को ज़्यादा मेजर इंजरी ना हो, छोटी मोटी इंजरी तो ठीक हो जाती है, कोई वो इशू नहीं है, लेकिन किडनी पे कोई ज़्यादा दबाव ना पड़े, जो नया ग्राफ लगा है उस पर कोई दबाव ना पड़े, इस तरीके का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है सर, और जो पानी वानी का और सारा जो अपना मतलब थोड़ा सा गर्मी से बचाव और थोड़ा सा मतलब क्या है कि मेजर इंजरी से ध्यान रखें और अपने खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
1: जी चलिए तो आपकी पत्नी जी से भी बात कर लेते हैं।
5: जी
1: क्या नाम है आपका?
6: सर मेरा नाम मनोहरी देवी है।
1: मनोरी देवी?
6: हाँ जी
1: जी।
6: और मैं राजस्थान के गंगानगर जिले से सर।
1: तो किडनी आपको मिल गई है, आपके पति देव ने दे दी है।
6: हाँ जी
1: बहुत बड़ा दान होता है ये।
6: हाँ जी
1: कैसा महसूस करती है?
6: बहुत अच्छा महसूस करती हूँ सर। पहले तो ऐसे लग रहा था, इन्होंने कहा मैं दे दूंगा तो मेरे को बहुत ऐसे तकलीफ हो रही थी भी, लोग कहते हैं भी एक किडनी पे नहीं काम चलेगा तो आप एक दोनों एक जैसे हो जाओगे, बच्चा भी छोटा है तो क्या होगा आपके, फिर मैं तो अंदर अंदर से रोती रहती थी, मैं कि ये देने के लिए कह रहे हैं मैं दूंगा इनको मना किया मत दो आप, अपने दोनों एक जैसे हो जाएंगे और बच्चा भी छोटा है, तो फिर उन्होंने कहते नहीं मैं ही दूंगा मेरे को ही देना है, फिर इन्होंने दे दी, तो अब तो ऐसे लगता है बिल्कुल सही है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है सर।
1: घर में काम काज सब नॉर्मल करते हैं?
6: सर मैं 5 महीने के बाद ही लग गई थी घर का काम करना, मेरे को ऐसे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है, 5 महीने मुश्किल से बिताए थे, उसके बाद मैं घर का काम सारा संभालने लगी और अब हम अलग रहते हैं सर।
7: मेरा नाम जसकरण सिंह है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा मैंने वॉलेंट्री किडनी डोनर हूँ, मैंने अपने वाइफ को किडनी डोन किया था 9 फरवरी 2022 में, ठीक है। आफ्टर किडनी डोनिंग हमें पता लगा कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में गए थे लास्ट ईयर 2025 में, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जर्मनी में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे मेरे 4 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर और बेस्ट डोनर एथलीट इन द वर्ल्ड वो मुझे टारगेट मेडल मिला है वहाँ पे। आफ्टर किडनी डोनिंग मुझे ऐसा फील होता है कि नॉट इवन अ सिंगल, मतलब जैसे कि हम अपना लाइफ में एक अकेला ये अचीवमेंट नहीं है कि आप आफ्टर किडनी डोन आप ऑर्गन डोनेशन के बाद भी पूरा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी आप नॉर्मल जैसे हेल्दी मैन है वैसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
8: हेलो मेरा नाम निर्मलजीत कौर है और मैं मेरा 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे हस्बैंड जसकरण सिंह जो कि एक वेटनरी इंस्पेक्टर हैं उन्होंने मुझे किडनी डोनेट की है और जैसे ही मुझे पता चला था कि मेरी किडनी की प्रॉब्लम आई है, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल हेल्दी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट एक रूटीन टेस्ट में पता चला था कि मेरी किडनीज की वैल्यू है वो बढ़ी हुई है, अदरवाइज मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आगे आए कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम आई है तो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके कि डॉक्टर ने बोला है ट्रांसप्लांट के लिए, तो कोई फैमिली मेंबर हो जो डोनेट कर सकते हैं तो मेरे हस्बैंड ने ही डिसीज़न लिया और अपनी एक किडनी मुझे दी। और मतलब इस सोशल मीथ को कि जैसे कि जेंट्स हैं वो लेडीज़ को नहीं दे सकते, जनरली हम देखते हैं तो ज़्यादा फीमेल ही देती हैं मेल को, बट इन्होंने उन सब चीज़ों को ओवरकम करके ये डिसीज़न लिया और ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। और इनके इस डिसीज़न में इनकी फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया, मुझे भी और इनको भी। और आफ्टर किडनी डोनेशन ये भी बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ट्रांसप्लांट के बाद। और हम दोनों ही जर्मनी 2025 में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में पार्टिसिपेट करके आए हैं और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं।
1: कैसा अनुभव रहा आपका?
8: वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है आपका, बिकॉज वहाँ पे आप इतने सारे लोगों से, अपनी एक पूरी कम्युनिटी से मिलते हैं और वो लोग कितने ओपन माइंडेड है इस चीज़ के ऊपर। नहीं तो हम जनरली इंडिया में ये चीज़ देखते हैं कि अगर आप

0: कर रहे हैं।
1: चलिए, हम भी आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: यस, ओके। मेरा नाम लॉरेंस नाडर है। मैं एक किडनी डोनर हूँ। मैंने मेरे भाई को किडनी डोनेट किया है। प्रोफेशनली मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, जो स्कूल में स्पोर्ट्स सिखाता हूँ। अभी एक साल हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का डोनेट करके।
1: आपने बड़े भाई को किया है डोनेट?
2: छोटे भाई को। हाँ।
1: कितना समय हो गया?
2: 1 ईयर हो गया कंप्लीट अभी।
1: तो आपने डोनेट किया है तो आपको कोई परेशानी या कोई ऐसा
2: नहीं?
1: समस्या?
2: ऐसे कुछ नहीं है। मेरे को वही, हाँ। जब मैं डोनेट कर रहा था तब मुझे बहुत लोग ने बोला था, क्योंकि मेरा बेसिक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, तो मुझे बहुत लोग ने बोला था कि तेरा बेसिक ये स्पोर्ट्स है, तो तू अगर डोनेट करेगा तो तेरे बाद में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या कुछ हो सकता है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ नहीं होता है। मैंने सिर्फ 1 मंथ का कंप्लीट रेस्ट लिया था इसके बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। उसके बाद 1 मंथ के बाद मैंने नॉर्मल वर्क चालू कर दिया था, जहाँ पर मैं बच्चे लोग का क्लास लेता था। वहाँ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करता था, बेसिक एक्टिविटीज़ बच्चे लोग को करता था। अब 6 मंथ्स के बाद मैंने ऑलमोस्ट सब स्टार्ट किया है। और अभी मैंने रिसेंटली ये मास्टर गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया है और वहाँ पर 3 मेडल्स भी मिले।
1: अरे वाह, क्या बात।
3: मेरा नाम रॉबिन स्नाइडर है। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट मई 2025 को हुआ था। मुझे मेरा किडनी मेरे भाई ने मुझे दिया था। थोड़ा मेरा ये सेकंड ट्रांसप्लांट है। फर्स्ट ट्रांसप्लांट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ था, फिर बाद में स्वैप ट्रांसप्लांट के थ्रू मेरा किडनी ट्रांसप्लांट मई 2025 में हुआ। अभी 1 साल के ऊपर हो गया। अभी मैं एकदम फिट एंड फाइन है। जिम एक्टिविटी सब चालू है मेरा, एकदम
1: सब नॉर्मल है।
3: हाँ, सब नॉर्मल है मेरा।
1: अच्छा, गेम्स के बारे में?
3: गेम्स के बारे में अभी मैंने दिसंबर तक मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने वर्कआउट, बैडमिंटन, रनिंग ये सब चालू किया मैंने अभी।
1: अब आप कैसा महसूस करते हैं?
3: अभी तो मैं एकदम फिट, नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ एकदम।
1: अच्छा,
3: एकदम नॉर्मल, एकदम फिट।
1: खेलते समय किसी तरह की
3: नहीं? कुछ नहीं। रोज सुबह उठता हूँ, रोज आधा घंटा भागता हूँ, फिर आधा घंटा वर्कआउट करता हूँ, एकदम नॉर्मल जैसे लगता है। कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं है कुछ।
1: ये डोनेट के बारे में बहुत सारे लोगों में कुछ भ्रांतियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं?
3: हाँ, मेरे साथ जो डायलिसिस में थे, ऐसे बहुत लोग डर रहे थे क्या इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा। इनको क्या डाउट होता है क्या 90% ये सक्सेस होता है, 10% में कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे बाद मैंने बहुत लोग से बात की जो मेरे डायलिसिस में थे, उनका तो मैंने 2 जन का तो ट्रांसप्लांट हो गया मेरे पास। मैंने उनको समझाया तो अभी 1 जन का ऑलरेडी प्रोसेस चालू है उनके लिए। तो लोग मेरे को देख के, मैं फोटो वोटो डालता था, देख के वो लोग भी थोड़ा, उनको भी इंस्पिरेशन मिला, फिर उन्होंने भी अपना, हाँ, तो उन्होंने अपना पेपर वर्क, 2 का तो हो गया अभी, 1 का पेपर वर्क चालू है। हाँ, तो मैं सबको यही बोलता, डायलिसिस में तो मैंने जाके खुद से सबको बोला था जो मेरे साथ थे, मेरे को भी अच्छा लगता है किसको देख के अभी किनके पास डोनर है किन। लेकिन कार्डियोवर में भी ऐसा नहीं क्या नाम नहीं आता, आ जाता है 3-4 साल में ना।
1: हाँ, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
3: हाँ,
1: थैंक यू।
4: नमस्कार, मेरा नाम रामदेव सिंह है और मैं सीकर जिले, राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ और वर्तमान में इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मैं बेसिकली किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 2012 में हुआ था। उसके बाद में मैंने स्पोर्ट्स से ट्रेनिंग शुरू किया, ऑर्गन इंडिया ने मुझे हेल्प किया और 2025 में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मैंने 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। और इसी उपलब्धि के कारण मोदी जी ने अपने मन की बात के 131वें एपिसोड में मेरा नाम लिया था, मेरी तारीफ की थी, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद में मैं अच्छे से खेलता हूँ, अपने खेतीबाड़ी का काम करता हूँ और रेगुलर ड्यूटी पे भी जाता हूँ।
5: पहले तो सभी को मेरी नमस्कार, मेरा नाम सतवीर सिंह है और मैं हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 21 मार्च 2018 को हुआ था और मैंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम जर्मनी में 3 मेडल, 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और मुझे ऑर्गन इंडिया ने सपोर्ट किया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ और मैं मानोरचना निष्ठी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमें हर साल में 2-3 बार हमें ट्रेनिंग देते हैं और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। और मैं हमारे खेतीबाड़ी का काम है और सारी खेतीबाड़ी में ट्रांसप्लांट के बाद भी मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। तो सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंगदान भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अंगदान एक महादान है, ताकि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों का जीवन बन सकता है अंगदान के माध्यम से। धन्यवाद।
6: मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति है और मैं बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है 18 फरवरी 2018 को। और मैं 2018 में जब ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद से स्पोर्ट्स को दोबारा ज्वाइन करना किया मैंने और बहुत लोगों से मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन मिली कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं। तो पहले नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में पार्टिसिपेट किया और फिर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए सर्च किया। तो जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स था 2000

0: 23 में ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके लिए मैं टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह के लिए सोच रहा था, तो मुझे पता चला कि ऑर्गन इंडिया के थ्रू मानव रचना यूनिवर्सिटी में एक कैंप लग रहा है, और जिसमें कि मानव रचना यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सपोर्ट किया और हमारी हेल्प भी की, फिजिकल ट्रेनिंग से लेके मेंटली ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें सब कुछ। और हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मैंने तो अपना ब्रॉन्ज मेडल लिया, और ऐसे ही लास्ट ईयर 2025 में भी मैंने मानव रचना यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग के बाद वैसे ही और काफ़ी मोटिवेशन भी था, दो मेडल के सोचे गए थे पर एक ही मेडल मिला 2025 में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। और अभी मैं 2027 में दोबारा जा रहा हूँ, और इस बार तो डेफिनेटली मैं नंबर ऑफ मेडल्स भी बढ़ाऊँ, मतलब चेंज करूँगा और कलर भी चेंज करूँगा अपने मेडल का। थैंक यू सो मच।
1: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज डॉक्टर सुमित अवरा, आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। सो दिस इज द fifth year that we are working with Organ India and all transplant athletes who have donated their organs or who have received the organs. They perform at an international podium, and last year also they have received so many medals. We came to a point like we understand now ki, they require good biomechanical assessment, which athletes who are already performing at a national international level they are receiving, whereas they have not received till now. So we came up with the initiative with Organ India to take them to that high podium and receive more medals for the Indian, and they also feel very good about it ki after the organ donation also there is life.
2: तो दोस्तों, बहुत सी बातें हमने जानी, और वाकई इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कई बार हिम्मत हार जाते हैं, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि वहाँ उस कोने कहीं कोई इंतजार कर रहा है आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनने के लिए, एक ऑर्गन डोनर के रूप में। और अगर आप भी एक ऑर्गन डोनर हैं या फिर इस पूरे प्रोसेस के बारे में कुछ खास जानकारी रखते हैं, तो अपने विचार और अपनी जानकारियां हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नंबर हमारा बहुत आसान है, 8010781078। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार को आप हमारे इंटरनेट रेडियो के माध्यम से हमारी ऐप डाउनलोड करके, रेडियो मानव रचना, जो कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ये सारी जानकारी दोबारा भी सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने किसी साथी के साथ, ताकि जिंदगी वाकई एक अनमोल उपहार महसूस हो सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
4: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों की मेहनत और हिम्मत, जिन लोगों ने सफलता को बड़े ही लगन से हासिल किया है और एक मिसाल कायम करती है। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, जिनकी आवाज ने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ के लोक कला से रूबरू कराया है। जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है पंडवानी की महान कलाकार तेजन बाई। जी हाँ, तेजन बाई जी की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी की शुरुआत किसी बड़े शहर या फिर बड़े मंच से नहीं होती है, बल्कि कई बार ना एक छोटे से गांव से निकली हुई आवाज ही दुनिया भर में गूंज जाती है। तेजन बाई जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के एक साधारण से परिवार में जन्मी तेजन बाई बचपन से ही कहानियों और लोकगीतों के बीच पली बड़ी। उनके घर में धन दौलत भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब तेजन बाई महाभारत की कहानियों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। जी हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत के प्रसंग अपने नाना से सुने, और वहीं से उनके अंदर पंडवानी के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ। पंडवानी रानी महाभारत की कहानियों को गीत, संगीत और अभिनय के माध्यम से सुनाने की एक अनोखी लोक कला। छोटी सी उम्र में ही तेजन बाई को एहसास हो गया था कि उनका रिश्ता इस कला से सिर्फ शौक के लिए नहीं है बल्कि जिंदगी भर के सफर के लिए है। लेकिन दोस्तों, सपने देखना एक बात है और उन्हें पूरा करना दूसरी। उस दौर में पनवाड़ी की दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, समाज की सोच भी कुछ अलग थी, लेकिन तेजन बाई के अंदर एक अलग ही जज्बा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपनी आवाज, अपनी कला के दम पर एक नई पहचान बनाएंगी। यही था उनकी जिंदगी का पहला कदम, एक सपना, एक जुनून और कुछ कर दिखाने का हौसला। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से सपने ने संघर्षों के बीच अपनी राह बनानी शुरू की और कैसे तेजन बाई ने समाज की बंदिशों को चुनौती दी। बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
5: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुटकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
6: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ ऐसे लोगों की कहानी, उनकी जर्नी जो आपको मोटिवेट करती है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तेजन बाई की। जी हाँ, तेजन बाई जो कि अपनी कला से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई के बचपन में पंडवानी और महाभारत के प्रति एक गहरा लगाव पैदा हो गया था। लेकिन किसी भी सफलता की कहानी में सिर्फ सपने नहीं होते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। जी हाँ, और तेजन बाई जी का सफर भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों आज से कई साल पहले समाज की सोच अलग थी। कुछ कलाएं और कुछ मंच ऐसे माने जाते थे जहां पर महिलाओं की जगह नहीं थी। पंडवानी भी उनमें से एक थी। इस लोक कला में अधिकतर पुरुष ही प्रस्तुति देते थे, लेकिन तेजन बाई जी ने इस परंपरा को चुनौती देने का साहस दिखाया। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने गांव और आसपास के क्षेत्रों में पंडवानी गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में दम था, उनके अंदाज में अलग ही जादू था और सबसे खास बात थी उनका अटूट आत्मविश्वास। लेकिन हर कोई उनके इस फैसले से खुश नहीं था। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। समाज के कुछ लोगों को लगता था कि एक महिला को इस तरह मंच पर आकर महाभारत की कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन तेजन बाई जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। जितनी रुकावटें आईं उतना ही उनका हौसला मजबूत होता गया। वो लगातार अपनी कला को निखारती रहीं, सिखाती रहीं और प्रस्तुतियां देती रहीं। धीरे धीरे लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया। जब वो मंच पर आती थी तो दर्शक सिर्फ गाना नहीं सुनते थे बल्कि महाभारत के प्रांतों को उनके अभिनय के माध्यम से जीते जागते हुए महसूस करते थे। उनकी आवाज और उनकी कहानी सुनाने की कला लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी थी। और बस यहीं से शुरू हुआ तेजन बाई जी के सफर का वो मोड़ जहां पर संघर्ष धीरे धीरे पहचान में बदलने लगा। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे सेगमेंट में हम जानने वाले हैं इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें, उनकी अनोखी प्रस्तुतियां, उनके बड़े कला जगत के ऊपर भी हम ध्यान देने वाले हैं, उस पर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। सुने बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे स्नेहा। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई जी ने सामाजिक बंदिशों और आलोचनाओं का सामना करते हुए अपनी कला को जिंदा रखा, लेकिन जब लगन सच्ची हो और प्रतिभा असाधारण हो तो एक ना एक दिन दुनिया उसे जरूर पहचानती है। तेजन बाई जी के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जी हाँ, लगातार प्रस्तुतियों और अपनी अलग पहचान के दम पर तेजन बाई जी ने धीरे धीरे लोक कला के जगत में मशहूर होने लगी थी। उनकी पंडवानी प्रस्तुति सिर्फ गीत या फिर कहानी नहीं होती बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती थी। जब वो महाभारत के किरदारों को अपनी आवाज और अभिनय से पेश करती थी तो दर्शक पूरी तरह से कहानी का हिस्सा बन जाते थे। इसी दौरान उनकी प्रतिभा पर कई कला प्रेमियों और विशेषज्ञों की नजर पड़ी और उनकी कला को बड़े मंचों तक पहुंचने का मौका भी मिला। ये वो समय था जब गांव और स्थानीय कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहने वाली तेजन बाई की आवाज राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगी। जी हाँ, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास। वो मंच पर किसी भी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर निर्भर नहीं रहती थी। महाभारत की कहानियाँ उनके मन और यादों में बसती थी, इसी वजह से उनकी प्रस्तुति में एक प्राकृतिक प्रभाव और जज्बा नजर आता था जो लोगों को बहुत पसंद आता था। दोस्तों, सफलता अक्सर तब मिलती है जब तैयारी और अवसर एक साथ मिलते हैं। तेजन बाई जी ने सालों तक अपनी कला को निखारा था और जब बड़ा मौका मिला तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अब लोग उन्हें सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की प्रतिनिधि के रूप में देखने लगे। उनकी पहचान बढ़ रही थी और उनके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी और पंडवानी को एक नई ऊर्जा भी मिल रही थी इसी के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: चिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों, अब तक हमने तेजन बाई जी के बचपन, उनके संघर्ष और उनके हुनर को मिले बड़े मंच के बारे में जाना, लेकिन हर महान कलाकार की एक ऐसी खास पहचान होती है जो उसे भीड़ से अलग बनाती है। जी हाँ, तेजन बाई जी के लिए भी ये पहचान बनी उनकी अनोखी कपालिक शैली। जी हाँ दोस्तों, पंडवानी की परंपरागत प्रस्तुति में अलग अलग शैलियाँ होती है, इनमें से एक है कपालिक शैली, जो अपने नाटक के अंदाज, ऊर्जा और अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। तेजन बाई जी ने इसी शैली को अपनाया और उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उस समय अधिकतर महिला कलाकार वेदामती शैली में प्रस्तुति देती थी, जहां पर गायक बैठकर कहानी सुनाता था, लेकिन तेजन बाई जी ने परंपरा से हटकर कपालिक शैली को अपनाया, जहां पर कलाकार खड़े होकर पूरी ऊर्जा के साथ कहानी को जीवंत करता है। जब तेजन बाई जी मंच पर आती थी तो उनके हाथ में एक साधारण सा तंबूरा होता था, लेकिन उनकी कल्पना और अभिनय की ताकत उस तंबूरे को कभी अर्जुन का धनुष बना देती, तो कभी भीम की गधा और कभी किसी योद्धा की तलवार, और बस यही देखकर जो दर्शक थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आवाज में इतनी गहराई और इतनी ताकत थी कि महाभारत के युद्ध वीरता, दुख और भावनाएं जैसे आंखों में सामने जीवित हो उठती थी। वो सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाती थी, बल्कि हर किरदार को अपने अंदर उतार कर उसे जीती थी। यही वजह थी कि उनकी हर प्रस्तुति एक यादगार अनुभव बन जाती थी। सबसे खास बात तो ये थी कि तेजन बाई जी ने कभी अपनी लोक कला की असली रूह को नहीं बदला। उन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए उनमें अपनी रचनात्मक और अपना अंदाज जोड़ा। इसी ने उन्हें एक कलाकार से बढ़कर एक प्रेरणा बना दिया। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने से भी मिलती है। तेजन बाई जी ने दुनिया को दिखाया, अगर आप अपनी कला में विश्वास रखते हैं तो आप अपनी एक नई पहचान खुद बना सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे तेजन बाई जी ने अपनी अनोखी कपालिक शैली के जरिए पंडवानी को एक नई पहचान दी, लेकिन उनका सफर यहीं तक सीमित नहीं था। अब समय था छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को दुनिया के मंच तक पहुंचाने का। दोस्तों, जब किसी कलाकार की कला दिल से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। तेजन बाई जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के अलग अलग राज्यों में उनकी प्रस्तुतियां बेहद सराही जाने लगी। हर जगह लोग उनकी आवाज, उनके अभिनय और उनकी कहानी सुनने के अंदाज से प्रभावित होते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याती देश के सीमाओं से बाहर तक पहुंचने लगी। जी हाँ, उन्होंने विदेशों में भी भारत की लोक संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों में उन्होंने पंडवानी की प्रस्तुतियां दी है। जो लोग छत्तीसगढ़ या फिर पंडवानी के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, वो लोग भी तेजन बाई जी की कला के दीवाने हो गए। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी लोक कला जो कभी गांव में चौपालों और स्थानीय मंचों तक सीमित थी, वही कला अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक तालियां बटोर रही थी। ये सिर्फ तेजन बाई जी की व्यक्तिगत सफलता ही नहीं थी, बल्कि भारत की लोक परंपराओं की भी जीत थी। उन्होंने दुनिया को ये भी दिखाया कि हमारी लोक कलाओं में कितनी गहराई, कितनी समृद्धि और कितनी कहानियां छुपी हुई है। भाषा अलग हो सकती थी, लेकिन उनकी प्रस्तुति की भावनाएं हर दिल तक पहुंच जाती थी। इसीलिए विदेशी दर्शक भी उनकी कला से उतने ही प्रभावित होते थे जितने भारत के लोग। तेजन बाई जी का सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपने हुनर पर भरोसा रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी मंच आपसे दूर नहीं रहता। उन्होंने कभी अपनी पहचान बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी असली पहचान को ही दुनिया तक पहुंचाया। और यही वजह है कि आज तेजन बाई जी को सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि भारत सांस्कृतिक दूत के रूप में भी देखा जाता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं तेजन बाई जी की। जी हाँ दोस्तों, अब तक के सफर में हमने देखा कि कैसे तेजन बाई जी ने संघर्षों का सामना किया, अपनी अलग पहचान बनाई और पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहुँचाया। और जब किसी व्यक्ति का योगदान इतना विशेष हो तो उसकी मेहनत को सम्मान भी मिलता है। तेजन बाई जी का जीवन इस बात का जीता जागता हुआ उदाहरण है। दोस्तों, तेजन बाई जी ने अपनी कला के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को जीवित रखा बल्कि उसे नई पीढ़ी तक भी पहुंचाया। उनके इस अमूल्य योगदान को देश ने समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। जी हाँ, साल 1988 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये उनके लिए ही नहीं बल्कि पंडवानी और छत्तीसगढ़ की लोक कला के लिए भी गर्व का पल था। और इसके बाद भी उनकी उपलब्धियों का सफर अभी और भी तेजी से आगे बढ़ा। फिर आया साल 1985 जिसमें उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, जो भारत में परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार उनकी कला की गहराई और उनके योगदान की राष्ट्रीय पहचान का प्रमाण था। लेकिन सफर यही नहीं रुका, फिर आया साल 2003 जिसमें तेजन बाई जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान ने साफ कर दिया कि तेजन बाई जी की कला अब सिर्फ एक लोक कला ही नहीं रही थी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। और फिर आया साल 2019 जब उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। एक गांव की लड़की जिसे कभी समाज की बंदिशों का सामना करना पड़ा था, आज देश के सर्वोत्तम सम्मानों में से एक की अधिकारी बन चुकी थी। दोस्तों, इन पुरस्कारों की सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि ये सिर्फ मेडल या फिर सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, ये उन सालों की तपस्या, संघर्ष और लगन और समर्पण का सम्मान होता है जो किसी व्यक्ति ने अपने सपने को सच करने के लिए दिए होते हैं। तेजन बाई जी की उपलब्धियां हमें ये सिखाती है कि जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और जुनून के साथ करते हैं तो सफलता और सम्मान दोनों आपके कदम चूमती है। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना?

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों, आज के इस खास सफर में हमने तेजन भाई जी के जीवन के कई रंग देखे। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, बचपन से कला के प्रति लगाव था उनका, सामाजिक बंदिशों का सामना भी करा, अपनी एक अलग पहचान भी बनाई, देश और दुनिया के मंचों पर भारत लोक कला की प्रस्तुति भी की और फिर देश के सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया उन्हें। लेकिन दोस्तों, किसी भी सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे मिलने वाली सीखें। अब बात करते हैं तेजन भाई जी की लाइफ से हमें क्या सक्सेस मंत्र मिलता है। तो सबसे पहला जो सक्सेस मंत्र है वो है, अपने हुनर पर भरोसा रखिए। कई बार लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने टैलेंट पर विश्वास है तो कोई भी आपकी राह को रोक नहीं सकता। तेजन भाई जी ने भी यही किया। दूसरा सक्सेस मंत्र है, संघर्ष से कभी मत घबराइए। हर बड़े सपने के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। उन्होंने विरोध देखा, कठिन परिस्थितियां भी देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी और इसी लगन ने उन्हें सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तीसरी सीख है, अपनी आदतों को कभी मत भूलिए। आज जब दुनिया ग्लोबल होने की बात करती है, तेजन भाई जी हमें ये याद दिलाती है कि असली पहचान अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से जुड़ी होती है। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं बल्कि उसे ही अपनी ताकत बना लिया। चौथा सक्सेस मंत्र है कि सीखना कभी बंद मत कीजिए। जी हाँ, सफलता पाने के बाद भी तेजन भाई जी ने अपनी कला को लगातार निखारा। ये हमें बताता है कि ग्रोथ का सफर कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, तेजन भाई जी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है बल्कि ये हौसले, आत्मविश्वास और समर्पण की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजे स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और ऐसी ही व्यक्ति की कहानी के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी से दुनिया को एक नया सक्सेस मंत्र दिया है और एक मोटिवेशनल जर्नी दी है। तब तक के लिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बाय।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ शिंगला जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों, हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी।

ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है, तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम

इस दुनिया में ज्ञान दान करने वाले के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। दोस्तों, खुसरो कहते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पी को दोनों एक ही रंग। कहने का मतलब है, सुहाग की रात में अपने पिया के संग थी, और जब मैं सोकर उठी तो मैंने पाया कि मेरा तन जरूर मेरे पास था, पर मेरा मन मेरे पिया के रंग में रंग चुका था। खुसरो खुदा को अपना पिया या शौहर कह रहे हैं और खुद को उनकी सुहागन बीवी कह रहे हैं। आगे कुछ और भी कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे गरहारी पी के संग। प्रेम एक खेल है जिसको मैं अपने पति यानी मुर्शिद के साथ खेल रही हूं। अगर मैं जीत गई तो पिया मेरे हो जाएंगे और हार गई तो मैं पिया के संग हो जाऊंगी। इन शब्दों में खुसरो अपने मुर्शिद को यार कहते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर।

हमारे पूर्वजों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आज की पीढ़ी को कर्तव्य के लिए संघर्ष करना है। दोस्तों, सूफी जो होता है, सूफी मिटने के लिए जीता है। सूफी क्यों जीता है, क्या चाहता है? सूफी समा जाना चाहता है, मिल जाना चाहता है उस खुदा की दुनिया में। सूफी खाक हो जाना चाहता है, फना होना चाहता है, ताकि उसका द्वैतवाद छूट सके और वो अद्वैत में खो सके, उस नूरानी शक्ति के साथ एक हो सके। यही फर्क है आम मोहब्बत और सूफी मोहब्बत में, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में। खुदा रूपी सागर में जो जितना गहरा जाता है उतना ही ऊपर उठता है। यही सच्चे प्रेम की निशानी है और यही सच्चे प्रेम की ऊंचाई है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। लेकिन अब आपकी रात का हम सफर फहीम चाहता है आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। रंग रेजा, रंग रेजा।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजी सागर आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो वार्मिश्ना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। ये शो बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं हम, साथ साथ आपको बताते हैं कि इंडिया में जो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं या फिर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनीज या लोगों या प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का हाथ है। तो आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है। हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो डील करती है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में। विल टॉक अबाउट इट एंड विल स्टार्ट द शो बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी, टू द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, देयर USP, एवरीथिंग। बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मालवा 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुंच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहां पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री, वी आर एड्रेसिंग इट, द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 बिलियन US डॉलर्स, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहां पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो है वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केटप्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाई इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनी, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जाकर के इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहां पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

boom, jingle la boom, jingle la boom, jingle la boom. वेलकम बैक. उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई. बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे. मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए. एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है. इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए. ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है. मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है. डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है. तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं. लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है. सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया. प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में. बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है. बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं.

आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो है वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।

परिणाम सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवस्टम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है वहां पर डेटा मशीन लर्निंग इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले ही बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीजें कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात यह है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकेंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत इजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो इजीली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। आप एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहां पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहां पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स का आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड।

सबरसार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं आरजे सागर यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा ये शो सत्यमेव जयते आपको पसंद आ रहा है। हम इसी के साथ अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी डिले हुई कई महीनों तक आपको सैलरी नहीं मिली, आप क्या कर सकते हैं? पहला प्रश्न कि क्या कोई फेयर पॉइंट है? अगर है कुछ ऐसा तो भी आपको पहले इंटीमेट किया जाएगा, आपको धोखे में नहीं रखा जाएगा, ये फॉर श्योर है। तो पहले अपने एचआर से बात करिए, अपने मैनेजर से बात करिए, क्योंकि कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से भी डिले होती हैं चीजें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, हर चीज का प्रूफ रखिए अपने पास, सैलरी स्लिप्स को सेव रखिए, बैंक स्टेटमेंट्स को सेव रखिए, ऑफर लेटर, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सारी चीजें आपस में मैच होनी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। आपके अटेंडेंस कितनी है, ऑफर लेटर पर क्या लिखा हो, सब कुछ वहां पर लिखा जाता है प्रॉपर। एक रिटर्न रिमाइंडर लिखिए, अगर नौबत आए कि कई महीनों से आपकी सैलरी नहीं आई है और आपको कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है, आपको एक तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है, जस्ट सेंड अ फॉर्मल ईमेल। यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप क्रिएट करके वहां पर अटैच करके जो है भेजिए उनको, रिक्वेस्ट करिए, सिंपल। फिर आपको ये तमाम ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद भी अगर सैलरी नहीं मिलती है तो फिर आपके पास लीगल ऑप्शंस बचते हैं। अगर कंपनी आपकी सैलरी डिले करे जा रही है, आपको कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रही है, आपने अप्रोच किया लेकिन फिर भी आपको कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जा सकते हैं अप्रोप्रिएट लेबर अथॉरिटीज के पास या फिर लीगल फोरम्स में। रिपीटेड डिलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कई महीनों तक अगर सैलरी नहीं मिली है, इट्स अ बिग इशू। स्टार्ट प्लानिंग बैकअप, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लेबर कोर्ट आप जा सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला है या आपको नहीं बताया गया है। तो ये चीज ऐसे काम करती है, लीगल कोर्ट डेफिनेटली आपकी सुनवाई करेगा। अब यहीं पर हमारा शो जो है हमें खत्म करना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा चुका हूँ। अपना फीडबैक मुझे बताइए 8010781078 पर। फिलहाल चलता हूँ, दिस इज आरजे सागर, साइन।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और सशक्त महिलाओं से मैं आपको इस कार्यक्रम में मिलवाती हूं। सशक्त महिलाएं यानी वो महिलाएं जो न सिर्फ जीवन में कुछ अलग कर रही हैं, लेकिन इस सशक्तिकरण को और महिलाओं तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और ये अपने आप में एक मिसाल बन जाती हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, यानी वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने न सिर्फ भारत में पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर राशि गुप्ता। बड़े प्यार से हमारा भारत उन्हें बैटरी वाली ऑफ इंडिया कहता है, लेकिन दरअसल ये फाउंडर विजन मेट्रॉनिक्स हैं, और साथ के साथ अगर देखा जाए तो ये एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर कहलाती हैं। अगर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो एक लंबे समय के एक्सपीरियंस के साथ साथ ये हमारे देश में बदलती हुई टेक्नोलॉजी के

0: साथ कुछ खास नया लेकर आई हैं। सो आज हम करने वाले हैं डॉक्टर राशि गुप्ता का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। डॉक्टर राशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच, आप मुझे इस शो पे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: डॉक्टर राशि, बैटरी वाली की कहानी तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का पहला एक सवाल स्टैंडर्ड सवाल होता है जो मैं बहुत सारी महिलाओं से पूछ चुकी हूँ और आपसे भी पूछना चाहूंगी। आप एक महिला हैं और आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है? हाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट?
1: अच्छा सवाल है। महिला सशक्तिकरण को हम अक्सर बहुत सीमित तरीके से देखते हैं, जैसे कि नौकरी मिल गई, कमाने लगी तो हो गई सशक्त। लेकिन मेरे अनुभव में सशक्तिकरण इससे कहीं बड़ा है। सशक्तिकरण का मतलब है सोच की आजादी। क्या एक महिला बिना डरे अपने फैसले ले सकती है? क्या वह लोगों क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठकर अपने सपनों को उड़ान दे सकती है? तो सशक्तिकरण मेरे लिए तीन स्तर पर होता है। पहला, आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा। जब आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती ना, उस समय आपको आप पर भरोसा है तो आप सशक्त हैं। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, ताकि आप अपने फैसले खुद ले सको, उस पे खड़े रह सको और उसको आगे लेके चल सको। और तीसरा है निर्णय लेने की शक्ति। ये निर्णय लेने की शक्ति ना सबसे कठिन वाली है, और ये दो जगह सबसे ज्यादा महत्व रखती है। एक है पहले घर में भी और समाज में भी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये तीन जो कड़ियां हैं ये बड़ी जरूरी हैं सशक्तिकरण को। और सशक्तिकरण के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि वो दिया हुआ या नहीं हो सकता, या लिया हुआ नहीं हो सकता। जब महिलाएं खुद आगे बढ़ेंगी, अपनी जगह बनाती हैं, तभी असली बदलाव आता है और तब सशक्तिकरण होता है।
0: सो ट्रू। वाकई दो ऐसी कंडीशन आती हैं, एक आपका घर और एक आपका समाज। सो इन दोनों जगह पर अगर आप सही डिसीशंस ले पाती हैं, एंड फॉर दैट मैटर ये डिसीजन दूसरों के लिए नहीं अपने जीवन के होते हैं, अगर आप ये ले पा रही हैं तो आप एक सशक्त महिला हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप कितना पैसा कमाती हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राशि, वाकई ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को अंदर से एक बार ये सोचने पर मजबूर करेगा कि वो सशक्त हैं भी या नहीं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: दीप जलाए।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राशि गुप्ता से। डॉक्टर राशि गुप्ता जो पूरे भारत में फेमस है बैटरी वाली ऑफ इंडिया के नाम से, शी इज द फाउंडर ऑफ विजन मेट्रोनिक्स और एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर ये कहलाती है। डॉक्टर राशि, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ये बैटरी वैली ऑफ इंडिया की कहानी, ये कहां से शुरू हुई, किस प्रकार के सशक्तिकरण भरे डिसीजंस आपने बैटरी वैली ऑफ इंडिया बनने तक के आपने लिए और आज यहां भारत की एक पहचान बनकर कैसा लग रहा है आपको?
2: ये सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं वही कहूंगी कि 2015 में जब मैं पहली बार वर्ल्ड स्मार्टेस्ट लिथियम बैटरी इंडिया में बनाई, और उसके बाद जैसे ये नई तकनीक थी तो लोगों को ना मार्केट तैयार था, ना लोगों को जानकारी थी और ना ही ये बहुत इसका कोई सपोर्ट सिस्टम था। 2015 की जब हम बात करें, आज आप देखें तो लिथियम बैटरी की बहुत बहुत चर्चे हैं, पूरे में चर्चे हैं, देश में भी विदेश में भी, लेकिन उस समय कोई नहीं था। और एक अकेली लेडी जब जा रही है, एक स्त्री जा रही है, और उस सेगमेंट में जब कोई दूसरा और नहीं है तो लोगों को आदत हो जाती है कि उसके काम से उसके नाम की पहचान बनती है। तो अक्सर मुझे लोग कहते थे अरे वो बैटरी वाली को बुला लो, वो बता देगी क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, वो बता देगी। तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे वो उस नाम से ही बोलना शुरू कर दिया। मेरा अपना नाम लोगों को याद नहीं रहता था क्योंकि मैं अकेली लिथियम बैटरी बनाने वाली थी, बताने वाली थी, जानकारी देने वाली थी, कोई नहीं था। तो उस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर पता चला कि लोगों ने मेरा नाम ही उस तरह से सेव करना शुरू कर दिया मोबाइल में, तो मैंने कहा अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। जब लोग खुश होके मुझे उस मेरी पहचान ही मेरे काम से है तो मैं ये नाम स्वीकार करती हूँ। बड़े रेस्पेक्ट से, आदर सत्कार से मैंने इस नाम को स्वीकार किया और तब से मैं बैटरी वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। आज जैसे मैं काउंसिल मेंबर हूँ यूनाइटेड नेशंस में, तो वहां पे भी लोग मुझे बैटरी वैली के नाम से या बैटरी क्वीन के नाम से जानते हैं। तो ये उस तरह से शुरुआत हुई। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा, क्या सशक्तिकरण का निर्णय लिया, तो एक ऐसा हुआ था कि हम जर्मनी गए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वहाँ गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे। तो वहाँ पे मेरी एक मीटिंग हुई थी एक कंपनी से, जिन्होंने कहा कि हम कोलैबोरेट करना चाहेंगे। लेकिन उस मीटिंग के पहले जो था वो सशक्तिकरण का टाइम था, क्योंकि उसमें मेरे जितने लोग साथ में गए थे उन लोगों ने कहा कि आप क्या करेंगी इस कंपनी में जाके, क्यों अपना समय नष्ट कर रही हैं, मत जाइए, यहाँ जाके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, हम आपको इंडिया में सबसे बड़ी बैटरी कंपनी से मिलवा देते हैं, आपकी जेवी करवा देते हैं, आप वहां शुरू कीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो तकनीक इंडिया में आज चल रही है मैं देखूंगी जरूर कि भाई ये क्या कर रहे हैं, और मैं जाऊंगी जरूर। और भाई वो बोलते हैं आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप कहाँ लगा रही हैं, ये तकनीक इंडिया में कोई काम की नहीं है, ये तो फेल हो जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पैसे हैं ना, मैं फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका तो नहीं है। और अगर एक बार मैंने कमाए और गवाए तो मैं दूसरी बार भी कमा लूंगी, उसमें इतनी कौन सी बड़ी दिक्कत है। तो ये जो फैसला था कि जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था तब मैंने ये फैसला लिया कि हाँ मुझे ये करना है, और आज उस चीज के लिए मुझे बहुत गर्व और खुशी होती है कि मैंने वो फैसला उस दिन लिया और वो काम आगे किया, और आज इसी वजह से लोग मुझे बैटरी वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद तो रुकना का सवाल ही नहीं उठता था, मैं चलती गई और बहुत सारे नए इनोवेशंस इंडिया में करती गई, और सौर्य ऊर्जा और सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल ऊर्जा, इस फील्ड में मैंने बहुत सारा काम पिछले 16-17 सालों में किया है, और आज अब मैं क्लीन हाइड्रोजन बेस्ड क्लीन कुकिंग में भी काम कर रही हूँ।
1: वाकई, और आपका जो बहुत ही स्मार्ट कुकर है वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, उसके बारे में भी पूछने वाले हैं, बस उससे पहले लेने वाले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट में। विमेन एम्पावरमेंट की खूबसूरत सी कड़ी और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं डॉक्टर राशि गुप्ता से। डॉक्टर राशि गुप्ता जो फाउंडर हैं विजन मेट्रॉनिक्स की, साथ के साथ एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर कहलाती हैं, लेकिन इन्हें प्यार से हम बुलाते हैं बैटरी वाली ऑफ इंडिया। भाई ये वो पहली महिला हैं जिन्होंने वाकई इस तरफ एक ऐसा सशक्तिकरण भरा कदम रखा। अब डॉक्टर राशि, आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। ये एक आदमियों की दुनिया है और हम सब जानते हैं हाउ मेनी वेमेन, हार्डली फ्यू वेमेन आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस फील्ड। मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने पहले तो अपने लिए जगह बनाई, बट क्या आपने बहुत सारी और महिलाओं को भी सशक्त करने की कोशिश की और क्या वो आज मोटिवेट होकर आपके ही यू नो एक्सटेंडेड हैंड्स बन पा रही हैं?
1: बिल्कुल, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत ही लंबे समय तक महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है, ना के बराबर है। तो जब मैंने ये शुरुआत की तो कई बार अपने आप को साबित करना पड़ा, कई बार मतलब हर बार साबित करना पड़ा। लोग पहले आपके जेंडर को देखते हैं कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और फिर आपकी सक्षमता को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चेंज क्या लाया, जो मैंने अपने अंदर लाया कि मैंने अपने आप को एज अ प्रोफेशनल देखा। मैंने ये नहीं देखा कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ या सामने जो मेरे बैठा है या जो मुझसे बात कर रहा है वो स्त्री है या पुरुष है। मैंने ये देखा कि वो एक प्रोफेशनल है, वो एक सोल है और मैं उसी हिसाब से उनसे बात करती थी। तो मैंने दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंटली इसमें की। पहला जो था कि अपने आप को प्रोफेशनल देखना, दूसरा अपना होमवर्क पूरा करके जाना। मैं जिस भी मीटिंग के लिए जाती हूँ या मैं जिस भी काम के लिए जाती हूँ, मैं अपना होमवर्क उसका पूरा करके जाती हूँ। ये बीच में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं अब इसका क्या जवाब दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप अपने आप को तैयार करके जाएंगे तो आपको अपने आप को बार बार प्रूव नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा काम में आई पूरी इस जर्नी में कि मैंने अपनी तैयारी पूरी रखी। इस तैयारी से लोगों का मुझ पे भरोसा होने लगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है और मैं सही कह रही थी। मैं किसी को धोखा देने के लिए गलत सलत बातें ऐसे कभी नहीं किया, मैंने सही बात बताई, ये आपके काम की ये आपके काम की नहीं है। और जब मैंने ये सही सच बोला और मैंने जब उन लोगों को दिखाया कि ये टेक्नोलॉजी आपके काम की है, आपको इतने फायदे होंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने एक्सेप्ट किया और मुझे मेरे काम में प्रगति मिलती गई। और उसके साथ साथ जो सशक्तिकरण महिलाओं का होता है उसके लिए मैंने एक और काम किया कि अपनी कंपनी विजन मेकाट्रॉनिक्स में एक चीज का बहुत खास ध्यान रखा कि मेरे यहाँ 50% महिला होंगी और 50% पुरुष होंगे। ये एक चीज हमने थ्रू आउट पूरी जर्नी में हमने ये बैलेंस रखा है कि किसी भी तरह ये रेशियो न बिगड़े। और हर वो महिला जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आती है, हम उसको तीन चीजों की अपॉर्चुनिटी हमेशा, तीन चीजें हम उसके लिए हमेशा, ये तरीका मैंने जो अपनाया है वो पहला है विजिबिलिटी। मैंने अपनी कहानी कभी छुपाई नहीं, शेयर की। जो मेरे पास आते हैं मैं उनकी कहानी भी सुनती हूँ, उनके साथ शेयर करती हूँ ताकि उनको विजिबिलिटी मिले, वो समझ सके। दूसरा, अपनी टीम में महिलाओं को टेक्निकल और लीडरशिप के रोल दिए, अपॉर्चुनिटी दी। कभी मुझे मिली इसलिए मैंने भी आगे दी, और नहीं भी मिलती तो भी मैं देती आगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हम नहीं देंगे तो और कौन देगा। महिलाओं को महिलाओं ने पहले अपॉर्चुनिटी दे दी। और तीसरा है मेंटरशिप। जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं गाइड करती हूँ, खास करके उन महिलाओं को जो इस सेक्टर में आना चाहती हैं, जो जैसे ITI है, डिप्लोमा वाली जो बच्चियां हैं, जो अभी अभी स्कूल कॉलेज से निकली हैं, उन सारी बच्चियों को मैं उतनी मेंटरशिप करने की कोशिश करती हूँ ताकि कहीं ना कहीं वो अपने दम पे खड़ी हो सके। और ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि दो शब्द कह दिए और काम हो गया, नहीं, करके दिखाना होता है। प्रैक्टिकली जब तक आप करके नहीं दिखाओगे तब तक ये होता नहीं है। तो यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, सिर्फ प्रवचन नहीं देना है, काम करके दिखाना है। और मैंने यही पूरे 17 सालों में किया ताकि आज वो लोग खड़े हैं। और आपको अजीब सा लगेगा बट इस कंपनी में सारी जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो सारी महिलाएं संभालती हैं।
0: आई हैड एक्चुअली थॉट दैट, और आज आपने अपने मुंह से ये बात कही है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या कहने। सो महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी में ना, जब तक महिला ये ना कहे ना कि मैं खुद तो सशक्त हुई लेकिन मैंने साथ में और महिलाओं को मौका दिया, तब तक ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस कार्यक्रम का नाम भी वी है। महिलाएं जब एक दूसरे के साथ आ जाएंगी तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। जरूरत यह है कि महिला एक दूसरी महिला को बहुत अच्छे से समझ पाती है, और जब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। और जो बात आपने कही, मुझे लगता है डॉक्टर राशि, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो किसी भी कैपेसिटी में हैं, अगर ये तीन चीजें हर महिला को मिलती है तो हर महिला शायद अपने आप में चमक सकती है। सबसे पहले विजिबिलिटी, दूसरा उसे लीडरशिप का मौका मिलना, और तीसरा कि उसे सहयोग मिले, कोई एक ऐसा मेंटर मिले जो ये कहे कि हाँ आप आगे बढ़ो एंड आई एम देयर बिहाइंड यू। सो मुझे लगता है कि विजन मेकाट्रॉनिक्स में तो ये हो ही रहा है, लेकिन बाकी सब जगह भी हो, ये मेरी गुजारिश है। बहुत प्यारा सा गाना सुनाने वाली हूँ, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे डॉक्टर राशि गुप्ता से। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राशि गुप्ता से, जो कि फाउंडर है विजन मेकाट्रॉनिक्स की, एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर है और साथ ही साथ बैटरी वाली ऑफ इंडिया कहलाती हैं। भाई, ये बैटरी वाली ऑफ इंडिया के लिए एक्चुअली मुझे मशक्कत करनी पड़ी है, आज फाइनली मैं उनके साथ बात कर पा रही हूँ। डॉक्टर राशि, अगर मैं बात करूँ तो ये पुरुषों का वर्ल्ड है और हम हमेशा कहते हैं हर जगह हर चीज की वैलिडिटी एक पुरुष ही देता है। इस दुनिया में आपने एनर्जी स्टोरेज में अपना एक अलग ही नाम कमाया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के समय में एनर्जी स्टोरेज की किस तरीके से इम्पोर्टेंस है।
1: भावना जी, अगर हम आज की एनर्जी स्टोरेज को समझें तो एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडिया एक एनर्जी स्टोरेज कंट्री है। अब एनर्जी यानी ऊर्जा का मतलब सिर्फ बिजली नहीं होती है।
0: एग्जैक्टली,
1: बहुत सारे तरह से आप एनर्जी देखते हो। अब जैसे आप देखते हो पानी, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है, फूड वो भी, खाना जो है वो भी एनर्जी है, पैसे वो भी एनर्जी है, ठीक है। हमारी कंट्री में हमेशा सब कुछ स्टोर करके रखना चाहते हैं, हर चीज हम बचा के रखते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि बिजली कितनी महत्वपूर्ण है और उसको बचा के रखना और सही समय पे दोबारा इस्तेमाल में लाना, ये सही भूमिका है एनर्जी स्टोरेज की। तो एक बहुत बड़ा सवाल सौर ऊर्जा के साथ ये उठता है कि जब सूरज सुबह उगता है और शाम को नहीं होता है, तब और जब हवा नहीं चल रही है विंड एनर्जी के लिए, तब क्या होगा? तब ये एनर्जी स्टोरेज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये तो बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा जैसे पीक लोड डिमांड है, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन है, लोड शिफ्टिंग है, ये बहुत सारे तरह के काम एनर्जी स्टोरेज करते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज हमें सिर्फ एक सुविधा नहीं देता कि हम ऊर्जा को जब बने तब स्टोर कर ले और जब जरूरत हो तो इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए। बिकॉज अभी अगर आप ध्यान से समझें तो क्या बात है, जैसे हर विलेज में हमने बिजली पहुंचा तो दी, लेकिन क्या वो 24/7 एकदम परफेक्ट हमें बिजली मिलती है? कई जगहों पे आज भी पावर कट्स हैं, नहीं मिल पाती है। तो वो सब चीजों को स्टेबलाइज करना, स्थिर बनाना, पावर कट्स कम करना और एनर्जी को स्केलेबल बनाना, मतलब जैसे आज मुझे कहीं और मेरी ऊर्जा बन रही है किसी और जगह पे, जैसे सपोज एग्जांपल देते हैं महाराष्ट्र में बन रही है लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश में चाहिए, तो ओपन एक्सेस और एनर्जी स्टोरेज के थ्रू हम ये एक जगह से दूसरी जगह इतनी ऊर्जा हम पहुंचा सकते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एनर्जी स्टोरेज के बिना आप क्लीन एनर्जी का सपना जो है हमारे देश का, वो अधूरा है।
0: देखिए भाई, अगर हम एक्चुअली एक अच्छे और डेवलप्ड नेशन का सपना देख रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर अगर आपने सुना भी होगा मुझे, मैं रेडियो पे हमेशा एक बात कहती हूँ, हम ना एक बड़ी ब्लेस्ड कंट्री है, हमारे पास सौर ऊर्जा है, हमारे पास अलग अलग मौसम है और हर मौसम का एक बहुत खूबसूरत सा फायदा है जो हम उठा सकते हैं। हमारे पास पानी मिलता है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें इतने समय तक इतना सूर्य का जो ऊर्जा है वो नहीं मिलती है, सो वो उनके लिए सोलर एनर्जी बनाना मुश्किल है। बट हम क्योंकि एक ब्लेस्ड कंट्री, हम एक ऐसी जगह पर स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं जहां हम अलग अलग मौसमों को बहुत खूबसूरती से एंजॉय कर पाते हैं और बड़े बैलेंस्ड तरीके से हम उसे एंजॉय कर पा रहे हैं। सो जरूरत यह है कि हम समय रहते इसका मैक्सिमम यूज भी करें और सिर्फ ये ना सोचें कि अरे प्रभु की दी हुई चीजें हैं, ये तो हमें अबंडेंस में मिली है और अबंडेंस में आगे मिलती रहेंगी, ये गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इस नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सस्टेनेबिलिटी पर भी बात करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे और बैटरी वाली ऑफ इंडिया से बहुत सारी बातें करेंगे। फील गुड, फील लाइट।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राशि गुप्ता से, जो फाउंडर है विजन मेकाट्रॉनिक्स की और कहलाती है बैटरी वाली ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज की बात करें या कहना चाहिए एनर्जी स्टोरेज इनोवेटर, डॉक्टर राशि ने हर फील्ड को कॉन्कर कर लिया है। डॉक्टर राशि, अब एक अहम सवाल, हम ना जब भी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, सो एक परेशानी आती है और वो परेशानी ये है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें वापस उसी इनइक्वालिटी पर ले आती हैं और ये इक्वालिटी अचीव ही नहीं हो पाती है। मुझे बताइए ना कि आप तो यू नो एक्सटेंसिवली ट्रैवल्ड और साथ के साथ मतलब अगर कहना चाहिए तो आपने अलग अलग देशों के साथ साथ और साथ के साथ अपने देश में भी अलग अलग लोगों के साथ आप इतना मिली हैं, हम किस तरीके से और कहाँ लैक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आगे तो हम आ गए हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी है। सो कैसे इसे पूरा किया जा सकता है, इस इक्वालिटी को कैसे लाया जा सकता है?
1: हमने कागजों पर तो बहुत प्रगति की, नीतियां भी बना ली, अवसर भी बढ़ा लिए, अवसर भी बढ़ गए हैं, लेकिन असली चुनौती आज भी कहाँ है पता है? सोच में। आज भी कई घर की बेटियों को अलग तरीके से पाला जाता है, आज भी करियर के कुछ विकल्प लड़कियों के लिए नहीं माने जाते हैं। अब जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा कि लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं एडमिशन लेती, मैं पूरे कॉलेज में इकलौती लड़की थी उस इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इस तरह की जो हमारी सोच है, और अब तो डिजिटाइजेशन हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब तो महिलाएं इसमें नंबर वन कदम पे आ सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात है महिलाओं को अक्सर प्रूव करना पड़ता है, जबकि पुरुषों के लिए अज्यूम किया जाता है। महिलाओं को कहेंगे प्रूव करके दिखाओ कि आप ये काम कर सकते हैं, जबकि पुरुषों के लिए अरे हाँ ये तो कर ही लेगा। तो जब तक ये माइंडसेट हमारा नहीं बदलेगा तब तक बराबरी सिर्फ शब्दों में रहेगी, असलियत में नहीं आएगी, ऑन ग्राउंड नहीं आएगी। तो हमें बदलाव तीन जगहों पर लाना होगा। पहली बात घर में, सबसे पहले घर में, दूसरा शिक्षा में और तीसरा कार्यस्थल पे। तो और ये काम सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी इस बदलाव में उतना ही हिस्सेदार बनना होगा। घर में जैसे आप एक अभी एक एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली मैं किसी से लड़की से बात कर रही थी, इंटर्न है, वो बहुत टेक्निकली करेक्ट बातें बताती है, मतलब परफेक्ट है, वो अपने काम में बहुत अच्छी है, लेकिन बोलने में इतना घबराती है कि उसके आप बगल में बैठोगे ना तो भी उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो मैंने उसको अलग से बुला के पूछा, बच्चे बात क्या है, आप बोलते क्यों नहीं हो? तो उसके मन में क्या था कि महिलाओं को, लड़कियों ने, महिलाओं ने बहुत धीरे बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में या क्लियर बात करना ये मतलब क्या कहते हैं मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैंने कहा कौन सी मर्यादा यहाँ आपको रोक रही थी? तो कहती है नहीं नहीं मम्मी ने बताया है कि जब ससुराल जाएंगे तो बहुत धीरे बोलना। मैंने कहा ये आपका ससुराल नहीं है, ये तो आपका वर्क प्लेस है, तो आप यहाँ क्यों इतने धीरे धीरे बोल रही है कि बगल में बैठे हुए बंदे को नहीं सुनाई दे कि आप क्या कह रही हैं, और आप इतनी डरती क्यों हैं? बोलते नहीं ऊंची आवाज में बात करने को मना किया घर में, हम तो घर में बात ही नहीं करते। अब वो लड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकली हुई है, वर्क प्लेस में जब आ रही है, कार्यस्थल पे आ रही है और उसका ये हाल है, तो आप सोचिए कि हमने कहाँ प्रगति की है। और जब वो बिल्कुल करेक्ट आंसर देती है, तो ये जो हमारे यहाँ का जो डर है कि घर में बाद में जाके हम जो लड़कियों की अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग करते हैं कि नहीं आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल चुप रहना है, तो ये हमें चेंज करना है, ये माताओं ने चेंज करना है, और ये सिर्फ माँ ही चेंज कर सकती है। माँ और बाप मिलके घर में ये चेंज कर सकते हैं, माताजी पिताजी जब इसको चेंज करेंगे तभी ये बदलाव आएगा। और दूसरा शिक्षा के स्थल पे, सारे अब सब जगह तो लड़कियां काम करती हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लड़कियां आजकल काम नहीं कर रही हैं? इतने सारे टीवी पे हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जहाँ पे वो टायर बदल रही हैं, इलेक्ट्रिशियन है, बिजली वाली दीदी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है वो कर रही हैं, फिर आप देखिए एस्ट्रोनॉट हैं, अब डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। तो ये जो प्रोफेशनल लेबलिंग है, अगेन मैं उसी बात पे जाऊंगी कि पहले अपने आप को

0: प्रोफेशनल देखिए, शिक्षा देखिए एक बात है, अब जैसे कोई टीचर आपको कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहा है, प्रोफेसर कॉलेज में, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, तो क्लासरूम में तो वो सेम शिक्षा दे रहा है ना, कि लड़की है तो इसको अलग शिक्षा या लड़का है तो उसको अलग शिक्षा दी, नहीं। तो फिर आप जब कार्यस्थल में आते हैं तो तब अपने आप को लड़की और लड़का अलग क्यों समझते हैं, तो जेंडर की लेबल हम क्यों देते हैं, उसे एक प्रोफेशनल समझिए। तो जब हम ये तीनों क्षेत्र में इस पे बराबरी का काम करेंगे, और सबसे ज्यादा घर से शुरुआत होगी पहले, तब ये काम पूरा होगा, तब आप समानता की ओर पूरी तरह से पहुंचेंगे।
1: वाकई, सो ट्रू। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमारी सोशल कंडीशनिंग जो है ना, वो खराब है। सो लड़की को हमेशा लड़की की नजर से देखा जाता है, और उसके पैरामीटर जो है ना, वो उसी तरीके से सेट किए जाते हैं। इनफैक्ट बचपन से ये कहा जाता है, तुम्हारी शादी होगी तो तुम ये करोगी, तुम्हारी शादी होगी तो ये करोगी। सो हम एक्चुअली अपने आप को ना कभी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट या प्रोफेशनल नहीं देखते हैं, हम हमेशा अपने आप को ये देखते हैं कि हम एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो हम किसी और के घर जाकर हमें वहाँ एडजस्ट होना है, और यही
0: एक
1: कारण
0: चीज़
1: है।
0: मैं इसमें और भावना जी ऐड करना चाहूंगी, हम हमेशा एक बेटी का रोल, बहन का रोल, माँ का रोल, ठीक है, देवरानी, जेठानी, जो भी आप कहो, भाभी, इन सब का रोल हम निभाते हैं, हम कभी अपने आप के लिए अपना रोल कब निभाते हैं?
1: एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अक्सर ये सवाल हर महिला को अपने आप से पूछना चाहिए, When did we last live our life as a human being? बहुत खूबसूरत सी बात कही है डॉक्टर राशि ने, और मुझे लगता है कि बस इस बात को एक बार सोचिए जरूर। सुना रही हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं उतनी ही प्यारी और उतनी ही लिबरेटेड बैटरी वाली ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर राशि गुप्ता से। डॉक्टर राशि गुप्ता जो कि फाउंडर है विजन मेकाट्रॉनिक्स की। डॉक्टर राशि, अब एक बड़ा अहम सवाल और ये हर महिला की जिंदगी में आता है, जब कभी भी आप अपने करियर को चूज करती हैं सो आपका एक दूसरा हैंड भी होता है और वो हैंड है आपकी फैमिली। और जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है हर महिला के साथ जहां पर उसे ये कहा जाता है कि भाई आपको परिवार का ज्यादा ख्याल रखना है, अपने करियर का नहीं। सो ये बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? आपके पास तो बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोग मिलते होंगे, अक्सर इस चैलेंज को आप फेस भी करती होंगी, सो कैसे डील करती हैं आप इसके साथ?
1: ये एक बहुत वास्तविक सवाल है और इसका कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है। दोबारा मैं उसी बात पे जाऊंगी कि आप अपने आप को कैसे देखते हो उस पे सब निर्भर करता है कि आपका परिवार आपके साथ कैसे खड़ा है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि बैलेंस का मतलब 50-50 नहीं होता। बैलेंस का मतलब होता है कि हर समय जो जरूरी है उसको प्राथमिकता दी जाए। कुछ समय करियर ज्यादा मांग करेगा, कुछ समय परिवार आपको आपकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना है। ये कहना है कि ठीक है, जहां मेरी ज्यादा जरूरत है मैं उस समय वहां हूं, लेकिन मैंने दूसरे पहलू को भी छोड़ा नहीं। और दूसरी चीज इसमें जो बहुत मायने रखती है वो है सपोर्ट सिस्टम। अगर आपका परिवार, आपका पार्टनर, आपका कार्यस्थल सहयोगी है तो ये संतुलन बनाना बहुत आसान है। पर ये सहयोगी होंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ये सहयोग में आएंगे कैसे। पहली बात तो हमें परफेक्शनिस्ट होना बंद करना है। महिलाओं को ना हर चीज एकदम टिप टॉप परफेक्ट चाहिए, ठीक है, सही बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन जब नहीं हो पाती है तो उसके लिए गिल्टी फील करना, अपने आप को कोसना या चिड़चिड़ाना, ये नहीं करना है। और आपको दूसरी चीजें अधिकार देना है, कार्यभार देना है, डेलीगेट करना है, जो हम नहीं करते हैं। हम सब चीजें खुद करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसे परफेक्ट करते हैं। अरे भाई, दूसरों को डेलीगेट करो, उनको परफेक्ट बनाइए, तब वो आपको सहयोग देंगे। हम सहयोग की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हमने उन्हें वो कार्यभार दिया? क्या हमने उन्हें उतनी आजादी दी कि आप वो अपने हिसाब से काम कर लो? एक मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते भी तो हो सकते हैं, एक ही जरूरी नहीं है कि मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ वही सही है। तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम पहले बनाना है, तब आप बैलेंस ला सकेंगे। और उसमें तो मैं कहती हूँ बच्चों को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। घर में आपके बच्चे हैं ना, आप उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, छोटे छोटे छोटे छोटे कार्यों में उनको इन्वॉल्व कीजिए। एक तो क्या है, वो एंगेज्ड रहते हैं तो तंग नहीं करेंगे, दूसरी चीज वो स्किल्स सीख लेंगे, उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनका विकास है, वो बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज है, जिन ऑफिसेज में, जिन कार्यस्थलों में बच्चों को लाने की फैसिलिटी है तो उन्हें लाइए अपने साथ। जैसे हमारे यहाँ हम सारे मम्मी पापाज को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ला सकते हैं ऑफिस में। मैं तो चाहती हूँ कि वो बच्चे आए, क्योंकि जब वो बच्चे आएंगे तो वो देखेंगे कि मेरे मम्मी मेरे पापा क्या करते हैं, कितना काम करते हैं दिन में, और क्यों वो शाम को घर आके थक जाते हैं कि मेरे साथ नहीं खेल पाते। तो जब आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। और तीसरी चीज है कि हमें ये गिल्ट छोड़ देना है। महिलाओं को अक्सर इस चीज में होता है कि परफेक्ट होने का दबाव महसूस करती हैं और वो स्वीकार नहीं करना चाहती कि हम भी इंसान हैं, हम कोई सुपर वुमन नहीं है। तो हर दिन अलग होगा, कोई दिन बहुत आप पावरफुल महसूस करेंगे, कोई दिन आप बहुत हताश महसूस करेंगे, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से हमें गिल्ट नहीं आए। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं, और मैं हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बन रही हूँ। जब हम ये चीज याद रखेंगे तब हमें ये बैलेंस क्रिएट करने में बहुत आसानी होगी। और सबसे मुख्य जरूरी बात यह है कि सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, अगर हम सच में बराबरी चाहते हैं तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और ये परिवार सिर्फ आपका घर परिवार नहीं है, ये आपका ऑफिस में जो परिवार है उसकी भी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन सही तरीके से दे। और लोग अक्सर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं कहूंगी एक सक्सेसफुल महिला के पीछे पूरे परिवार का हाथ होता है।
0: What a beautiful message. लेकिन डॉक्टर राशि यूं ही नहीं जाने दूंगी, बहुत सारी बातें आपसे की है, बहुत सारा समय आपका लिया है, जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, भविष्य इंतजार करने वालों का नहीं होता है, उसे बनाने वालों का होता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दो चीजें तय होंगी, हमारा एनर्जी फ्यूचर कैसा होगा और हमारी सोसाइटी में कितनी समानता होगी। अगर हम आज सिर्फ ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो हम अपने आने वाली साफ ऊर्जा की तरफ, अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और अगर हम महिलाओं को बराबरी नहीं देते हैं तो हम अपनी आधी क्षमता को खुद ही रोक रहे हैं। इसीलिए बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, सोच में, फैसलों में और अपने आसपास के सिस्टम में। महिलाओं से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इंतजार मत कीजिए, अपनी जगह खुद बनाइए और इतनी मजबूती से बनाइए कि कोई उसे हिला न सके। और पुरुषों से कहूंगी कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकेले मत बढ़िए, किसी और को भी साथ में लेके आगे बढ़िए। और महिलाएं आपकी जगह लेने नहीं आई हैं, आपके साथ जगह बनाने आई हैं, क्योंकि असली बदलाव तभी होगा जब हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी तरक्की के बारे में सोचते हैं। भविष्य हमें नहीं मिलेगा, हमें ही उसे बनाना पड़ेगा।
0: What a beautiful message है डॉक्टर राशि, वाकई आपने जो बात कही है वो सीधा दिल से कही है। आज के जमाने में जरूरत यह है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना है, और ये भविष्य तभी इक्वालिटी का हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ चले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, मुझे आज ये मौका मिला सब श्रोताओं से बात करने का, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच, और मुझे आपके साथ जुड़ के बहुत मजा आया, थैंक यू।
0: दोस्तों ये है डॉक्टर राशि गुप्ता, बैटरी वाली ऑफ इंडिया, और भाई जिस तरीके से ये खुद हमेशा चार्ज रहती हैं, ये हमारे पूरे जीवन को चार्ज कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राशि वंस अगेन, और अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। एक प्यारे से गाने के बाद ले रही हूँ आपसे इजाजत, कहीं मचाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आपकी और मेरी होगी मुलाकात अगले हफ्ते, टिल देन फील गुड फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM के सभी श्रोताओं को संदीप सिंघल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम प्रयास करते हैं किसी भी एक

ऐसे मुद्दे पर चर्चा करके नई सोच के साथ नई दिशाएं तलाश करने की जो लेकर के जाए हमें बेहतर भविष्य की ओर, और वो मुद्दा होता है हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ, यानी हमारे आसपास ही कोई ऐसा विषय जिस पर हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं जिसको, तो उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कुछ चर्चा करें आपके साथ और एक नई सोच के साथ नई दिशाएं तलाशें उसी मुद्दे पर। तो इसी प्रोग्राम में दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो है, जीवन में आम तौर पर हमने देखा है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो हमारा व्यापार है, चाहे वो हमारी स्टडीज है, या किसी भी प्रकार से हम देखें, तो उसमें एक बड़े कॉमन एक फैक्टर होता है जिसकी तरफ हर किसी का ध्यान होता है, वो होती है सक्सेस यानी सफलता। लेकिन जहाँ कहीं भी सफलता होती है, ये बात हम सभी जानते हैं कि जिस क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं होती हैं, वहीं यदि आपको सफलता नहीं मिलती है और आप असफल हो जाते हैं, तो वही जो मुद्दा है कि उस परिस्थिति में जो असफलता हमें मिलती है, जब हम सफल होने से रह जाते हैं, तो आखिर वो असफलता को हमें, जो फेलियर है उसको लाइफ में किस प्रकार से लेना चाहिए। यानी अगर हम आज के टाइटल की बात करें तो वो है असफलता से सीखने की कला, यानी कि हाउ टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। आमतौर पर जब कभी भी बात होती है सक्सेस की तो लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरियाँ सुनाते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उस विषय पर चर्चा करना जो जुड़ा होता है हमारे फेलियर से। दोस्तों जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। यानी हम सीधे सीधे अगर हम बात करें तो यदि आपके किसी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं तो वो अपने आप में असफलता की श्रेणी में हम लोग आमतौर पर उसको ले लेते हैं, या किसी का इंटरव्यू ख़राब हो जाता है, जॉब मिलने से रह जाती है, तो उसको लगता है कि वो सक्सेस नहीं हुआ यानी वो फेल हो गया, या किसी का किसी व्यापार में घाटा हो जाता है, कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, या फिर रिलेशनशिप टूट जाना, कहीं रिश्ता टूट जाना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं जो हरेक किसी न व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ये अनुभव किए होंगे। असफलता का जो पेन है ना, वो हर इंसान महसूस करता है, हम आप हर कोई, कहीं ना कहीं वो एक जगह ना चाहते हुए भी हमारे दिल में बन जाती है उस असफलता को लेकर के, जब तक कि उसी फील्ड में या उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या उसी क्षेत्र में हमें सफलता ना मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या असफल होना अपने आप में अंत है, यानी असफलता जो है क्या वो बिल्कुल एंड है, या वो ही आने वाली सफलता की पहली सीढ़ी भी बन सकती है। और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, यानी फेलियर होने का जो फियर रहता है, जो असफलता का जो डर होता है, वो आखिर है क्या। दोस्तों जितनी भी फेलियर्स होती है उसके पीछे का जो कारण है वो होता है उस असफलता से जुड़ा हुआ डर, यानी एक मन में भय रहता है कि यदि हम असफल हो गए तो। अब वो जो तो है, उस तो का जो आंसर है वो है क्या, किस प्रकार का डर, वो होता है एक सोसाइटी का प्रेशर यानी समाज का एक तरह का दबाव, साथ ही साथ एक मेंटल जो उसका इफेक्ट आएगा आपके ऊपर एक वो। दूसरा, जब सफल लोग हैं, जो जितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जब हम उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको एप्रिसिएशन मिलता है, तो एक फियर इस बात का भी मन में बन जाता है कि यदि हम इनके जैसे नहीं बने तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। आखिर क्या ऐसी बातें हैं जिनका एक भय हमारे मन में बना रहता है। तो आज इन सभी मुद्दों पर हम मिलकर के चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे तलाशें एक नई सोच के साथ नई दिशा। दोस्तों बचपन से हमें सिखाया जाता है एक जो तुलना का गेम, जो अक्सर हम बात करते हैं कंपैरिजन का, कि हमेशा से फर्स्ट आइए, गलती नहीं करनी है, हारना नहीं है। धीरे धीरे हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि जो फेलियर है, असफलता है, वो एक तरह की कमजोरी है, यानी यदि आप फेल हो जाते हैं या आप असफल हो जाते हैं तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आमतौर पर हमने देखा होगा बच्चों के स्कूल में मार्क्स कम आते हैं, या किसी को कोई जॉब नहीं मिलती है, या फिर अन्य तरह की यदि कोई भी असफलता रहती है, फेलियर होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो समाज का दबाव जो होता है, सोसाइटी का, वो एक इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है। और जो ये बातें हैं सारी, ये मुख्य रूप से एक क्रिएट करती हैं भय को, जो एक डर जो होता है वो सारा इन सब कारणों की वजह से ही बनता है। साथ ही साथ अगर हम आसपास की बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ने इस दबाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग अपने सक्सेस की स्टोरीज बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ या बहुत ज़्यादा दिखावे के साथ पेश करते हैं, लेकिन फेलियर्स को कोई शेयर नहीं करता।
यानी अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लाइफ किसी ना किसी तरह से दिखाई देती है। कभी कोई अपनी नई जॉब के बारे में बता रहा होता है, या कोई अपने हॉलीडेज इन जो फॉरेन ट्रिप होती है उसके बारे में बता रहा होता है, या किसी ने यदि कोई नई गाड़ी खरीदी है तो वो उसको बहुत शौक के साथ उसके साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करता है सोशल मीडिया अकाउंट पर। लेकिन यहीं पर एक बात जो हमें ध्यान देने वाली है वो होती है कि लोग कभी भी अपनी फेलियर्स को शेयर नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो एक तरह का अनजाना भय हर किसी के मन में बन जाता है कि यदि हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो यही एक वजह है कि जो हमारे जेन जी हैं, जो युवा हैं, वो अपनी छोटी छोटी सी हार को, छोटे छोटे फेलियर्स को जीवन का अंत समझने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरी भीड़ में या पूरे समाज में केवल वही हैं जो हार रहे हैं या जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, बाकी सबकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। यदि हम इसको बड़े लाइटर नोट पे बोलें तो उन व्यक्तियों को, उन जैन जी को या हमारे युवाओं को सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जो जिंदगी है, जो लाइफ है लोगों की, वो एकदम एक फिल्म जैसी लगती है। और उनको एक कंपैरिजन मन में आ जाता है कि जैसे केवल उन्हीं की लाइफ है जो कहीं ना कहीं इंटरवल पे अटक गई है। तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे युवाओं पर आ जाता है, और उसकी वजह से एक तरह का भय उनके मन में बन जाता है और वो अपनी असफलता को लेकर के हमेशा से डरे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करता है। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप सुनिए ये गाना और उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम बात कर रहे हैं उस बात के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, यानी हमारे फेलियर्स, यानी हमारी असफलताएं। जैसा हमने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, नई गाड़ी खरीदी है, फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, या फिर कोई नई बेहतरीन जॉब मिली है तो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम कहीं फेल हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, तो उसकी स्टोरी हम कभी किसी से शेयर नहीं करते। तो आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ। अभी हमने बात की कि असफलता का जो डर है, भय है, उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं। हमने बताया सामाजिक दबाव, और एक बहुत बड़ा कारण बन गया है सोशल मीडिया का दबाव, जो लोगों की सक्सेस स्टोरीज को देख करके हमारे युवाओं में आता है, और वो कहीं ना कहीं सफलता के सामने अपनी असफलता को अंत समझने लगते हैं कि बस यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपकी असफलता ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनती है। आखिर इस फेलियर का मेंटल इफेक्ट क्या आता है? यदि हम साइकोलॉजिकल बात करें कि असफलता का जो मानसिक असर है वो क्या होता है? दोस्तों, असफलता, फेलियर जो होती है, वो कभी भी केवल परिणाम नहीं बदलती, बल्कि हमें समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास जो होता है, वो भी हिल जाता है जब वो असफल होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, या उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो खुद को औरों से कम समझने लगते हैं। उनके मन में एक भाव आ जाता है कि आई एम द इन्फीरियर इन कंपेरिजन टू द अदर पर्सन, लाइक उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है या उसको वो कॉम्पिटेंट ज़्यादा है, मैं नहीं हूँ। साथ ही साथ वो अपने आप को एक इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने आप को उनसे दूर समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं एक सैडनेस वाली स्थिति, निराशा वाली स्थिति बन जाती है, जो लेटर ऑन एक तरह का डिप्रेशन का रूप भी ले लेती है। तो एक बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है कि इसका जो फेलियर है उसका एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इस तरह से आता है। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बताते हैं कि यदि आपको रेगुलर फेलियर्स मिलते हैं, या आप लगातार सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं बार बार, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी चिंता और आपका जो तनाव है, जो आपका स्ट्रेस है, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ख़ासकर यदि हम आजकल के युवाओं की बात करें, जेन जी की बात करें, तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो अभी हाल ही में हुआ नीट का एग्ज़ाम हो गया, या किसी आप सिविल सर्विसेज की बात करें, या किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो उनमें भी असफल होने का जो दबाव है वो हमारे आज के युवाओं पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हर साल लाखों छात्र, आपको आप सब जानते हैं, UPSC, JEE, नीट, बैंकिंग और बहुत तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां करते हैं, लेकिन क्योंकि हर जगह हर इस कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात हो या जॉब की बात हो, वहाँ पर जो सीटें हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। और ऐसी दशा में आप समझ सकते हैं कि यदि कहीं पर किसी पर्टिकुलर सीट की अवेलेबिलिटी थाउजेंड्स में है, और आप लाखों लोग अगर अपीयर हो रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि मोस्ट ऑफ देम विल बी फेल, या वो सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वर लिमिटेड। तो ये बात हमें समझनी होती है कि जब बहुत सारे छात्र सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनको लगने लगता है कि बस यहाँ पर स्टोरी ख़त्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको एक होप अपने अंदर हमेशा से रखनी चाहिए, और यकीन मानिए कि जिन लोगों के मन में ये होप जिंदा रहती है, वो अपने अगले प्रयास में सफल भी होते हैं। यानी समस्या असफलता नहीं है, बल्कि ये सोच है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी कोई कीमत नहीं है। यानी जब एक इन्फीरियरिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, आप ऐसा सोचने लगते हैं, तो दरअसल में ये जो समस्या है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। अदरवाइज असफल होना कोई, इट्स ए काइंड ऑफ कि आपने केवल एक प्रयास किया जो नहीं हुआ सफल, हो सकता है आपका अगला प्रयास सफल हो जाए। तो यहीं से मानसिक दबाव शुरू होता है। और दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि जो परीक्षा है, जो कोई एग्ज़ाम है या एक इंटरव्यू है, ये एक हार आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करती है। ये बात हमारे युवाओं को और हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो इस प्रकार की असफलताओं को अपने दिल पर लगा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा इसकी वजह से दबाव महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं आज फेलियर की, यानी जैसा मैंने भी पहले भी कहा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं ऐसे टॉपिक पर जिस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बताता, वो होता है उसका फेलियर। तो हमने बात की कि असफलता का जो भय है उसके पीछे के फैक्टर क्या हैं, और दूसरी हमने बात की कि असफलता को कभी भी अपने दिल पर लगाना नहीं होता, बल्कि और बेटर प्रयास करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये जो असफलताएं हैं, जो आपके फेलियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं आपके मेंटल स्ट्रेस का, यानी डिप्रेशन का। अब कुछ स्टोरीज मैं आपके सामने, स्टोरीज का कुछ नाम आपके सामने ऐसा लूंगा कि जो हिस्ट्री में हमने देखा है, जब हम फेलियर्स की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हुए हैं कि जो इतिहास बना गए अपनी सफलताओं को जमाने के सामने ला करके। दुनिया को उन्होंने बहुत बेहतरीन चीज़ें दी, लेकिन उनकी सफलताओं के पीछे भी उनके ही असफल होने की कहानियां भी छिपी हुई हैं, जिनके बारे में आम तौर पर हम लोग बात नहीं करते, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बात की कि हमें ऐसे सफल लोगों के जो सफलता वाले कार्य हैं उसके पीछे जो उनकी फेलियर की जो स्टोरी थी उनको भी समझना चाहिए, वो एक तरह का मोटिवेशन देती हैं। उसी में आपने आमतौर पर बात सुनी होगी कि जब हम बल्ब का, जिसने आविष्कार किया था द फेमस थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली का बल्ब सबसे पहली बार बनाया था, उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए और वो सफल हो गए। तो जब किसी ने उनसे पूछा कि आखिर हम आमतौर पर बात करते हैं कि हमारी असफलता भी हमें कुछ सिखाती है, तो थॉमस एडिसन ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मुझे इस प्रकार के जो असफल प्रयोग थे उनसे एक बात सीखने को मिली है कि मुझे तकरीबन 1000 उन्होंने प्रयोग किए थे बल्ब बनाने के जो उनके असफल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 1000 वो तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में एक पॉजिटिविटी जो छिपी हुई है वो ये कि थॉमस एडिसन ने इतना समझा कि असफल होना भी अपने आप में आपको एक लर्निंग दे करके जाता है, सीख दे करके जाता है, और उसके बाद जब वो सफल हुए, उन्होंने बल्ब बनाया, तो दुनिया उनको जानती है आज बिजली के बल्ब के आविष्कारक के रूप में। साथ ही साथ हम बात करते हैं US प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की। उन्होंने बहुत सारे चुनाव हारे, लेकिन फाइनली वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो उनका जो प्रयास थे, यदि वो उसको दिल पे लगा लेते असफलता को, तो वो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट नहीं बन पाते इतने बड़े राष्ट्र के। साथ ही साथ हम बात करें एक स्टार ऑफ द मिलेनियम, हम बॉलीवुड की अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, तो शायद हमारे श्रोताओं को नहीं पता हो इस बात का, या कुछ लोग जानते भी हों कि जब अमिताभ जी ने सबसे पहली बार अपनी आवाज़ का ऑडिशन दिया था रेडियो में, तो रेडियो ने उनको रिजेक्ट कर दिया था केवल उनकी आवाज़ की वजह से। और यकीन मानिए, आज वही बच्चन साहब की आवाज़ है जिसको बहुत सारी कंपनियां केवल अपने एडवर्टीजमेंट में या फिल्मों में, भी आपने अक्सर देखा होगा, वॉइस ओवर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो आप समझिए कितना बड़ा अंतर है कि एक आवाज़ को जिसको रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कभी, आज वो घर घर में सुनाई देती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। साथ ही साथ हम बात करते हैं हमारे देश के महान पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कलाम की बहुत इच्छा थी कि वो इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन करें, लेकिन वो किसी वजह से उसमें नहीं चयन हो पाया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर कलाम ने कभी भी इस बात को अपने दिल पर नहीं लगाया, और आज पूरी दुनिया उनको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में जानती है, देश के, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानती है। तो एक बहुत बड़ी जो कारण उनकी सफलताओं में, जो जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे थॉमस एडिसन का, या अब्राहम लिंकन का नाम लिया, या बच्चन साहब का नाम लिया, या फिर डॉक्टर कलाम का, ऐसी ही अनगिनत कहानियां दोस्तों हमारे जीवन में हमारे सामने होती हैं, जिन्होंने अपनी असफलताओं से हमेशा सीखा, आगे बढ़े, और उन्होंने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। बहुत ज़्यादा जो उनका जुझारूपन था, उनका हार ना मानना एक बहुत बड़ा कारण बना उनके जीवन में सफलताओं के आने का। दोस्तों, सफल लोगों में और सामान्य लोगों में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये कि सफल लोग अपनी असफलता को कभी भी अंत नहीं मानते। यानी सक्सेस होने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना और नए जोश के साथ नए शुरुआत करना, फेलियर को भूल करके अपने सफल होने के प्रयासों की तरफ। यानी वो कोशिश करते हैं कि अपने फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखें,
तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा सबक है जिसको हमारे युवाओं को, इवन मैं तो कहता हूँ हर किसी इंसान को अपने जीवन में समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि असफलता का कोई भय मन में ना रखें, बल्कि उसको एक रूटीन प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट करें और सफल होने के अपने प्रयास जो हैं, यानी हार ना मानना, अपने आप को हमेशा से सफलता की ओर प्रयासरत रहना चाहिए, अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी बात के बारे में जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, यानी किसी भी इंसान के फेलियर की या अनसक्सेसफुल होने के जो रीजंस हैं, उनका जो भय है, उसका डर, और उससे क्या मोटिवेशन हमें लेना चाहिए, खास करके हमारे युवाओं को। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, अभी हमने बात की, हमने आपको कुछ स्टोरीज बताई, चाहे थॉमस एडिसन की, अब्राहम लिंकन की, या डॉक्टर कलाम की हमने बात की, या बच्चन साहब की बात की। तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमें उनको सुनना और समझना चाहिए। हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे असफलता की जो कहानियां हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रेरणादायक होती हैं, और वो उनकी जो सफलता की जो स्टोरी है उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए फायदेमंद साबित होती हैं, यदि हम उन कहानियों को समझें। आखिर असफलता जो है वो हमें सिखाती क्या है? दोस्तों, कई बार सफलता इंसान को आत्मसंतुष्ट बना देती है, यानी यदि आप सक्सेस हो गए तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट जो असफलता है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, यानी हमें कहीं ना कहीं एक थॉट दिमाग में आता है कि आखिर हम असफल हुए क्यों। क्योंकि यदि आप सफल हो गए तो आप सेटिस्फाई होकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो आप थॉट करते हैं, मंथन करते हैं कि आखिर असफलता के कारण क्या थे। असफलता हमें सिखाती है धैर्य, यानी पेशेंस, एक बहुत बड़ा कहते हैं कि एक बाई प्रोडक्ट है अनसक्सेसफुल होने का या फेलियर का, कि वो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस सिखाती है। साथ ही साथ आप विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेस का फिर भी एक तरह का अहंकार किसी व्यक्ति के मन में पैदा हो जाता है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल होता है, फेलियर होता है, उसके साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर विनम्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो लोग कंपैरेटिवली थोड़े विनम्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सफल व्यक्ति हमेशा अहंकारी होते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखा गया है। साथ ही साथ असफलता जब किसी व्यक्ति के जीवन में होती है या वो फेल हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी आपको असफलता जो है वो और ज़्यादा मेहनत करना, परिश्रम करना भी सिखाती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपका सेल्फ एनालिसिस है, यानी आत्मविश्लेषण की हम बात करें, तो वो भी केवल असफलता होने पर ही हम कर पाते हैं, अदरवाइज हमें उसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। और एक जो सबसे बड़ी सीख, जो सबसे बड़ी ताकत एक व्यक्ति को अपने असफल होने से मिलती है, वो होती है उसको दोबारा उठ खड़े होने की ताकत। यानी यदि आप अपनी असफलता को दिल पर नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस बात की ताकत और आ जाती है कि आप दोबारा से अपने प्रयासों को जारी रख पाएं। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आपको ताकत मिलती है दोबारा से उठ खड़े होने की। यदि आप प्रयासों में सफल होना चाहते हैं तो आपको वो ताकत लगानी ही पड़ती है। साथ ही साथ हमें चीज़ समझना चाहिए कि जब चीज़ें आसान होती हैं, आसान होना यानी जब हम सफल हो जाते हैं, तो हम अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यदि हम असफल हो जाते हैं, जब हार मिल जाती है, तो इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, यानी हम एक तरह की आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में चले जाते हैं कि गलती कहाँ हुई थी, आखिर हमारी तैयारी में कमी क्या थी, या हमें जो अपना सफलता की ओर जो हमने इस काम को करने के जो प्रयास किए हैं, क्या उसको बदलने की ज़रूरत है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कभी भी स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स कमाते हैं, तो हम ज़्यादा अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई। क्योंकि यदि आपके पास मार्क्स अच्छे आ गए, तब आपको बेशक ये ध्यान ना रहे कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, लेकिन यदि आप कम मार्क्स आते हैं या तरह से आप फेल हो जाते हैं, तब आप ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, यानी आप अपने आप को एनालाइज बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और यहीं से आपकी जो ग्रोथ है उसकी स्टार्टिंग होती है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस भी हैं जो इनिशियली कभी भी फ्लॉप हुए, फेल हुए, लेकिन जब उन्होंने एनालाइज किया और उन तरीकों में सुधार किए, तो उन्होंने बेहतरीन और ऐतिहासिक सफलताएं भी पाई थी। बात साथ ही साथ हमने कई बार देखा होगा, आमतौर पर बॉलीवुड की मूवीज़ की भी बात करते हैं, कभी कभी होता है कि आपने एक पिक्चर देखी, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, लेकिन बाद में वही मूवीज़ बहुत तरह की क्लासिक बन जाती हैं, सुपरहिट हो जाती हैं। वो भी एक कारण होता है कि हम जब नज़रिया बदलते हैं या हम एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को, तो हम बेहतर प्रतिक्रिया दे पाते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यानी सीधी सी बात अगर हम बात करें, तो हर असफल शुरुआत कभी भी अंतिम परिणाम तय नहीं करती, यानी उसमें हमेशा से स्कोप रहता है कुछ बेहतर करने का, यानी नया तरीके से प्रयास जारी रखने का।
तो दोस्तों फिर हाजिर होते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं असफलता को लेकर, जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। हमारे जीवन में जिस प्रकार से सक्सेस महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है फेलियर्स। यानी कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। कभी कभी होता है कि हमारे 100 प्रयास असफल हुए, लेकिन जो 101वां प्रयास है उसी के अंदर छुपी होती है सफलता की चाबी। तो आमतौर पर हम कहते हैं कि यदि हम अपने प्रयासों को जारी रखें तो पता नहीं कौन सा हमारा अगला कदम हमें सफल बना दे। तो जो हार ना मानने वाला जज्बा है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। और हमें समझना चाहिए, खासकर हमारे युवाओं को, जेन जी को, कि जीवन में असफल होना कोई अपने आप में अंत नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आखिर असफलता में हमारी जो सोसाइटी है या हमारी जो फैमिली है उसका क्या रोल होना चाहिए, आज हम अभी हम चर्चा करते हैं इस बात के बारे में। दोस्तों, कई बार असफलता से ज़्यादा लोगों की बातें दर्द देती हैं। यानी हम देखते हैं कि आपको अपने फेलियर से एक बार को सेटिस्फेक्शन शायद मन में हो भी कि हम दोबारा प्रयास कर लेंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे, कुछ सुधार करेंगे, तो वो हम अपने आप को समझा लेते हैं। लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया है, जिस प्रकार से आपने आमतौर पर देखा होगा कि यदि किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो सीधा सीधा सुनने को मिल जाती है कि इतना पढ़कर भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती, या देखो फलां व्यक्ति का बेटा इतना बढ़िया सक्सेस कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं और ऐसी बातें अक्सर इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, अपनी यात्रा होती है, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। तो बहुत लोग जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ देर से, लेकिन हम उन बातों की परवाह किए बिना अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार के शब्दों में भी दे देते हैं। तो हमें परहेज करना चाहिए कि हम इस प्रकार का वातावरण ना बनाएं, ताकि उनको हौसला मिले अपने और प्रयासों को बेहतर करने का। आमतौर पर आपने देखा होगा कुछ लोग नौकरी में सफल होते हैं, बहुत अच्छी जॉब कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बेहतर करते हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में। तो यदि कोई व्यक्ति खेल में सफल है और पढ़ाई में असफल हो पा रहा है तो ये कोई असफलता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हर व्यक्ति की अपनी एक अपना क्षेत्र होता है, उसका विशेषता होती है, वो उसमें सफल होता है। यदि किसी और क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहा है तो उसको हम असफलता की कैटेगरी में नहीं रखें। साथ ही साथ ऐसे समय पे जब कभी भी फेलियर होती है तो उस टाइम पे जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, उनका समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है, या हम किसी बिजनेस की बात करें कि आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, या स्टडी की बात करें कि आपके पढ़ाई में मार्क्स कम आए, या आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए, तो उस समय पर उस व्यक्ति को जिसने वो प्रयास किया और वो असफल हुआ, उसे तानों की नहीं बल्कि आपके बहुत ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि यदि हम ऐसा वातावरण समाज में बनाएंगे, परिवार में बनाएंगे, तो उन लोगों के जीवन में सफल होने के जो कारण है, उसकी जो संभावना है, वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी, ना कि उनको ताने देने से किसी प्रकार का कोई सकारात्मक परिवर्तन आना है। तो आप समझिए दोस्तों कि जब कभी भी आपके आसपास किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, चाहे वो किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं, या कोई बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है, या नौकरी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उस समय पे प्रयास कीजिए कि उसको सहानुभूति दें, उसको जोश दें, उसे समझाएं कि ये वाली असफलता किसी प्रकार का जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। हमें उसको बड़े खुले दिल से, खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए और एनालाइज करें कि आखिर गलती कहाँ पर हुई, ताकि हम और बेहतर प्रयास कर सकें। दोस्तों, कई बार एक सकारात्मक वाक्य, आपकी कही हुई जो एक पॉजिटिव लाइन है, वो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि बहुत सारे युवा, हमारे जो जेन जी के बच्चे हैं, वो आजकल ये समझ लेते हैं कि यदि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस नहीं मिली तो यहाँ पर आकर के सारी दुनिया ख़त्म या हमारी ज़िंदगी ख़त्म। तो ऐसे में कई बार वो बड़े गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की, पॉजिटिव वातावरण बनाने की, और साथ ही साथ अपने बच्चों को हम आमतौर पर सिखाते हैं कि यदि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपको ये हो जाएगा, यदि आप परीक्षा में ये कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, या आपको ये जॉब मिल जाती है तो इस तरह से बेहतर कुछ हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझाना चाहिए कि इन केस अगर आपको ये सब नहीं मिलता है तो भी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं। हमें विकल्पों पर भी ध्यान उतना ही दे देना चाहिए, ना कि केवल उस
अमुक क्षेत्र में मिली हुई असफलता को हम दिल पर लगा लें। तो इस प्रकार से हम उनको यदि मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, तो उनके जीवन में और क्षेत्रों में या उसी क्षेत्र में पुनः प्रयास करने पर सफल होने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आज हमने बात की असफलता की, यानी फेलियर्स जो सक्सेस की स्टोरीज के पीछे कहीं ना कहीं छिपा होता है, और हम आमतौर पर उसके बारे में कोई बात नहीं करते, जबकि उसके अंदर बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी छिपी हुई होती हैं। यदि हम उनको सबके सामने बताएं तो लोग और बेहतर तरीके से प्रयास करके नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, अपने आप में हिस्ट्री कायम कर सकते हैं। आज हमने बात की बहुत सारे पहलुओं की असफलता को लेकर के, लेकिन आखिरकार हार से जीत का रास्ता क्या है? जिस प्रकार से हमने बात की कि असफल होने के बाद जो सफलता की सीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक पहला पड़ाव है या पहला कदम है, उसमें असफल हो जाना वो हमें कभी भी दिल पर नहीं लगाना चाहिए असफलता को। दोस्तों, असफलता से सीखने की कला का मतलब है कि सबसे पहले आपको हार को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यदि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ना आप एनालाइज कर पाएंगे और ना ही आप उससे मिलने वाले मानसिक दबाव या मानसिक तनाव से उबर पाएंगे। यानी आपको खुद को हारने नहीं देना है किसी भी सूरत में। अगर असफलता मिले तो आपको करना क्या चाहिए? यदि हम फेलियर की बात करें तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि खुद को थोड़ा समय दें, यानी आप थोड़ा सा पॉज लें। आपको उस समय पर अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। साथ ही आप एनालाइज करें, आत्मविश्लेषण, जैसे हमने अभी आपसे पीछे भी चर्चा की, तो अपनी गलतियों को समझें कि आखिर उसको करने में हमसे कहाँ गलती हुई है, और उसको बड़े खुले दिल से स्वीकार भी करें। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़, दूसरों से तुलना ना करें। यानी आपको लगता है कि एक ही चीज़ पर आपने प्रयास किया, फलां व्यक्ति को जॉब मिल गई, वो सफल हो गया उस कंपटीशन एग्जाम में, मैं नहीं हुआ, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। केवल आपको फोकस करना चाहिए कि आखिर आपसे कहां पर कमी रह गई। साथ ही आपको बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से नई एक प्लानिंग करनी चाहिए, नई योजना बनानी चाहिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुनः प्रयास आरंभ कर देने चाहिए, यानी एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, हर सफल इंसान के पीछे संघर्ष की कहानी होती है, यानी बिना स्ट्रगल के किसी को कोई सफलता नहीं मिलती। यदि कोई ऐसा कहता भी है तो कहीं ना कहीं उसने सफल होने के बाद पीछे मुड़ करके अपने संघर्ष को कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया या देखा नहीं है। लेकिन हर सफल कहानी के पीछे एक संघर्ष जरूर छिपा होता है। कोई भी कभी रातों रात सफल नहीं बनता। और एक बहुत ही सुंदर हमारे जीवन की बात यदि हम देखते हैं कि जो पतंग होती है वो हमेशा हवा के खिलाफ उड़ती है, हवा के साथ नहीं। यानी मुश्किलें ही इंसान को ऊपर उठना सिखाती है। तो एक छोटी सी जो पतंग हवा में हम धागे से उड़ाते हैं, वो कितना बड़ा जीवन का हमें संदेश दे करके जाती है, ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है। और जीवन का एक सबसे बड़ा सच ही है। और जो एक बड़ी बात हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए फेलियर से, वो दोस्तों वो ये है कि असफलता आपको ख़त्म करने नहीं आती है। यानी वो कोई अंत नहीं है, बल्कि वो आपको मजबूत बनाने आती है। यानी जितना आप अगर असफल होकर के दोबारा से प्रयास करने के लिए उठते हैं आत्मविश्लेषण के साथ, अपनी गलतियों को समझने के साथ, तो आप यकीन मानिए कि आप एक बेहतर मजबूत स्थिति में एक नई शुरुआत करते हैं, तो आपको सफलता मिलनी भी निश्चित हो जाती है। और ये एक जो बात है, इसको यदि हम दूसरे तरीके से समझें कि हमें समझने की आवश्यकता ये भी है कि जो असफलता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का अंत नहीं है। बहुत सारे प्रयास अभी हमारे पास और बाकी होते हैं। यदि हम उन्हें अपनाते हैं तो हम सफल जरूर होंगे। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ऐसे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए जो जीवन में असफलता का कभी कभी मुंह देखते हैं या वो फेल हो जाते हैं, तो उनको उस समय पे इन छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है, जो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने समझने की कोशिश की कि आखिर असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। हारना गलत नहीं, पर हार कर रुक जाना गलत है। जीवन में गिरना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही असली ताकत है। दोस्तों, नई शुरुआत करना अपने आप में एक बहुत

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे

0: उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल, जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल, जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती ही, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है, तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए, पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

जितने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उसका निपटारा कर लेना चाहते हो। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते हैं। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नर्क में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम है, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना लिए ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्रायश्चित कर रहे हो। 1,00,000 की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन 1,00,000 की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया, या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई, मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती, सिर्फ अंधेरी दीवानों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा ना मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं, आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। शास्त्र शब्द दे सकते हैं सत्य नहीं, अंधेरे की दीवारों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी है। और जो व्यक्ति दूसरों के दोष पर ध्यान देता है वो अपने दोष पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूल ही है, जिनको पुण्य केवल ना समझ कह सकते, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा, छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो, सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन। अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं, और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं।
बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तत्स्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के, न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना, तुम सिर्फ देखना। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है, अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। या जैसे कोई लेट गया है घास पर, क्षण भर आकाश में चलते बादलों को देखता है, उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तटस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है, जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो, तुम मात्र दृष्टा रहो। जिसको उपनिषद साक्षी कहते हैं, उसी को बुद्ध अवलोकन कहते हैं। बस देखो, जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं, एक तटस्थ भाव, एक फासले पर खड़े हुए चुपचाप, और एक अद्भुत क्रांति घटती। जितने तुम तटस्थ होते जाते हो, उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने कृत्यों से अलग हो, पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग। और ये जो अलगपन है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष। जो पाप के साथ अपने को एक समझता है, वो भ्रांति में है। जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है, वो भी भ्रांति में। उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते, जैसे स्वप्न में किए हो कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हो कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो, स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौंध जाए तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हाँ, दूसरे के कृत अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे। कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे, हंसोगे, किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा, जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है। अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है। जरा हो साधना। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो, और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति राग द्वेष पैदा हुआ।
तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो, अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया, दिन भर उसकी ताजगी रहेगी और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की, लह रह के रह रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी, तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है, तुमने नहीं तौला बस देखते रहे तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का परमात्मा का बुद्धि को कभी बताया नहीं। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। पराए को कहीं कोई भेद की बातें बताता है। बुद्धि पराई है, उधार है, हृदय तुम्हारा है, इसे थोड़ा समझो। जब तुम पैदा हुए तो हृदय लेके पैदा होते हो, बुद्धि समाज देता है, संस्कार देते हैं, शिक्षा देती है, घर परिवार सभ्यता देती है। तो हिंदू के पास एक तरह की बुद्धि होती, मुसलमान के पास दूसरी तरह की बुद्धि होती, जैन के पास तीसरी तरह की बुद्धि होती, क्योंकि तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की है। रूस में कोई पैदा होता है तो उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी, ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है, इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था। जब तुमने आंख खोली थी तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन। जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्ण युक्त है, लेकिन फिर भी गंध सुन, ऐसा ही पांडित्य है। रंग बहुत है उसमें, सुगंध बिल्कुल नहीं। जीवन में सुगंध तो आती है आचरण से, तुम जो जानते हो उससे जीवन में सुगंध नहीं आती, वो तो मौसमी फूल है, दूर से लुभावना लग सकता है, पास आने पे तुम उसे कागजी पाओगे। आदमी भला धोखे में आ जाए, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तितलियां धोखे में नहीं आती, भौरे धोखे में नहीं आते। भौरे धोखे में नहीं आते, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। तितलियां धोखे में नहीं आती, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। सम्राट सोलोमन के जीवन में कथा है, एक रानी उसके प्रेम में थी और उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वो इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते, अगर है तो ही उससे विवाह करना है। तो वो आई, उसने कई परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, उसने एक परीक्षा ये भी की
वो आई एक दिन राज दरबार में दूर खड़ी हो गई। हाथ में उसने दो गुलदस्ते के फूलों के गुलदस्ते लाई थी और उसने सोलमन से कहा दूर से कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफी था। वो उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के, फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलमन ने अपने दरबारियों को कहा सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो। खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए। न तो दरबारी समझे न वो रानी समझी कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन सोलमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से असली फूल हैं कौन से नकली, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से और वो जो असली फूल थे उन पे जाकर बैठ गई। न दरबारियों को पता चला न उस रानी को पता चला। वो कहने लगी कैसे आपने पहचाना। सोलमन ने कहा तुम मुझे धोखा दे सकती हो लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं। मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे। बुद्ध कहते हैं जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता है सोचने से न लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा। जियोगे तो ही पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना। जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना। अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे ये हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध ना आएगी। प्रार्थना के संबंध में जान लेना प्रार्थना को जानना नहीं। प्रार्थना को तो वही जानता है जो करता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो डूबता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो प्रार्थना में मिट जाता है। जब प्रार्थना तुम्हारा अस्तित्व बनती, आचरण का अर्थ है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्तित्व हो। तुम जो जानते हो वो सिर्फ ऊपर से चिपकी हुई बात न रह जाए, उसकी जड़ें तुम्हारे जीवन में फैले, तुम्हारे भीतर से वो बात उठे, वो तुम्हारी अपनी हो। ऊपर से इकट्ठा ज्ञान ऐसा है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो लेकिन पचा ना सके, उससे तुम बीमार पड़ोगे, उससे शरीर रुग्ण होगा। पचा हुआ भोजन जीवन देता है, ऊर्जा देता है, अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करने लगता है। भूखे भी बच सकते हैं लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा भोजन से जल्दी मर जाते हैं, बोझ हो जाता है पूरी व्यवस्था पर। और ज्ञान का तो भारी बोझ है। तुम्हारा चैतन्य अगर दब गया है तो तुम्हारे ज्ञान के बोझ तुम जानते ज्यादा हो जिए कम हो, एक असंतुलन हो गया है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीने में बदलते जाओ, थोड़ा भोजन करो लेकिन ठीक से चबाओ, ठीक से पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाए। होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी। अक्ल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, अक्ल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे। खुश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी। केवल वे ही समझ पाएंगे जो बुद्धि से गहरे उतर कर हृदय का दिया जलाएंगे। हृदय के दिए से अर्थ है जो जानते उसे जीवन बना लेंगे, जो समझा है वो समझ ही ना हो कि समाधि बन जाएगी, जो सुना है वो सुना ही नहीं पी लिया है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। थोड़ा जानो जियो ज्यादा और तुम पहुंच जाओगे। ज्यादा तुमने जाना और जिया कुछ भी नहीं तो तुम न पहुंच पाओगे।
तब तुम दूसरों की गायों का ही हिसाब रखते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई गाय नहीं, तुम गायों के रखवाले ही रह जाओगे, मालिक ना हो पाओगे। पंडित मत बनना, पापी भी पहुंच जाते हैं, पंडित नहीं पहुंचते, क्योंकि पापी भी आज नहीं कल जग जाएगा, दुख जगाता है। पंडित एक सुख का सपना देख रहा है कि जानता है, बिना जाने शास्त्र से बचना, शास्त्र जंजीर हो सकता है, सुभाषित सुंदर वचन जहर हो सकते। जिस चीज को भी तुम जीवन में रूपांतरित न कर लोगे वही जहर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था में जो भी चीज पड़ी रह जाएगी बिना रूपांतरित हुए, बिना लहू मांस मज्जा बने, वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम करने लगेगी। पंडित का अस्तित्व विषाक्त हो जाता है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती। तो ध्यान इस पर हो कि मेरा आचरण क्या है, मेरा होने का ढंग क्या है, मेरे जीवन की शैली क्या है। परमात्मा को मानो या न मानो, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है घर लौटने वाले का, संसार की तरफ जाने वाले का नहीं, प्रत्याहार करने वाले का, अपनी चेतना के केंद्र की तरफ आने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है, व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले का नहीं, सिर्फ हीरे ही चुनने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण हंस जैसा है कि मोती चुन लेता है, कि दूध और पानी में दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है, तुमने कभी समझा क्यों? दो कारणों से। एक तो हंस सार को असार से अलग कर लेता है, और दूसरा हंस सभी दिशाओं में गतिवान है, वो जल में तैर सकता है, जमीन पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, उसके स्वातंत्र पर कहीं कोई सीमा नहीं। जमीन हो तो चल लेता है, सागर हो तो तैर लेता है, आकाश हो तो उड़ लेता है। तीनों आयामों में, तीनों डायमेंशंस में उसके कहीं कोई रुकावट नहीं। जिस दिन तुम सार और असार को पहचानने लगोगे, उस दिन तुम्हारा स्वातंत्र भी इतना ही अपरसीम हो जाएगा जैसा हंस का। इसलिए हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है। न जानने से ही बंधे हो, जमीन पर ही ठीक से रहना नहीं आता, पानी पे चलने की तो बात अलग, आकाश में उड़ना तो बहुत दूर। शरीर में ही ठीक से रहना नहीं आता, मन की तो बात अलग, आत्मा की तो बात बहुत दूर। शरीर यानी जमीन, मन यानी जल, आत्मा यानी आकाश। इसलिए मन जल की तरह तरंगायत, शरीर स्थिर है पृथ्वी की तरह, 70 साल तक डटा रहता है, गिर जाता है उसी पृथ्वी में जिससे बनता है। मन बिल्कुल पानी की तरह, पारे की तरह कहो, छितर छितर जाता है। आत्मा आकाश की तरह निर्मल है, कितने ही बादल घिरे, कोई बादल धुएं की एक रेखा भी पीछे नहीं छोड़ गया। कितनी ही पृथ्वियां बनी और खो गई, कितने ही चांद तारे निर्मित हुए और विलीन हो गए, आकाश कूटस्थ है, अपनी जगह हिलता डुलता नहीं। शरीर में ही रहना तुमसे नहीं हो पाता, मन की तो बात अलग, मन में जाते ही चिंता पकड़ती है, विचारों का उहा बहुत पकड़ता है। आत्मा तो फिर बहुत दूर है, क्योंकि आत्मा यानी निर्विचार ध्यान, आत्मा यानी समाधि, आकाश मुक्त असीम। परमहंस कहा है ज्ञानियों को, लेकिन ज्ञान को आचरण में बदलने की कीमिया, बदलने का रहस्य समझ लेना चाहिए। तुम समझ भी लेते हो कभी कोई बात, इस स्फटिक मणि की भांति साफ दिखाई पड़ती है कि समझ में आ गई। अगर तुम उसी क्षण उसका उपयोग करने लगो तो और निखरती जाए। तुम कहते हो कल उपयोग कर लेंगे, परसों उपयोग कर लेंगे, अभी समझ में आ गई संभाल के रख ले। एक मित्र यहां सुनने आते थे,
डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे। मैंने उनको देखा कि जब भी वो सुनते तो बैठ के बस नोट ले रहे, फिर मुझे मिलने आए तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। कहते तो आप इतनी अद्भुत बातें कह रहे हैं, फिर नोट कर लेना जरूरी है, पीछे काम पड़ेंगे। जब मैं समझा रहा हूं तब वो समझ नहीं रहे, वो कल पे टाल रहे हैं, समझ तक को कल पे टाल रहे हैं, करने की तो बात अलग, वो नोट ले रहे हैं अभी, फिर पीछे कभी जब जरूरत होगी काम पड़ जाएगी। तुम अभी मौजूद थे, मैं अभी मौजूद था, अभी ही उतर जाने देते हृदय में, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बड़ा कीमती काम कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बचाव है समझने से, समझना नहीं। सामने एक घटना घट सकती थी अभी और यही, मैं तुम्हारी आंख में झांकने को राजी था, तुम आंख बचा लिए, नोट करने लगे। मैंने हाथ फैलाया था तुम्हें उठा लूं बाहर तुम्हारे गड्ढे से, तुम्हारा हाथ तुमने व्यस्त कर लिया, तुम नोट लेने लगे। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने पुकार न सुनी, तुमने अपनी किताब में कुछ शब्द अंकित कर लिए, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुम अभी जीवित सत्य को न समझ पाए, कल के लिए टाल दिया, करोगे कब? टालना मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है, जो समझ में आ जाए उसे उसी क्षण करना, क्योंकि करने से स्वाद आएगा, स्वाद आते से करने की और भावना जगेगी, और करने से और स्वाद आएगा। अचानक एक दिन तुम पाओगे जिसे तुमने ज्ञान की तरह सोचा था वो ज्ञान नहीं रहा, आचरण बन गया। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। और ध्यान रखना, जो भी जाना जा सकता है वो जीकर ही जाना जा सकता है, नाहक की बहस में मत पड़ना, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का ही उपाय है। और व्यर्थ के तर्क जाल में मत उलझना, क्योंकि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे कहने वाले कि इसमें क्या रखा है, लेकिन गौर से देख लेना कि जो कह रहा है उसने कुछ अनुभव लिया है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, कोई हर्षा नहीं, तर्क करें, लेकिन पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उनके पास भी कुछ स्वाद होता था, तुम उसी की बात सुनना जिसके पास कुछ स्वाद हो, अन्यथा इस जगत में आलोचक बहुत है, निंदक बहुत है। किसी भी चीज को गलत कह देना जितना आसान है, उतनी आसान और कोई बात नहीं। ईश्वर को कह देना नहीं है कितना आसान है कहना बहुत कठिन, क्योंकि जो है कहे उसे सिद्ध करना पड़े, जो नहीं कहे उसे तो सिद्ध करने का सवाल ही नहीं रहा, जब है ही नहीं तो सिद्ध क्या करना है। प्रेम को इनकार कर देना कितना आसान है, लेकिन प्रेम को हाँ करना कितना कठिन है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होगा फिर एक आंख से गुजरना। नहीं बहुत आसान है, इसलिए कायर हमेशा नहीं कहते थे जिंदगी चला लेते, हालांकि वो दिखते बड़े बहादुर। कोई आदमी कहता ईश्वर नहीं, लगता है बड़ी हिम्मत का आदमी, अपनी इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं कायर नहीं कह के काम चला लेते, क्योंकि जिस चीज को नहीं कह दिया उसे न सिद्ध करने की जरूरत, न जीवन में उतारने की जरूरत, न दांव लगाने की जरूरत, न मार्ग चलने की जरूरत। जिसने हाँ कहा वही बहादुर है, वही साहसी है। लेकिन हाँ भी नपुंसक हो सकती है, अगर तुमने सिर्फ बहाने के लिए हाँ कह दी हो। अगर किसी ने कहा ईश्वर है, तुमने कहा होगा भाई, जरूर होगा, सिर्फ झंझट छुटाने को, कि इतनी भी किसको फुर्सत है कि बकवास करे, इतना भी किसके पास समय है कि विवाद करे, अब कौन झंझट करे कि है या नहीं, कि बिल्कुल ठीक जरूर होगा। अगर तुमने हाँ भी सिर्फ बचाव के लिए कही तो तुम्हारी हाँ नहीं ही है, उस हाँ में हाँ नहीं, नहीं ही है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उसी के पास पूछना जिसके जीवन में कोई सुगंध हो और सुवास, और जिसके जीवन में कोई स्वाद हो।
जिसके ओठों से जिसकी श्वासों से शराब की थोड़ी गंध आती हो उसी से शराब की बात पूछना, जिसके आसपास थोड़े मस्ती की हवा हो जिसकी आंखों में खुमार हो उसी से पूछना। हर किसी से मत पूछने बैठ जाना और हर किसी की बात मत सुन लेना, नहीं तो जिंदगी को ऐसे ही गंवा दोगे। ना समझ बहुत है, कायर बहुत है, आलोचक बहुत है, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये सब बचाव की तरकीबें हैं। जिंदगी को जानने वाले बहुत कम हैं, और तुम भी कहीं इसी भीड़ में ना खो जाना। खो ही जाओगे अगर जीवन में कोई सूत्र तुम्हारे पास आए और तुमने उनका जल्दी उपयोग न कर लिया, वे जंग खा जाते। सत्य बड़ी नाजुक चीज है, वो बीज की तरह है, तुम उसे हृदय में ले जाओ तक क्षण तो वो अंकुरित हो जाता है। बीज को रखे रहो तिजोरियों में संभाल के, वो सड़ जाएगा। सारे सत्य तुम्हारे शास्त्रों की तिजोरियों में सड़ गए। ऐसा नहीं है कि सत्यों की कोई कमी है, सत्य बहुत है, शास्त्र भरे पड़े लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे जीवन के शास्त्र में जब तक कोई सत्य उतर कर खून मांस मज्जाना बन जाए, पच न जाए, तुम्हारे रग रेसे में न दौड़ने लगे, तब तक किसी काम का नहीं। इसे स्मरण रखना। जैसे फूलों से मालाएं बनती हैं, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को बहुत पुण्य करने चाहिए। जीवन दो ढंग का हो सकता है, बुद्ध ने बड़ा ठीक प्रतीक चुना है। एक तो जीवन ऐसा होता है जिसको तुम ज्यादा से ज्यादा फूलों का ढेर कह सकते हो, और एक जीवन ऐसा होता है जिसे तुम फूलों की माला कह सकते हो। माला और ढेर में बड़ा फर्क है। माला में एक संयोजन है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, एक लयबद्धता है। माला में एक जुटता है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। फूलों का एक ढेर है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें दो फूल जुड़े नहीं है किसी अन्य संयुक्त धागे से। सब फूल अलग अलग है, बिखरे पड़े। तो या तो जीवन ऐसा हो सकता है कि जीवन के सब क्षण बिखरे पड़े, एक क्षण से दूसरे क्षण के भीतर दौड़ती हुई कोई जीवन धारा नहीं, कोई धागा नहीं जो सबको जोड़ता हो। अधिक लोगों का जीवन क्षणों का ढेर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तुम्हें भी उतने ही क्षण मिलते हैं जितने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का जीवन एक माला है, हर क्षण परोया हुआ है, हर क्षण अपने पीछे क्षण से जुड़ा है, आगे क्षण से जुड़ा है। जन्म मृत्यु एक श्रृंखला में बंधे, एक अनसयुत संगीत है। इसे थोड़ा समझो, तुम ऐसे हो जैसे वर्णमाला के अक्षर, बुद्ध ऐसे है जैसे उन्हीं अक्षरों से बना एक गीत। गीत में और वर्णमाला के अक्षरों में कोई फर्क नहीं है, वही अक्षर है। वर्णमाला में जितना है उतना ही सभी गीतों में। मार्क ट्वेन के जीवन में घटना है, उसके एक मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेशक था, मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के। मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था लेकिन उपदेशक की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफा निमंत्रित किया तो एक बार गया, सामने की कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो श्रेष्ठतम उसके जीवन में भाव में था कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था, लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली, वैसे ही बैठा रहा आकड़ा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? मार्क ट्वेन का बातें सब उधार, मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़ के बोला है। उस आदमी ने कहा, चकित कर रहे हो, कोई एक आध वाक्य कोई एक टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है वो मैंने किसी किताब से लिया नहीं। मार्क ट्वेन का शर्त बत्ते हो, $100 की शर्त लग गई। उपदेष्टा सोचता था निश्चित ही शर्त में जीत जाऊंगा, ये पागल किस बात की शर्त लगा रहा है, जो मैं बोला हूँ ये पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता, संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था, मार्क ट्वेन ने दूसरे दिन एक डिक्शनरी बेच दी और लिखा, इसमें सब है जो भी तुम बोले,
एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्द सा। पर डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फर्क है, शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फर्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वही फर्क तुम में और बुद्ध में। तुम केवल शब्दकोश, फूल की भीर एक ढेर, अनसयूत नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बनता है। माला उसी का जीवन बनता है जो अपने जीवन को एक साधना देता है, एक अनुशासन देता है, जो अपने जीवन को होश

काबले इल्फात तू ही नहीं। परमात्मा से क्या शिकायत करनी कि आनंद नहीं है जीवन में। काबले इल्तिफात तू ही नहीं, परमात्मा की कृपा के योग्य तू ही नहीं, इसलिए किसी और से शिकवा मत कर। तुम जैसे अभी हो ऐसे ही तुम परमात्मा पर चढ़ने योग्य नहीं हो। तुम माला बनो, तुम जीवन को एक दिशा दो। तुम ऐसे ही सब दिशाओं में मत भागते फिरो पागलों की तरह। तुम एक भीड़ मत रहो, तुम्हारे भीतर एक स्वरता है और बुद्ध इसी को पुण्य कहते हैं। तुम चकित होगे, बुद्ध कहते हैं जिसके जीवन में एक स्वरता है वही पुण्य धर्मा है। पापी एक भीड़ है, पुण्य धर्मा एक माला है। पापी असंगत है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है। पापी के भीतर एक स्वरता नहीं, बोलता कुछ है, आंखें कुछ और कहती हैं, हाथ कुछ और करते हैं। पापी एक साथ बहुत है, पुण्यात्मा एक है, योगस्थ है, जुड़ा है, इंटीग्रेटेड है। वो जो भी करता है वो सब संयोजित है, वो सभी एक दिशा में गतिमान है। उसके पैर भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसकी आंखें जा रही है, उसके हाथ भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका हृदय जा रहा है, उसकी सांसें भी उसी तरफ जा रही जिस तरफ उसकी धड़कनें जा रही। वो इकट्ठा है, उसके जीवन में एक दिशा है, एक गति है, विक्षिप्तता नहीं है। जैसे फूलों से मालाएं बनती है वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को पुण्य अर्जन करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन एक माला बन जाए। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, बड़ी मीठी बात बुद्ध कहते हैं, खूब हृदय भर के सुनना। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो चंदन कोई उपाय नहीं चंदन के पास कि अपनी सुगंध को पश्चिम की तरफ भेज दे। हवा के विपरीत नहीं जाती, न तगर की, न चमेली की, न चंदन की, न बेला की, लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। एक ही सुगंध है इस जगत में जो विपरीत दिशा में भी चली जाती है, वो है सत्पुरुष की, वो है संत पुरुष की, वो है जागृत पुरुष की सुगंध। मनुष्य भी एक फूल है और जो कली ही रह गए खिल ना पाए उनके दुख का अंत नहीं। कलियों से पूछो जो खिलने में असमर्थ हो गई, जिनमें गंध भरी थी और लुटा ना पाई। ऐसे ही जैसे किसी स्त्री को गर्भ रह गया और फिर बच्चे का जन्म ना हो तो उसका संताप समझो। गर्भ बड़ा होता जाए और बेटे का जन्म ना हो तो उस स्त्री की पीड़ा समझो। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य पीड़ा में है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बड़ा हो रहा है वो जन्म नहीं पा रहा। तुम एक गर्भ लेके चल रहे हो, गर्भ बड़ा होता जाता है लेकिन तुम्हारे जन्म की दिशा खो गई, तुम भूल ही गए हो। तुम एक कली हो, उसके भीतर गंध इकट्ठी होती जा रही है, बोझिल हो गई है कली, अपने ही बोझ से दबी जा रही। मेरे देखे तुम्हारी पीड़ा ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारी असली पीड़ा यही है कि जो सुख हो सकता था वो नहीं हो पा रहा। ये दुख की मौजूदगी नहीं है जो तुम्हें पीड़ित कर रही है, ये उस सुख की मौजूदगी का अभाव है जो हो सकता था और नहीं हो पा रहा। तुम्हारी गरीबी तुम्हें पीड़ा नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अमीरी का झरना फूट सकता था, फूटने को तत्पर खड़ा है, उस पर चट्टान पड़ी, वो झरना फूट नहीं पा रहा है। ये विकास की छटपटाहट है आदमी का संताप, ये आदमी की पीड़ा जन्म लेने की छटपटाहट है। सारा अस्तित्व खिलने में भरोसा रखता है, जब भी कोई चीज खिल जाती तो निर्भर हो जाती। आदमी भी एक फूल है और बुद्ध कहते हैं बड़ा अनूठा फूल है, और बुद्ध जान के कहते हैं उनका फूल खिला। तब उन्होंने एक अनूठी बात जानी कि विपरीत दिशाओं में भी जहां हवा

नहीं भी जा रही हो वहां भी संत की गंध चली जाती। संत की गंध कोई सीमाएं नहीं मानती। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की सुगंध, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सज्जन की सुगंध एकमात्र सुगंध है जो संसार के नियम नहीं मानती, जो संसार के साधारण नियमों के पार जो अतिक्रमण कर जाती। सीखले फूलों से गाफिल मुद्द आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इतना ही काफी नहीं कि खुद महको, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है समाधि फिर प्रज्ञा, समाधि फिर करुणा। बुद्ध ने कहा है वो ध्यान ध्यान ही नहीं जो करुणा तक न पहुंचाते। खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। उसी समाधि को बुद्ध ने परिपूर्ण समाधि कहा है जो लुट जाए सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बह जाए। लेकिन ये समझ लेने की बात है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। तुम साधारण अवस्था में सभी दिशाओं में दौड़ते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्धत्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जिस दिन पहुंचता है उस दिन सभी दिशाओं में बहने में समर्थ हो जाता है। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो, थोड़ा धन भी कमा लें, थोड़ा धर्म भी कमा लें, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना लें, थोड़ी समाधि भी कमा लें, थोड़ा दुकान भी बचा लें, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और आखिर में पाते हो भिखारी के भिखारी विदा हो गए। जैसे आए थे खाली हाथ वैसे खाली हाथ गए। बहुत पकड़ना चाहा कुछ पकड़ने ना आया। तुम्हारी हालत करीब करीब वैसी है जैसे तुमने बहुत प्रसिद्ध गधे की सुनी हो कि एक मजाकिया आदमी ने एक गधे के पास दोनों तरफ घास के दो ढेर लगा दिए बराबर दूरी पर। वो गधा बीच में खड़ा था, उसे भूख तो लगी तो वो बाएं तरफ जाना चाहा, तब मन ने कहा कि दाएं, उस तरफ भी घास था। दाएं तरफ जाना चाहा तो मन ने कहा बाएं। कहते हैं गधा भूखा बीच में खड़ा खड़ा मर गया क्योंकि न वो बाएं जा सका न दाएं। जब दाएं जाना चाहा तब मन ने कहा बाएं, जब बाएं जाना चाहा तो मन ने कहा दाएं। तुम्हारा मन यही कर रहा है। जब तुम मंदिर की तरफ जाना चाहते हो तब मन कहता दुकान, जब तुम दुकान पर बैठे हो मन को भजन याद आता मंदिर। ऐसे ही मर जाओगे। और दोनों तरफ तृप्ति के साधन मौजूद थे, कहीं भी गए होते। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम दुकान पर ही पूरी तरह से चले जाओ तो वहीं ध्यान हो जाएगा। आधे आधे मंदिर जाने की बजाय दुकान पर पूरे चले जाना बेहतर है, क्योंकि पूरे चला जाना ध्यान है। ग्राहक से बात करते वक्त भीतर राम राम गुनगुनाना गलत है, ग्राहक को ही पूरा राम मान लेना उचित है। आधे आधे कुछ सार न होगा, आधा यहाँ आधा वहां। तुम दो नाव पर सवार हो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़े हो। तुम सब दिशाओं में पहुंचना चाहते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्ध पुरुष एक दिशा में जाते और जिस दिन मंजिल पर पहुंचते सब दिशाओं में उनकी गंध फैल जाती। तुम सब पाने की कोशिश में सब गंवा देते हो, बुद्ध पुरुष एक को पा लेते हैं और सब पा लेते। महावीर ने कहा जिसने एक को पा लिया उसने सब पा लिया, जिसने एक को जान लिया उसने सब जान लिया। जीसस ने कहा सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। अकेली तुम परमात्मा की खोज कर लो, प्रभु का राज्य खोज लो, ये सब अपने से आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। एक को जिसने गमाया वो सब गमा देता है और एक को जिसने पाया वो सब पा लेता है। लेकिन तुम्हारा सब अधूरा अधूरा है, अधूरे अधूरे के कारण तुम खंड खंड हो गए हो। तुम्हारे भीतर बड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा कहीं जा रहा दूसरा टुकड़ा कहीं जा रहा। तुम एक टूटी हुई नाव जिसके तख्ते अलग अलग बह रहे हैं। तुम कैसे पहुंच पाओगे, तुम कहां पहुंच पाओगे? तुम हो ही नहीं, तुम इतने खंड खंड हो गए हो कि तुम हो ये कहना भी उचित नहीं है।
होने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी दिशा बने, एक अनुशासन हो, एक श्रृंखला हो। तुम फूलों को पुरोना सीखो, फूलों की माला बनाना सीखो। जीवन में सत्य का आविष्कार करना है, प्रेम का आविष्कार करना है। जीवन में तुम कौन हो इसका आविष्कार करना है, इसे ऐसे ही नहीं गंवा देना है। तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे अनुशासन होना शुरू हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी थोड़ी सी भी दृष्टि हो, दिशा हो, कहां पहुंचना है, तो एक तारतम्य आ जाए। उस तारतम्य के साथ ही साथ तुम्हारे भीतर एकता का जन्म होगा। इस एकता के माध्यम से ही किसी दिन तुम माला बन सकते हो, और जिस दिन तुम माला बन जाते हो उस दिन परमात्मा के गले में चढ़ाने नहीं जाना होता, परमात्मा का गला खुद तुम्हारी माला में आ जाता है। आ ही जाएगा, तुम काबिल हो गए। काबिले इल्तिफात तो ही नहीं, तभी तक अर्चन थी। उनसे सिकवा फजूल है सीमा, शिकायत बेकार है। इतना ही जानना कि अभी हम तैयार नहीं हुए। अब ये फूलों की गठरी को तुम किसी के गले में डालना चाहोगे तो माला कैसे बनेगी? गिर जाएंगे फूल नीचे, धूल में पड़ जाएंगे। ये माला किसी के गले में डालनी हो तो माला होनी चाहिए। फूलों के ढेर को माला मत समझ लेना। थोड़ा देखो माला और ढेर में क्या फर्क है। ढेर में संगठन नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है। माला में एक संगठन है, एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। धागा दिखाई नहीं पड़ता, एक फूल से दूसरे फूल में चुपचाप अदृश्य में पिरोया हुआ है। जीवन के लक्ष्य भी दिखाई नहीं पड़ते, एक क्षण से दूसरे क्षण में अदृश्य पिरोए होते हैं। बुद्ध उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो हर घड़ी के भीतर ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। जो भी करते हैं एक बार ध्यान रखते ही है कि उस करने में से ध्यान का धागा न छूटे, वो धागा बना रहे। फूल से भी ज्यादा मूल्य धागे का है, लक्ष्य का है, दिशा का है। और जिस दिन ये घड़ी घट जाती कि तुम संगठित हो जाते हो, तुम एक हो जाते हो, उसी दिन परमात्मा की कृपा तुम पर बरस उठती। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसलिए बुद्ध उस संबंध में चुप रहे। जो कहा जा सकता था उन्होंने कहा, जो नहीं कहा जा सकता था उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सारा जोर इस पर दिया है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे एक हो जाए, तुम्हारा ज्ञान कैसे आचरण बन जाए, तुम्हारे बिखरे फूल कैसे माला बन जाए। इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि इसके बाद बात करनी ठीक ही नहीं। इसके बाद जो होना है वो होता ही, वो हो ही जाता है, उसमें कभी कोई अड़चन नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा को तुम भूल जाओ तो अड़चन नहीं, अपने को मत भूल जाना। अपने को भूला तो सब गया, सब डूबा। खुद की याद रखी और सियादास को रोज रोज संभालते गए, रोज रोज हर तरह से वो याददाश्त सघन होती चली जाए। जैसे जल गिरता है पहाड़ से, चट्टान मजबूत है, जल बिल्कुल नाजुक है, लेकिन रोज गिरता ही चला जाता है। एक दिन चट्टान तो रेत होकर बह जाती, जल की धार अपनी जगह बनी रहती। कठोर से कठोर भी टूट जाता है सातत्य के सामने। इसलिए घबराना मत। अगर आज तुम्हें अपनी दशा चट्टान जैसी लगे, तुम कहो कि कैसे ये अहंकार बहेगा, ये चट्टान बड़ी मजबूत है, कैसे ये दिल झुकेगा, ये झुकना जानता नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करना। तुम सिर्फ सातत्य रखना, ध्यान का, अवलोकन का, साक्षी का, से सब अपने से हो जाता है। बुद्ध ने मनुष्य के व्यक्तित्व का विज्ञान दिया, उन्होंने मनोविज्ञान दिया, मेटाफिजिक्स, परलोक के शास्त्र की बात नहीं की। बुद्ध बड़े यथार्थवादी हैं। वे कहते हैं जो करना जरूरी है वही, और ज्यादा व्यर्थ की विस्तार की बातों में तुम्हें भटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम काफी भटके हुए हो, थोड़े से तुम्हें सूत्र दिए, अगर तुम उन्हें कर लो
तो उन सूत्रों में बड़ी आग है, वो अंधकार को जला डालेंगे, वो व्यर्थ को राख कर देंगे और उन सूत्रों की आग से तुम्हारे भीतर का स्वर्ण निखर के बाहर आ जाएगा। बुद्ध ने बहुत थोड़ी सी बातें कही, उन्हीं को दोहरा के कहा है, क्योंकि बुद्ध को कोई रस दर्शन शास्त्र में नहीं है। बुद्ध को रस है मनुष्य की आंतरिक क्रांति में, रूपांतरण में। बुद्ध को जिन लोगों ने गौर से अध्ययन किया है उन सबको हैरानी होती है कि बुद्ध एक ही बात को कितनी बार दोहराए चले जाते। वो हैरानी इसलिए होती है कि बुद्ध व्यर्थ की बात को कभी बीच में नहीं लाते, बस सार्थक को ही दोहराते ताकि सतत चोट पड़ती रहे। और तुम ऐसे हो, तुम्हारी नींद ऐसी है, तुम्हारी तंद्रा ऐसी है कि बहुत बार दोहराने पर भी तुम सुन लो, वो भी आश्चर्य है। बुद्ध से कोई पूछता था तो वो 3 बार दोहरा के जवाब देते थे, उसी वक्त 3 दफा दोहरा के जवाब देते थे। क्यों 3 बार? क्योंकि बुद्ध से कोई पूछने लगा कि क्यों 3 बार, क्या आप सोचते हम बहरे? बुद्ध ने कहा नहीं, अगर तुम बहरे होते तो इतनी अड़चन न थी। तुम बहरे नहीं हो और फिर भी सुनते नहीं, तुम सोए नहीं हो, यही तो अड़चन है। सोए होते तो जगाना आसान हो जाता, तुम बन के लेटे हो, तुम सोने का ढोंग कर रहे हो, उठना भी नहीं चाहते, जागती गए हो। तुम सुनते हुए मालूम पड़ते हो और सुनते भी नहीं, इसलिए 3 बार दोहराता हूं। ये जो बुद्ध का दोहराना है धम्मपद में, इस पूरी चर्चा में बहुत बार आएगा, अलग अलग द्वारों से वो फिर वहीं लौट आते, कैसे तुम्हारा रूपांतरण हो। बुद्ध की सारी आकांक्षा अभीप्सा मनुष्य केंद्रित है, महावीर मोक्ष केंद्रित है, वो मोक्ष की चर्चा करते। जीसस ईश्वर केंद्रित है, वो ईश्वर की चर्चा करते। बुद्ध मनुष्य केंद्रित है, जैसे मनुष्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है बुद्ध के लिए। साधार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं, सबके ऊपर मनुष्य का सत्य है और उसके ऊपर कोई सत्य नहीं, क्योंकि जिसने मनुष्य के सत्य को समझ लिया उसे कुंजी मिल गई, सारे सत्यों के द्वार उसके लिए फिर खुले। बुद्ध को भोजन बनाओ, पियो, पचाओ, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण होने लगा, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध की प्रतिमा उभरने लगी। हर चट्टान छिपाए है बुद्ध की प्रतिमा अपने में, जरा छेनी की जरूरत है, हथौड़ी की जरूरत है, व्यर्थ को छांट के अलग कर देना है। किसी ने माइकलेंजेलो से पूछा, क्योंकि चर्च के बाहर एक पत्थर बहुत दिन से पड़ा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था, चर्च के बनाने वालों ने उपयोग में नहीं लिया था, वो बड़ा अनगढ़ था। माइकलेंजेलो ने उस पर मेहनत की और उससे एक अपूर्व क्राइस्ट की प्रतिमा निर्मित की। किसी ने पूछा कि ये पत्थर तो बिल्कुल व्यर्थ था, इसे तो फेंक दिया गया था, इस तो राह का रोड़ा समझा जाता था, तुमने इसे रूपांतरित कर दिया, तुम अनूठे कलाकार हो। माइकलेंजेलो ने कहा नहीं, तुम गलती कर रहे हो, जो मैंने पत्थर से प्रकट किया है वो पत्थर में छिपा ही था, सिर्फ मैंने पहचाना और जो व्यर्थ टुकड़े पत्थर के आसपास थे उनको छांट के अलग कर दिया। ये प्रतिमा तो मौजूद ही थी, मैंने बनाई नहीं, मैंने सिर्फ सुनी आवाज। मैं गुजरता था यहां से, पत्थर चिल्लाया और उसने कहा कि कब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, कोई पहचान ही नहीं रहा है, तुम मुझे उठा लो, जगा दो। बस मैंने छेनी उठा के इस पर मेहनत की, जो सोया था उसे जगाया। बुद्धत्व को कहीं पाने नहीं जाना है, हर एक के भीतर आज जो चट्टान की तरह मालूम हो रहा है अनगढ़, बस जरा से छेनी हथौड़े की जरूरत है। सबके भीतर से पुकार रहा है कि कब तक पड़ा रहूंगा, उघाड़ो मुझे। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो तुम सुनो, जो सुभाषित तुम्हारे कानों में पड़ जाए, उन्हें तुम स्मृति में संग्रहित मत करते जाना, उन्हें उतारना आचरण में, उन्हें जीवन की शैली बनाना। धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ उनकी हवा, तो
तुम्हें घेरे रहे, उनके मौसम में तुम जीना। जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व उभरना शुरू हो गया, फूल माला बन गए। और तब एक ऐसी घटना घटती है जो संसार के नियमों के पार है। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन जिनके भीतर का बुद्ध पुरुष जाग गया, बुद्ध चैतन्य जाग गया, उनकी सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है, सभी दिशाओं में उनकी सुगंध फैल जाती है। और जब तक तुम ऐसे अपने को लुटा ना सकोगे, तब तक तुम पीड़ित रहोगे। एक ही नरक है अपने को प्रकट न कर पाना, और एक ही स्वर्ग है अपनी अभिव्यक्ति खोज लेना। जो गीत तुम्हारे भीतर अनगाया पड़ा है उसे गाओ, जो वीणा तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है उसे छेड़ो, उसके तारों को। जो नाच तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है उसे तुम बोझ की तरह मत थो, उसे प्रकट हो जाने दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को लेकर चल रहा है, जब तक वो फूल न खिले तब तक बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी, पीड़ा रहेगी, संताप रहेगा। वो फूल खिल जाए, निर्वाण है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: क्योंकि तुम हो हटके।
4: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत।
5: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
4: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं, या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
6: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें, चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
4: मतलब ओके, पूरी पहचान के साथ
6: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज क्वालिटीज जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग देम इन माई सेल्फ एंड द रिजल्ट ऑफ दैट विल बी कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
4: डिप्लीटेड
6: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। तो इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain.
4: खुद किस situation में है? तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएंगे?
6: That's the point. तो जैसे ही आपका relationship उसके साथ जुड़ता है जो इतना powerful है, तो उससे आपको vibration कौन सी आएगी? आज एक parent भी एक बच्चे के साथ ये relationship जोड़ सकता है, not like God, but if a parent has the power कि वो unconditional love दे stability के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर, सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसे होती जा रही है? वी ऑल लव ईच अदर वी से, बट सो मेनी कंडीशंस वी अप्लाई एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिसएम्पावर्ड। लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, यू नो जस्ट लुक एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, वी आर लुकिंग एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
4: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, वंडरफुल,
6: नो पेन, राइट, नो एंगर, नो स्ट्रेस, नन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवर पावरफुल, एवर प्योर, एवर पीसफुल, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर? That I will start experiencing कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic, लेकिन भगवान से जो वो unconditional power, love, purity मिलती है that helps me to overcome my pain and overcome my old संस्कार and that's why relationship with God का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यस, बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट एवर प्योर, मुझे वो इतनी वाइब्रेशन, इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ,
4: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। वंडरफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप। अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है। मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में। कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल।
6: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते हैं, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है। एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन। हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच। एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच। अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है। लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी। और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ। मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रॉब्ली इट्स जस्ट टू पर्सनल। एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन। यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए। लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन। अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर, जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ। अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है। नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ। रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन
4: होना ही था,
6: या आपने ऐसा कर दिया,
4: ये आप इस हद तक,
6: यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर। तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता। लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
4: कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
6: वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया, अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? एंड जब हम दर्द में होते हैं हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है, वी नीड लॉट ऑफ लव। I need a soul who will give me so much love that I will be able to come out of that pain. लेकिन आज हम किसी से भी अपना pain share करें तो हमें return में कोई, you know, we still getting pain. So when I share my problem, my conflict, my pain with him, it is not that, you know, just the sharing does the work. एक तो sharing करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो in return मुझे फिर भी unconditional acceptance मिलती कि आप जो हो जैसे हो, I still love you. This helps me to build my self-confidence all over again. तो परमात्मा के साथ relationship मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो, हम शेयर कर सकते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पढ़नी पड़ती। पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। माई एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माई थॉट, बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट, ये तो मुझे क्रिएट करना है, आई क्रिएट द थॉट। लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते हैं।
4: और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है।
6: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है। परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज़ सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती। तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई, और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने की। जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवरपावर करता है। अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवरपावर करती है, एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
4: उनका फोन आ जाता
6: है, तो वो कब होता है? जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है। सो बेसिकली ही इज एवर रेडी।
4: अच्छा, ही इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड। यू नो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू you are there personally, but if I want to get connected to my daughter or
6: see,
4: like anyone,
6: I may
4: else,
6: not be there personally. Sometimes I could be sitting here but I'm not here if my mind is there. Mera man ho sakta na main aapse baat kar rahi hu lekin man kahin aur hai, to aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga, kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain?
4: To main ye janna chahti hu, log bhi ye janna chahenge ki when I get connected to him, matlab jab main unko yaad karun, to kya wo connected mujhse hai hamesha? This is what I
6: actually
4: think some reassurance
6: people. Hamesha hi connected hai, you know, it's like a transmitter जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है। अब सिर्फ रोल किसका बचा है?
4: मेरा,
6: रिसीवर। कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए। अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया? बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी। मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया? ऑफिस याद आया। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा?
4: परमात्मा,
6: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया
4: था। अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही,
6: वो तो है ही है, He's not gone anywhere. वो तो है ही है, लेकिन I was not first in that same consciousness, and second, I didn't know who I was connecting to. अब knowledge के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई कि पहले अपनी consciousness के ये सब बातों की विस्मृति करके I am a pure soul. तो soul को याद कौन आएगा? Supreme soul. फिर वो अनुभव करना. He's already there. लेकिन the minute I tune in, I will start experiencing the flow. तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं. पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माई कर्मा. अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम अब उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं. तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पर जाएँ क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारे थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं जहाँ बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए. फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं. वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम. फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है. Now I'm changing it. I'm a pure soul, child of the ocean of purity. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ. I want के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको embed कहाँ करना पड़ेगा?
0: Subconscious.
6: यहाँ subconscious में. तो morning में silent में बैठकर conscious thoughts side पे कर subconscious layer को, जैसे you know ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीव्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं. तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन, I can go on communicating with him. अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें. कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीशन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम. कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम. तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा, आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
4: बाकी से.
6: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ, वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माय रिलेशनशिप. फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना
4: आसान
6: हो जाएगा. एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव. And because I start experiencing, I will start expressing. And when I start expressing, I give. And when I give, my relationships become very close. जो हम meditation में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन faculties हैं, mind, intellect and experience, संस्कार, ये तीनों faculties अपना अपना role play करते हैं. Mind creates a thought, intellect उसको तुरंत visualize करता है. जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी, तुरंत पिक्चर आ जाएगी. तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया गॉड, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट. आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो भी कहाँ पर है, क्या कर रही है. तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता. तो घर याद आता कि घर हमारा द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट प्योरिटी, एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं। तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा, मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट। किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है। यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
4: फिर
6: वो मन वहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देमसेल्फ, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो इट्स नॉट अ पिक्चर। एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली। मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है। ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल, जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं। यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है। This is all matter. I am energy, consciousness, shakti. Try and see yourself shining in the center of the forehead, prikuti ke beech mein, ek sundar sa chamakta hua sitara, tiny star. यहाँ से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूँ, मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ। ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, संबंध अनुभव करने वाली मैं शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure soul, purity, divinity, ये तो मेरी अपनी नेचर है। I see myself अपने घर की तरफ चलते हुए, अपने आप को देखें, वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि

0: से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ। गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस। आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी। आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ। अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा। इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर वाइब्रेटिंग ऑल ओवर। मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ। आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था, गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था। मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ। मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूँ। देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है, और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। ओम शांति,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है, बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनेमिक हो सकता है। वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जिसको हम अभी तक तलाश रहे हैं। थैंक यू सो मच। शांति, हर बार की तरह आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सचिवानी, थैंक यू सो मच।
0: शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे प्रसंगों, कथाओं की बात करते हैं जो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत कर दी थी एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, और वो है महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत, जिसे उन्होंने गणेश जी को लिखवाया था। और हम पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से बहुत सारी कथाएं प्रसंग जान रहे थे, और हमने जाना था पिछले एपिसोड में कि किस तरह से जो आरुणी की कथा थी, उपमन्यु, वेद, ये जो आचार्य जी के शिष्य थे, इनकी कथा जानी थी। और आस्तिक ऋषि जी की कथा पर हमने शुरुआत की थी, इसकी कथा को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, सतयुग में दक्ष प्रजापति जी की दो कन्याएं थी, कद्रु और वनिता
0: जी।
1: उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गए। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों 1 अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तुमने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। उस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह घोड़ा अश्वरत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। असमस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वस्व देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेष नाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह से उनकी और असर अपूछ की ओर देखता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मतने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वन का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वन का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष काम धेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च शवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर नीले कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नील कंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास

0: को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुर का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्र सहस्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी,
0: उस सवा घोड़े को देखकर कधु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कधु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्दु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्दु और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिससे काली जान पड़ने लगी। वह कद्रु और नीता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर वनिता उदास हो गई। कद्दू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत न हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्दू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्दू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्दु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर व नादि उदर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप ले चलो। करुण कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौट कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुण भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत।

0: दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। शर्तों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस जीत के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसे खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपनी धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं, और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देख कर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देख कर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चढ़े गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रमाद के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे, धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से करुण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े, उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है, उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। यह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त है। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांगो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बजू चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षी राज में जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ मुझसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा। हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने, ये भी हमने जाना। और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धम किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपाम प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं

0: भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके। इसलिए
1: जैसे लीना जी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जैसे मरा हुआ आदमी, लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा, इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती है। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे, तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे, तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे, वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है, आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम, तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे, वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाए। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा, अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी, भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया, भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है, उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी,
भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो, तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वही भगवान है, सब और भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या। यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भावदशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ,

चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उनसे पाही ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है, उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई आचरण नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होकर बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतत्म का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए। पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है, मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो,
कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है। कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा कोमल चित्र, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो, जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन। डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो, न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा, रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द कई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें,
जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजरों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे, सब होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है, उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है, एक फकीर एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी ना थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई, दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है, वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया, वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था, मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए, अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना।
अक्सर ऐसा होता है।

तो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत न होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं, मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद नौ विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने नौ विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही, अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम चार विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन चार विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने नौ विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से चार विवाह करवाने हो तो गुरु को नौ करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद दो कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे ही नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, चार पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी चार पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली तरफ चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, दो विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती दो विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की दो औरतें, दो बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी,
एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी।

0: ऊपर रहती है और एक औरत जिसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती है। एक इसकी टांगे पकड़ी थी, एक इसके हाथ पकड़े थी। ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो सजा देनी हो दे देना, मगर दो औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। चार स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर एक इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक, प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत, तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे। और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती, पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है, लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा, तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं, तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो, फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे अब तू थक गए अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती, बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता। मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं। तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते। बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में बैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारों, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंध जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती, मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग ना खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग ना खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा
1: तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य इतना अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन बद्रिका आश्रम गोकर्ण हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस त्वचा नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या पर हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी पर्वत वन सागर ग्राम विहार नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञानुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकी ने कहा, भाइयों विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंतरे सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। न मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने शाप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस शाप से शूद्र प्राप्ति जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित कर लें, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा, और उनके नाम का अर्थ क्या है, और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्वास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा करता था, पीछे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु पीकर निराहार रहते, इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं, उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं, और अब इस खस की जड़ कट जाएगी, तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से चुपत्ती से बचे तो बताएं, और तो और क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारु से कहिएगा, और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पिता माँ है, आप लोगों को अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूँ। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा, और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप पर लोग आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। उसी पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वही चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
0: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागले कदासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागले कदासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
1: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरत्कारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। सुने आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। उनके ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी वस्तुओं के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ जो मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋतिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा, ब्राह्मणों से, मैं वही

0: करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देखकर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप इन्जॉय कर सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान